शांति। गणेश चतुर्थी की सभी भाई बहनों को बहुत बहुत हार्दिक बधाइयां हो। गणेश शिव के पुत्र, हम सब भी शिव के पुत्र हैं, शिव की संतानें हैं और वे हैं सर्वशक्तिवान। तो उन्होंने हमें भी शक्तियां दे दी हैं, हम भी बहुत शक्तिशाली हैं। जैसे गणेश के लिए तीन चीजें प्रसिद्ध हैं, वे बहुत बुद्धिमान हैं, बहुत शक्तिशाली हैं और विघ्नों को नष्ट करने वाले हैं, सिद्धिदाता भी हैं। हमें भी ये याद रखना है, हम भी ईश्वरीय बुद्धि से संपन्न हैं। स्वयं ज्ञान सागर शिव ने हमें सत्य ज्ञान देकर ईश्वरीय बुद्धि प्रदान कर दी है। तो हमारे पास श्रेष्ठ विवेक भी है, ईश्वरीय विवेक भी है और बाबा से बहुत सारे वरदान हमें मिले हैं, वे अविनाशी हैं। तो हम सिद्धिदाता भी बन जाते हैं, उनसे हमें शक्तियां भी मिली हैं विघ्नों को नष्ट करने की शक्ति हमारे पास है। कोई भी विघ्न आता है, जब हम ये भूल जाते हैं कि मैं बहुत शक्तिशाली हूं और विघ्न विनाशक हूं, तो विघ्नों के प्रभाव में आकर हम अपनी स्थिति को बिगाड़ लेते हैं। लेकिन रोज सवेरे हमें कुछ चीजें अपने को याद दिलानी है। हम एक लिस्ट बना ले 5-7 चीजों की, जो रोज सवेरे स्वयं को याद दिलाएंगे। मैं बहुत शक्तिशाली हूं, विघ्न विनाशक हूं। जो विघ्न मेरे सामने आया है उसको नष्ट करने की शक्ति मेरे पास है। हमें यह भी याद रखना है, जो लंबे समय से निर्विघ्न जीवन जीते हैं वही विघ्न विनाशक बन जाते हैं। अपने विघ्नों को नष्ट करने वाले भी और दूसरों के विघ्नों को नष्ट करने वाले भी बन जाते हैं। तो गणेश चतुर्थी पर हम सभी अपनी ईश्वरीय बुद्धि पर ध्यान दें, चेक करें, मेरे पास ईश्वरीय बुद्धि है या केवल लौकिक बुद्धि। लौकिक बुद्धि में अभिमान आ सकता है, मैंपन आ सकता है, ईश्वरीय बुद्धि इन सब से हमें मुक्त करती है। ज्ञान हमें ज्ञान सागर से मिला है, तो हमें चिंतन करना है कि हम ज्ञान को याद रखते हैं, कौन सी बातें हमारे चिंतन में रहती हैं। ज्ञान चिंतन करते हुए, ज्ञान का स्मरण करने से हमें दिव्य विवेक प्राप्त हो जाता है, हो जाएगा। हमें अपनी शक्तियों को भी चेक करना है कि कहीं व्यर्थ संकल्पों में हम अपनी शक्तियों को बहा तो नहीं देते हैं। शक्तियां तो हमारे पास हैं, कहीं वो सो तो नहीं रही हैं। सोई हुई शक्तियों को हमें जगाना है मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति से, और अच्छी तरह से आज चेक कर लें। हम विघ्न आने पर परेशान हो जाते हैं या अपनी स्थिति को स्थिर रखने में समर्थ होते हैं। इसमें सद्ज्ञान का प्रयोग भी और शक्तिशाली होने का अनुभव भी हमें बहुत मदद करता है। विघ्न तो आते हैं, सबके पास आते हैं, तन के भी आ जाते हैं, परिवार के भी आते हैं, बीमारियों के भी बहुत ज़्यादा आते हैं, काम धंधों में पैसे के विघ्न और आजकल दुनिया में संबंधों के विघ्न सबसे भारी पड़ रहे हैं मनुष्य को, क्योंकि उसमें अपनापन होता है। उसमें आत्मिक भाव बनाते चलें तो इन सबको मिलाकर जब हम चलेंगे तो विघ्न कम से कम आएंगे और विघ्नों को हम नष्ट भी कर पाएंगे। पहले तो हमें ये कला सीखनी है कि निर्विघ्न जीवन रहे। कई लोग छोटी छोटी बातों को भी बड़ा विघ्न मान लेते और परेशान हो जाते हैं।
और कई लोगों के लिए कॉमन बात होती है, भाई ये बात तो आती है, ठीक है चली जाएगी, तो वो शक्तिशाली रहकर उन चीज़ों को समाप्त कर देते हैं। तो जितने हम हल्के रहेंगे विघ्न भी हल्के होकर नष्ट हो जाएंगे। तो आज से सभी गणेश बन जाएं, बाबा की बातों को ग्रहण करते हुए अपने जीवन को

सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सुप्रभात में आपका स्वागत रेडियो मधुबन पर। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, आपके मस्तिष्क में भर दी गई वह ढेर सारी जानकारी और सूचना शिक्षा नहीं है, जो जीवन के लिए अनुपयुक्त होने के कारण जीवन भर उसमें उत्पात मचाती रहती है। हम में जीवन निर्माण, मानवीयता निर्माण और चरित्र निर्माण करने वाले विचार होने चाहिए। यदि ऐसे 5 विचार भी आप आत्मसात कर लेते हैं, उन्हें अपना जीवन चरित्र बना लेते हैं, तो आप उस व्यक्ति से कहीं ज्यादा शिक्षित हैं जिसने पूरा पुस्तकालय कंठस्थ कर रखा हो। हमें उस शिक्षा की जरूरत है जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण हो, मनोबल में वृद्धि हो, प्रज्ञा का विस्तार हो और जिसके बल पर व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो सके। जाने क्यों और कैसे हम किताबी ज्ञान को, स्कूली पढ़ाई को ही शिक्षित होना मान बैठे हैं। अभिभावकों से लेकर शिक्षकों तक हर किसी का पूरा ध्यान स्कूली पढ़ाई की ओर ही हो गया है। कोई बालक यदि जीवन के ही विज्ञान से अनभिज्ञ बना रहता है, तो विज्ञान पढ़कर भी वह भला क्या कर लेगा। हम अपने बच्चों को इतिहास पढ़ने और उसे रटने के लिए तो कहते हैं, लेकिन हम उन्हें इतिहास रचने के लिए नहीं कहते। कोई बालक अपनी पहली, दूसरी या तीसरी भाषा के साथ क्या कर लेगा, यदि उसमें संवाद का कौशल, दूसरे तक अपनी बात स्पष्ट ढंग से पहुंचाने का कौशल विकसित नहीं हो सका। यहाँ हमारे भाव को गलत ना समझें। हम यह नहीं कहना चाहते कि किताबी ज्ञान व्यर्थ है। हम तो इस बात पर बल दे रहे हैं कि सिर्फ किताबी ज्ञान शिक्षा को कभी पूरा नहीं करता।

0: गणपति बाप्पा मोरिया,
1: मंगल मूर्ति मोरिया,
0: गणपति बाप्पा मोरिया,
1: मंगल मूर्ति मोरिया,
0: एक दो तीन चार,
1: गणपति तेरी जय जयकार,
0: एक दो तीन चार,
1: गणपति तेरी जय जयकार।
2: गुणाधिपति विद्यापति रिद्धि सिद्धि के नायक पधार रहे हैं, आइए बड़े उमंग से गणेश जी का स्वागत करें। गणेश उत्सव के महान पर्व को सभी मिलकर मनाते हैं और अपनी संस्कृति का संवर्धन करते हैं। रेडियो मधुबन 90.4 FM के सभी सुनने वालों को गणेश उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं।

किताबी ज्ञान बालक के विकास का एक पक्ष तो है, लेकिन एकमात्र पक्ष नहीं है। वह जीवन में सहायक तो है, लेकिन यही एकमात्र जीवन नहीं है। जीवन कुछ और भी है। सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाला अपने जीवन में भी सर्वोच्च रहे, ऐसा जरूरी नहीं है। और यह भी जरूरी नहीं है कि सारे बैक बेंचर यानी कक्षा में पीछे बैठने वाले अपने जीवन में भी बैक बेंचर ही रहते हो। सचमुच हम अक्सर देखते हैं 98% अंक पाने वाला जीवन की औसत समझ लिए हुए अंततः उस 72% अंक पाने वाले के लिए काम कर रहा होता है, जिसमें जीवन की समग्र समझ होती है। संबंध ही जीवन का असली ताना बाना है। संवाद ही संबंधों की जीवन रेखा होती है। सफलता केवल नेतृत्व से जुड़ी होती है। या तो आप नेतृत्व कर रहे होते हैं, या फिर किसी के नेतृत्व का अनुसरण कर रहे होते हैं। जहां आप अपना समय लगाते हैं, आपका भविष्य भी वहीं से बनता है। इसीलिए संक्षेप में समय प्रबंधन का कौशल ही जीवन का कौशल है। आप या तो निर्भर करने योग्य होते हैं, या फिर किसी पर निर्भर होने योग्य, और यह आपकी उस छवि पर निर्भर करता है जो आपने खुद अपने लिए बना ली है। कटु सत्य यह है कि जीवन की इन अनिवार्यताओं में से कोई भी हमारे स्कूली या किताबी ज्ञान प्रणाली का हिस्सा नहीं है। तो अभिभावकों से, शिक्षकों से और अन्य उन सभी से जिनके हाथ में बच्चों का भविष्य है, अनुरोध है कि कृपा करके बच्चों को किसी पाठ्यक्रम से न बांधे। बच्चों को हम जीवन के प्रति खुलने और खिलने दें, और निश्चय ही किताबी ज्ञान के प्रति भी। हम केवल उनके प्राप्तांकों को ही न देखते रहें, बल्कि हमें उनके जीवन को भी देखना होगा। शिक्षा के साथ समझ

किसी काम को जब रुचि से किया जाता है तो उस काम को करने में आनंद आता है, और अंततः जब वह पूरा हो जाता है तो आपको उपलब्धि की अनुभूति होती है। जो काम आपको ऐसी अनुभूति देता है उसे आप बार बार करना चाहते हैं। इसके विपरीत, काम को जब एक विवशता, एक बाध्यता के रूप में समझा व किया जाता है तो जो काम आप कर रहे होते हैं उससे आप जूझ रहे होते हैं, और आखिर जब वह पूरा हो जाता है तो आपको चलो जान छूटी का एहसास होता है। जो काम आपको जान छूटी का एहसास देता है, भविष्य में आप उससे बचना चाहते हैं। आप यदि उसे दोबारा भी कर रहे होते हैं तब भी उसे आधे अधूरे मन से, अरुचि व अनिच्छा से ही कर रहे होते हैं। जो लोग हर काम को रुचि से करते हैं वे जीवन में उपलब्धियों से भरे होते हैं, इसलिए वे जीवन के प्रति बहुत अभिलाषित रहते हैं। जो लोग हर काम को एक विवशता, एक बाध्यता के रूप में लेते हैं वे जीवन से थक जाते हैं, ऊब जाते हैं, और इसलिए जीवन से छुटकारा पाने की इच्छा की हद तक चले जाते हैं। लोग अपने जीवन के दैनिक कामकाज करने में भी अरुचि व अनिच्छा वाले हो गए हैं। लोग खाना बनाने में भी अनिच्छुक हो गए हैं। क्या प्री कुक्ड फूड, फास्ट फूड, फ्रोजन फूड और रेडीमेड फूड ने आज हर रसोई में घुसपैठ नहीं कर ली है? लोग आराम से बैठकर भोजन का स्वाद लेने के भी अनिच्छुक होते जा रहे हैं। नाश्ता करना छोड़ देना और लंच के लिए समय न निकाल पाना क्या आम बात नहीं होती जा रही है? बच्चे स्कूल जाने के लिए अनिच्छुक नहीं हैं? जितने वयस्क लोग काम पर जाने में अनिच्छुक होते जा रहे हैं, सोमवार की सुबह पड़ने वाले दिल के दौरों की बढ़ती संख्या का क्या आप कोई और कारण बता सकते?

0: हंसते रहिए। आप सड़क पर चलते समय अपनी गाड़ी को कंट्रोल रखें और अपनी गाड़ी को धीरे धीरे चलाएं और हमेशा हेलमेट पहनते रहिए।
1: रेडियो मधुबन।
2: जीवन से जुड़ी अनिवार्यताओं को यदि एक विवशता की तरह, एक बाध्यता की तरह देखा जाएगा और हर काम के पूरा हो जाने पर छुटकारा पाने के एहसास वाली लंबी सांस ली जाएगी, तो हम अपने जीवन की गुणवत्ता में विकास कैसे कर पाएंगे? देखिए, हम जो भी करें उसे उत्सव की तरह करें। उफ, तो मुझे यह करना ही पड़ेगा वाली प्रवृत्ति के बजाय मैं यह करना चाहता हूँ वाली प्रवृत्ति को अपनाएं। हमारा हर कार्य कुछ इस तरह से हो कि उसका आरंभ रुचि के साथ हो, करना आनंद के साथ हो और समापन उपलब्धि की अनुभूति के साथ हो। जो काम हमें करना ही है तो फिर उसे आनंद के साथ ही क्यों न किया जाए। शिष्य ने पूछा, गुरुजी, आप ज्ञान प्राप्ति से पहले भी केवल कुएं से जल खींचते थे और लकड़ियां काटते थे और ज्ञान प्राप्ति के बाद भी आप वही कर रहे हैं, आपके कार्य में तो मुझे कोई अंतर दिखाई नहीं दे रहा है। गुरु का उत्तर था, हाँ, मेरे कार्य में कोई अंतर नहीं है, लेकिन जिस गुणवत्ता से मैं यह कार्य कर रहा हूँ उसमें परिवर्तन आ गया है। कन्फ्यूशियस ने ठीक ही कहा था, वह रोजगार चुने जिसमें आपकी रुचि है तो फिर आपको जीवन में एक भी दिन काम नहीं करना पड़ेगा। खुशी पाने का कोई रास्ता नहीं है, खुशी खुद ही वह रास्ता है। तो हमेशा हर कार्य को करने के लिए खुशी वाला रास्ता अपनाएं, खुशी के साथ हर कार्य करें, तो आपको जरूर उस कार्य की पूर्ति होने के बाद उपलब्धि की अनुभूति होगी। कुछ आपने पाया है यह आप महसूस कर पाएंगे। तो इन्हीं बातों के साथ आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे सुप्रभात में। रेडियो मधुबन पर सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

ओम शांति। मैं हूं ब्रह्मा कुमारी प्रेमलता और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते

ओम शांति। गणेश चतुर्थी की सभी भाई बहनों को बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ। सारे भारत में और कहीं कहीं विदेश में भी ये पर्व बहुत ही उमंगों के साथ मनाया जाता है। कई लोग गणेश की प्रतिमा अपने घरों में भी स्थापित करते हैं ताकि विघ्न नष्ट हो जाएं। कुछ मिन्नत मांग के रखते हैं, उन्हें पूर्ण करते हैं और इच्छाएं पूर्ण भी होती रहती हैं, विघ्न भी नष्ट होते रहते हैं। गणेश जी की कहानी तो सबने सुनी है, वो विघ्न विनाशक भी हैं तो सिद्धि विनायक भी हैं, विद्यापति अर्थात बहुत बुद्धिमान भी हैं और बहुत शक्तिशाली भी हैं। ये चार क्वालिटीज हैं उनमें। शिव के पुत्र हैं। बुद्धिमानी की कहानी तो आप सब जानते हैं उनकी। शिव पार्वती का चक्र लगा दिया था, सब देवता तो भागे थे परिक्रमा करने के लिए, तो बुद्धिमानी एक के प्रति समर्पित। तो आज संसार में विघ्नों की जैसे सुनामी आ रही है, पहले इतने विघ्न नहीं होते थे। अभी कहीं प्रकृति के विघ्न हैं, कहीं शारीरिक बीमारियों के विघ्न हैं, कहीं धन संपदा विघ्नों में है, कईयों की नौकरियों के विघ्न हैं। तो सबसे बड़े विघ्न आजकल चल रहे हैं संबंधों में गड़बड़, अहम भाव, कोई झुकना नहीं चाहता। हम सभी को अपना जीवन निर्विघ्न बनाना है। दो शब्द हैं यहाँ, निर्विघ्न और विघ्न विनाशक। जो लंबा काल निर्विघ्न चलते हैं, यानी जीवन में कोई विघ्न नहीं, इसका अर्थ ये नहीं होता कि विघ्न आएंगे नहीं। विघ्न आते हैं लेकिन विघ्न उनको परेशान नहीं करते, वो उन पे सहज विजयी हो जाते हैं। तो जो ऐसे हैं वो दूसरों के विघ्नों को भी नष्ट करने वाले हो जाते हैं। हम सभी को अपने भी विघ्नों को नष्ट करना है, परिवार के विघ्नों को भी नष्ट करना है, काम धंधों के विघ्नों को भी नष्ट करना है। तो पहली चीज, हम अपने को शिव का पुत्र मान लें, जान लें। हम शिव की संतान हैं, वे हमारे परम पिता हैं, निराकार हैं, सर्वशक्तिवान हैं। अब उनकी संतान कमजोर तो नहीं हो सकती, हम भी बहुत शक्तिशाली हैं। पहले ये अवेयरनेस, ये स्मृति हमें अपने को देनी है, मैं बहुत शक्तिशाली हूं। और जब हम इस स्मृति में रहते हैं तो क्या होता है, हमसे चारों ओर शक्तियों के वाइब्रेशंस फैलते हैं और ये वाइब्रेशंस स्वतः ही विघ्नों को नष्ट कर देते हैं। ये रहस्य, ये सीक्रेट सभी को याद रखना है। जो लोग कमजोर हैं उन्हें विघ्न ज्यादा अनुभव होते हैं, छोटी सी बात आ गई परेशान हो गए, फिर कल दूसरी बात आ गई फिर परेशान हो गए, कहेंगे जीवन में बहुत विघ्न है। अब सभी शिव के पुत्र गणेश स्वरूप बन जाएं, बहुत शक्तिशाली, ताकि विघ्नों को खेल समझें। जीवन में परेशानियां तो हैं, चैलेंजेज हैं, लेकिन पार तो हमें ही करना है ना, क्योंकि बीज भी उनके हमने ही कहीं बोए हैं। तो पहली चीज, हम स्वयं को बहुत शक्तिशाली बनाएं। इसके लिए हमारे पास तो राजयोग की विद्या है, जिसमें हम सर्वशक्तिवान से अपना नाता जोड़ते हैं, उसकी शक्तियां हमें मिलने लगती हैं, हम शक्तिशाली बनते जाते हैं, हमारे वाइब्रेशंस अनेक विघ्नों को नष्ट करने लगते हैं। लेकिन विघ्नों को नष्ट करने के लिए बुद्धिमानी भी चाहिए, अर्थात ईश्वरीय ज्ञान भी चाहिए। दुनिया में भी आपके धंधों में कोई छोटी मोटी बात आ गई, आपको उसका ज्ञान रहता है, इसे कैसे हल करना है। डॉक्टर को बीमारियों के इलाज का ज्ञान रहता है, इसका उपचार कैसे करना है।
हमें भी ईश्वरीय ज्ञान होना चाहिए ताकि हम सद्विवेक से संपन्न रहें। तो जितना हमारे पास ज्ञान होगा, एक तो हम विघ्नों को पार कर लेंगे ज्ञान के चिंतन के द्वारा, दूसरा किसी भी बात को हम लाइट ले लेंगे। हमें ये ज्ञान रहेगा कि बातें तो आ रही हैं और जा रही हैं, आज कोई विघ्न है कल वो समाप्त हो जाएगा। अपने पीछे की जीवन यात्रा को देखें, अनेक विघ्न आए होंगे और चले गए, ये विघ्न भी चला जाएगा। इस तरह का विवेक भी हमारे पास रहना चाहिए। सिद्धि विनायक हैं वे, सिद्धि दाता हैं, खुद भी सिद्धि स्वरूप हैं और सिद्धि दाता भी हैं। इसके लिए भी हमें अपने को बहुत पवित्र करना होता है। लेकिन मैं आज खास चर्चा करना चाहता हूँ, लोग पूछा करते हैं कि गणेश जी तो एक थे लेकिन अष्ट विनायक क्यों दिखाए हैं? मुंबई में तो बहुत सुंदर मंदिर है, आपने देखा होगा। लोगों के प्रश्न उठते हैं, ये आठ क्यों दिखाए हैं? आठ गणेश तो थे नहीं। हमें इसके रहस्य को जान लेना चाहिए। इस संसार में आठ आत्माएं सर्वश्रेष्ठ हैं, जो बहुत महान हैं, बहुत पवित्र हैं, वरदानों से संपन्न हैं, संसार के रक्षक हैं, वरदान देने वाले हैं। इसलिए भारत में विशेष रूप से नवरत्नों की अंगूठी पहनाई जाती है। कोई भी विघ्न समाप्त करने के लिए, किसी ग्रह के दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए, तो आठ ये मुख्य आत्माएं हैं और एक परमात्मा जो इनको ऐसा बनाते हैं, शिव। तो ये शिव की आठ संतानें हैं। इनमें से किसी को किसी तरह की सिद्धि प्राप्त है, किसी को किसी तरह की। जैसे किसी को बीमारियों को ठीक करने का वरदान प्राप्त है, तो किसी को काम धंधों में विघ्न आ गया है उसको नष्ट करने की सिद्धि प्राप्त है, किसी के कहीं काम बिगड़ रहे हैं उनको संवारने की सिद्धि किसी को प्राप्त है, धन की समस्याएं आ गई उसको ठीक करने की सिद्धि किसी के पास है। तो ये जो अष्टरत्न है, यानी आठ मेन जो आत्माएं हैं इस सृष्टि में, इनको अलग अलग शक्तियां प्राप्त हैं। इसलिए आठ विनायक, आठ गणेश दिखाए जाते हैं। सभी विघ्न विनाशक हैं। तो ये आठ आत्माएं भी और सभी धर्मों की सभी आत्माएं एक निराकार परमात्मा की संतान हैं। अर्थात आज के दिन हमें इस बात को जान लेना है, डीपली रियलाइज कर लें, हम शिव की संतान हैं और हमारे पास भी विघ्नों को नष्ट करने की शक्ति है। हम अपनी शक्तियों को भूल कर परेशान हो जाते हैं। कई लोग गणेश की प्रतिमा की स्थापना भी करते हैं लेकिन फिर भी उनके विघ्न नष्ट नहीं होते, क्योंकि जो इसके पीछे धारणाएं हैं, प्योरिटी, खान पान की शुद्धि, वो हमें अपनानी ही चाहिए। और अगर हम सदा ही प्योरिटी को अपनाएंगे, खान पान को सात्विक करेंगे, योग अभ्यास करेंगे, तो हम सदा के लिए विघ्नों से मुक्त हो जाएंगे, विघ्नों को नष्ट करने वाले बन जाएंगे। तो आइए आज के सुंदर दिन पर हम सभी अपनी विघ्नों को नष्ट करने की शक्ति को पहचानें, उनमें वृद्धि करें और आगे बढ़ें। ऐसा जीवन जीना सीख लें जिसमें विघ्न हो ही नहीं, ऐसी सरलता अपने अंदर ले आएं, ऐसे शक्तिशाली बन जाएं, तो ये दिन आप सभी को विघ्नों से मुक्त करने वाला हो, अति शुभ हो, यही हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। ओम शांति।

0: गणपति बप्पा,
1: गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया।
0: गणपति कहाँ आ रहे हैं?
2: हाँ बिटिया, गणपति आ रहे हैं हम सबके घर और हम स्वागत करेंगे धूमधाम से।
3: गणपति जी के आगमन पर आप सभी को रेडियो मधुबन की ओर से शुभकामनाएं। गणपति जी के साथ आइए, उनके प्यार, सेवा और शक्ति के गुणों को भी करें धारण। मनाएं गणेश उत्सव उमंग और हर्ष उल्लास के साथ।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। मैं हूं आपका दोस्त आरजे श्री और ये है कार्यक्रम सहज स्वास्थ्य। सहज स्वास्थ्य कहते ही हमारे बहुत सारे दोस्त ऐसा समझते हैं कि स्वास्थ्य और सहज ये तो दो ऑपोजिट चीजें हैं जिसे हम एक साथ मिलाकर हम एक ऑक्सीमोरॉन बना रहे हैं। कई लोग तो ये भी समझ लेते हैं कि ये हैप्पी मैरिज जैसी बात करी जा रही है, मगर बहुत सारे लोग ये भूल गए हैं कि वास्तविकता में किसी भी संबंध को खुशी के लिए ही जोड़ा गया होता है। आज हम कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से हमें इन चीजों में ज्यादा तकलीफें महसूस होती हैं। सहज स्वास्थ्य का भी अर्थ कुछ ऐसा ही है कि स्वास्थ्य हमेशा से सहज रहा है, मगर धीरे धीरे हमने कुछ ऐसी चीजें बदलते बदलते आज अपने स्वास्थ्य को मुश्किल कर लिया है। आज कई लोग ऐसा मानते हैं कि स्वास्थ्य के परिचायक अस्पताल हैं या चिकित्सक हैं या चिकित्सा कर्मी हैं, मगर हमेशा से भारत में या दुनिया में भी इसका डेफिनेशन ऐसा नहीं रहा है। प्रायः लोग स्वास्थ्य को एक घरेलू मुद्दे की तरह देखते थे और छोटी मोटी चीजों के लिए तो घर में ही इलाज कर लेते थे। आज ये देखने को मिलता है कि हम हर छोटी मोटी चीज के लिए या तो अस्पतालों की ओर भागते हैं या फिर तुरंत दवाई की दुकान पर जाकर दवाइयां खरीदते हैं। और तो और हालात यहाँ तक पहुंच गए दोस्तों कि हम में से लगभग हर एक के घर में दवाइयों का एक डब्बा मौजूद ही रहता है। सिर दर्द हो गया तो ये ले लो, पेट दर्द हो गया तो ये ले लो, बुखार हो गया तो ये ले लो। ये दवाइयां तो हम बिना डॉक्टर के जांच पड़ताल के उनके परामर्श के खुद ही अपने अनुभव के आधार पर लेने लगते हैं और समझते हैं कि ये होने से इस चीज में हमें राहत मिलती है। कई लोग तो एंटासिड्स और एंटासिड जैसे अनेक द्रव्यों का भी उपयोग करते हैं जिनको एसिडिटी इत्यादि की समस्या होती है। कई लोग तो और अनेक ब्रांड्स की चीजें इस्तेमाल करते हैं जो है तो मेडिकल दवाइयां, मगर उसे घरेलू स्वास्थ्य से संबंधित इलाज के रूप में उसका इस्तेमाल करने लगे हैं। क्या ये सब कुछ सही है या हमें चिकित्सकीय राय सही तरीके से लेना है या स्वास्थ्य का जो मापदंड है उसे ही हम बदल चुके हैं, यही सब कुछ हम समझते हैं सहज स्वास्थ्य में। आज हमारे साथ चर्चा के लिए स्टूडियो में डॉक्टर राहुल मोदी जी हैं। डॉक्टर राहुल मोदी पेशे से एक ऑस्टियोपैथ हैं। भारत के प्रसिद्ध ऑस्टियोपैथ होने के साथ साथ भारत के प्राचीनतम प्रकृति चिकित्सा केंद्रों में से एक आरोग्य मंदिर गोरखपुर में प्रैक्टिस करते हैं, जहां पर उनके परिवार के अनेक पीढ़ियों ने लोगों को स्वास्थ्य लाभ पहुंचाया है। आइए आज करते हैं उनसे बातचीत और लेते हैं उनसे मार्गदर्शन। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम में।
1: नमस्कार, ओम शांति।
0: डॉक्टर साहब, सर्वप्रथम तो मैं यहीं से शुरुआत करना चाहूंगा कि आज हम सहज स्वास्थ्य को मुश्किल समझ लेते हैं, सोचते हैं कि डॉक्टर, अस्पताल या स्वास्थ्य कर्मी ही स्वास्थ्य के बारे में जानकारी रखने वाले लोग हैं और स्वास्थ्य से हमारा कोई लेना देना नहीं है। कुछ भी हो जाए वो लोग जिम्मेदार हैं, हम वहां जाएंगे, वो ठीक करेंगे और वापस भेज देंगे। साथ ही हम अपने घरों में इतनी सारी दवाइयों की दुकान लगा रखे हैं कि भाई जब चाहे हम दवाई की दुकान पे जाके खुद ही दवाई ले लेते हैं। और आजकल घरेलू दवाइयों के नाम पे हमारे पास एक डब्बा पड़ा रहता है जिसमें अनेक दवाइयां हम रख लेते हैं। और साथ ही साथ हमारे रिश्तेदार, दोस्त, किसी को भी अगर हम बोल दें कि आज मेरे को ये तकलीफ हो रही, तो वो अपनी दवाइयां और प्रिस्क्राइब कर देते हैं फोन पे कि जाओ ये दवाई ले लो, ठीक हो जाएगा। तो ऐसे में क्या ये स्वास्थ्य का डेफिनेशन सही है?
1: श्री भैया, इस समय हम एक बहुत ही भयावह स्थिति से गुजर रहे हैं। आपने जैसे आज एंटासिड की अभी बात की, सर दर्द होने पे दवाई गोली खाने की बात करी, लोग इस समय अपने आप बहुत कुछ सेल्फ मेडिकेट कर ले रहे हैं। ये बहुत इजी हो गया है। हम सबके पास अब एक दवा की कुंजी है जो हमारा मोबाइल फोन है, हम उससे अपनी समस्या का नाम डालते हैं। और भैया, अब तो ये स्थिति हो गई है कि हम जाकर एक डॉक्टर से दवा लिखवा के लाते हैं, वो जो दवा लिखता है उसका सस्ता स्वरूप क्या मिल सकता है या और क्या हम उसकी जगह खा सकते हैं, ये भी ढूंढने लगे हैं। हमारे भारत की एक और जो समस्या मैं महसूस कर रहा हूँ कि आदमी अब दवा खाने से पहले ये सोचता ही नहीं है कि उससे नुकसान क्या होगा। जैसे भैया आपने मेरा बताया कि मैं ऑस्टियोपैथ हूँ, मैं कमर दर्द के मरीज को देखता हूँ और पैर में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, नसों में तनाव है, पैर में तनाव आ रहा है। तो मैंने ये नोटिस किया कि मेरे पास एक पेशेंट आया, उन्होंने बताया मैं दवा खा रही हूँ। मैंने कहा ये दवा आपको किसने लिखी? तो उन्होंने किसी ने नहीं लिखी, जो मेरे को जिम में एक्सरसाइज कराता है उसने बताया। मुझे बड़ा अचंभा हुआ कि वो एक बहुत ही ऐसी मेडिकेशन है जो हमारे यहाँ बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं बिकती है, वैसी दवा को उस आदमी ने बताया। वही सेम मेडिसिन भाई थोड़े दिनों बाद मैंने ये नोटिस किया कि एक फिजियोथेरेपिस्ट ने अपने पेशेंट को प्रिस्क्राइब की और उस पेशेंट ने फिर अपने किसी और घर वाले को भी प्रिस्क्राइब कर दी, ना ये जानकर कि उस दवा से और दवाइयों का क्या इंटरेक्शन होगा और आपको अगर कोई बीमारी हो रही है तो आप क्या करेंगे। मैं ये देखने लगा हूं कि जितने भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं वो अपने पेशेंट को बहुत जल्दी हेल्प करना चाह रहे हैं। तो मसाज करने वाले, फिजियोथेरेपी करने वाले, आयुर्वेद के ज्ञानी, होम्योपैथी के ज्ञानी, इवन एलोपैथ के ज्ञानी अपने मरीज को तुरंत दवा लिख दे रहे हैं और ये भी नहीं सोच रहे हैं कि उससे क्या नुकसान होगा। अच्छा, और मरीज भी चाहता है कि मुझे तुरंत दवा लिख दी जाए या मुझे तुरंत लाभ दिया जाए। आप किसी भी एक व्यक्ति को कहिए कि जैसे हम प्राकृतिक चिकित्सा चला रहे हैं, लोग आप पूछे कि आप वजन कम करना है, आप बोलिए आप हमारे हिसाब से भोजन करेंगे, इलाज कराएंगे, आपको महीने में 8-10% आपका वजन कम होगा। उसके बाद 2-3 दिन बाद वो तुरंत पूछता है कोई दवाई है क्या जिसको मैं खा लूं और मुझे ये व्यायाम न करना पड़े, एक्सरसाइज न करना पड़े, ये नीरस भोजन न करना पड़े, मुझे तुरंत इससे छुटकारा बता दीजिए। सो मैं ये सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हो गई है कि व्यक्ति को तुरंत लाभ चाहिए और इससे भी गुरेज नहीं कर रहा है कि हमको दवा दे दी जाए और उसका क्या नुकसान होगा उसके बारे में उसको एकदम चिंता नहीं करनी है। हम बस डायबिटीज के मरीज आते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब कोई अच्छी गोली लिख दीजिए कि हम मीठा खा सकें। ये तो मतलब इसको हम कैसे समझाऊं लोगों को कि आपके शरीर में आप मीठा अब नहीं खा सकते हैं और हम आपको गोली खिलाकर आपकी शुगर को नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं, प्राकृतिक चिकित्सा से आपको नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं, आयुर्वेद से, विभिन्न योगासनों से आपकी शुगर को नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं और आपको मैं मीठा खिलवा दूं कि आप उसको तुरंत ऊपर बढ़ा दें। तो ये सारी समस्याएं आजकल होने लगी है। हम सोच नहीं रहे हैं कि हम क्या खा रहे हैं और हम मेहनत नहीं करना चाह रहे हैं, हमको तुरंत लाभ चाहिए और उस लाभ के स्वरूप हमको उससे क्या हमें नुकसान हो रहा है हम इसके बारे में नहीं बात कर रहे हैं। श्री भैया आपने एक बात और बोली कि अब हर एक के घर में एक दवाई का डब्बा है। भैया अब एक दवा की अलमारी हो गई है, वो इतने दवाइयां बढ़ गई हैं और दवाइयां बीमारियों के साथ साथ आजकल हेल्थ सप्लीमेंट के नाम पे भी बहुत सारे लोग बहुत कुछ खा रहे हैं क्योंकि वो प्रकृति से वो भोजन नहीं ले पा रहे हैं या वो प्रकृति से वो भोजन लेना नहीं चाहते हैं, वो तुरंत सप्लीमेंटेशन के नाम पे दवा खा रहे हैं। और मुझे विदेशों की एक बात बड़ी अच्छी लगती है कि आप चाहकर भी एंटीबायोटिक दुकान पे जाके नहीं खरीद सकते जब तक कोई एक डॉक्टर ने उसे लिखा नहीं है। हमारे यहाँ ये नहीं है, हमारे यहाँ आप जाइए आप तुरंत जो दवा चाहेंगे वो ले लेंगे। मैंने अभी एक पेशेंट करीब 5-6 दिन पहले देखा, उसमें जो डॉक्टर साहब मुझसे पहले जिन्होंने देखा था उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन पे ये लिखा था सेल्फ मेडिकेटेड थ्रू मेडिकल शॉप फॉर 6 मंथ। मतलब उस मरीज ने 6 महीने तक जो दवा की दुकान में काम करते हैं उनके सहयोग से अपना इलाज किया और उन्होंने कोई डॉक्टर को नहीं दिखाया। तो इस समय हम सबको ये, मैं सभी श्रोताओं को कहना चाहूंगा, कोई भी दवा खाने से पहले कृपा करके प्लीज उसके बारे में पढ़ लीजिए, उसके नुकसान के बारे में पढ़ लीजिए और जब तक बहुत जरूरी ना हो कोई दवा को या कोई औषधि को मत खाइए।
0: अब जब आप दवाई के बारे में कह रहे थे, अब हम दवाई के एक डब्बे से हटकर अब दवाई की अलमारी या दवाई का एक कबर्ड बन गया है, ये चीज हम समझ गए हैं। प्रायः घरों में ये चीज देखने को मिलती है कि घर में अगर 4 लोग रहते हैं या 6 लोग रहते हैं जिसमें से 2 बुजुर्ग हैं, 2 बच्चे हैं और 2 युवावस्था के 2 लोग और रहते हैं, तो ये चीज अक्सर देखने को मिलती है कि छोटे बच्चों की दवाइयों का एक खाना बना हुआ है उस कबर्ड में, बड़ों का जो उम्रदराज लोग हैं उनकी दवाइयों का एक खाना बना हुआ है और दूसरी चीजें जो इन युवाओं के लिए चाहिए वो दवाइयां रखी हुई। प्रायः ये चीज सोचने में आती है कि जो बुजुर्गवार हैं उन लोगों के लिए सिर्फ दवाइयों का एक खाना नहीं है, वहां पर उनका दवाइयों का एक ट्रे बना हुआ होता है कि सुबह ये खाना है, दोपहर को ये खाना है, खाने से पहले ये खाना है, खाने के बाद ये खाना है, शाम को ये खाना है, रात को सोने के बाद खाना है, सोते समय खाना है। अब ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं और ये भी हम देखते हैं कि आज हम ये मान लेते हैं कि जैसे पिछले दिनों हम डायबिटीज के बारे में बातचीत कर रहे थे, लोग सोचते थे कि हाँ डायबिटीज तो चलो ठीक ही है ना, दवाई लेना है और जीते रहना है तो उसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते। अब डायबिटीज के साथ साथ एक और चीज, या कई कई घरों में डायबिटीज न सही तो बीपी की भी एक बीमारी है, उसके लिए भी गोलियां लोग ले लेते हैं। लोग अक्सर पूछते भी हैं, मतलब ये कॉमन सी चीज हो गई है, जैसे लोग हालचाल पूछते हैं ऐसे पूछते हैं किसी को, अगर आप किसी के घर चले जाएं आपको चाय नाश्ता इत्यादि ऑफर करने से पहले पूछ लेते हैं, आपको बीपी तो नहीं है, शुगर तो नहीं है आपको? तो अब ये बीपी जो चीज है, ये भी डायबिटीज जैसा ही एक कॉमन नेम बन चुका है। तो पहले हम ये समझें बीपी क्या है, ये भी कोई बीमारी है, क्या चीज है, ये लोग इतने आसानी से बीपी बीपी कह देते हैं।
1: बीपी को अगर हम, ये एक शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म ब्लड प्रेशर है। तो नॉर्मली मेरा भी रक्त एक प्रेशर के साथ हमारी धमनियां जो हैं, जो आर्टरीज हैं, उनमें चल रहा है। और मेरा खून, आपका खून, हम सब का खून किसी न किसी प्रेशर के साथ उस धमनी में चल रहा है। जब भी शब्द बीपी का प्रयोग किया जाता है, तो नॉर्मल बोलचाल की भाषा में इसको बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर की तरह इसको समझा जाता है। ये मतलब आपको बीपी हो गया है, ये मतलब हम सबके पास ब्लड प्रेशर है, हम सबके पास बीपी है, मगर जब ये बोला जाता है कि आपको बीपी हो गया है, इसका मतलब है कि आपका ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ गया है। और नॉर्मली हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो स्पिग्नोमैनोमीटर या ब्लड प्रेशर वाली मशीन से मापा जाता है, और ये 120/80 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी इसको माना जाता है। और अब एक रेंज की बात करते हैं, तो मतलब 130 से लेके 110 के बीच में हम इसे नॉर्मल मान लेते हैं, और नीचे 90 से लेके 70 तक हम इसे नॉर्मल मान लेते हैं। और ये किसी की लंबाई, मोटाई, उसने क्या काम किया है, क्या अवस्था है, जैसे अगर कोई दौड़ कराया तो उसका बीपी अपने आप नॉर्मली बढ़ा मिलेगा, तो इस तरीके से हम देखते हैं। पर अगर आपका ब्लड प्रेशर जो है वो ऊपर वाला, मतलब जो 120 है उसकी जगह अगर 140 आ रहा है, और नीचे आपका जो बीपी है वो करीब 90 के ऊपर है या 100 के ऊपर है, तो आपको ब्लड प्रेशर का मरीज माना जाता है। और एक बार में, मतलब 3 बार अगर हम इसकी जांच करें और आपको कुछ ब्लड प्रेशर के लक्षण हो रहे हो, कि आंख से धुंधला दिख रहा हो, सर में दर्द हो रहा हो, घबराहट हो रही हो, पसीने छूट रहे हो, तो एक माना जाता है कि आपको ब्लड प्रेशर की समस्या है। अच्छा भैया, ब्लड प्रेशर बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। अधिकतर लोगों में ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ मिलता है। जो जो मतलब अगर हम बीपी का शब्द इस्तेमाल करते हैं, तो अधिकतर जो मरीज हमें भारत में मिलते हैं वो हाई बीपी के मिलते हैं। अभी का जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का और वर्ल्ड हार्ट एसोसिएशन का जो डेटा है, उसके हिसाब से करीब 10 से 11 करोड़ आदमियों को भारत में ब्लड प्रेशर की समस्या है। मतलब इतने लोगों को ब्लड प्रेशर की दवा की आवश्यकता है। और आपको ये जान के अचंभा होगा कि वर्ल्ड हार्ट एसोसिएशन कहता है कि हमारे यहाँ करीब 12 से 14 करोड़ को शायद ब्लड प्रेशर हो। मतलब उनका ब्लड प्रेशर कभी न कभी बढ़ जा रहा है, जो उनको नुकसान दे रहा है। तो ये जो फिगर है, अगर हम इसको जोड़ते हैं, तो ये करीब 22 से 24 करोड़ आता है। मतलब हमारे देश की अमूमन 18 से 20% की जनसंख्या को इस ब्लड प्रेशर की बीमारी से वो ग्रसित है, और मोटा मोटी 7 से 8% से लेकर 10% की तो जनसंख्या इसकी दवा खा रही है। और हमारे देश की जनसंख्या इतनी बड़ी है कि 1-2% भी हमारे यहाँ करोड़ों में होता है। तो सोचिए, 15 से 20% की जब जनसंख्या इस समस्या से ग्रसित है, तो हमारा देश कहाँ जाएगा?
0: जब आप ये बात बता रहे हैं कि इतनी बड़ी संख्या में आबादी को ब्लड प्रेशर की समस्या है और ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो लोग इसे एक आम रीति के रूप में ही देखते हैं कि भाई बढ़ा हुआ है, तो ये चिंता का क्या विषय है? क्यों मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ा होना कोई सोचने वाली बात होनी चाहिए?
1: बड़ा अच्छा सवाल आपने श्री भैया पूछा। आप एक साधारण सा बात समझिए कि आप पाइप से पानी दे रहे हैं, और एकाएक आपने जो पाइप है उसका मुंह आगे से बंद कर दिया, तो जैसे ही आप बंद करेंगे तो उस पाइप में प्रेशर बढ़ जाएगा, तो पानी निकलने की कोशिश करेगा। तो हम अमूमन देखते हैं कि जहां से पाइप नल से लगा हुआ है वहां से निकल जाता है, या आप जब दबाते हैं आगे से पाइप को, तो वो पानी जो की धार है वो ज्यादा दूर तक जाके गिरती है। तो जब ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है और ये धमनियों में चल रहा होता है, तो इससे हमारी धमनियां जो हैं वो फट सकती हैं। इसीलिए बीपी को साइलेंट किलर कहा जाता है। इसे भैया हमारे हृदय की धमनियां फट सकती हैं, हमारे दिमाग में जो जो छोटी छोटी धमनियां हैं वो फट सकती हैं, और बड़ी धमनियों में कुछ नहीं होता, पर जो छोटी छोटी धमनियां जो हमारी आर्टरीज हैं, जो हमारी ब्रेन में हार्ट में वहां चल रही हैं, उनमें एकाएक ब्लीडिंग हो जाती है और एक इतने जरूरी जो हमारा अंग है उसमें खून बहने लगता है, उस पर प्रेशर पड़ने लगता है और इससे हमको हमारा हृदय काम करना बंद कर सकता है, हमारी किडनियां हैं वो काम करना बंद सकती हैं, हमारा दिमाग है वो काम करना बंद सकता है। ये हमको एकाएक झटके में हमको इससे एक व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। आप बहुत बार सुन भी लेंगे अब कि अरे वो तो ठीक से चल रहे थे, एकाएक उनको हार्ट अटैक आया और उनकी डेथ हो गई, या एकाएक उनके हार्ट में कुछ परेशानी हुई उनकी मृत्यु हो गई। तो ये इतना खतरनाक है, इससे एक एक सेकेंड में मतलब तुरंत इससे मृत्यु हो सकती है, या किसी अंग में रक्त सराव के बाद वो अंग का काम करना बंद हो सकता है या नुकसान हो सकता है। जी भाई, आप एक चीज और नोटिस करेंगे कि आप हैं और मैं हूं, हम लोग बहुत सारे अच्छे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं विश्व भर में वहां जाकर काम करते हैं, या वहां जाकर लेक्चर देते हैं, वहां जाकर इंटरेक्शन करते हैं लोगों से। मैंने इधर नोटिस करना शुरू किया कि अब भारत की जितने भी बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि मानव जन कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, वो सब अपने यहाँ अस्पताल खोल रहे हैं, वो सब अपने यहाँ डॉक्टरों को रख रहे हैं, वो सब यही शिक्षा दे रहे हैं कि हल्का खाइए, मानसिक रूप से शांत रहिए, मेडिटेशन करिए, अपने दिमाग को शांत रखिए, अपनी लालसाओं को अपनी जरूरतों को संयम में रखिए, सब यही बात कर रहे हैं और सिर्फ इसीलिए कह रहे हैं कि शांति बनी रहे। और भैया शांति रहेगी तभी ब्लड प्रेशर कम रहेगा, तभी नॉर्मल रहेगा।
0: डॉक्टर साहब, जब आप ये बात कहते हैं तो ये बात समझ में आ रही है कि आज हम ब्लड प्रेशर को कोई बड़ी समस्या के रूप में न देखते हुए ये भी एक आम चीज है, इसके लिए हम गोलियां खा रहे हैं, उस हिसाब से हम चल रहे हैं, मगर ये बात समझ में आ रहा है कि कितना खतरनाक हो सकता है बीपी का बढ़ा होना। और अगर हम इसे, चलिए दवाई खा रहे हैं तो फिर तो कम से कम समझ में तो आता है, अगर किसी को पता ही ना हो उसको बीपी हो रहा है या नहीं हो रहा है या है भी ये समस्या मेरे को, ये व्यक्ति को कैसे पता चलेगा? मतलब कोई सिम्टम्स हैं जिससे व्यक्ति जाके जांच करा ले कि भाई हाँ, जैसे डायबिटीज के लिए हम जानते हैं कि कुछ सिम्टम्स हैं जिसके बारे में आपने बताया था, ऐसे बीपी के लिए क्या व्यक्ति को जागरूक रहने की जरूरत है कि अगर हाँ मेरे शरीर में ये चीज मैं नोटिस कर रहा हूँ तो मैं जाके डॉक्टर की सलाह लूं या मैं चिकित्सक के पास पहुंचूं?
1: जो सबसे कॉमन चीज मैंने अनुभव की है और बोला भी जाता है कि सबसे पहले आपको सरदर्द होने लगेगा और आपको अक्सर सरदर्द होगा और आप ये सोचेंगे यार कोई कारण नहीं है मेरे सरदर्द होने का, मुझे सरदर्द हो रहा है। आपको थकान होने लगेगी, आपको ऐसा समझ में आएगा कि मेरी धड़कन बढ़ रही है, हल्का एंजाइटी होने लगेगी। भैया कुछ केसेस में ये देखा जाता है कि नाक से खून निकलने लगता है, अक्सर बार बार नाक से नोज ब्लीड हो रही है, तो ये आपको यही दिखेगा। और कभी कभी ऐसा लगेगा कि सांस फूल रही है, छाती में दर्द हो रहा है, अगर बैठे बैठे आपको आपकी आंख के सामने धुंधलापन होने लगेगा, फिर वो ठीक हो जाएगा फिर थोड़ी देर में, फिर तो ये सिम्टम्स जैसे ही आपको महसूस हो तो आपको तुरंत अपना बीपी की जांच करानी चाहिए, ये कि आपको ये सारी समस्या हो रही है और आपको तुरंत किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए।
0: ये बात बहुत ही फायदेमंद है कि हम पहले तो इस बात पे सजग रहें कि हमारे शरीर में क्या हमें तकलीफें हो रही हैं, क्या ऐसी चीजें हैं जो मुझे बीपी का मरीज हूं या बीपी की समस्या मुझे है, ये समझने के लिए आवश्यक है। साथ ही ये भी चीज समझ में आती है कि बीपी को आपने साइलेंट किलर कहा कि पता भी नहीं चलेगा और व्यक्ति उसकी वजह से अपने मौत को न्योता दे सकता है अगर वो इग्नोर करता है इन चीजों को, इसलिए अपने ब्लड प्रेशर के बारे में जागरूक रहना भी आवश्यक है। वक्त कहता है कि इस मोड़ पर यहाँ रुकना होगा दोस्तों, मगर बहुत ही आज एक ऐसी बीमारी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि जो घर में उसकी दवाइयां हमारे घर के सदस्य खा रहे हैं और हम ये मानकर चल रहे हैं चलो दवाई तो खा ही रहे हैं ना ये, मगर हम उनके स्वास्थ्य के प्रति ज्यादा जागरूक नहीं है, ना हम जागरूक हैं ना जो व्यक्ति स्वयं दवाई खा रहा है वो जागरूक है। साथ ही ये भी बात आज हमने इस चर्चा में सुनी और समझी कि अपने ही मर्जी से दवाइयां लेना, अपने घर में दवाइयों का कबर्ड या बक्सा बनाकर रख लेना और छोटी मोटी चीजों के लिए खुद ही दवाई लेना, ये हितकारी नहीं है। इसलिए हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति बेहतर समझ को ले आने की आवश्यकता है, और जब हम अपने स्वास्थ्य के प्रति सही समझ लाएंगे तब हम सहज रीति से स्वस्थ रह पाएंगे। आज डॉक्टर राहुल मोदी हमारे बीच आए और उन्होंने हमें स्वास्थ्य से संबंधित मार्गदर्शन दिए हैं। अगले एपिसोड में बीपी और उससे जुड़ी हुई अन्य स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां उनसे लेते रहेंगे। आज हम सभी श्रोता मित्रों को उन्होंने इन प्रश्नों का उत्तर दिया, इसके लिए आप सभी श्रोताओं की ओर से मैं डॉक्टर मोदी का धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका।
1: नमस्कार, ओम शांति।
0: दोस्तों, यह है कार्यक्रम सहज स्वास्थ्य और आज हम सहज स्वास्थ्य को सहज बनाने की ओर, हमें क्या जागरूकता रखनी है, क्या हमें करने की जरूरत है, बीपी जैसे बीमारियों के बारे में भी नई जानकारी आज हासिल हुई है। अगली चर्चा में इस विषय पर और गहराई से चिंतन करेंगे। आज आप सभी हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आप सभी अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की ओर एक कदम लेंगे। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: बचपन की सुरक्षा है एक खास जिम्मेदारी, इस पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। आपातकालीन स्थिति के साथ उन्हें लंबे समय के पुनर्वास के लिए मदद भी करता है चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर। बच्चे या बड़े जो उनकी सहायता करना चाहते हैं डायल कर सकते हैं 1098 अपने फोन से। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: ओम शांति। कोई भी अच्छा काम शुरू करते हैं तो कहते हैं श्री गणेश करो, विघ्न विनाशक, दुख हरता, सुख करता, सिद्धि विनायक श्री गणेश की हम बहुत प्यार से महिमा करते हैं, उन्हें याद करते हैं, पूजा करते हैं, हर कार्य की शुरुआत उनकी स्थापना से करते हैं। लेकिन क्या सिर्फ याद करना और उनकी महिमा करना क्या उतना काफी है? क्यों ना उनसे प्रेरणा ले, उनकी विशेषताएं, उनकी शक्तियां अपने जीवन में धारण करें और सिर्फ श्री गणेश जी की महिमा ना करें, खुद ही श्री गणेश जैसे बन जाए। श्री गणेश जी की जो जन्म की कहानी है वो हमें बहुत कुछ सिखाती है। कहते हैं शंकर जी तपस्या के लिए बहुत दूर पहाड़ों में गए थे तो पार्वती जी ने अपने शरीर की मिट्टी निकालकर एक बच्चे का निर्माण किया। एक दिन पार्वती जी ने उस बच्चे को घर के बाहर खड़ा किया कि वो स्नान करने जा रही थी तो घर में अंदर में कोई नहीं आना चाहिए। और अचानक उस दिन शंकर जी वापस आ गए तो उस बच्चे ने अपने कर्तव्य का पालन किया और शंकर जी को अंदर नहीं जाने दिया, क्योंकि उस बच्चे ने अपने पिता को ही नहीं पहचाना। कहा जाता है शंकर जी को इतना गुस्सा आ गया कि उन्होंने उस बच्चे का सर काट दिया। और पार्वती जी उतनी देर में बाहर आई तो उन्हें पता चला कि शंकर जी ने उनके बच्चे का सर काट दिया। फिर शंकर जी ने कहा, अच्छा अगला जो अब यहां से जाएगा मैं उसका सर इस बच्चे को दे दूंगा। हम ये कहानी बहुत समय से सुनते आए हैं लेकिन हमने कभी भी इस पर विचार ही नहीं किया कि ये हमें क्या सिखा रही है। तो अगला जो वहां से गुजरा वो एक हाथी था तो शंकर जी ने हाथी के सर को काटा और उस बच्चे पर लगा दिया और उस बच्चे को नाम दिया गणेश। ये कहानी क्या सिखा रही है हमें कि बच्चा अपने पिता को नहीं पहचानता और शंकर जी देवता 10 साल की तपस्या बाद आए थे और इतना गुस्सा आ गया कि बच्चे का सर काट दिया। आज आप और मैं भी अगर 10 मिनट भी मेडिटेशन कर ले तो इतने शीतल और शांत हो जाते हैं कि ऊंची आवाज में नहीं बोल पाते हैं और देवता 10 साल की तपस्या बाद एक बच्चे के ऊपर इतना गुस्सा आया और बात भी कितनी थी, अपने ही तो कर्तव्य का पालन कर रहा था, सर काट दिया। ये कभी नहीं कहते कि शंकर जी ने उस बच्चे की हत्या की, नहीं कहते, सिर्फ कहते हैं उसका सर काटा। दो बातों में बहुत फर्क है। वैसे तो अगर बच्चे का सर काट दो या किसी का भी सर काट दो तो उसी समय उसकी हत्या हो जाएगी, लेकिन उसको हत्या नहीं कहते, कहते सर काटा

0: और किसी और का सर लगा दिया। परमात्मा जब इस सृष्टि पर आते हैं तो हम अपने अहंकारवश परमात्मा को पहचान नहीं पाते हैं। बॉडी कॉन्शियसनेस, क्यों ये कहा जा रहा है कि पार्वती जी ने अपनी मिट्टी से बच्चे का निर्माण किया? क्या किसी देवी के शरीर में इतनी मिट्टी हो सकती है? क्या हमारे शरीर में इतनी मिट्टी है कि हम एक बच्चे का निर्माण करें? तो मिट्टी से बच्चे का निर्माण किया मतलब ये शरीर मिट्टी का है। दिस इज मिट्टी, दिस इज बॉडी कॉन्शियसनेस। और इस बॉडी कॉन्शियसनेस की वजह से हम परमात्मा को पहचान नहीं पाते हैं। तो परमात्मा सबसे पहली चीज क्या करते हैं, हमारे बॉडी कॉन्शियसनेस के सर को काटते हैं, हमारे अहंकार के सर को काटते हैं। तो शंकर जी ने बच्चे का सर काटा। अच्छा, सर काटा ही था तो वापस वही सर लगा देते, एक और की हत्या करने की क्या जरूरत थी? लेकिन जब परमात्मा हमारे अहंकार का सर काटते हैं तो फिर उसकी जगह सोल कॉन्शियस, ज्ञान से भरा हुआ, प्योरिटी और डिविनिटी से भरा हुआ एक बहुत वाइज सर हमारे ऊपर लगाते हैं। तो शंकर जी ने वो सर काट के ज्ञान का सर उस बच्चे को दिया और फिर उसका नाम रखा गणेश। तो गणेश जी के अगर हम एक एक अंग को देखें, वो हमें सही जीवन जीने का तरीका और ज्ञान को अपने जीवन में कैसे लाना है उसकी धारणा सिखाता है। सबसे पहली चीज जो सर है, मस्तिष्क, वो बहुत बड़ा, मतलब विजडम एंड विशाल बुद्धि। फिर दूसरी चीज जो आंखें हैं, वो बहुत छोटी, सर इतना बड़ा, आंखें इतनी छोटी। तो जो वाइज होगा, जो वाइज इंटेलेक्ट होगा, वो दूरादेशी होगा। जब हम कोई चीज दूर देखते हैं तो हमारी आंखें छोटी हो जाती हैं। तो दूर देखकर फिर कर्म करना, मतलब जो हम कर्म कर रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, कर रहे हैं, ये हमारा कर्म है। लेकिन कर्म करने से पहले उस कर्म के परिणाम के बारे में सोचकर फिर कर्म करना, तो वाइज इंटेलेक्ट एंड फार साइटेडनेस। फिर मुंह छोटा कि कम बोलना, लेकिन कान बड़े, ज्यादा सुनना, तो टॉक लेस एंड लिसन मोर। अब कान सिर्फ बड़े नहीं हैं, कान सूप जैसे हैं। तो सूप क्या करता है, छन्नी का काम करता है, अच्छी चीज को रखता है, कचरे को फेंक देता है। तो कान सूप जैसे हो मतलब सिर्फ अच्छी बातों को ग्रहण करें, दूसरी बातों को तो अंदर जाने भी ना दें। दुनिया में लोग कहते हैं एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर हमने सुन लिया तो वो अंदर तो चला ही गया ना। तो अगर एक कान से सुना दूसरे कान से निकाला, लेकिन बीच में ये आती है बुद्धि और यहाँ उसकी बात की छाप लग जाती है, तो सुनना ही नहीं है। आज मीडिया से, सोशल मीडिया से, आसपास के लोगों से हम कितनी बातें सुन रहे हैं, सुनते ही जाते, मैसेज आफ्टर मैसेज सुनते ही जा रहे हैं, अंदर लेते ही जा रहे हैं। अगर हम इतना कुछ अंदर ले लेंगे और जिसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं है, तो हमारी स्थिति कैसी हो जाएगी? तो हमेशा कान सूप जैसे, सिर्फ प्योर कॉन्टेंट, अच्छी बातें, लोगों की विशेषताएं, सिर्फ उनको ही सुनना है और अंदर लेना है। फिर गणेश जी के दो दांत हैं, लेकिन एक टूटा हुआ दिखाते हैं, एक दंत, वन टस्क इज ब्रोकन। इसका क्या मीनिंग है, एक दंत क्यों कहा जाता है? हमारे जीवन में ड्यूअलिटी है, मेल फीमेल, रिलीजन हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन, ड्यूअलिटी एज बेसिस पे, रिलीजन बेसिस पे, जेंडर बेसिस पे, कास्ट बेसिस पे, प्रोफेशन बेसिस पे, सीनियोरिटी, कौन बड़ा है कौन छोटा है। जहाँ बॉडी कॉन्शियस होंगे, जहाँ ईगो होगा, वहाँ ड्यूअलिटी होगी। परमात्मा आकर जब ज्ञान देते हैं तो सबसे पहली बात क्या सिखाते हैं, मैं आत्मा तुम आत्मा, सारी ड्यूअलिटी खत्म, वन वर्ल्ड वन फैमिली एक। ये जो ड्यूअलिटी है ये सिर्फ सोल कॉन्शियसनेस से खत्म होती है। तो जब वो विजडम जीवन में आ जाए तो ड्यूअलिटी खत्म, इसलिए एक दंत, दो नहीं। फिर गणेश जी की सूंड दिखाते हैं। सूंड की क्या विशेषता है कि वो एक पेड़ को भी उखाड़ लेता है, लेकिन एक बच्चे को भी बहुत प्यार से उठा लेता है। वो ही सूंड से पेड़ भी उखाड़ा, वो ही सूंड से बच्चे को भी उठाया। विच मीन्स आत्मा जो वाइज बन जाएगी, जिसके अंदर स्पिरिचुअलिटी धारण हो जाएगी, जो सोल कॉन्शियस हो जाएगी, वो बहुत सॉफ्ट भी होगी, बहुत लविंग भी होगी, लेकिन बहुत पावरफुल भी होगी। कई बार हमारे अंदर एक भ्रांति आती है कि स्पिरिचुअलिटी मतलब हम बहुत वीक हो जाएंगे, पॉजिटिविटी मतलब दुनिया हम पर ट्रैम्पल करके आगे बढ़ जाएगी, अगर हम बहुत सीधे होंगे, सादे होंगे, तो लोग हमें धोखा दे देंगे। बट दैट्स नॉट ट्रू। स्पिरिचुअलिटी मीन्स द परफेक्ट बैलेंस ऑफ सॉफ्ट बट पावरफुल, लव एंड लॉ, ये दोनों का बैलेंस वो सूंड दिखाता है। फिर गणेश जी देवता हैं, लेकिन उनका पेट इतना बड़ा दिखाते हैं, बाकी सभी देवी देवताओं के जो शरीर है वो परफेक्ट दिखाते हैं, कंचन काया, लेकिन गणेश जी का पेट इतना बड़ा दिखाते हैं। जो वाइज आत्मा है वो हर बात को अपने पेट में समा लेती है। आज भी अगर कोई बात हर एक को सुनाता रहता है तो लोग कहते इसके पेट में बात ही नहीं टिकती है, लेकिन गणेश जी के पेट को बड़ा दिखाते हैं, मतलब वो हर बात को अपने पेट में समा लेते हैं, इधर से सुना उधर सुनाया, ये ज्ञान रूपी आत्मा की क्वालिटी नहीं होती है। और बड़ा पेट ऑल्सो सिग्निफाइज द पावर टू एक्सेप्ट, हर एक से मिलें, हर एक के साथ काम करें, हर एक के संस्कार अलग अलग हैं, लेकिन हर एक को एक्सेप्ट करते जाएं, एक्सेप्ट करते जाएं, एक्सेप्ट करते जाएं, तो पेट बड़ा। फिर गणेश जी के चार भुजाएं दिखाते हैं और चार भुजाओं में बहुत सुंदर अलंकार है। एक भुजा में कुल्हाड़ी है, कुल्हाड़ी से क्या करते हैं, जो परमात्मा से ज्ञान मिलता है तो वो कुल्हाड़ी, ज्ञान की कुल्हाड़ी मतलब अपने विकार, अपने वाइसेस, अपनी नेगेटिविटीज एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट अपने पास्ट रॉन्ग कार्मिक अकाउंट्स को काटना, उनको फिनिश करना, क्योंकि अभी हमें ज्ञान मिला है तो पास्ट का कोई भी कार्मिक अकाउंट आएगा, लेकिन ज्ञान से प्रेजेंट थॉट्स, प्रेजेंट बिहेवियर्स उस पास्ट के कार्मिक अकाउंट को काट के फिनिश कर देंगे। दूसरे हाथ में रस्सी दिखाते हैं, द रोप। ज्ञान यूज किया, मेडिटेशन किया, लेकिन धारणा तब होगी जब जीवन में डिसिप्लिन होगा। डिसिप्लिन, संयम, नियम, इसके बिना धारणा नहीं हो सकती। तो अपने जीवन को मर्यादाओं की रस्सी में बांधना है, ऐसा नहीं कुछ भी खाया, कुछ भी पिया, कभी भी सोए, कभी भी उठे, कुछ भी बोला, कुछ भी किया, पैसे कमाने गए तो किसी भी तरह काम कर दिया, ऐसी आत्मा वाइज नहीं बन सकती है। लेकिन जीवन को मर्यादाओं की रस्सी में बांध दिया, सही सोच, सही बोल, सही कर्म, सही खान पान, सही धन कमाने का तरीका, ये मर्यादाओं को रस्सी से बांध लो। फिर तीसरे हाथ को ब्लेसिंग देता हुआ दिखाते हैं, मतलब हाथ हमेशा ऐसे। आज अगर हम अपने जीवन में देखें, हमेशा सारा दिन हमें किसी से कुछ ना कुछ चाहिए होता है, और कुछ नहीं तो प्यार चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, ट्रस्ट चाहिए, अक्नॉलेजमेंट चाहिए, अप्रिसिएशन चाहिए, ऐसे हाथ है हमारा। लेकिन गणेश जी का हाथ ऐसा नहीं है, गणेश जी का हाथ ऐसा है, मतलब चाहिए चाहिए कुछ नहीं, सब कुछ देना है, सबको देना है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट सबको ब्लेसिंग्स देना है, दुआएं देना है। विच मीन्स कोई भी आत्मा आए, कैसे भी संस्कार हो, कैसा भी व्यवहार हो, वो अपने संस्कार लेकर आएंगे, वो अपने कर्म करेंगे, लेकिन हमारे से उनके लिए सिर्फ और सिर्फ प्योर थॉट्स, प्योर वर्ड्स, ब्लेसिंग्स। तो एक हाथ ऐसे मतलब सबको दुआएं देते जाओ, दुआएं देते जाओ। फिर चौथे हाथ में मोदक है, और वो मोदक हाथ में होता है। मोदक अर्थात स्पिरिचुअलिटी को अपने जीवन में लाना सहज है, लेकिन केयरलेस होकर नहीं हो सकता है। कॉन्स्टेंट अटेंशन, मोदक बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इट सिग्निफाइज कि स्पिरिचुअलिटी को पूरी तरह से अपने जीवन में ले आने में अटेंशन, कॉन्स्टेंट अटेंशन, उतनी मेहनत करनी है। लेकिन एक बार वो मेहनत कर ली तो मोदक मीठा बहुत होता है, विच मीन्स मेहनत का फल बहुत मीठा होता है। लेकिन जब इतना सब कुछ अपने अंदर धारण कर लिया तो फिर महिमा भी मिलेगी, सफलता भी मिलेगी। बहुत लोग आपको अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा भी बहुत कहेंगे। उस समय ध्यान रखना है, ज्ञान का अहंकार ना आ जाए, विशेषताओं का अहंकार ना आ जाए, जो कार्य परमात्मा आपसे करवा रहा है उसका अहंकार ना आ जाए। तो मोदक बन तो जाता है, मीठा भी बहुत है, लेकिन गणेश जी उसको खाते नहीं है, हाथ में रखते हैं, विच मीन्स सफलता मिलेगी। महिमा को स्वीकार नहीं करना है, उसको सिर्फ हाथ में ही रखना है। तो किसी भी मूर्ति में गणेश जी को मोदक खाते हुए नहीं दिखाते हैं, सिर्फ संभाल कर पकड़े हुए दिखाते हैं। दिस इज अ रिमाइंडर कि द मोर वी आर ऑन अ जर्नी ऑफ सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, People will have lot of nice things to say about us, but take care. अहंकार नहीं, सब अहंकार से सबसे बड़ा अहंकार होता है ज्ञान का अहंकार। एंड वो एक ऐसा अहंकार होता है, इतना सूक्ष्म होता है कि पता भी नहीं चलता कि ये अहंकार है। तो मोदक को हमेशा पकड़ के रखना है। फिर गणेश जी को बैठा हुआ कैसे दिखाते हैं? एक लेग फोल्डेड होता है और एक लेग नीचे होता है, और जो पांव नीचे होता है उसका भी सिर्फ टो नीचे टच करता है, और हर मूर्ति में एक पांव नीचे और एक पांव ऐसा फोल्डेड है, विच मीन्स इस दुनिया में रहना है तो पांव नीचे। स्पिरिचुअलिटी डज नॉट मीन मूव अवे फ्रॉम द वर्ल्ड, मूव अवे फ्रॉम पीपल, स्टॉप वर्किंग, नो। पांव दुनिया में रहेगा, सब कुछ करना है, सबके बीच रहना है, सारे रिश्ते निभाने हैं, काम कारोबार करना है, लेकिन सबसे डिटैच्ड भी रहना है, न्यारे और प्यारे। सब कुछ करना है लेकिन किसी भी चीज का प्रभाव हम पर नहीं आना चाहिए। सबके बीच रहना है लेकिन किसी के संस्कार के प्रभाव में आकर अपने स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स को नहीं छोड़ देना है। तो रहना भी है लेकिन ऊपर भी रहना है। अब इतनी महानता धारण करके, इतनी दिव्यता अपने जीवन में लाकर, लेकिन श्री गणेश जी का वाहन क्या दिखाया? देवता है तो उसका आसन, उसका वाहन बहुत सुंदर होना चाहिए, लेकिन श्री गणेश जी को तो चूहे पर बैठा हुआ दिखाते हैं। तो चूहा किसका प्रतीक है? अगर हम देखें तो चूहा सारा दिन कुछ ना कुछ पर खुरेदता रहता है। खाने की चीज नई भी होती है, कोई वायर है, कोई प्लास्टिक है, कुछ भी चीज पर वो खुरूर करता रहता है। ये हमारी कर्म इंद्रियों का प्रतीक है। सारा दिन कुछ भी देख रहे हैं, कुछ भी सुन रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, नई भी जरूरत तो पीते जा रहे हैं, जो सामने दिखा उसको सुना। तो चूहे की तरह कर्म इंद्रियों पर संयम खत्म हो गया है। तो चूहा एक तो कर्म इंद्रियों के वशीभूत होने का प्रतीक है, और दूसरा चूहा छोटी सी जगह से अंदर घुस जाता है, पता ही नहीं चलता। हम सब कहते हैं दरवाजे बंद थे, खिड़कियां बंद थी, ये चूहा कहाँ से आ गया घर के अंदर? क्योंकि चूहे को जगह की जरूरत नहीं है, वो छोटी सी जगह से अंदर घुस जाता है। वाइसेस, कमजोरियां, डिस्ट्रैक्शंस, पता ही नहीं चलता जीवन में कब आ जाती हैं, कहां से आ जाती हैं। और चूहा जब किसी को काटता है तो शुरू में एक बहुत एनेस्थेटिक इफेक्ट देता है, पता ही नहीं चलता कि चूहा काटा है, एकदम से स्टिलनेस हो जाती है उस जगह पर, बहुत देर बाद पता चलता है कि कुछ काटा है। वाइसेस, डिस्ट्रैक्शंस जब जीवन में आते हैं, शुरू में तो पता ही नहीं चलता है, अच्छी भी लगते हैं शुरू में बहुत, दर्द बहुत बाद में होता है। तो जब हम विशाल बुद्धि, दूरादेशी, बड़े कान, सिर्फ अच्छा सुनेंगे, कम बोलेंगे, सॉफ्ट भी होंगे, पावरफुल भी होंगे, बातों को अपने अंदर समा लेंगे, ज्ञान की मर्यादाओं पर चलेंगे, विकारों को कुल्हाड़ी से काटेंगे, ब्लेसिंग सबको देंगे और ईगो में कभी नहीं आएंगे, ह्यूमिलिटी में रहेंगे, जब हम ये सब कुछ कर लेंगे तो हम अपनी कर्म इंद्रियों के ऊपर, सेंस ऑर्गन्स के ऊपर और अपने वाइसेस के ऊपर विजय प्राप्त कर लेंगे। विच मीन्स ऐसी आत्मा गणेश जी को चूहे के ऊपर बिठाया दिखाते हैं, चूहा उनके नीचे है। अब ये सब कुछ होने के बाद गणेश जी के साथ दिखाते हैं एक तरफ रिद्धि और दूसरी तरफ सिद्धि, कि गणेश जी की दो पत्नियां जो हमेशा गणेश जी के साथ साथ चलती हैं। तो स्पिरिचुअल सोल जो इस विजडम को धारण कर ले, उसके जीवन में प्रॉस्पेरिटी और सक्सेस साथ साथ चलते हैं। उसको प्रॉस्पेरिटी और सक्सेस के लिए भागना नहीं पड़ता है, मेहनत नहीं करनी पड़ती है, स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती है। प्रॉस्पेरिटी एंड सक्सेस ऐसे व्यक्ति के साथ साथ चलता है। और एक बहुत सुंदर कहानी बताते हैं कि गणेश जी को और उनके भाई को कहा गया सारी दुनिया का एक चक्कर लगा कर आओ। तो उनके भाई ने पूरी दुनिया का चक्कर लगाना शुरू कर दिया, लेकिन गणेश जी ने क्या किया? गणेश जी ने तो सिर्फ अपने माता पिता का ही चक्कर लगा लिया। आज हम सब जीवन में बड़ी मेहनत कर रहे हैं, खुशी के लिए, हेल्थ के लिए, रिश्तों के लिए, काम के लिए। आर होल वर्ल्ड, जो हमारी दुनिया है, उसमें हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। टाइम भी आजकल नहीं मिलता, अपने लिए टाइम नहीं मिलता, बिकॉज हम अपनी दुनिया को ही नहीं संभाल पा रहे, उसको समेट नहीं पा रहे। लेकिन जिसका कनेक्शन परमात्मा के साथ होगा, विच मीन्स जिसने अपने माता पिता का चक्कर लगा लिया, परमात्मा के साथ कनेक्शन, हर थॉट प्योर, हर वर्ड एक्यूरेट, तो हैप्पीनेस, हेल्थ, हार्मनी इन रिलेशनशिप्स एंड अ ब्यूटिफुल वर्ल्ड, ये नेचुरल हो जाएगा। दुनिया का चक्कर लगाने की कोशिश करेंगे, कभी पूरा नहीं होता, लेकिन परमात्मा से कनेक्शन जोड़ लें तो अपनी दुनिया परफेक्ट हो जाती है। क्योंकि जो मन जीत हो जाता है, वो जग जीत अपने आप हो जाता है। तो गणेश जी हमें जीवन जीने का तरीका सिखाते हैं, और जो आत्मा ये सब कुछ कर लेती है, उसको विघ्न विनाशक कहते हैं। कि विघ्न तो उसके जीवन में आता ही नहीं है, आने से पहले ही विघ्न खत्म हो जाता है। और वो सिर्फ अपने नहीं, दूसरों के भी दुख हर के उनको सुख देता है। तो क्या सिर्फ श्री गणेश जी की पूजा करेंगे? क्या सिर्फ उनकी महिमा करेंगे? नहीं, हम सबको श्री गणेश जी जैसा बनना है, विघ्न विनाशक आत्मा बनना है, सबके दुख हर के इस सृष्टि पर पुनः सुख लाना है। तो गणेश जी की महिमा नहीं, सिर्फ पूजा नहीं, एक एक विशेषता को अपने जीवन में धारण करते जाएं। और उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या? परमात्मा से कनेक्शन, डेली कनेक्शन विद गॉड। ज्ञान को अपने अंदर भरते जाएं, अहंकार रूपी सर को काटते जाएं, और वो स्पिरिचुअल सोल कॉन्शियसनेस वाला सर अपने ऊपर ले आएं, तो जीवन श्री गणेश जी की तरह विघ्न विनाशक, वो जीवन हम सिर्फ अपने विघ्न नहीं, हमारे आसपास जो आएंगे, इतनी पावर आ जाती है उस आत्मा में, वो औरों के भी विघ्न खत्म कर देते हैं। तो श्री गणेश जी जैसा हम सबको बनना है। ओम शांति,
1: ओम शांति। नमस्कार, मैं आकाश मानिसार से नेशनल सोशल ऑर्गेनाइजेशन का एक वॉलंटियर मेंबर, आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: सपोज आपने मुझे अभी आकर कहा कि आपका शरीर कमजोर है, एक आपकी बात को इग्नोर कर दो, ठीक है। सेकंड मैं कहूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकती उस बारे में, है कमजोर तो है, आई कांट हेल्प, खाना ऐसा है आजकल, पानी ऐसा है, मौसम ऐसा है, तो ये कमजोर है। थर्ड ऑप्शन इज ठीक है, आई विल स्टार्ट वर्किंग ऑन इट टुडे, एंड अगर मैं आज भी उस पर काम करना शुरू कर दूँ, चाहे मैंने 50 साल कोई काम नहीं किया उसके ऊपर एंड वो कमजोर हो चुका है, बिल्कुल कमजोर हो गया, लेकिन आज भी अगर उस पर काम करना शुरू कर दिया, आई एम मूविंग फ्रॉम डिजीज टू हेल्थ। आज अगर काम करना नहीं शुरू किया उस पर, देन इट्स डिक्लाइनिंग फर्दर फर्दर फर्दर। तो आज डिप्रेशन नहीं होगा ये बात सुन के, लेकिन आज अगर ध्यान नहीं रखा और कल अगर कोई बड़ी बात आ गई तो ताकत नहीं होगी उसको फेस करने में, तब डिप्रेशन होने का चांस होता है। आज इस बात को सुनने से नहीं होना चाहिए, आज एक रियलाइजेशन होनी चाहिए।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग राजस्थान, गुड मॉर्निंग गुजरात, गुड मॉर्निंग आप सभी को जो इस वक्त रेडियो मधुबन को सुन रहे हैं, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। और आज त्योहारों का एक सुंदर बंच है। आज वैसे 14 सितंबर है, हिंदी दिवस। हिंदी दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ में विशेष चतुर्थी है, तो गणेश जी का आगमन आज होने वाला है। गणपति बप्पा मौर्या, गणेश जी को हम अपने घर में बुलाने वाले हैं और उनकी पूजा अर्चना करके उनका स्वागत सत्कार और सम्मान के साथ उन्हें याद करेंगे। तो चलिए, आशा करूंगा कि आप बिल्कुल तैयारी कर रहे होंगे और मैं चाहूंगा कि आप इस तैयारी में बिल्कुल अच्छी तरह से जो है हो जाए और पूरी तरह से आज के दिन का लाभ उठाए, ऐसी शुभ आशा के साथ जय गणपति बप्पा मौर्या, है ना। तो आइए, 14 सितंबर अपने आप में एक बहुत ही सुंदर जो है इतिहास को लेकर हमारे बीच में आया है। इतिहास की बातों को सुनकर हम अपने भविष्य को और वर्तमान को बेहतर और सुंदर बनाते हैं अभी। जी हाँ साथियों, चलिए मैं आपको ले चलता हूँ आज के इस खूबसूरत दिन को यादगार बनाने के लिए। एक बहुत ही खूबसूरत गणपति बप्पा का गीत अभी आपको सुनाएंगे और आप भी 94 1415 1415 इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपकी क्या तैयारियां हो रही हैं और किस तरह की तैयारियां आप कर रहे हैं। निश्चित तौर पे आप सभी बिल्कुल एक गहरी खुशी और आनंद जो है खुशी हो रही है, तो मैं भी चाहूँगा कि इस खुशी को और गहराई से जो है आप अनुभव करें, ऐसी शुभ आशा के साथ ढेर सारी शुभकामनाएं। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: बोलो गणेश महाराज की जय। गणेश महाराज की जय। श्री गणेश महाराज।

नमस्कार, बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुनाए हैं और मूर्ति गणेश की स्वागत है आप सभी के साथ में। बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुना, गणेश जयंती, गणेश उत्सव की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और हिंदी दिवस की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए आज के दिन को यादगार बनाते हैं और गणेश जी के विशेष उत्सव पर एक बहुत ही प्यारा सा कार्यक्रम आप 9 बजे के बाद सुनने वाले हैं समाचारों के बाद। और साथ ही साथ अभी आपको हिंदी दिवस के बारे में बातें करते हैं। 14 सितंबर को ये मनाया जाता है। हिंदी विश्व में सर्वश्रेष्ठ बोली जाने वाली भाषाओं में एक है और अपने आप में एक समर्थ भाषा है जो प्रकृति से ये उदार ग्रहणशील सहिष्णुता और भारत की राष्ट्रीय चेतना की आत्मा है। इस दिन विभिन्न शास्त्रीय अशास्त्रीय कार्यालयों में शिक्षा संस्थाओं आदि से विशेष संगोष्ठियां, सम्मेलन, प्रतियोगिताएं तथा अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। कहीं कहीं हिंदी पखवाड़ा तथा राष्ट्रभाषा सप्ताह इत्यादि भी मनाए जाते हैं और विश्व की एक प्राचीन समृद्ध तथा महान भाषा होने के साथ ही हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा भी है। इसके प्रति अपना प्रेम और सम्मान प्रकट करने के लिए ऐसा आयोजन स्वाभाविक ही है और परंतु दुख का विषय ये भी है कि समय के साथ साथ ये आयोजन केवल औपचारिक मात्र बनते जा रहे हैं। तो औपचारिक ना हो, हमारी जरूरत हो, क्योंकि इसी के माध्यम से हम एकता के सूत्र में पिरोए जाते हैं और एकता के संग हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए इसी शुभ आशा के साथ आप सभी को फिर से ले चलता हूँ और हिंदी दिवस की ढेरों शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएं करते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो माधवन 107.8 FM पर हिंदी दिवस की आप सभी को फिर एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए, हिंदी दिवस पर एक बहुत ही बेहतरीन गीत है जो मैं आपको सुनाने वाला हूं। हिंदी दिवस गीत आपके लिए अभी सुनते रहो, मस्कराते रहो।

नमस्कार, आप सुंदर रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ हिंदी दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसा इतिहास की बात अगर हम लोग करें तो हिंदी भारत की विशेष जो है राष्ट्रभाषा है, और भारत की आज़ादी के बाद 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से यह निर्णय लिया था कि हिंदी की खड़ी बोली ही भारत की राजभाषा होगी। इसी महत्वपूर्ण निर्णय के महत्व को प्रतिपादित करने तथा हिंदी को हर क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए राजभाषा राष्ट्रभाषा प्रचार समिति बनाई गई। वर्धा के अनुरोध प्रसारण 1953 से संपूर्ण भारत में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता रहा है। और ऐसा बताया जाता है नेहरू जी के संविधान सभा में 13 सितंबर को 1949 के दिन बहस में भाग लेते हुए तीन मुख्य बातें कही गई थी। किसी विदेशी भाषा से कोई राष्ट्र महान नहीं हो सकता, कोई भी विदेशी भाषा आम लोगों की भाषा नहीं हो सकती, भारत के हित में, भारत को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाने के हित में, ऐसा राष्ट्र बनाने की हित में जो अपनी आत्मा को पहचाने, जिसे आत्मविश्वास हो, जो संस्कार के साथ सहयोग कर सके, हमें हिंदी को अपनाना चाहिए। तो इस बहस में 12 सितंबर 1950 को 4 बजे दोपहर में शुरू हुई, 14 सितंबर 1949 के दिन समाप्त हुई, और 14 सितंबर की शाम समापन के बाद हिंदी संबंधित संविधान का तत्कालीन भाग 14 क और वर्तमान भाग 17 संविधान का भाग बन गया। तो इस तरह से ये चीजें हुई। संविधान सभा की भाषा विनायक वृश्चिक भैंस लगभग 278 पृष्ठों में मुद्रित हुई, और इसमें डॉक्टर कन्यालाल मणिकलाल मुंशी और श्री गोपाल स्वामी अयंगकर की भूमिका रही। बहस के बाद ये सहमति बनी कि संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, किंतु देवनागरी में लिखे जाने वाले अंकों तथा अंग्रेजों को 15 वर्ष या उससे अधिक अवधि तक प्रयोग करने के लिए लिखी तीखी बहस हुई, और फिर उसके बाद चीज़ें आगे बढ़ी और राजभाषा के प्रश्न पर अधिकार बहस सहमत हो गए, और अंक के बारे में स्पष्टता कि अंतर्राष्ट्रीय अंक भारतीय अंकों का ही एक नया संस्करण। कुछ सदस्यों ने रोमन लिपि के पक्ष में प्रस्ताव रखा, लेकिन देवनागरी को ही अधिक सदस्यता प्राप्त हुई, और इस तरह से ये चीज़ें सामने आ गई। तो आई हिंदी दिवस की फिर एक बार ढेरों शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं, और आप सभी को हिंदी दिवस की ढेरों शुभकामनाएं।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। हिंदी हिंदी हिंदी, जी हाँ, चलिए हिंदी की बिंदी माथे पर हो तो भारत का सम्मान और मान दोनों बढ़ जाता है। सर्वाधिक उपयोग करने वाला भाषा जो है वो हिंदी है। भारत में भले ही कुछ लोग द्वारा अंग्रेजी बोलना सम्मान की बात मानी जाती, परंतु विश्व के बहुसंख्यक देश में अंग्रेजी का इतना महान नहीं है। हिंदी बोलने में हिचक का एकमात्र कारण पूर्व प्राथमिक शिक्षा के समय अंग्रेजी माध्यम का चयन करना। आज भी भारत में अत्यधिक और अति भावुक अपने बच्चों का दाखिला ऐसे स्कूल में करवाना चाहते हैं जो शिक्षित जो हिंदी जो है अंग्रेजी भाषा जहाँ पर सिखाई जाती है, जबकि मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों को सर्वाधिक आसानी से अपनी मातृभाषा को ही ग्रहण करना है और इसी भाषा में किसी भी बात को भली भांति समझा जा सकता है। अंग्रेजी भारतीयों की मातृभाषा नहीं है, अंततः भारत में बच्चों की शिक्षा का सर्वाधिक उपयुक्त माध्यम जो है वो हिंदी है और हिंदी ही सबसे अच्छा है। अगर हिंदी में आप बच्चों को पढ़ाते हैं या हिंदी के बारे में उनको बताते हैं तो बच्चे जो है अपने क्षमता को अच्छी तरह से अपने पोटेंशियल को यूज़ करेंगे, लेकिन उनको अगर आभाषी चीज़ें जान देंगे तो वो मुश्किल में आ जाते हैं और उनकी पोटेंशियल जो है, उनकी जो अंदर की क्षमता जो है वो उतनी बाहर नहीं आती जितनी आना चाहिए। भारत की वर्तमान शिक्षा पद्धति में बालकों को पूर्व प्राथमिकता से ही अंग्रेजी के गीत रटाए जाते हैं। यदि घर में बालक बिना अर्थ जाने ही आने वाले अतिथियों को अंग्रेजी में कविता आदि सुना दे तो माता पिता का मस्तक गर्व से ऊंचा हो जाता है। हिंदी की कविता केवल दो दिन 15 अगस्त और 26 जनवरी पर पढ़ी जाती है, इसके बाद में हिंदी बोलना कोई नहीं चाहता। अंग्रेजी भाषा विद्यालयों में किसी विद्यार्थी द्वारा हिंदी बोलने पर अपमानजनक वाक्य लिखकर एक तीखी लगा जाती है। अंततः बच्चों को समझने के स्थान पर रटना होता है जो कि वैज्ञानिक है अवैज्ञानिक है। ऐसे अधिकांश बच्चे उच्च शिक्षा में बदलते दौर पर भाषिक कमजोरी के कारण खुद को समुचित तरीके से अभिव्यक्त नहीं कर पाते और पिछड़ जाते हैं। इस मानसिकता में शिक्षित बच्चा माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में मजबूरी में हिंदी याचिका पढ़ता है, फिर विषयों का चुनाव कर लेने पर व्यावसायिक शिक्षा का दबाव हिंदी छुड़वा ही देती है। तो हिंदी का कमजोर होने का कारण ये है। लेकिन साथियों, अब वक्त आ गया है कि हमें सभी भाषाओं को समझने और समझाने के लिए टेक्नोलॉजी भी है, इसलिए कहीं भी भाषा जो है हमारे बीच में नहीं आता। लेकिन हिंदी आप अगर सीख लेते हैं तो आप आसानी से अपनी अभिव्यक्ति को कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। 8:28 हो रहे हैं और आप हो मेरे साथ, तो चलिए बात करते हैं। एक बहुत ही प्यारा सा गीत हमारे गुड़ीलाल जी साहब ने फोन करके याद किया पार्वती का नंदन नाचे, ये गीत वो सुनना चाहते हैं तो मैं भी उनके लिए एक गीत सुनाना चाहूँगा। पार्वती के नंदन नाचे शंकर जी का डमरू बाजे, ये गीत वो सुनना चाहते हैं तो चलिए मैं कोशिश करता हूँ और आप सभी भी इस गीत का आनंद ले और नाचे गाए, क्योंकि आज गणेश जी का ही दिन है।

शंकर जी का डमरू बाजे, पार्वती का नंदन नाचे, बर्फीले कैलाश शिखर पर।

सुनकर इतना ज्यादा शोर, पार्वती आई उस ओर। डरकर माता उमा के आगे दुम दबाकर मूषक भागे, पर अपनी धुन में मस्त गजानन थिरक रहे हैं भूल के तन मन।

गणपति बप्पा नाच रहे पार्वती जी आ गए। चलिए बड़ा मज़ेदार किस्सा है, फिर बाद में कभी सुनाते हैं। और आप सभी को फिर से एक बार हिंदी दिवस की ढेर शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं करते हुए, और गणेश जी की भी ढेर शुभकामनाएं आपको गणेश उत्सव की। और आप बताइए 9414151415 इस नंबर पर फ़ोन करके कि आपके यहाँ किस तरह की तैयारी है, और आपके यहाँ बारिश हो रही कि नहीं। यहाँ पर रिमझिम बारिश शुरू हो गई है सुबह से, बड़ा अच्छा लग रहा है, और काम भी हो रहा है, बारिश भी हो रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो कंचन भाई हमारे बारिश के लिए प्रार्थना कर रहे थे, शायद उनकी बात सुन ली गई है। तो आज और कल शाम को थोड़ी सी रिमझिम बारिश हो गई है, तो आप बता सकते हैं फ़ोन करके कि आपके यहाँ क्या अवस्था है, क्या वहाँ पर बारिश हो रही है। तो चलिए फ़ोन करके मुझे तब तक बताइए, और उसके पहले एक और सुंदर सा गीत आपको सुनाते हैं, और ये गीत भी आपको गणेश जी की ही याद दिलाएगी।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। गणपति बप्पा का ये खूबसूरत गीत आपने सुना। आइए इसके साथ ही फिर आपको ले चलता हूँ आज के दिन विशेष, जो कुछ लोगों का जन्मदिन है उनके बारे में भी बातें कर लेते हैं और लोगों को याद करते हैं जिनका जन्मदिन है। और कुछ खास ज्ञानेन्द्र घोष, श्रीकांत जिकर, इन सभी का जन्मदिन है। ज्ञानेन्द्र घोष की बात करें तो ये विशेष भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिकों में से एक थे। अनेक वैज्ञानिक संस्थाओं के संस्थापक और सदस्य रहे हैं। घोष के अनुसंधान कार्यों से ही उनका यश विज्ञान जगत में फैला था। ज्ञानचंद्र घोष द्वारा स्थापित तनुता का सिद्धांत, घोष का तनुता सिद्धांत के नाम से सुप्रसिद्ध है। यद्यपि इसमें पीछे बहुत कुछ परिवर्तन करना पड़ा, लेकिन तनुता का जो सटीक फॉर्मूला है वो इन्हीं के द्वारा लोगों के बीच में आया था। हेलो जी, नमस्कार।
1: नमस्ते, ओम शांति, गुड मॉर्निंग।
0: गुड मॉर्निंग सुगना बहन, बोलिए कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छे हैं। हमारे यहाँ भी जोर शोर से चल रहा है गणपति का। ऐसे सब लेने भी जाएंगे, फिर 10 दिन 5 दिन कोई रखेगा, फिर विदा करेंगे। बहुत अच्छा लगता है, दोनों टाइम आरती करेंगे, पूजा करेंगे, ये सब करते हैं। अभी रात को देखो हमारे घर पे, बाजू हमारा लड़का ही है, उन्होंने लाके हमारे घर पे रखे गणपति दादा को। अभी आएंगे, ले जाएंगे, धाम धूम से ले जाएंगे, उन्हें घर पे बिठाएंगे। और जो 5-7 दिन रखेंगे, कोई 10 दिन रखेंगे, बहुत मजा आएगा। बहुत ही अच्छी तरह से गणपति उत्सव मनाएंगे हम। और हमको एक गाना सुना दीजिएगा, वो वाला है ना, गणपति आयो बापा रिद्धि सिद्धि लायो, गजानंद आयो रिद्धि सिद्धि लायो, गणपति आयो बापा रिद्धि सिद्धि लायो, वो वाला गाना सुना दीजिएगा।
0: जी जी जी,
1: ओम शांति।
0: शांति सुगना बहन, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। जी हाँ, नई किरण इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और बड़ा प्यारा सा जो है सुगना जी ने अपनी गणपति बप्पा का जो है ये गीत याद किया है, तो हम कोशिश करते हैं कि आपको वो गीत सुना दे। और इसके साथ ही चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे थे ज्ञान चंद्र घोष के बारे में। और इनका जन्म आज के दिन 1894 को पश्चिम बंगाल के पुरुलिया नामक स्थान पर हुआ था। और गिरिहिड से प्रवेश परीक्षा में इन्होंने उत्तीर्ण होकर कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में 1915 को एमएससी परीक्षा में इन्होंने प्रथम श्रेणी में पहला स्थान प्राप्त किया। इसके बाद ज्ञानचंद्र घोष कोलकाता विश्वविद्यालय के विज्ञान कॉलेज में प्राध्यापक नियुक्त हुए। 1918 में डीएससी की उपाधि प्राप्त की। विदेश गमन, 1919 में ज्ञानचंद्र घोष यूरोप गए, जहां इंग्लैंड के प्रोफेसर डोनन और जर्मनी के डॉक्टर नस्ट और हेवर के अधीन कार्य किया गया। 1921 में यूरोप से लौटने पर ढाका विश्वविद्यालय में प्रोफेसर नियुक्त हुए। 1939 में ढाका से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के डायरेक्टर होकर ज्ञानचंद्र घोष बेंगलोर गए। बेंगलोर में भारत सरकार के इंडस्ट्रीज और सप्लाईज के डायरेक्टर जनरल के पद पर 1947 और 50 तक रहे। फिर खड़गपुर के तकनीकी संस्थान को स्थापित कर प्राय 4 वर्ष तक उसके डायरेक्टर रहकर कोलकाता विश्वविद्यालय के उप कुलपति नियुक्त हुए। वहां से आयोजन आयोग के सदस्य होकर भारत सरकार में पदोन्नति पाकर आए। तो इस तरह से अनुसंधान का कार्य भी उनका रहा। ज्ञानचंद्र घोष अनेक वैज्ञानिक संस्थाओं के साथ जुड़कर भारतीय साइंस कांग्रेस और भारतीय केमिकल सोसाइटी के अध्यक्ष बने। रसायन शास्त्र को लेकर अध्यापक और मंजे हुए वक्ता ही नहीं थे, बल्कि पहले कोटि के अनुसंधानकर्ता भी रहे। अनुसंधान में अपना यश विज्ञान जगत में इनको ज़्यादा मिला और इनके द्वारा तनुता का सिद्धांत ये जो है विशेष घोष के नाम पर बन गया। और ज्ञानचंद्र घोष के अनुसंधान विधि विषय और रासायनिक गति विज्ञान, उच्चतम गैस अभिप्रक्रिया, इन सारी चीज़ों को देखते हुए इन विषयों के ज्ञान की वृद्धि हुई और देश के औद्योगिक विकास में बड़ी सफलता मिली। आयोजन आयोग के सदस्य के रूप में देश के उद्योग धंधों के विकास में ज्ञानचंद्र घोष का कार्य बड़ा योगदान रहा, प्रशासनीय रहा, आज भी उन्हें याद करते हैं। उसी पद पर रहते हुए 21 जनवरी 1959 को ज्ञानचंद्र घोष का देवासन हुआ। तो ये थी कुछ खास बातें ज्ञानचंद्र घोष के बारे में। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। चलिए आगे बढ़ते हैं, गणपति बप्पा आयो रिद्धि सिद्धि लायो आपके लिए। अभी सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो 107.8 एफएम। गणपति आयो बापा रिद्धि सिद्धि लायो, बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुन रहे थे। चलिए इसी के साथ मैं आपको ले चलता हूँ अब समाचारों की तरफ। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को सफल और परिणामोन्मुखी बनाने के लिए ब्रिक्स नेताओं का आभार व्यक्त किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, 21 राज्यों में भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकारें 2029 से पहले समान नागरिक संहिता लागू करेंगी। गणेश चतुर्थी का त्यौहार आज पूरे देश में श्रद्धा पूर्वक मनाया जा रहा है। आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। मुंबई में अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में 2025-26 के राजभाषा पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। भारत ने ओमान तट पर व्यापारिक पोत पर हुए हमले की निंदा की। भारतीय चालक दल के 13 सदस्यों को बचाया गया। धीरज बोमा देवरा ने मैक्सिको में तीरंदाजी विश्व कप के फाइनल में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष रिकर्व तीरंदाज बनकर इतिहास रचा। और क्रिकेट में भारत ने श्रीलंका को 72 रन से हराकर रिकॉर्ड 8वीं बार महिला एशिया कप का खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स के सभी सदस्य देशों के नेताओं का दिल्ली में हुए शिखर सम्मेलन को सफल और परिणामोन्मुखी बनाने के लिए आभार व्यक्त किया है। दो दिन के शिखर सम्मेलन के विशेष क्षणों को दर्शाने वाला एक वीडियो प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किया गया है। वीडियो में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स के माध्यम से भारत ने विश्व स्तर पर मित्रता, साझेदारी और सहयोग को आगे बढ़ाया है। श्री मोदी ने कहा कि शिखर सम्मेलन में अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा दृष्टिकोण और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा।
2: पिछले दो दिनों की हमारी चर्चाओं ने हमारा विश्वास और मजबूत किया है कि ब्रिक्स केवल देशों का समूह नहीं, सॉल्यूशंस का एक इकोसिस्टम है। हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा।
1: शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले नेताओं में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियन और अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान शामिल थे। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम, वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन्ह हंग, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह असीसी, फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर और युगांडा की उपराष्ट्रपति जेसिका अलूपो सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी शिखर सम्मेलन में उपस्थित थे। भारत ने 12-13 सितंबर 2026 को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी की, जिसमें समूह के 11 सदस्य देशों और 10 भागीदार देशों के नेताओं सहित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी भाग लिया। श्री मोदी ने शिखर सम्मेलन के दौरान अंतिम तीन दिनों में राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ 15 द्विपक्षीय बैठकें भी की। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि 21 राज्यों में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकारें 2029 से पहले समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करेंगी। मुंबई में पत्रकारों से बातचीत में श्री शाह ने कहा कि कई राज्यों में यूसीसी लागू हो चुकी है और 2029 से पहले भाजपा एनडीए शासित सभी 21 राज्यों में इसे लागू कर दिया जाएगा।
3: ढेर सारे राज्यों में कॉमन सिविल कोड यूसीसी को हमने इंट्रोड्यूस किया है और मुझे विश्वास है कि भाजपा एनडीए शासित 21 राज्यों में हम 2029 के पहले यूसीसी को इंट्रोड्यूस करेंगे। भारतीय न्याय संहिता जो बनाई है, इसने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को भारतीय आधार देने का काम किया है और कई सारे राज्यों में सजा कराने का दर का एक ही साल में 30% वृद्धि हुआ है।
1: श्री शाह ने कहा कि तीन तलाक को समाप्त कर दिया गया है, जिससे मुस्लिम महिलाओं को समान अधिकार मिले हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा पर श्री शाह ने कहा कि अनुच्छेद 370 और 35A को बिना किसी विवाद के हटा दिया गया है।
3: राष्ट्रीय सुरक्षा में धारा 370 और 35A हटाना जो असंभव माना जाता था, रक्त की एक भी बूंद गिराए बगैर, एक भी गोली चलाए बगैर धारा 370 आज पास्ट बनकर खड़ी है और कश्मीर पूर्णतया भारत के साथ जुड़ा है।
1: श्री शाह ने कहा कि सरकार ने 5 दशकों से चले आ रहे नक्सलवाद को समाप्त कर दिया है और देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में 14 से अधिक शांति समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक महीने के राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान की घोषणा की है। यह अभियान जन भागीदारी के माध्यम से वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के संकल्प को मजबूत करने के लिए 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलेगा। मुंबई में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि यह अभियान भाजपा, एनडीए के सहयोगी दलों, स्वयंसेवी संगठनों और देश भर के नागरिकों द्वारा आयोजित किया जाएगा। इस अभियान में सेवा ज्योति कलश यात्रा, वडनगर वाराणसी सेवा यात्रा, सेवा से मेरा योगदान, सेवा सेतु अभियान, सेवा चे रंग, राष्ट्र संगे और सेवा प्रथम नवाचार चुनौती शामिल है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। वर्ष 1949 में इसी दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के तौर पर अपनाया था। गृहमंत्री अमित शाह आज नवी मुंबई में हिंदी दिवस 2026 कार्यक्रम और

0: छठे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
1: महाराष्ट्र के नवी मुंबई में गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा दो दिवसीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। सम्मेलन का उद्देश्य महाराष्ट्र की समृद्ध भाषाएं, सांस्कृतिक और साहित्य परंपरा के साथ हिंदी के जीवंत संबंधों को रेखांकित करना है। उद्घाटन सत्र में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वर्ष 2025-26 के लिए राजभाषा गौरव और राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान करेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और वरिष्ठ अधिकारी सम्मेलन में शामिल होंगे। मुंबई से प्रार्थना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीषा।
0: भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत MTL गाइया पर कल हुए हमले की कड़ी निंदा की है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि अब तक चालक दल के 13 भारतीय सदस्यों को बचा लिया गया है। एक भारतीय नागरिक की तलाश जारी है। दूतावास ने कहा कि जारी खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। दूतावास ने भारतीय नागरिकों को बचाने में सहयोग के लिए ओमान के अधिकारियों का आभार व्यक्त किया है। भारत ने तनाव को तत्काल कम करने और क्षेत्र में शांति बहाल करने के लिए बातचीत और कूटनीति का रास्ता अपनाने की सलाह दी है। ईरान और खाड़ी देशों के बीच आज ओमान में होने वाली बैठक स्थगित कर दी गई है। इसमें होर्मुज जलडमरू मध्य से होकर जहाजों की आवाजाही की व्यवस्था पर चर्चा की जानी थी। ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी ने कल देर शाम इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आज सलालाह में होने वाली बैठक को आम सहमति बनाने के क्रम में स्थगित किया गया है। ईरान की सरकारी मीडिया के अनुसार कुछ क्षेत्रीय देशों के अनुरोध पर ईरान और ओमान ने संयुक्त रूप से ये निर्णय लिया। यमन की सेना ने लाल सागर के तट पर ईरान समर्थित हौसी विद्रोहियों के ठिकाने पर हमले किए हैं, जबकि हौसियों ने यमन की सरकार का समर्थन कर रहे पड़ोसी देश सऊदी अरब को निशाना बनाया है। यमन की सरकार ने लाल सागर तट पर और अधिक सैनिक भेजने का फैसला किया है। पिछले सप्ताह हौसी विद्रोहियों ने महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर मोखा और बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य में एक द्वीप पर कब्जा कर लिया था। पूरे देश में आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन भगवान गणेश के जन्म का प्रतीक है, जो बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। हमारी संवाददाता ने बताया कि महाराष्ट्र सरकार ने गणेशोत्सव को राज्य उत्सव का दर्जा दिया है।
2: गणेश चतुर्थी का त्यौहार आज पूरे महाराष्ट्र में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। घरों और मोहल्लों में भक्ति गीतों, आरती और गणपति बाप्पा मोरया के जयघोष के बीच लोग गणपति बाप्पा का स्वागत कर रहे हैं। मुंबई में कई गणेश मंडल सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रमों का भी आयोजन कर रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रेलवे और बेस्ट ने विशेष गाड़ियों की व्यवस्था की है। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: उत्तर प्रदेश में भी आज से गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज कजरी तीज मनाई जा रही है।
3: लखनऊ के झूलेलाल वाटिका पर भव्य गणेश उत्सव का शुभारंभ होगा। गोमती के किनारे आज से शुरू होकर 25 सितंबर तक चलने वाले इस गणेश उत्सव में 13,000 स्क्वायर फीट का वातानुकूलित वाटरप्रूफ पंडाल बनाया गया है, जहां भक्त बैठेंगे और गजानन की चिट्ठी लिखेंगे। उधर पूर्वी उत्तर प्रदेश में कजरी तीज पर्व आज मनाया जाएगा। इस दिन सुहागिन महिलाएं शिव पार्वती की पूजा करेंगी और निर्जला व्रत रखेंगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में बाल विकास, पोषण और प्रारंभिक प्रोत्साहन विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में यूनिसेफ इंडिया की विशेषज्ञ डॉक्टर ऋचा एस पांडे और स्वामी दयानंद अस्पताल के बाल रोग और नवजात शिशु विभाग के प्रमुख डॉक्टर सुरेंद्र सिंह बिष्ट शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता टेलीफोन नंबर 0112331 0481 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं चंद्रशेखर शर्मा।
4: भारतीय तीरंदाज धीरज बोम्मा देवरा विश्व कप फाइनल में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष रिकर्व खिलाड़ी बन गए हैं। मैक्सिको में कल उन्होंने जापान के नाकानिशी जूनिया को रोमांचक शूट ऑफ में हराया। क्रिकेट में भारत ने महिला एशिया कप 2026 जीत लिया है। भारत ने कल फाइनल में श्रीलंका को 72 रन से हराकर 8वीं बार एशिया कप अपने नाम किया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका को 184 रन का लक्ष्य दिया था। लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका की टीम निर्धारित 20 ओवर में 111 रन ही बना सकी। भारत की ओर से शैफाली वर्मा ने 39 गेंदों में 68 रन बनाए और स्मृति मंधाना ने 39 गेंदों में 59 रन का योगदान दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय महिला टीम को एशिया कप जीतने पर बधाई दी है। वहीं पुरुष क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट पर 156 रन बनाए। जवाब में भारत ने 13 ओवर और 4 गेंद में 3 विकेट पर 157 रन बनाकर जीत हासिल की। भारत की ओर से अभिषेक शर्मा ने 32 गेंदों में 82 रन बनाए और अर्शदीप सिंह ने 3 विकेट लिए। अभिषेक शर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।
0: इसके अलावा जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव ने न्यूयॉर्क में अमेरिका के बेन शेल्टन को हराकर अमेरिकी ओपन पुरुष सिंगल्स का खिताब भी जीत लिया है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
5: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से छपे प्रमुख समाचार पत्रों ने भारत की मेजबानी में संपन्न हुए ब्रिक्स सम्मेलन को अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक जागरण ने ब्रिक्स नेताओं का चित्र प्रकाशित करते हुए लिखा है, जय हो दिल्ली, अब पेचिंग में मिलेंगे। सम्मेलन के समापन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान हिंदुस्तान में है। पत्र लिखता है, खनिजों को हथियार ना बनाए। अमर उजाला की सुर्खी है, ब्रिक्स का अब साझा लक्ष्य सर्वजन हिताय। राजस्थान पत्रिका ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की रिपोर्ट लिमिटिंग ओवरशूट के हवाले से लिखा है, ग्लोबल वार्मिंग की पहली लड़ाई हारे, दशकों तक रहेगा ज्यादा गर्मी का दौर। लोकसत्य ने स्वदेश लौटने पर विचार कर रहे लोगों पर लिखा है, पश्चिमी सपनों पर वीजा की कैंची, भारत लौट रहा टैलेंट। अमेरिका यूके कनाडा से शुरू हुआ रिवर्स ब्रेन ड्रेन। दैनिक भास्कर ने सोशल मीडिया अटेंशन पर लिखा है, डिजिटल दौर में शॉक कंटेंट का खेल जिंदगियां बर्बाद कर रहा। हिंदी दिवस पर आज कई समाचार पत्रों ने विशेष आलेख प्रकाशित किए हैं। हिंदुस्तान ने भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्तियां, निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को सूल प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, देश की धड़कन है हिंदी।
0: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को सफल और परिणामोन्मुखी बनाने के लिए ब्रिक्स नेताओं का आभार व्यक्त किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, 21 राज्यों में भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकारें 2029 से पहले समान नागरिक संहिता लागू करेंगी। गणेश चतुर्थी का त्यौहार आज पूरे देश में श्रद्धापूर्वक मनाया जा रहा है। आज हिंदी दिवस भी मनाया जा रहा है। भारत ने ओमान तट पर व्यापारिक पोत पर हुए हमले की निंदा की। और क्रिकेट में भारत ने श्रीलंका को 72 रन से हराकर रिकॉर्ड 8वीं बार महिला एशिया कप का खिताब अपने नाम किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। साथियों, आपने चारों तरफ खूबसूरत पंडाल देख रहे होंगे और हर पंडाल एक दूसरे से सजावट में भिन्न यानी अलग होता है। बहुत ही खूबसूरती से सजावट किया जाता है, साथ ही साथ गणेश जी की मन मोहिनी प्रतिमाएं भी आपको देखने को मिलता है। साथ में आरती गणेश जी के और मंत्र, फूलों की सजावट, रात में तो लाइट्स बहुत ही खूबसूरत होते हैं, एक जैसे कि सुंदर समा बांध देती हैं। तो हर तरफ एक बहुत ही सुंदर भक्ति भाव से परिपूर्ण उमंग उत्साह का वातावरण आप सभी देख रहे हैं। हम ये बात इसलिए करेंगे क्योंकि गणेश चतुर्थी पर्व की जो अब लगभग संपूर्ण भारत में ही लोग मनाने लगे हैं, तो चलिए सुनाते हैं आपको एक खूबसूरत गणेश आरती। आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: अर्थ होता है एक रास्ता। चाहे हमारे जीवन में प्रतिदिन एक रास्ता नहीं होती है, मगर जब कोई भी उत्सव आता है तो परिवार के सभी सदस्य एक रस हो जाते हैं। यानी कि सभी का सुबह उठना, पूजा आरती करना और साथ ही उन दिनों में जो भी खाना हमारे घर में यानी शुद्ध और सात्विक रीति से बनता है उसको बहुत ही खुशी से ग्रहण करना और घर में शुद्ध वातावरण व वाइब्रेशन रखना, तो ये सारे ही एक रास्ता के प्रतीक हैं। तो ये हमारे त्योहारों की विशेषता होती है और भारत तो वैसे भी त्योहारों का देश है, तो यहाँ तो हर त्योहार पर उमंग उत्साह का माहौल सभी को प्रफुल्लित करता है। तो आज हम आपको गणेश चतुर्थी के विषय में तो बताएंगे ही, साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि इसमें कितने धार्मिक रहस्य छिपे हैं जो कि हमें पता ही नहीं होते हैं, और इस त्योहार का क्या विशेष महत्व है।
1: जी वंदना जी, काफी अच्छी बातें आपने बता दिया गणेश चतुर्थी के बारे में। ये पूरा उत्सव जो है 10 दिनों तक चलता है और अनंत चतुर्थी के दिन गणेश विसर्जन के साथ समापन होता है। इसमें गणेश भगवान की मिट्टी की सुंदर मूर्तियां ही पंडाल व घरों में स्थापित किया जाता है। गणपति बप्पा को विशेष रूप से लड्डू यानी कि मोदक का भोग लगाया जाता है। वैसे इसमें फल का खीर आदि भी रखते हैं, लेकिन सुबह शाम की आरती की जाती है तथा धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए, कारण वरना झूठ कलंक या आरोप लगने का डर होता है, ऐसा कुछ बताया जाता है। तो चलिए हम आपको अभी फिर सुनाते हैं एक बहुत ही खूबसूरत सा गणेश जी का भजन। सुनते रहो,
0: मुस्कुराते रहो।

शुरू करते हैं गणेश जी के जन्म की कहानी, जो कि बेहद ही अद्भुत है। ऐसा कहा जाता है कि माता पार्वती ने अपने तन के मैल से एक पुतला बनाकर उसमें प्राण फूंक दिए। उन्होंने इस बालक का नाम गणेश रखा और उसको द्वार की पहरेदारी पर बिठा दिया। माता पार्वती ने गणेश को ये आदेश दिया कि जब तक वह स्नान कर रही है, तब तक वह किसी भी पुरुष को अंदर न आने दें। वहाँ कुछ देर बाद जब भगवान शंकर तपस्या करके वापस लौटे और अंदर जाने लगे, तो बालक गणेश ने उन्हें द्वार पर ही रोक दिया। तब क्रोधित होकर शिव ने उसका सर काट दिया। माता पार्वती को जब ये मालूम चला तो वह अत्यंत क्रोधित व दुखी हुई और गणेश को भगवान शिव से पुनर्जीवित करने को कहा। तब भगवान शिव ने कहा अपने गुरु

0: जाओ और जो भी पहला जीव उत्तर दिशा की ओर मिले जिसकी माता उसकी तरफ पीछ करके सोई हो उसका सर काट कर ले आओ। तो गण हाथी के बच्चे का सर काट कर ले आए और शिव ने गणेश को हाथी के बच्चे का सर काट कर लगा दिया और उनको पुनर्जीवित कर दिया। तो श्रोताओं, ये कहानी आपने शायद पहले पढ़ी हुई सुनी होगी, लेकिन क्या आपने इसके रहस्य पर गौर किया है? शायद नहीं। यह है भी कितना असामान्य कि शरीर तो मानव का और सर हाथी का। तो हमारे पुराणों में ही सारी बातें प्रतीकात्मक तरीके से बताई गई हैं, क्योंकि पहले ऋषि मुनियों के समय में प्राचीन काल में हमारा ज्ञान चरम पराकाष्ठा पर था, तो समझ थी। लेकिन इस कलयुगी समय में हम इन चीजों के रहस्यों को बिना जाने ही सिर्फ खाना पूर्ति करते हैं और इन रहस्यों को जानते हैं। लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं भगवान गणेश का ये सुंदर गीत। आप सुन रहे हैं रेडियो 107.8 FM पर। सुनते रहो,
1: मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है गीत के बाद। और अभी चलिए हम लोग बात करते हैं गणेश जी के बारे में। जी हाँ, गणेश जी के बारे में हम लोग, जैसे कि आप सभी जानते हैं, उनका जो रूप है, उनका जो आकार है, वो यूनिक है, बहुत ही अलग है। उनका पूरा शरीर जो है अलंकारों से संपन्न है, इसलिए उनको अलंकारी देवता के रूप में याद किया जाता है। क्यों? क्योंकि इनके पूरे अंगों में डिवाइन जो वैल्यूज हैं, हमारी जो विशेष गुण है, वो दर्शाते हैं। जैसे आप देखेंगे, सर की बात करें, गणेश जी का जो सर है वो हाथी का है। तो हाथी को सभी जानवरों में बुद्धि या विवेक का प्रतीक माना जाता है। तो हाथी एक छोटे मासूम बच्चे को अपनी सूंड में सुरक्षित तरीके से उठा लेता है, और ये उनकी खासियत होती है। तो आप सोचिए कि एक हाथी का बच्चा बड़ा ही होता है, और सूंड से उसे बड़े प्यार से उठाना, ये अपने आप में एक आर्ट है। तो एक बुद्धिजीवी प्राणी के साथ साथ उनके अंदर एक आर्ट है, एक कला है। ये उसकी बुद्धि और विवेक का प्रतीक है। जो गणेश जी को उनका सर से हम लोग उन्हें बुद्धि के देवता के रूप में याद करते हैं, है ना। शंकर जी ने अपने ही बच्चे गणेश का सर जब काटा था कहानी में, तो उनको फिर से जीवित करने के लिए, उनको एक पहचान देने के लिए उन्होंने हाथी का सिर लगा दिया। यहाँ पर कलयुग में भी जब हम बच्चे परमात्मा को भूल जाते अज्ञानता वश, तो परमात्मा आकर हमें फिर से दिव्य बुद्धि का ज्ञान देते हैं, अर्थात हमें अपनी पहचान देते हैं। अज्ञानता ने हमारा सर यानी बुद्धि को खत्म कर दिया था, और परमात्मा आकर जब ज्ञान देते हैं, तो फिर से हमें जो है एक नया सिर यानी हमारा बुद्धि जागृत हो जाती है, हमारा विवेक जागता है, ठीक है ना। तो ये अज्ञानता की हत्या और फिर से दिव्यता की जन्म को बताया गया है। ये आध्यात्मिक ज्ञान है, ठीक है ना। तो अब आइए आगे बढ़ते हैं। और हम जब पूरी तरह से अपने पिता को भूल जाते हैं, तो हमारे अंदर जो डिविनिटी थी वो ख़त्म हो जाता है। जैसे ही फिर हम अपने पिता परमात्मा को पहचान लेते हैं, तो हम पवित्रता से, डिविनिटी से भरने लगते हैं। शिव जी ने अपने बच्चे का नाम गणेश रखा, अर्थात जो गुणों से संपन्न व्यक्ति को गणेश कहते हैं, गण गुणों से भरपूर। और इनकी सर की और विशेषता ये है, इनका सर बड़ा और आंखें बहुत छोटी। उनकी आंखें छोटी होते हुए भी दूरांदेशी का प्रतीक माना गया। वो जो भी कर्म करेंगे उसका परिणाम उन्हें पता होता है। तो हम जब कर्म करते हैं तो हमें परिणाम का पता ही नहीं चलता, है ना। जब रिजल्ट आता है तब हमें पता चलता है, लेकिन यहाँ ऐसे नहीं। गणेश जी की आंखें छोटी होने के बावजूद भी उनकी दूरान दृष्टि थी। सिर बड़ा का मतलब है विशाल, बुद्धिशाली। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और बात बताते हैं। वॉइस इंटेलेक्ट एंड फार साइटेडनेस, ऐसा भी बताया जाता है। उनका मुंह छोटा यानि कि कम बोलना, कान बड़े यानि कि ज्यादा सुनना ये उसका प्रतीक है। उनके कान बड़े ही नहीं बल्कि सूप जैसा होता है। जी वंदना जी, आप इसको सही से बताएंगे
1: तो श्रोताओं, अभी आपने जैसे कि रमेश जी बता रहे हैं, तो अब आगे हम आपको बताएंगे कि जैसे गणेश जी का मुंह छोटा दिखाया गया है यानी कि कम बोलना, और कान बड़े यानी कि ज्यादा सुनना। इसका मतलब हुआ टॉक लेस एंड लिसन मोर। और उनके बड़े कान बड़े ही नहीं बल्कि सूप जैसे दिखाए गए हैं, और सूप ऐसा ही नहीं, सूप करता है छन्नी का काम, यानी कि रिफाइननेस का प्रतीक होता है। वह सिर्फ सार को ही ग्रहण करता है। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बता दूं कि गांव में भी अभी तो शायद चीजें होती होंगी, जो सूप होता है जब आप उससे अनाज को साफ करते हैं, जितना भी कूड़ा होता है वो सारे का सारा निकाल देता है और सिर्फ अनाज अनाज को ही ग्रहण करता है। तो इसी तरीके से ये संदेश देते हैं कि जो हमें सिर्फ सार को ही ग्रहण करना है और कचरा फेंक देना है, यानी कि सिर्फ हम अच्छी बातों को ग्रहण करें, एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल दें। तो ये तो खराब तो हमें सुनना ही नहीं है, सिर्फ अच्छी बातें व लोगों की विशेषताओं को ही ग्रहण करना है। और आगे उनकी और विशेषता है, गणेश जी के दो दांत हैं, मगर उनका एक दांत टूटा हुआ दिखा देते हैं। तो इस इस टूटे दांत का क्या अर्थ होता है, कुछ भी आपको बताते हैं। और इसका मतलब होता है कि हमारे जीवन में द्वैत भाव है, ड्यूलिटी है, यानी कि जैसी ड्यूलिटी होती है, चाहे मेल फीमेल की हो, रिलीजन की हो, एज की हो, कास्ट की हो, या सीनियर जूनियर की हो। तो इस तरीके से जब परमात्मा हमें ज्ञान देते हैं तो बताते हैं मैं आत्मा और तुम आत्मा, तो सारा द्वैत भाव यानी कि ड्यूअलिटी खत्म हो जाती है, एंड वन वर्ल्ड एंड वन फैमिली। तो जब ये विजडम जीवन में आ जाती है तो सब कुछ खत्म हो जाता है। तो चलिए इसी उस पर हम आपको एक और बहुत खूबसूरत गणेश जी का गीत सुनवाते हैं। सुनते रहो,
0: मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार गीत के बाद। आशा करूंगा आप बिल्कुल अच्छी तरह से गणेश जी की प्रतिमा का जो अलौकिक अलंकार जिनको कहते हैं उनके शरीर के हर अंग को, उसकी विशेषताएं और वो किस तरह से प्रतीकात्मक बताया गया है, उन रहस्यों को आप समझ रहे हैं। तो जैसे कि हमने सूंड की विशेषताओं के बारे में चर्चा की, एक छोटे बच्चे को भी बड़े प्यार से उठाती है हाथी अपने सूंड से, तो एक बड़े पेड़ को भी जड़ से उखाड़ती है। आत्मा जब ज्ञान प्राप्त होता है तो बहुत सॉफ्ट भी होती है, लविंग भी होती है और बहुत पावरफुल भी होती है। कई बार हम ये सोचते हैं कि स्पिरिचुअलिटी हमें बहुत सीधा बना देती है, तो हमें लोग चीट कर देंगे, मगर ये सत्य नहीं है। जब हमें ज्ञान मिलता है तो हम बहुत लव एंड लॉ का बैलेंस सीखते हैं।

0: सॉफ्टनेस भी होता है और पावरफुल भी हम बनते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी हमें बैलेंस सिखाती है। गणेश जी का पेट बहुत बड़ा है, जो वाइस आत्मा है वो हर बात को अपने में समा लेती है। आजकल किसी ने कुछ सुना दिया तो हम 10 लोगों को बता देते हैं, मगर इधर सुना और उधर सुना दिया, ये ज्ञानी नहीं, ये ज्ञानी आत्मा नहीं होती है। ये सिंबल है पावर टू एक्सेप्ट, हर किसी की बात को समाना। हर किसी के अलग अलग संस्कार होते हैं, मगर सबको उनके संस्कारों के साथ एक्सेप्ट करते जाए, ये यहाँ पर सीखने को मिलता है।
1: जी हाँ, तो गणेश जी की जो विशेषताएं बता रहे हैं रमेश जी, आपने बहुत अच्छी बताई, आगे और बताते चले। और रमेश जी, लगता है हमारे श्रोताओं को प्रोग्राम बहुत पसंद आ रहा होगा
2: जी।
1: अभी तक तो क्या है कि हम बिना जाने सारी चीजें करते चले जाते हैं, रिचुअल्स जो करते जानकर करिए। जब हम किसी चीज को जानकर करते हैं तो उसका आनंद ही और होता है और एक क्लियर पाथ हमारे सामने होता है और कोई भटकाव नहीं होता है।
2: बिल्कुल।
1: तो अब देखिए, यहाँ आगे दिखाते हैं गणेश जी की 4 भुजाएं दिखाते हैं और हर भुजा में बहुत सुंदर अलंकार है। जैसे कुल्हाड़ी देखा होगा, तो कुल्हाड़ी का लोग मतलब नहीं समझते होंगे, यहाँ कुल्हाड़ी का मतलब दिखाया है। अगर हम स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से समझे कि परमात्मा से जब हमें ज्ञान मिलता है तो अपने पास्ट के जो रॉन्ग अकाउंट्स हैं हमारे, तो उसको हम कुल्हाड़ी से काट देते हैं और उनको खत्म करना, उनको एकदम फिनिश करना। साथ ही उनके दूसरे हाथ में दिखाते हैं रस्सी। तो रस्सी यानी कि रोप जो होती है, इसका मतलब है ज्ञान यूज किया, उसको धारण किया। लेकिन जीवन में धारणा तब होगी जब डिसिप्लिन होगा। संयम नियम के बिना धारणा कभी नहीं हो सकती है। तो रमेश जी, जैसे क्योंकि आप भी ब्रह्मा कुमारी में हैं और मैं भी ब्रह्मा कुमारी में हूँ, तो जैसे हम देखते हैं यहाँ हमारे जो नियम है सब, और हम तभी सब उस पर चलते हैं पता ही नियमों पर जबकि हमारे जीवन में संयम होता है, मानते हैं ना आप इस बात?
2: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और जो संयम नहीं होगा, जो ईश्वर बताते हैं उस पर नहीं चलेंगे, तो फिर ज्ञान का कोई मतलब ही नहीं होता है। और इस तरीके से जैसे श्रोताओं को बता दें, जो परमात्मा ने बताते हैं, तो हमारे लाखों बहन भाई बिना किसी के कहे जो एक बार परमात्मा ने बता दिया उस रास्ते पर चलते चले जाते हैं।
2: बिल्कुल।
1: तो यहाँ इसी तरीके से बताया है कि डिसिप्लिन कैसे करना है। तो अपने जीवन को जब मर्यादा की रस्सी बांधते हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ भी खाया, कुछ भी पिया, कुछ भी बोल दिया और जहाँ सोना है, उठना है, अपनी मर्जी से करना है, तो ऐसी आत्मा वाइज कभी नहीं बन सकती है। लेकिन जब जीवन को मर्यादाओं की रस्सी बांधते हैं तो सही सोच, सही बोल, सही कर्म और सही धन कमाने का क्या तरीका होता है, तो ये मर्यादाओं को रस्सी से बांध लो। और तीसरे हाथ में अब रमेश जी बताइए क्या दिखाया जाता है।
0: जी जी जी, वंदना जी, बहुत ही अच्छी बात आपने कहा कि कैसे हम जो है इन चीज़ों को समझ रहे हैं और वो चीज़ मर्यादा के अकॉर्डिंग हमारे लाइफ में आती है। अब तीसरी बात जो है, हाथ को गणेश जी के ब्लेसिंग देते हुए दिखाते हैं, तो उनको सबको देना है, सबको आशीर्वाद देना है। कोई भी आत्मा कैसे भी संस्कार लेकर आए, मगर सबको क्या करना है, दुआएं देते जाओ, देते जाना, देना ही है आशीर्वाद का जो हाथ उनका दिखाया गया है। अब इसके बाद आपने देखा होगा चौथा हाथ में मोदक, हाथ में मोदक दिखाते हैं, अर्थात स्पिरिचुअलिटी को अपने जीवन में जब हम लाते हैं तो केयरलेस होकर नहीं हो सकता। मोदक बनाने के लिए जैसे मेहनत लगता है, किसी भी मिठाई को आप बनाएंगे और ख़ास करके जब मोदक बनाते हैं तो बहुत मेहनत लगती है, लेकिन अगर एक बार वो मेहनत कर ली तो मोदक मीठा बहुत होता है, मतलब मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। तो इस बात को यहाँ पर बताया गया, इसमें आपको महिमा भी मिलेगी, सफलता भी आपको मिलेगी, लेकिन उसे समय ये विशेष ध्यान भी रखना होता है। क्या ध्यान रखना होता है, इस ज्ञान का, इस विशेषता का आपके अंदर अहंकार बिल्कुल ना आ जाए, ये ध्यान रखना है। गणेश जी के हाथ में जो मोदक दिखाते हैं, मगर वो उसको खाते नहीं है, मतलब महिमा व सफलता मिलेगी मगर उसको स्वीकार कभी भी नहीं करना है। ये है अध्यात्म का रहस्य, जहाँ पर अहंकार सूक्ष्म होकर खत्म हो जाता है। ज्ञान का अहंकार तो बहुत ही सूक्ष्म होता है। गणेश जी को बैठा हुआ दिखाते हैं, एक पैर उनका फोल्ड दिखाया गया, धरती को टच करता हुआ है, इसका मतलब है कि इस दुनिया में रहना है और सब कुछ कामकाज करना है, सारे रिश्ते नाते निभाना है, मगर इस दुनिया से डिटैच भी रहना है।
1: जी हाँ, प्यारे और प्यारे, एक्चुअली जैसे इतनी सारी बातें श्रोताओं को आपने बताई, इस बीच में चले लेते एक और हम अच्छा सा ब्रेक और सुनाते हैं भगवान गणपति का बहुत प्यारा सा खूबसूरत भजन।
0: सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: जैसे कि आपने अभी सुना श्रोताओं कि सारे रिश्ते नाते हमें निभाना है और हमें डिटैच रहना है, यानी कि हम रहें भी और ना भी रहें, दोनों ही बातें इसमें बताई गई हैं। और किसी चीज को हमें छोड़ना नहीं होता है, जैसे अभी बताया न्यारे और प्यारे रहना है, हमें सब कुछ करना है मगर किसी के प्रभाव में नहीं आना है। इतनी विशेषता धारण करके श्री गणेश जी का वाहन क्या दिखाते हैं? चूहा। तो चूहा किसका प्रतीक है? बहुत बार आप लोगों ने भी सोचा होगा, लेकिन शायद आपको इसके बारे में पता नहीं चलता होगा, सोचा होगा चलिए भगवान गणेश चूहे पर बैठ गए ऐसे ही सही। लेकिन यहाँ जो है हमारे ब्रह्मा कुमारीज में जो ज्ञान है बहुत स्पष्ट रूप से बताया जाता है ज्ञान को। तो यहाँ चूहा प्रतीक है कि सारे दिन चूहा, चाहे उसके खाने की चीज है चाहे नहीं है, चाहे प्लास्टिक है चाहे कुछ भी है, वो कुतरता रहता है। तो ये जो कुतरने की चीज है ये बताती है कि ये प्रतीक है हमारी कर्म इंद्रियों का। सारे दिन चाहे खाते जा रहे हैं, कुछ देखते जा रहे हैं, कुछ सुनते जा रहे हैं, यानी कि हमारा कर्म इंद्रियों से कंट्रोल खत्म हो गया है। और चूहा जब और किसी के घर में घुसता है तो चूहे को बहुत छोटी सी जगह की जरूरत होती है घर में घुसने की, और जो अंदर घुसाता है तो हम कहते हैं अरे चूहा यहाँ हमारे घर में कैसे आ गया। तो इसी प्रकार से हमारे अंदर जब कमी कमजोरियाँ आती हैं तो आते समय हम ध्यान नहीं देते हैं और कैसे चुपचाप हमारी लाइफ में आ जाती हैं, और उन कमजोरियों को हम बहुत इंजॉय करते हैं। रमेश ऐसा होता है ना?
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: कमजोरी एंजॉय करना, जैसे कि आपने देखा मोबाइल कमजोरी तो कहेंगे ना, और एंजॉय करते हैं। लेकिन उन जब कमी कमजोरियों से आगे चल के हमारे जीवन में नुकसान होता है तब हमें पता चलता है कि अरे तो खराब बात हमारी जिंदगी में। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें वक्त रहते पता नहीं चलता और समझते कैसे आ गए।
1: बिल्कुल।
0: तो इसी तरीके से जब हम विशाल बुद्धि होंगे, दूरंदेशी हैं और बड़े कान यानी कि अच्छा सुनेंगे,
1: कम बोलेंगे, सॉफ्ट
0: भी बोलेंगे कम बोलने के साथ साथ, और मतलब बोलना भी है लेकिन बहुत सॉफ्टनेस के साथ ही हम बोलना है
1: जी।
0: और पावरफुल भी होंगे और बातों को अपने अंदर संभालेंगे, ज्ञान की मर्यादाओं पर चलेंगे, अज्ञानता से ज्ञान की कुल्हाड़ी को हम से हम काटेंगे, और यानी कि ब्लेसिंग्स सबको देंगे, ईगो में कभी नहीं आएंगे और ह्यूमिलिटी में रहेंगे। जब हम ये सब कुछ कर लेंगे तब हम अपनी कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त करेंगे।
1: बहुत ही अच्छी बात आपने बताया वंदना जी। मुझे लगता है ये प्रतीकात्मक जो चीजें हैं अलंकार और उनके अंगों को आपने अलग अलग तरीके से जो है बताया, जहाँ पर पूरी जो है एक अध्यात्म का पूरा ज्ञान आपने बांटा है आज। और ऐसा लगता है कि जैसे इन सारी चीजों को अगर हम अपने जीवन में उतारेंगे तो हम भी एक अध्यात्म शक्ति से संपन्न हो जाएंगे। ऐसी आत्मा यानी जिनके पास ज्ञान आ जाता है तो गणेश जी को चूहे के ऊपर बैठा दिखाते हैं। इसके अलावा गणेश जी के साथ रिद्धि सिद्धि दोनों को दिखाया गया। गणेश जी जैसे आत्मा को समृद्धि और सुख के लिए भागना नहीं पड़ता, मेहनत और स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। श्रोताओं अगर आप भी गणेश जी को अपने घर में लाते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, तो आप भी इन सारी बातों को जो हमने सुनाया है गुण को अपने जीवन में धारण कीजिए। ऐसा नहीं कि हर साल हम सिर्फ गणपति को ला रहे हैं और हमारे अंदर कोई बदलाव ही नहीं और कोई गुण ही धारण नहीं करते। तो आप अपने जीवन को खुशियों, गुणों व समृद्धि से भरना है। आशा करते हैं आपको हमारे इस प्रोग्राम के माध्यम से जो आज हमने गणेश जी की बातें, ज्ञान युक्त बातें, प्रतीकात्मक बातों को कैसे जीवन के साथ जोड़ के बताया, ये पसंद आया होगा वंदना जी।
0: जी, और साथ ही साथ हम जैसे अपने श्रोताओं को बताते हैं, और हमारे श्रोता तो वैसे ही बहुत अच्छे हैं
1: जी जी जी,
0: तो जब आप गणेश जी लाते हैं तो इन चीजों का आप जरूर ध्यान रखिएगा, यानी कि केयरफुल होकर जब हम चीजों को करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे जीवन में बहुत कुछ सही
1: हो जाता है।
0: और स्पेशली हम भगवान को लेकर आ रहे हैं, उनको कितने आपने देखा होगा, आप तो वैसे ही महाराष्ट्र में हैं।
1: जी जी जी जी,
0: गणेश उत्सव होता है कमाल का,
1: बहुत प्यार से उनको लेके आते हैं, पूरी तैयारी करते हैं और स्वच्छता सफाई करके डेकोरेट करते हैं। बस फिर वही 7 दिन के बाद या 10 दिन के बाद या 5 दिन के बाद या 1.5 दिन के बाद अलग अलग लोग अलग अलग कैपेसिटी के अनुसार गणेश जी को अपने घर में रखते हैं और उसके बाद उनको फिर जाके उनका विसर्जन करते हैं। तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा गम जो है हमारे घर के अंदर अंदर जिस स्थान पे हम गणपति को रखते हैं, उसके बाद जब जिस दिन उनको विसर्जन के लिए ले जाते हैं, तो वो एक खालीपन जो है ना, वो कमरा खुद हमको जो है हल्का सा जो है एक हल्का सा जो खालीपन आ जाता है, और उस खालीपन को शायद पूरे साल भर में भी हमें याद ही रहता है, और इसीलिए आंखें नम हो जाती है। तो निश्चित तौर पे ये चीजों को समझने की जरूरत है।
0: जी हाँ, अगर... तो यहाँ मैं आपको एक बात और बता रही हूँ कि मैंने भी काफी समय तक ना गणेश जी को रखा है। और हम जैसे कॉलोनी में रहते थे, फिर काफी लोग भी रखते थे, और खूब अच्छे बाजे बाजे से उनको लेकर आना, बहुत सुंदर प्रतिमा लेकर आना, और जैसे आपने बताया कि बहुत सारे भोग बनाते हैं,
1: जी जी जी,
0: मतलब वातावरण बहुत अच्छा रहता है। और ये बिल्कुल ठीक है, जब वो मैं तो 10 दिन के गणेश जी रखा करते थे, और जब लेकर जाते हैं उनको विसर्जन करने के लिए, तो वाकई जो आपने बताया वो चीज बिल्कुल ठीक है, बहुत खाली पंसा होता है, आंखें भी नम हो जाती है, फिर हम इंतजार करते हैं, गणपति बप्पा मोरया अगले बरस तो जल्दी, तो इंतजार करते हैं, इतनी सारी चीजें हैं। और जब हम करते हैं अपनी जिंदगी को खुशियों से, तो भरते ही हैं। आसपास का वातावरण भी आपने देखा होगा कि कितना खुशियों से भर जाता है। साथ ही अब तो ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में जो गणपति जी के देखिए बड़ी बड़ी प्रतिमाएं रखे, सब लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं, अच्छा रहता है ये सारा मौसम।
1: सही बात है।
0: आशा करते हैं आज हमारे श्रोताओं को हमारे रेडियो मधुबन की प्रस्तुति जरूर पसंद आई होगी। आपको छोड़ जाते हैं गणेश भगवान के
1: एक बहुत ही प्यारा सा गीत, और इसी के साथ हम चाहेंगे इजाजत, फिर मिलते हैं एक नए कार्यक्रम में, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते, खमा गणिसा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति।

तो गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ समय सुबह का तब बनता है खास जब आती है उषा अर्चना के साथ। आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, खम्मा गणेशा, जय गणपति बाप्पा की। जितना बड़ा पद उतनी बड़ी नम्रता, बड़ा बनना है तो छोटा बनना सीखो। कैसे, जरा विचार करेंगे। और जी हाँ, ज्वार हमारे स्वास्थ्य के लिए कैसे फायदा करती है, कौन सी बीमारियां ठीक करती है, जरूर जानेंगे। खुशनुमा जीवन की ढेर सारी बातें भी करेंगे। तो व्यंजन भला कैसे भूल सकते हैं, नए नए व्यंजन भी जरूर बनाएंगे। भाई गणपति जी को क्या पसंद है, आप सिखाओगे, आप बताओगे या फिर मैं, अब वो आपको डिसाइड करना है, ठीक है। और आज का प्रश्न भी बहुत ही सुंदर रहेगा। तो ये सब कुछ सुनेंगे आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

गणेश चतुर्थी की पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आशियाना कार्यक्रम में फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का सुंदर सा विचार है, जितना बड़ा पद उतनी बड़ी नम्रता। बड़ा बनना है तो छोटा बनना सीखो। कैसे? तो आइए आज के विचार का विश्लेषण एक दृष्टांत के साथ करना चाहूंगी। देखिए, गणपति इतने बड़े और सवारी इतनी छोटी सी चुहिया, क्यों? देखिए, मूषक मन का प्रतीक है मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं। मन ही मूषक है, कभी इधर दौड़ता है, कभी उधर, कभी बिल में घुस जाता है। नकारात्मक सोच, बिल में घुसना मना है, नकारात्मक सोच में घुस जाता है। कभी सब कुतर देता है, रिश्ते खुशी शांति सब कुछ तहस नहस कर देता है, सब कुतर देता है। छोटा सा मन पूरी जिंदगी को कुतर देता है। गणपति मूषक पर बैठे हैं, मतलब मन का कंट्रोल करने वाले। जो मन को वश में कर ले वही विघ्न विनाशक बनता है। मूषक पर सवारी का मतलब मन तुम्हारा सेवक, तुम मन के राजा। मूषक नीचे रहता है, छुपकर अंधेरे का प्रतीक है। नीचे रहना माने अंधेरे का प्रतीक। मूषक अंधेरे में बिल में रहता है, मन भी अज्ञान के अंधेरे में रहता है। गणपति ज्ञान के प्रकाश से उस अंधेरे वाले मन पर बैठे हैं। ज्ञान से अज्ञान पर जीत। सबसे छोटी सवारी क्यों? नम्रता। बड़े बड़े देवता, शिव का बैल, विष्णु का गरुड़, दुर्गा का शेर, सब बड़ी सवारियां। गणपति ने सबसे छोटी सवारी चुनी मूषक। जितना बड़ा पद उतनी बड़ी नम्रता। बड़ा बनना है तो छोटा बनना सीखो। इसलिए कहते हैं निर्माण बनो, यही मूषक सिखाता है। मूषक हर जगह घुस सकता है, मन सूक्ष्म बुद्धि हर जगह जा सकती है। जहाँ बड़ा हाथी नहीं घुस सकता वह छोटा मूषक घुस जाता है। मतलब है विशाल बुद्धि के साथ साथ सूक्ष्म बुद्धि भी चाहिए। बड़ी बड़ी बातों के साथ साथ छोटे छोटी बातों का भी ध्यान रखे। सार में यही कहना चाहूंगी कि गणपति बुद्धिमान आत्मा। गणपति का मतलब है बुद्धिमान आत्मा और मूषक का मतलब है चंचल मन। जब बुद्धि मन पर सवार हो जाती है तब जीवन में कोई विघ्न नहीं रहता। इसलिए मंत्र है तमेव बुद्धि। पहले बुद्धि को ठीक करो, मन अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। आज से मूषक रूपी मन के मालिक बनो। इसको अपने ऊपर हावी मत होने दो, इसका मालिक बनो। इसलिए कहा जाता है जितना बड़ा पद उतनी बड़ी नम्रता। बड़ा बनना है तो छोटा बनना सीखो, गणपति जी के समान। तो ये हुआ आज का सुंदर सा विचार। और आइए फिर से सुनते हैं गीत। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

मैं हूं संजय कुमार और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुवन 107.8 FM पर। सुनते रहो और मुस्कुराते रहो।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में देंगे आपको बहुत ही सुंदर घरेलू उपाय। ज्वार कौन सी बीमारियां ठीक करती है जानेंगे। अगर लकवा है, लकवा जिसको हम पक्षाघात भी कहते हैं, जोड़ों में वायु का दर्द या संधिवात भी कहते हैं, तो उबले हुए ज्वार के दानों को पीस करके कपड़ छन करके इसका रस निकालिए। इसके बाद उसमें समान मात्रा में एरंडी का तेल मिला करके गर्म करके व्याधिग्रस्त स्थान पर लेप करिएगा। ऊपर से पुरानी रुई बांध करके सेक करिएगा। ऐसा रोग की स्थिति के अनुसार कई दिनों तक करने से राहत मिलेगी। भाई जैसी बीमारी ज़्यादा ही है लकवा, तो लंबे टाइम तक इस तरह से एक करना है, ठीक है, तो काफ़ी आपको लाभ दिखेगा। तो क्या करेंगे आप, उबले हुए ज्वार के दानों को पीस लीजिए, फिर इसका कपड़ छन करके इसका रस निकालिए, ठीक है, कपड़े में पोटली बांध के इसको दबाइए, इसका रस निकलेगा। उसके बाद उसमें जितना ये ज्वार का रस है उतना ही एरंडी का तेल मिलाइए, फिर इसको गर्म करिए, फिर व्याधिग्रस्त स्थान पर इसका लेप करिएगा रुई के द्वारा, ठीक है, रुई के द्वारा सेक भी कर सकते हैं, पुरानी रुई बांध करके सेक करिए, ऊपर डायरेक्ट ना करेंगे तो ऐसे करिएगा। फिर ऐसे रोग की स्थिति जैसा रोग उस अनुसार आपको उपचार करना है, थोड़ा लंबे समय तक करना है क्योंकि पक्षाघात ज़्यादा है, तो लंबे समय तक करना है, इसके राहत आपको ज़रूर दिखाई देगी। देखिए दवा और दुआ दोनों ही करना है, घरेलू नुस्खे ऐसे नहीं कि भाई उषा दीदी ने बता दिया बस अब हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ नुस्खे ही आजमाना है, नहीं, जैसी बीमारी वैसा काम करिए, दवा और दुआ दोनों ही करिए, ठीक है, डॉक्टर के अनुसार भी चलिए और इस तरह सेक भी करिएगा। दंत रोग है तो ज्वार के दानों की राख बना करके मंजन करिएगा, इससे दांतों का हिलना, उनमें दर्द होना बंद हो जाता है और मसूड़ों की सूजन भी समाप्त हो जाएगी। ज्वार के दानों की राख बनाइएगा, इससे मंजन करिएगा, इससे दांतों का हिलना, उनमें दर्द होना, ये सब बंद हो जाएगा और मसूड़ों की सूजन ठीक हो जाएगी। और बढ़ेंगे इसी कड़ी में, बहुत ही सुंदर आपको उपाय बता रही हूँ। पेट में जलन है तो ज्वार को भूनिएगा, फिर बताशों के साथ खाइएगा, इससे पेट की जलन, अधिक प्यास लगना, ये सब बंद हो जाएगा। पेट की जलन है तो ज्वार को भूनिए और इस भुनी हुई ज्वार को बताशों के साथ खाइएगा, ठीक है, इससे पेट की जलन और ज़्यादा प्यास लगना बंद हो जाएगा। आधा शीशी है, मस्तिष्क के जिस आधे भाग में दर्द हो उसी ओर के नासा ग्रंथ में ज्वार के पौधे के हरे पत्तों के रस में थोड़ा सा सरसों का तेल मिला करके टपकाइएगा, ठीक है, तो इससे आधा सीसी दर्द ठीक हो जाएगा। खुजली चल रही है तो ज्वार के हरे पत्तों को पीसकर उसमें बकरी की मेंगनी की अध जली राख और एरंडी का तेल समान मात्रा में मिलाइएगा और खुजली वाले स्थान पर लगाइएगा, खुजली समाप्त हो जाएगी। बहुत खुजली चल रही है, क्या करें क्या नहीं, बेचैन हो रहे हैं, तो ज्वार के हरे पत्तों को पीसिएगा, फिर उसमें बकरी की मेंगनी की अध जली राख और एरंडी का तेल समान मात्रा में मिलाकर के लगाइएगा, इससे खुजली समाप्त हो जाएगी। और लास्ट उपाय भी बहुत सुंदर है, कैंसर, भगंदर, अगर यह है तो ज्वार के ताज़ा हरे कच्चे भुट्टे का दूधिया रस लगाइएगा और उसकी बत्ती बना करके घावों में भर दीजिएगा, उससे उक्त भयंकर महाव्याधियों से भी छुटकारा पाया जा सकता है। कैंसर और भगंदर जैसे जबरदस्त बीमारी है तो ज्वार के ताज़ा हरे कच्चे भुट्टे का दूधिया रस लगाइएगा तथा उसकी बत्ती बनाकर घावों में भर दीजिएगा, इससे ये भयंकर महाव्याधियों से छुटकारा मिल सकता है। तो ये सारे उपाय बहुत ही सुंदर है और हमारे श्रोता बंधु जुड़ना चाहते हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो
1: हेलो,
0: हाँ जी नमस्ते, बुरा राम जी, राम राम।
1: रोज आज कितना दिन से आज मुलाकात हो रही है
0: जी, आप शनिवार को जुड़े ही नहीं।
1: खैर गिरने वाल को तो मैं नहीं था घर पे,
0: जी
1: मैं बोला मगर आज तो उषा बहन जी को मेरा राम राम करके सुबह सुबह में बोला आज तो बात कर रहे हैं। मैं बोला आप लगाया फोन, अभी लगाया मैं आपको लगाया फोन
0: जी,
1: बाकी सब मधुबन भाइयों को सबको मेरा राम राम।
0: और
1: इस तरह उषा बहन जी मेरी भी जवाब बताओ ना, मेरे को ये सांस की दम की बीमारी है।
0: अच्छा दम्मे की बीमारी है, तो कल बता देते हैं आपको भी उपाय, ठीक है
1: कल बताएंगे ना।
0: हाँ जी कल कल दम्मा पर ही दे देंगे, ठीक है सांस की तकलीफ है दम्मा दम चलता है तो कल बता देंगे।
1: हाँ तो क्या कि मैं अभी थोड़ा सीढ़ियां भी चढ़ता हूँ ना, तो भी बोले तो मेरे को चढ़ने की हिम्मत नहीं होती, ऐसे दम हो के रहता।
0: जी जी जी आप ने डॉक्टर को बताया?
1: नहीं डॉक्टर को तो बताया, वो दम तो ऐसा तो दवा चालू है इसका जो इसमें भी आयुर्वेदिक की भी दवाई दी है मेरे को।
0: अच्छा
1: लेकिन कोई इतना कोई फर्क नहीं पड़ता है, आयुर्वेदिक की दवाई दी है, वो मद के साथ में खाना ना ये ने सब है, वो करता हूँ
0: जी,
1: कुछ
0: जी।
1: तो मेरे को नहीं मालूम पड़ता कि फर्क है।
0: अच्छा ठीक है
1: तो
0: वो कहते हैं कि घरेलू नुस्खे थोड़ा सपोर्ट करता है, सपोर्ट के लिए है, बाकी एक बार डॉक्टर को भी दिखाना जरूरी है, तो हम कल आपको सुनाएंगे, ठीक है?
1: ओके ओके।
0: अच्छा और आज के प्रश्न का जवाब देंगे
1: क्या? क्या मेरे को तो अभी फोन लगाया।
0: हाँ प्रश्न भी अभी शुरुआत कर रहे हैं, प्रश्न भी गणपति जी का वाहन मूषक है, आपको क्या लगता है इतने बड़े देवता का वाहन छोटा सा मूषक रखने के पीछे क्या संदेश छुपा हुआ है?
1: अच्छा अच्छा तो मैं सोच के फोन करता हूँ आपको।
0: ठीक है चलिए बहुत बहुत आभार आपका जी। तो आइए यहाँ पर एक ब्रेक लेकर के पुनः लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: बड़े कानों से सुनना सीखे, मन में रखे विचार, छोटी आंखों से लक्ष्य देके हो जीवन में उजियार। बड़ा मस्तक दे बड़ी सोच, सूंड दे विवेक महान, गणपति जी के हर अंग में छिपा है जीवन का ज्ञान। गणपति जी के हर अंग में छिपा है जीवन का ज्ञान। पुनः आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हरतालिका तीज भी है, तो हरतालिका तीज की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे श्रोता बंधु जुड़ चुके हैं, नमस्कार।
1: नमस्कार दीदी, विक्रम कुशवाहा, इंदौर मध्य प्रदेश।
0: हाँ जी विक्रम भाई, कैसे हो आप?
1: सब बढ़िया है दीदी, आनंद मंगल में है, अभी खेत में है, दवाई छीट रहे हैं।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए
1: आपका कार्यक्रम भी सुन रहे हैं।
0: जी जी जी, उधर का मौसम कैसा है, बारिश वारिश तो नहीं है?
1: बारिश दीदी अभी परसों के रोज आई थी, बारिश अच्छी आई।
0: जी
1: परसों के रोज पूरी रात बारिश आई थी, और अभी भी बादल छाए हुए हैं।
0: जी
1: बारिश हो सकती
0: है। जी जी, इधर तो हो रही है बूंदाबांदी।
1: अच्छा
0: है जी।
1: हाँ अभी धूप भी बहुत गिरी थी अभी अगले हफ्ते।
0: जी जी जी।

0: जी
1: हाँ,
0: बिल्कुल
1: अभी मौसम थोड़ा गड़बड़ है।
0: जी,
1: आज
0: तो
1: गणेश चतुर्थी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं दी।
0: जी आपको भी। और आज के प्रश्न का जवाब देंगे।
1: हाँ, गणेश जी बड़े हैं पर उसकी सवारी इतनी छोटी है, उसका रहस्य क्या है इसका
0: जी, उसका क्या
1: बताना है।
0: संदेश? हाँ, क्या संदेश देता है? वैसे विचार सुना होगा तो विचार में जवाब था।
1: हाँ, तो इसकी सवारी तो छोटी ही दीदी, चूहा है। तो
0: जी
1: जैसे पीटी होती है छोटी सी, बाकी हाथी के कान में चले जाती है तो बड़े से बड़ा हाथी को भी ढेर कर देती है दीदी। तो इसी प्रकार उसकी विशेषताओं का वर्णन किया गया है।
0: जी अच्छा, तो आज विषय भी यही है कि
1: हाँ
0: देखिए, गणपति जी के हर अंग हमें कोई ना कोई शिक्षा देते हैं। जैसे बड़ा
1: हाँ
0: मस्तक है, तो
1: हाँ
0: बड़ा मस्तक का मतलब ये बड़ी सोच और विशाल दृष्टि रखना।
1: हाँ
0: क्या कहेंगे आप?
1: कोई भी समस्या, विघ्न बिना, कोई भी समस्या है, बड़ी से बड़ी समस्या है, तो हमको मतलब घबराना नहीं चाहिए, उस समस्या को डट कर सामना करना चाहिए। और गणेश जी तो बुद्धिमान है, उन्होंने उनकी माता पिता की परिकर्मा करके पूरी, और लोग मतलब देवताओं ने पूरी पृथ्वी की परिकर्मा करी, उन्होंने बुद्धि से 1 सेकंड में उनकी माता पिता की परिकर्मा करी। बुद्धिमान भी कहलाते हैं।
0: जी, वो तो उनके सामने शर्त रखी कि भाई बड़ा कौन है, ऐसी किवन दीती
1: हाँ
0: है। तो कार्तिकेय और गणपति जी के बीच स्पर्धा रखी कि चलो आपको तभी हम घोषित करेंगे जब आप पूरे पूरा विश्व भ्रमण करके आएंगे, और जो पहले आएंगे वो
1: हाँ
0: बड़े। तब कार्तिकेय तो निकल पड़े, लेकिन गणपति जी ने तो अपने माता पिता की परिक्रमा की कि हमारा पूरा विश्व हमारा माता पिता है। जी
1: इसके वो बुद्धि, विघ्न विनाशक बुद्धि के भी विशेषता, बुद्धि भी उनकी बहुत चलती थी।
0: जी मतलब बड़ी सोच, ये हमें यही
1: हाँ,
0: संदेश देती है कि हमें भी बड़ी
1: बड़ी
0: सोच
1: सोच
0: रखनी,
1: जैसे,
0: छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना है, नहीं तो परिवार में टिक नहीं
1: हाँ
0: पाएंगे। भाई जब तक हम बातों को छोड़ेंगे नहीं, परिवार चलेगा
1: हाँ
0: नहीं, है ना?
1: हाँ
0: तो ये भी हमें जीवन में
1: पहाड़
0: यही
1: जैसी
0: संदेश देता है।
1: समस्या भी राई जैसी दिखाई देना चाहिए।
0: जी परिस्थितियां,
1: समस्या तो आती ही रहती है दीदी, समस्या है तो कम नहीं होगी पर बढ़ती रहती है, पर अपने को गणेश जैसे विशाल बुद्धि बनकर उन
0: जी
1: समस्याओं को विनाश करना है।
0: जी जी जी बिल्कुल। तो
1: ठीक है दीदी, ओम
0: हाँ
1: शांति।
0: जी, ओम शांति विक्रम भाई, बहुत बहुत आभार आपका। तो ये थे विक्रम जी कुशवाहा इंदौर से, और अब आप भी जुड़ सकते हैं और अपनी बात को रख सकते हैं। बस आज का विषय यही है कि देखिए, गणपति जी के हर एक अंग में आध्यात्मिक रहस्य छुपा हुआ है, हर एक अंग हमें संदेश देता है। क्या संदेश देता है? बड़ा मस्तक हो गया देखिए, बड़े कान। आप जुड़िए गावे से, आप भी स्पष्ट कर सकते हैं। और आज का प्रश्न भी बहुत ही सुंदर है, जिसको मैं फिर से दोहरा रही हूँ। गणपति जी का वाहन मूषक है, आपको क्या लगता है इतने बड़े देवता का वाहन छोटा सा मूषक रखने के पीछे क्या संदेश छिपा हुआ है? शॉर्ट में आपको जवाब देना है, ठीक है? तो जवाब देने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के है 94-1415-1415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं। आज के विषय में आप अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, और ये जो प्रश्न पूछा है उसका भी आप जवाब दे सकते हैं। तो हमारे श्रोता बंधु जुड़ना चाहते हैं। हेलो,
1: हाँ दीदी नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति। सुरेश भाई बोलता हूँ जटाना से, कैसे हो
0: हाँ
1: दीदी?
0: जी, नमस्ते नमस्ते सुरेश भाई, हम अच्छे हैं, आप सुनाइए।
1: बस हम भी अच्छे हैं। आज देखो चार जगह पर आज गणपति की धुन हो रही है और
0: जी
1: गणपति का आह्वान हो रहा है सभी घरों में। आज पहले तो खाली मोहल्ले में थे, गांव में थे, लेकिन आज हर घर में गणपति जी का
0: जी जी
1: जो
0: जी जी
1: लाते हैं
0: जी
1: और इसकी पूजा करते हैं। कोई 3 दिन रखते हैं, कोई 5 दिन रखते हैं, कोई 7 दिन रखते हैं, कोई 10 दिन रखते हैं।
0: जी जी जी जी
1: तो
0: बिल्कुल
1: ऐसे करके गणपति जी को सब याद करते हैं और पूजा करते हैं। अच्छा पूरे साल का जो तो कहते हैं पुण्य ले लेते हैं और पुण्य करते हैं दीदी
0: जी।
1: तो बस हम तो ऐसा कहेंगे दीदी कि गणपति जी का सभी जो अंग हैं ये हमको कुछ न कुछ तो दर्शाता है, जैसे सूंड है, चाहे कान है, मुंह है
0: जी,
1: पेट है। देखो पेट की बात करो दीदी, को पेट में दीदी गणपति जी के जितने जितना बड़ा पेट है कि जीव आते हैं वो समा जाते हैं
0: जी।
1: तो ऐसा हमको बनना है कि हमारे भी जो कोई बात होती है तो दीदी उसको पेट में समाना है। कभी कभी क्या होता है कि हम कोई चीज छोटी छोटी बात दूसरे को बता देते हैं और दूसरों को बोल देते हैं, इसमें कड़ी बड़ी समस्या होती है। लेकिन इसको समाना है, पेट में समा देना, कोई ऐसी बात है तो किसी को ऐसे सामने नहीं बोल देना चाहिए। जैसे जीवन में कई सारी ऐसी बातें हैं, कई ऐसी समस्याएं हैं कि हम नहीं समझते हैं और दूसरे को ठाल देते हैं और दूसरे को एक अच्छा बोलने का मौका दे देते हैं
0: जी।
1: तो बस मैं पेट के बारे में बताया कि हम गणपति जी का पेट, जैसे बड़ा पेट है ऐसे हम बड़ा रखेंगे तो हम जीवन में कोई ऐसा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा
0: जी। जी जी जी, जो भी हम किसी से सुनते हैं समाने की ताकत रखिए। अगर किसी ने कुछ कह भी दिया तो कहा होगा वो समा लेना है,
1: बस समा देना है
0: जी।
1: जी नमस्ते
0: जी, बहुत बहुत आभार। तो ये थे सुरेश भाई जोटाना से, और आप भी जुड़ सकते हैं और अपनी बात को रख सकते हैं। नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल कर सकते हैं और आज के प्रश्न का जवाब भी दे सकते हैं। तो आज के विषय में आप अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। बड़ा मस्तक के बारे में बात हो गई है, बड़ा पेट के बारे में बताया है सुरेश भाई ने, और भी बहुत सारे अंग हैं जैसे कान है, आंखें है, सूंड है, दांत है, मूषक है। मूषक पर तो प्रश्न ही पूछा है आप सभी को, तो आप जुड़ सकते हैं और अपनी बात को रख सकते हैं। बड़ा मस्तक का मतलब यही है मेरे प्यारे श्रोता बंधु की सोच और विशाल दृष्टि रखने का संदेश देता है बड़ा मस्तक। इसलिए सोच बड़ी रखे, विशाल बुद्धि रखे, छोटी छोटी बातों को इग्नोर करते हुए अपने परिवार को साथ में लेके चले फिर तो ठीक है भाई, ज़्यादा हो जाता है तो पानी सर से ऊपर चला जाता है वो बात अलग है। बाकी जो छोटी छोटी बातें उसको दिल में लगा लेते हैं फिर हम रिश्ता तोड़ देते हैं वो भी अच्छी बात नहीं है। हेलो
2: हेलो,
0: हाँ जी नमस्कार सुभाष भाई। हाँ जी,
2: तो सुविचार भी अच्छा है, विषय भी अच्छा है। हमारे दोस्तों ने सुरेश भाई जी और दूसरे जो भाई जी थे उन्होंने बहुत ही अच्छी जानकारी दी, आप भी दे रहे। तो सभी को फिर से गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। और दीदी थोड़े में बोलता हूँ, मुंह छोटा यानी कम बोलना और कान बड़े यानी ज्यादा सुनना, व्यर्थ नहीं सुनना है, अच्छा और कम मीठा बोलना है, आँख छोटी यानी दूर दृष्टि रखना है, पेट बड़ा यानी सब कुछ समा लेना है, सोन बड़ी है यानी सर्वशक्तिवान, कुछ भी हो उसको हम सर्वशक्तिवान का साथ देकर हम कोई भी कार्य हो सफल होना है। बहुत सारी बातें और मन जो है चूहे जैसा, वो चूहा जो सवारी है छोटी है लेकिन मन रूपी जो सूक्ष्म मन रहता है उसका मालिक बनना है, उसके ऊपर काबू रखना है। तो बहुत बात है तो सब अभी भाई लोग सुनाएंगे, तो सभी को नमस्कार और ओम शांति भाई
0: जी। बहुत बहुत आभार आपका। तो ये थे सुभाष भाई महाराष्ट्र से और आपने भी विषय को स्पष्ट किया है। तो बड़ा पेट सुरेश भाई ने बताया था कि जीवन के अच्छी बुरी परिस्थितियों को धैर्य पूर्वक संभाल लेने का संदेश देता है बड़ा पेट। इसलिए नहीं कहते कि अरे भाई उसका तो बहुत बड़ा पेट है, हर बात को संभाल लेता है, चाहे कोई भी झा करके कुछ भी कहे, लोग इधर उधर चुगली नहीं करते हैं, इसको कहा जाता है बड़ा पेट, बातों को समा लेना। हेलो,
3: हाँ जी दीदी, ओम शांति।
0: हाँ जी ओम शांति, नमस्ते सगुना बहन।
3: हाँ, अभी आपने वो दवाई बताई ना।
0: हाँ जी, तो
3: वाह बोलते ना जिसको।
0: हाँ
3: हाँ, मेरे को भी ये सब बोला है, जैसे आप कहती नशे की चढ़ जाती है सब, है ना। तो डॉक्टर ने मुझे भी बोला है कि ये तकलीफ है आपको
0: जी।
3: दवाई तो चालू है मेरी, लेकिन आपने जो बताई उबलते हुए जवार के दानों में
0: एरंडी का तेल,
3: एरंडी का तेल, हाँ
0: हाँ जी,
3: और कच्चा ज्वार की वो दुकान में जो मिलता है।
0: हाँ हाँ हाँ, वही ज्वार,
3: वही।
0: हाँ जी,
3: हाँ
0: अच्छा। और आज के प्रश्न का जवाब देंगे आप?
3: नहीं, जवाब तो अभी देखो, मेरे घर पे सब आ रहे हैं, दादा वो गणपति दादा को हमारे घर पे रखे हुए हैं।
0: अच्छा अच्छा,
3: तो
0: अच्छा,
3: हमारे घर पे सब आएंगे तो अभी थोड़ी देर के बाद मैं फोन करके बता।
0: कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप गणपति जी का स्वागत करिए। चलिए, थैंक यू। हाँ जी, तो ये थे सगुना बेन जोटाना से, और आइए यहाँ पर एक ब्रेक लेकर के पुनः लौटेंगे, इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: ओए रुको, ओए रुको, ओए त्रिदेव, त्रिमूर्ति, ओए एक बाइक पे तीन हैं, ओए तुम लोगों को शर्म नहीं आती, ओए बाइक एक और एक साथ तीन चढ़े जा रहे हो, ओए तीन लोगों का जाना अलाउड नहीं है बाइक पे, मालूम नहीं तुमको, ओए अपनी नहीं तो इस बाइक की सोचो बेचारी तीन के बोझ की मारी।
1: सर बहुत जरूरी मैच है सर आज।
0: ओए तुम्हारे मैच की तो, ओए एक बाइक पे तीन जा रहे हो और कुछ हो गया तो सीधे हमेशा के लिए क्लीन बोल्ड हो जाओगे, ओए जिंदगी के स्टंप उखड़ जाएंगे। ओए ये ट्रैफिक है भाई, यहाँ तो कोई फ्री हिट भी नहीं मिलती, ठोको ताली। ओए मुझसे कोई नहीं बच सकता क्योंकि ये है मेरी सड़क और मुझे कहते हैं हवलदार सड़क।
2: याद रखें, एक बाइक पर कभी दो से ज्यादा लोग एक साथ न जाएं, यह एक दंडनीय अपराध है। सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
3: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में कंचन भाई मंडाली से जुड़ चुके हैं। नमस्ते कंचन भाई।
4: नमस्कार मैम जी, सुप्रभात।
3: हाँ जी सुप्रभात, कैसे हो आप?
4: आज गणेश चतुर्थी है और केवड़ा तीज भी साथ साथ में।
3: जी जी जी, केवड़ा तो तीज भी कहते हैं, हरतालिका तीज भी कहते हैं।
4: अभी मेरी दुकान के सामने गणेश जी की मूर्ति लाए है, स्थापन किया है।

0: है अभी आरती वगैरह आपको सुनाई देता होगा शायद, जो भजन रखा है गणपति जी का।
1: नहीं नहीं सुनाई तो नहीं दे रहा है।
0: वो ये सब चल रहा है प्रोग्राम है यहाँ, अभी आरती होगी, स्थापन कर लिया है गणपति जी का, स्थापन हो रहा है
1: जी।
0: तो ये सब हमारे गांव में चल रहा है, सभी युवा वर्ग है सभी उत्साही है, सभी को हम सपोर्ट देते हैं कि भाई ऐसा करो ऐसा करो। अभी आए दुकान पे, मेरे सामने ही है दुकान के सामने
1: जी। चलिए
0: और
1: बहुत अच्छी बात
0: क्या है,
1: है
0: आज का विषय और प्रश्न, ये सब मैंने नहीं सुना, अभी आया गणपति जी के जो मूर्ति के पास था
1: जी। जी तो विषय सुना देते, गणपति का हर अंग हमें कोई संदेश सुनाता है, मन के अंधियारे को मिटाकर ज्ञान की ज्योत जलाता है, विघ्न हटे बुद्धि बढ़े, हर मन हो खुशहाल, गणपति बापा की कृपा से सुंदर हो जीवन का हर हाल। तो आप सभी को और आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं गणपति जी की। देखिए गणपति जी का हर एक अंग हमें कोई ना कोई संदेश जरूर देते हैं। तो ये आज का विषय है और आज का प्रश्न है, गणपति जी का वाहन मूषक है, आपको क्या लगता है इतने बड़े देवता का वाहन छोटा सा मूषक रखने के पीछे क्या संदेश है?
0: एक प्रश्न है।
1: हाँ जी, गणपति जी का इतना बड़ा शरीर बताते, इतना बड़ा रूप बताते हैं और उनके वाहन छोटा सा चूहा, तो क्या संदेश छुपा है इसमें, आध्यात्मिक रहस्य बताइएगा।
0: जी हाँ जी, वो तो मैं थोड़ा करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, ठीक है। मुझे पता तो था
1: जी,
0: लेकिन थोड़ा दिमाग से निकल चुका है, प्रश्न का जवाब तो मैं दूंगा
1: जी। और आज के विषय यही है, गणपति जी का हर एक अंग कोई ना कोई संदेश देता है, जैसे बड़े कान का मतलब है ज्यादा सुनना और कम बोलना, अच्छी बातों को ग्रहण करना, ज्यादा सुनना अच्छी बातों को ग्रहण करना लेकिन बोलना कम जी।
0: हाँ तो सही बात है बहन जी, गणपति जी का जो अंग है सभी, इसके कुछ इसमें से कुछ ना कुछ हमें लेना है, ठीक है
1: जी।
0: ये है पेट है गणपति जी का बड़ा
1: जी।
0: तो इसमें सभी बातें रखनी है, पेट नहीं बोलते कि भाई पेट में रखो, थोड़ा बाहर मत निकालो
1: जी।
0: तो ये ऐसे ऐसे सभी अंगों का हमें ग्रहण करना है, थोड़ा थोड़ा हमें ये करना है बहन जी। ये क्यों है आज सुबह मैं मंदिर गया था
1: जी।
0: तो सुबह में बहने जो केवड़ात्री थी तो महादेव के दर्शन करने के लिए आई थी, बरोबर। तो
1: हाँ,
0: एक बहन पुजारी थे, पूजा करा रहे थे, तो एक बहन आए और हाथ भी नहीं जोड़े और यू रख के नीचे हाथ रख के महाराज को ये सब पूजा का सामान ये करते थे। तो महाराज ने बोला कि ये पहले गणपति जी को यहाँ हाथ जोड़ के प्रणाम करो, ये हनुमान जी की मूर्ति है, ये पोटिया है। मैंने भी ये बात की कि भाई ये है न सब परिवार है महादेव जी का, सब परिवार है कुल मिला के, तो पहले ये सबको प्रणाम करना चाहिए गणपति जी को। ये सब पोटिया क्यों है, यहाँ कासबा क्यों है, क्यों कभी प्रश्न किया है महाराज को, प्रश्न करो तो ये बताएंगे तो ये जानना जरूरी है बहन जी, सभी बात
1: जी जी जी जी।
0: हाँ तो दूसरे दोस्तों को भी जुड़ना है, मैं सवाल का जवाब तो पा सभी
1: अच्छा।
0: दोस्तों को आपको शिवरात्रि जो है गणपति जी का जो उत्सव है जो
1: जी जी, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। तो ये थे कंचन भाई मंडाली से, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में आज का विषय बहुत ही सुंदर है, गणपति जी के हरेक अंग कोई ना कोई संदेश जरूर देते हैं। तो देखिए जैसे बड़े कान का बताया आपको कि ज्यादा सुनना है बोलना कम है, सुनना है तो अच्छी बातों को लेना है, ऐसे नहीं निंदा कुर्चली कोई कर रहे वो भी आप सुन रहे हो, नहीं वो नहीं, पॉजिटिव जो हमारे जीवन का उत्थान करे ऐसी बातें सुनना, ठीक है। और बोलना कम, कौन क्या करे उसको समझने की कोशिश करना, सुनने की क्षमता रखना। फिर देखिए छोटी आंखें, छोटी आंखें का मतलब है एकाग्रता और सूक्ष्म दृष्टि का प्रतीक, जो भी हम करने जा रहे हैं, ठीक है, तो एकाग्रता से करें। एकाग्रता तभी आएगी जब हम अपनी आंखों की चंचलता को समाप्त करेंगे, आंखों को स्थिर रखेंगे, तभी एकाग्रता आएगी। नहीं तो आंखें तो उधर भी देख रही, इधर भी देख रही, उधर भी देख रही है, तो हम अपने कार्य में फोकस नहीं डाल पाएंगे, ठीक है। तो छोटी आंखें, बाकी तो गणपति जी का इतने बड़े रूप में छोटी आंखें, छोटा मूषक, ऐसा थोड़ा होता है। तो ये आध्यात्मिक संदेश देता है हमें कि कैसे एकाग्रता बनाए रखनी है, सूक्ष्म दृष्टि हमारी हो, कि सूक्ष्म दृष्टि से हम समझ सके, महसूस कर सके। फिर लंबी सूंड, लंबी सूंड का आध्यात्मिक रहस्य है परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालना और विवेक से कार्य करने का सीख देती है लंबी सूंड। बाकी किसी के इतनी लंबी सूंड होती है क्या? नहीं होती ना। तो इसका आध्यात्मिक रहस्य यही है कि परिस्थितियाँ कितनी भी बड़ी हो, लेकिन विवेक से अगर हम चलते हैं तो वो परिस्थितियाँ भी छोटी महसूस होती है, और परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को हम ढालने की क्षमता भी रख सकते हैं। फिर एक दांत, एक दांत, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी हम बोलते हैं ना, तो एक दंत है अच्छाइयों को ग्रहण करे और बुराई को छोड़ दे, तो यह भी एकाग्रता का प्रतीक है। तो जीवन में अच्छाइयों को धारण करना है, बुराइयों को नहीं। बुराई देखिए, हर एक के जीवन में अच्छाई भी होती है तो बुराई भी होती है, तो अच्छाई को महसूस करना है, अच्छाई को बाहर लाना है, बुराई को पहचानना है कि ये बुराई है तो उसको ख़त्म कर देना है, कि नहीं जो मुझे पसंद नहीं तो औरों को कैसे पसंद हो सकती है। हेलो
0: हेलो, नमस्ते दीदी, मैं सुरेश भाई, आपको और सभी दोस्तों को नमस्ते।
1: हाँ जी नमस्ते सुरेश भाई, कैसे हो?
0: हाँ बस दीदी अच्छे हैं, और बहुत अच्छे प्रोग्राम चल रहे हैं, और सबसे पहले तो मैं सभी को शुभकामना देता हूँ गणेश चतुर्थी की। और दीदी विषय भी जो आपने रखा है बिल्कुल अच्छी अच्छी बातें हो रही है। दीदी जो मूषक के बारे में जो आपने प्रश्न पूछा है, तो मेरा मानना ये है कि दीदी गणेश भगवान को ऐसा कोई नहीं है कि छोटा हो तो भी और बड़ा हो तो भी, सब एक समान है। वो एक तो संदेश देते हैं कि किसी को ना छोटा समझो ना किसी को बड़ा समझो, और हर अपनी जगह पर जो आध्यात्मिक है तो अच्छी स्थिति में रहकर भी भगवान को भी काम आ सकते हैं, चाहे छोटे मूषक की तरह ही क्यों ना हो। तो एक तो ये संदेश देता है
1: जी।
0: और रही बात जो सभी अंगों के बारे में दोस्तों ने बहुत अच्छी तरह से बताया है, आपने भी बहुत अच्छी तरह से बताया है कि जीवन ऐसा जियो कि हमारे जो शरीर में जो भी अंग है सही उपयोग में काम करे और बिल्कुल आध्यात्मिक के साथ रहे।
1: जी
0: हाँ जी दीदी नमस्ते।
1: हाँ जी, आ गए आप बॉम्बे से? आ गए, चलिए रख दिया आपने, कोई बात नहीं, बहुत सुंदर। तो देखिए बड़े कान हो गए, लंबी सूंड हो गई, एक दंत हो गया, फिर देखिए मूषक का तो आपको ही जवाब देना है क्योंकि प्रश्न पूछा है ना, तो आपको ही जवाब देना है। फिर एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, अब चार हाथ का मतलब है किसी के चार हाथ होते नहीं है, इसका आध्यात्मिक रहस्य समझिए मेरे प्यारे श्रोता बंधु, इसका आध्यात्मिक रहस्य है ज्ञान, शक्ति, विवेक और शुभ कर्मों की ओर बढ़ना। तो ज्ञान, शक्ति, विवेक और शुभ कर्म, अच्छे कर्म, श्रेष्ठ कर्म हम करेंगे तो उसको ही चार भुजाधारी कहा जाता है। तो ये इसका आध्यात्मिक रहस्य है, ज्ञान मन समझ, शक्ति जो ईश्वर हमें देता है, विवेक और शुभ कर्म। तो इसको चार भुजाधारी के रूप में बताया है, तो इसका आध्यात्मिक रहस्य यही है। तो कहने का भाव यही है कि जब हमें भी क्या करना है, इन सभी के गुणों को जो एक एक अंग जो संदेश देता है गणपति जी का, वो एक एक गुणों को अपने जीवन में धारण करना है और बुराइयों का नाश करना है। तो आइए आज के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का प्रश्न है, गणपति जी का वाहन मूषक है, आपको क्या लगता है इतने छोटे देवता का वाहन, छोटा सा मूषक, इसको रखने के पीछे क्या संदेश छुपा है? तो आपको ये संदेश सुनाना है सिर्फ एक लाइन में, मतलब एक दो लाइन में, संक्षिप्त में, ठीक है? जवाब देने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के है 94-14-15-14-15। और देखिए, विषय तो वैसे समाप्त हो गया है, और कहने इसको जितना बढ़ाओ उतना ही कम है, ठीक है? बस हम तो यही कहना चाहेंगे कि देखिए, गणपति जी को तो लोग घर ले आए होंगे, ठीक है? तो आप कोशिश करिएगा कि मिट्टी की प्रतिमाएं लेकर के आए, प्लास्टर और पेरिस की चीज़ें नहीं लाए, नहीं तो पानी में भी पोल्यूशन फैलाता है और उसके जो कलर वगैरह ये सब केमिकल वाले होते हैं, तो न वो पानी काम आता है और वो पानी जहाँ डालोगे पेड़ पौधों में भी वो पानी काम नहीं आता है। इसलिए आप मिट्टी की प्रतिमा ला करके घर पर बिठाए, ताकि वो जब पानी में भी आप उसको अर्पित करो तो पानी भी आप पेड़ पौधों में डाल सको, पानी काम आ जाता है। अभी पानी की बहुत मारामारी चल रही है, इसलिए ध्यान रखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस की भले दिखने में बड़ी सुंदर होती है, लेकिन हमारे तो मन के भाव को अच्छा रखना है ना, इसलिए इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हेलो
0: हेलो, नमस्कार, ओम शांति, हमारी प्यारी बहन उषा जी।
1: हाँ जी, नमस्कार दयाराम जी, कैसे हो आप?
0: मैं बहुत ही अच्छा हूँ, बाबा की कृपा है, और सभी मित्रों की, भाइयों की, बहनों की, और अच्छा हूँ। और आज रेडियो मधुबन सुन रहा था, बहुत अच्छा लगा, और विषय भी बहुत सुंदर था, और सवाल भी बहुत अच्छा लेके आए हो,
1: थैंक यू।
0: और आज गणपति की, गणपति चतुर्थी की, और जो 14 सितंबर हिंदी दिवस की, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई शुभकामनाएं।
1: जी, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं गणेश
0: चतुर्थी। सभी मेरे मित्र, जो सभी मेरे मित्र प्यारे सुन रहे हैं, उन सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं इस वक्त थोड़ा बिजी था, तो रेडियो मधुबन पर काफी दिनों से नहीं आया हूँ।
1: जी जी, बहुत समय के बाद जुड़े आप। जी,
0: आपको दीदी प्रणाम है, और सभी मेरे प्यारे मित्र भाई बहनों को मेरा नमस्कार है।
1: जी, सब है तो अच्छे है ना परिवार में?
0: बिल्कुल अच्छे है, बढ़िया है, बाबा की दुआएं है, अच्छे हम। और कहीं धार्मिक जो महीना चल रहा है, कहीं इधर उधर जा रही है कोई फेस्टिवल में
1: जी।
0: और अभी जो किसान है, तो कृषि का कार्य भी संभालता हूँ, तो वो भी पानी लगवाना पड़ता है फसल को।
1: जी जी, वो तो जरूरी है।
0: और इस साल तो बारिश भी कम हुई है, बिल्कुल मेरे यहाँ तो बारिश हुए ने 1.5 महीना हो गया है, अभी तक बारिश नहीं हुई। कल रात में थोड़ी बूंदा बूंदी हुई थी, लेकिन वो कम थी, 2 इंच से कम है
1: जी।
0: तो अभी इंद्र राजा आए हैं, तो जरूर हमें उम्मीद है कि जरूर बर्फ के जाएंगे।
1: जी जी, बिल्कुल
0: होने वाली है
1: जी। बिल्कुल बिल्कुल,
0: ट्यूबवेल का पानी तो हम लगवा रहे है, बाजरे को और एरिंडी को।
1: अच्छा,
0: लेकिन बरसात के बगैर तो फसल अच्छी नहीं होती है।
1: जी जी, फर्क पड़ जाता है,
0: फर्क पड़ता है बिल्कुल। और सभी सुनने वाले मित्रों को, आपको सभी को प्रणाम है, ओम शांति, नमस्कार।
1: जी, बहुत बहुत आभार, प्रश्न का जवाब आप दे सकते हैं। चलिए, ये थे दयाराम जी रामपुरा से, और बस विषय को यही समाप्त करेंगे। कहने का मतलब यही है, मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, गणपति जी को लाइए, लेकिन मिट्टी वाली प्रतिमा लाइए। और अगर नदी तालाब, अभी तो देखो पानी भी नहीं बरसा इस साल, तो न नदी भरे, न नहर भरी, न ही तालाब भरे, तो अब गणपति विसर्जन कहाँ करेंगे? इसलिए आप छोटी प्रतिमा लाइए, मिट्टी के लाइए, और घर पर ही पानी का बड़ा सा टब भर के उसी में आप विसर्जन करिए, और फिर उस पानी को आप पौधों में डाल दीजिए। बोलो, पॉजिटिव रूप से जो पूजा हुई है, तो आपके पौधे भी कितने पनपेंगे, ये आप सोचिए कि जहाँ पर भी, जिन पौधों में भी डालोगे, वो पौधे भी लहलहाएंगे, क्योंकि पॉजिटिविटी का असर ज़रूर पड़ता है। हम 5 दिन 7 दिन जो भी पूजा करते हैं, तो उसका पॉजिटिव प्रभाव तो पड़ता ही है। इसलिए इन बातों का भी ध्यान रखिएगा, और आइए एक ब्रेक लेकर के पुनः लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: चलो चलो वो आ गए हैं,
1: हमारे घर में उन्नति लाए हैं।
2: अरे गीत गाओ, उत्सव मनाओ, शुभकामनाएं दो।
3: हाँ, खुशियों को वो अपने साथ लाए हैं।
4: कौन आया है हमारे घर?
5: सिर्फ आपके नहीं बल्कि हमारे और सभी के घर शुभ कदमों से आए हैं गणपति बाप्पा। आइए उनका खूब सत्कार करें, मनाएं गणेशोत्सव उमंग और हर्षोल्लास से। रेडियो मधुबन के सभी श्रोताओं को गणपति बप्पा के आने की ढेरों शुभकामनाएं।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में हमारे श्रोता बंधु जुड़ चुके हैं। हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: नमन जी। नमस्ते बहन जी, मैं भगाराम सारला से बोल रहा हूँ।
0: अच्छा भगाराम जी, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: सारला बाड़मेर से।
0: अच्छा बाड़मेर से
1: जी।
0: आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कैसे हो?
1: ठीक है बहन जी। गाना तो सुनना था महादेव जी का।
0: जी कोशिश करते हैं। ठीक है
1: ठीक है ठीक।
0: हाँ जी बहुत बहुत आभार आपका। तो प्यारे श्रोता बंधुओं, समय हो चला है आप सभी को नए नए व्यंजन सिखाने का। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही पूछा था कि गणपति जी को क्या पसंद है, लेकिन आपने तो कुछ कहा ही नहीं। अरे भाई मोदक भूल गए क्या? चूरमा के लड्डू, बूंदी के लड्डू, मोदक बहुत पसंद है। तो चलिए मैं आपको मोदक बनाना सिखाती हूँ। मोदक के लिए सामग्री ले लीजिए। मैदा लेना है, मोवन लेना है, तेल मोवन के तौर पर। फिर आप लीजिएगा नारियल, मतलब नारियल के छीन लेने हैं, कद्दूकस किया हुआ नारियल। फिर आप लीजिए गुड़, ड्राई फ्रूट्स, ठीक है, और घी लेना है। तो ये हो गई सामग्री, जिसको फिर से दोहरा रही हूँ। मैदा, मोवन के लिए तेल, फिर आप लीजिएगा नारियल कद्दूकस किया हुआ, ड्राई फ्रूट्स लेना है आपको, गुड़ लीजिएगा, थोड़ा सा आपको खोया लेना है, ठीक है, और घी लीजिएगा। अब बनाने का तरीका भी आपको साथ ही साथ सिखा रही हूँ। मैदा लिया है, इसको छान लीजिए बारीक जाली से, छलने से, ठीक है। छान करके इसमें तेल का अच्छा सा मोन डाल करके इसको टाइट गूंदिएगा। गूंद करके इसको आप गीले कपड़े में पलेट करके रख दीजिए। लपेट करके कम से कम 20-25 मिनट आपको रखना है। इधर आप मसाला तैयार कर लीजिए। खोया लिया है, खोया को थोड़ा सा आप कद्दूकस कर लीजिए, ताकि वो बूर बूर बिखर जाएगा, उसके डगले होंगे तो बिखर जाएगा, ठीक है। अगर ताज़ा है तो उसमें तो देखिए दाने नहीं पड़ते, डगले नहीं पड़ते हैं, लेकिन ताज़ा नहीं है तो फिर वो थोड़े से अंदर घटाने हो जाती है। तो आप कद्दूकस करेंगे तो बुर बुर बिखर जाएगा। फिर आप नारियल को कद्दूकस कर लीजिए, गुड़ का भी पाउडर कर लीजिए, और ये जो ड्राई फ्रूट्स लिए हैं उसके भी कतरन कर लीजिए, ठीक है। अब आप रखिए कढ़ाई गैस पर, और हल्का सा घी डालिए और इसमें एक खोया डाल दीजिए, और खोया डाल करके आप थोड़ा सा इसको भून लीजिए, ठीक है। फिर इसको निकाल दीजिए। फिर आपने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं उसको भी थोड़ा सा भून लीजिए या फिर घी में तल लीजिए। और अब आप क्या करेंगे, कढ़ाई वही रहने दीजिए घी वाली, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा घी डालिए, फिर कद्दूकस किया हुआ नारियल डाल दीजिए, नारियल को थोड़ा सा भून लीजिए। अब इसमें आप गुड़ डाल दीजिए। गुड़ का पाउडर हो गया है तो आराम से मिक्स हो जाएगा, ठीक है। आप मावा भी डाल दीजिएगा भुना हुआ, ड्राई फ्रूट्स भी डाल दीजिएगा, स्वाद के अनुसार गुड़ डालिएगा, इलायची पाउडर पसंद है तो डालिएगा। अच्छी तरह हिला दीजिएगा, अच्छी तरह हिला करके बस गैस बंद कर दीजिए। गुड़ मिक्स हो गया है और ये सारा मसाला भी मिक्स हो गया है। अब इसको थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए। ठंडा हो जाए तो इधर आपने जो गीले कपड़े में लपेट के रख रखा है जो मैदा हमने गूंदा है वो लीजिए, उसकी छोटी छोटी लोइयां बनाइए। लोइयां बना करके उसको बेलिए पूरी की तरह। बेल करके अब बीचों बीच ये मसाला ठंडा हो गया हो तो इस मसाले को थोड़ा थोड़ा करके भरिए। भर करके अब इसकी पोटली बनाइए। पोटली बनानी है सब तरफ से फोल्ड करके, ठीक है। और इस तरह सारी पोटली तैयार कर लीजिए। आजकल तो इसका संचा भी आता है, आप संचा में भी बना सकते हैं मोदक, नहीं तो फिर उंगली हाथ से आप डिजाइन डालिएगा। तो इस तरह सारे मोदक तैयार हो जाए तो घी में तल लीजिएगा मध्यम आंच पर, स्लो आंच पर, हल्के हल्के बादामी कलर का हो जाए आप निकाल दीजिए सारे मोदक। और इस तरह मोदक तैयार हो चुके हैं तो गणपति बापा को भोग लगा सकते हैं मोदक का। तो भोग लगा करके ही सभी स्वीकार करिएगा। तो इस तरह गणपति बापा को मोदक बहुत पसंद है। आइए फिर से एक छोटा सा ब्रेक लेकर के लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: वक्र तुंड महाकाय सूर्य कोटि सम प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी श्रोताओं को गणपति के इस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। रेडियो मधुबन सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: प्यारे श्रोता बंधुओं, समय हो चला है आप सभी से अनुमति लेने का। आज के कार्यक्रम तो आपने सुने ही हैं, काफी अच्छे रहे हैं। सुंदर सा जो विचार दिया है उस पर जरूर गौर करेंगे। नुस्खे भी बहुत ही अच्छे दिए हैं। ज्वार किस तरह कौन सी बीमारी ठीक करती है, क्या फ़ायदा करते वो आपने जाना है। और खुशनुमा जीवन की बातें भी बहुत ही अच्छी हुई कि गणपति जी के हर एक अंग हमें कोई न कोई शिक्षा जरूर देते हैं, तो इन शिक्षाओं को हमें अपने जीवन में उतारना है। और मोदक बनाना सिखाया है, ज़रूर बना करके खाइएगा। अभी तो गणपति आज का दिन है और 10 दिन चलेंगे त्यौहार, तो आप कभी भी बना करके इसका लाभ ले सकते हैं, प्रसाद के रूप में चढ़ा सकते हैं। और आज का प्रश्न बहुत ही सुंदर था कि गणपति जी का वाहन मूषक है, आपको क्या लगता है इतने बड़े देवता का वाहन छोटा सा मूषक रखने के पीछे क्या संदेश छिपा हुआ है। तो यही संदेश है मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, मन हमारा सेवक है और मैं आत्मा मन का राजा हूँ, तो मन की चंचलता को समाप्त करना है। ठीक है, मन चंचल है तो हर चंचलता स्वीकार नहीं करनी है, उसके अधीन नहीं रहना है। ठीक है, तो जवाब दिया है आज हमारे सभी श्रोता बंधुओं ने, जवाब दिया है और अच्छा जवाब दिया है। भूरा राम जी ओर से, सुरेश भाई जोटाना से, सुभाष भाई महाराष्ट्र से, अलका जी कपासन से, दीपा जी कपासन से, विक्रम भाई इंदौर से, सगुना बहन ने जवाब नहीं दिया है, वो बीजी है इसलिए, जोटाना से, कंचन भाई मंडाली से आपने भी जवाब दिया है, सुरेश भाई धानेराव से और दयाराम जी रामपुरा से। तो दयाराम जी ने भी जवाब नहीं दिया है, लेकिन फिर भी आप सभी ने दिया है, तो आप सभी के लिए ढेर सारी तालियां। और आप सभी विषय में भी जुड़े इसके लिए भी ढेर सारी तालियां। आज का मीठा मोती है, बार बार स्वयं की तुलना दूसरों से करते रहने से खुद के गुण और विशेषता छिप जाती है, इसलिए खुद के महत्व को पहचानिए। अब मैं आपको गणपति का प्यारा सा भजन सुनाऊंगी, आप लेंगे भजन का आनंद और मुझे देंगे अनुमति। कल फिर मिलेंगे एक नए प्रश्न के साथ, तब तक के लिए राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, घणी खम्मा सा। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

शिव गौरी के पुत्र गजानन, काज सभी के साजो हो। रिद्धि सिद्धि नवनिधि के दाता, सगलारी सुनवनिया। विघ्न विनाशक मंगल दायक, आओ नियांगनिया। आओ पधारो रनत भवन सु, भक्तोरी पत राखनिया। विघ्न विनाशक मंगल दायक, आओ

0: कैसा है जनाब का? अब ये बात तो कोई घर वालों से पूछे क्योंकि ये एक दूसरे का हाल बेहाल करते ही रहते हैं। आइए आपको ले चलते हैं राठौड़ परिवार की आम सुबह में। यहाँ रोज होते हैं नए नए किस्से, गुस्सा, प्यार, हंसी मजाक, सब कुछ भरपूर है। यहाँ बातें होती हैं हवा में, इसलिए ये घर है ऑन एयर।
1: अरे इस घर में कोई चाय पिलाएगा या नहीं?
2: आई मासा।
1: अरे चाय मुझे पिलानी है, मेरे साड़ी को नहीं राजकुमारी।
2: हाँ ये लीजिए, एकदम दमदार चाय है।
3: अरे बेटा ऐसा क्या डाल दिया है चाय में?
4: दादी मुझे लगता है कल दमदार डिटर्जेंट पाउडर का एड आ रहा था, कहीं वही तो नहीं डाल दिया मम्मी ने।
5: ए राम।
2: चल शैतान स्कूल के लिए तैयार हो जाके।
4: अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो।
1: शांति, ओ शांति, अरे कोई इसके म्यूजिक को शांत कराओ।
6: शांति शांति।
7: अरे शांति क्यों नाम रखा आपने इसका? मैं तो जा रही हूँ बच्चों का टिफिन बनाने, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है।
8: अरे राजकुमारी।
2: अरे चलो उठो बच्चों, स्कूल का टाइम हो गया।
4: नहीं मम्मी थोड़ा और सोना है।
9: 10 मिनट और बस।
2: अरे चलो 8 बज गए, स्कूल बस आने वाली है।
4: अरे 8 बज गए? क्या मम्मी 6 ही तो बजे है।
2: नहा लेना दोनों, सिर्फ बाल्टी और मग हिलाकर बाहर मत आ जाना।
4: ये मम्मी की पुरानी ट्रिक है उठाने की, और हम फिर से बन गए इसके शिकार।
10: हे भगवान ये सब क्या हो रहा है दुनिया में? देखो अपने घर से चोरी करके भाग गया बेटा।
7: अरे हमें तो पता ही है, ये लड़कियों को पढ़ाना लिखाना ये सब आजकल के चोचले हैं। पढ़ लिख कर दिमाग खराब होता जाता है, फिर ये सब काम करती हैं।
11: कोई भाभी को बताओ कि बेटा भागा है पैसे लेके, बेटी नहीं।
12: इनको मैं बताती हूँ।
11: अरे दीदी आप रहने दो, आप फेमिनिज्म का झंडा सुबह सुबह बुलंद मत करो।
12: ऐसे कैसे? रुक जरा भाभी जी, खबर ध्यान से तो सुन लीजिए। बेटा भागा है पैसे लेके, बेटी नहीं।
7: हाँ वही बोल रहे हैं, मतलब तो किसी लड़की ने ही करवाया होगा। है छोड़ो, हमारे लाडले को स्कूल बस लेने आती होगी, हमको जाना है।
13: अरे भाई साहब किसकी बात कर रहे हैं? कौन भागा सोसाइटी में जिसके बारे में मुझे पता नहीं?
14: लो जी खबर पूरी पड़ी भी नहीं और आ गए हमारी पड़ोसी माधुरी जी। इनके कानों में कोई एंटीना लगा है क्या जो खबर को सीधा कैच करता है?
0: आप दिन को रात कह देंगे तो चलेगा, आप प्लेन को रेलवे स्टेशन पर उड़ने को कहेंगे वो भी चलेगा, लेकिन अगर आपने राठौड़ परिवार की सुबह को शांत कह दिया। सुनिए सुनिए सुनिए अब माधुरी माहेश्वरी जी आगे कौन सा नया बखेड़ा खड़ा करने वाली हैं।
13: भाभी जी आपको तो पता ही है, माधुरी मुंह खोले तो हमेशा मीठा ही बोले, लेकिन ये किसके भागने की बातें हो रही है? पड़ोस वाले शशि की क्या? मुझे तो न उस पर पहले से ही शक था, देखा न कैसे मॉडर्न कपड़े पहनकर घूमती है।
7: अरे नहीं नहीं नहीं माधुरी जी, वो बस खबर छपी है।

0: आपको खबर की क्या जरूरत माधुरी जी, आप तो खुद चलता फिरता न्यूज़पेपर हैं।
1: हैं? क्या जी?
0: नहीं नहीं, मतलब आपसे क्या छिप सकता है, आपको तो सब पता रहता है ना।
2: हाँ, कभी कभी तो जो नहीं हुआ वो भी।
3: फ्यूचर प्रेडिक्शन, वाह वाह माधुरी जी, आप तो टैलेंटेड हो।
4: अब इस फैमिली में किसके कौन से टैलेंट हैं, ये तो आपको जल्दी पता चल जाएंगे, क्योंकि कुछ टैलेंट सामने नजर आते हैं तो कुछ छिपे हुए होते हैं। वैसे छिपे हुए से याद आया, कोई है घर में जो आज बुरी तरह से फंसने वाला है। आइए आपको लिए चलते हैं वहां, जहां कहानी में आने वाला है जबरदस्त ट्विस्ट।
3: ये वाला ऑर्डर कर लेती हूँ। वाओ, ये तो कितना अमेजिंग है, मेरी सिल्वर ड्रेस पर कितना अच्छा लगेगा। ये भी अभी ऑर्डर कर लेती हूँ।
5: ये देखो इस लड़की को, इधर फोन में लगी हुई है। बेटा शांति, तू अब बच्ची नहीं है कि मैं बार बार तुझे समझाती रहूं।
0: अरे छोड़ो ना माँ, क्यों बेचारी को सुबह सुबह डांट रही हो।
5: अरे क्या हो गया मेरे बच्चे को, खांस रहा है, देखो कोई पानी लाओ।
6: ला रही हूँ मासा।
0: अरे कुछ नहीं हुआ बस मुझे।
2: वैसे तो औरतों की आवाज को हमेशा दबाया जाता है, आज भैया की आवाज चली गई।
7: अरे मैंने तो सुबह ही कहा था सीधे हाथ से पानी लेना, हो गया ना सब उल्टा काम।
8: तुम भी कहीं भी शुरू हो जाती हो। क्या हुआ वीरेंद्र को, डॉक्टर को दिखाते हैं चलो।
4: सुना आपने, यहाँ बात बात पर बात बढ़ तो जाती है, लेकिन चुप्पी पर कैसे बातें बनती हैं, ये देखना होगा। डॉक्टर तो गले का इलाज करेगा, लेकिन अब वीरेंद्र सिंह राठौड़ की आवाज गई तो घर में क्या क्या होगा, आइए सुनते हैं।
8: देखो डॉक्टर ने कहा है वीरेंद्र की आवाज को 2-3 दिन लगेंगे ठीक से वापस आने पे, उसको बस दवाई टाइम से देते रहना है, ठीक है ना
6: जी? मैं समय पे खिला दूंगी। ये सुबह की, ये शाम की, इतनी बापरे सारी गोल गोल गोलियां हैं, इसमें तो मैं ही गोल गोल घूम जाऊंगी।
7: कुछ कहा राजकुमारी?
6: नहीं नहीं कुछ नहीं भाभी जी।
7: ओ ओ ओ ओ ओ,
9: अरे ये कह रहा है ऊपर।
10: अरे नहीं नहीं नहीं, ऊपर नहीं, ऊपर नहीं, कुछ ढूंढ रहा होगा, कुछ ऊपर होगा वही ढूंढ रहा होगा।
11: अरे उसको बैठना है।
7: ओ
6: हा? लेकिन उसे पपीता कहाँ से होता है, अरे कोई और फल चाहिए क्या?
10: पैर में दर्द है क्या?
6: अरे पानी मांग रहे हो, पानी लेकर आओ।
12: अरे पापा से कुछ कहना होगा।
6: अरे पिताजी कहाँ गए?
11: अरे वो मुझे बुला रहा है, क्या बात कर रहे हो, पापा पापा बोल रहा है।
6: पापा गाने को लेटेस्ट गाना तो नहीं गा रहे, पापा पापा पापा वाला।
11: पापा कहते हैं।
6: हाँ आवाज चली गई और गाने का मन कर रहा है, बताओ।
2: अरे भैया के पैर के ऊपर आपने अपना पैर रख दिया है माधुरी जी।
1: अरे रे माफ करना भाई साहब, माफ करना मुझे, मैं है ना अब चलती हूँ अपने घर। चल माधुरी, नहीं तो तेरी ही न्यूज बन जाएगी।
4: बेचारे वीरेंद्र जी अपने पांव का पा ही बोल पाए। क्या लगता है आपको, इनकी पत्नी मतलब राजकुमारी जी क्या सही दवा देंगी? इनकी आवाज जाने पर और कितने कारनामे होंगे, ये तो अब भगवान ही जाने, लेकिन हम इतना जानते हैं कि आपके लिए होंगे ठहाके ही ठहाके। रेडियो मधुबन 107.8 FM पर फिर मिलेंगे कार्यक्रम घर ऑन एयर के अगले एपिसोड में। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
13: घर ऑन एयर, पात्र परिचय, दादाजी भगवत सिंह राठौर, आरजे ज्ञानेश्वर, दादी जी अंबिका देवी राठौर, आरजे संध्या, चाचा किशन सिंह राठौर, आरजे श्रीनिधि, ताऊ जी गजेंद्र सिंह राठौर, आरजे रोहित, ताई जी चंद्रावती, आरजे प्रभा, बुआ रागनी राठौर, आरजे कृष्णा, बुआ शांति राठौर, आरजे मोना, वीरेंद्र राठौर, आरजे विशाल, राजकुमारी राठौर, आरजे आरुषि, बच्चे रूहानी अमीक्षा, नैरेटर आरजे अमित। आशा करते हैं घर ऑन एयर का पहला एपिसोड आप सभी को पसंद आया होगा। इंतजार कीजिए अगले एपिसोड का, क्योंकि राठौड़ परिवार की कहानी तो अभी बस शुरू ही हुई है। रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

हमें इसके रहस्य को जान लेना चाहिए। इस संसार में 8 आत्माएं सर्वश्रेष्ठ हैं, जो बहुत महान हैं, बहुत पवित्र हैं, वरदानों से संपन्न हैं, संसार के रक्षक हैं, वरदान देने वाले हैं। इसलिए भारत में विशेष रूप से नवरत्नों की अंगूठी पहनाई जाती है, कोई भी विघ्न समाप्त करने के लिए, किसी ग्रह के दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए। तो 8 ये मुख्य आत्माएं हैं और 1 परमात्मा जो इनको ऐसा बनाते हैं, शिव। तो ये शिव की 8 संतानें हैं। इनमें से किसी को किसी तरह की सिद्धि प्राप्त है, किसी को किसी तरह की। जैसे किसी को बीमारियों को ठीक करने का वरदान प्राप्त है, तो किसी को काम धंधों में विघ्न आ गया है, उसको नष्ट करने की सिद्धि प्राप्त है। किसी के कहीं काम बिगड़ रहे हैं, उनको संवारने की सिद्धि किसी को प्राप्त है। धन की समस्याएं आ गई, उसको ठीक करने की सिद्धि किसी के पास है। तो ये जो अष्टरत्न है, यानी 8 मेन जो आत्माएं हैं इस सृष्टि में, इनको अलग अलग शक्तियां प्राप्त हैं। इसलिए 8 विनायक, 8 गणेश दिखाए जाते हैं, सभी विघ्न विनाशक हैं। तो ये 8 आत्माएं भी और सभी धर्मों की सभी आत्माएं एक निराकार परमात्मा की संतान हैं। अर्थात आज के दिन हमें इस बात को जान लेना है, डीपली रियलाइज कर लें, हम शिव की संतान हैं और हमारे पास भी विघ्नों को नष्ट करने की शक्ति है। हम अपनी शक्तियों को भूल कर परेशान हो जाते हैं। कई लोग गणेश की प्रतिमा की स्थापना भी करते हैं, लेकिन फिर भी उनके विघ्न नष्ट नहीं होते, क्योंकि जो इसके पीछे धारणाएं हैं, प्योरिटी, खान पान की शुद्धि, वो हमें अपनानी ही चाहिए। और अगर हम सदा ही प्योरिटी को अपनाएंगे, खान पान को सात्विक करेंगे, योग अभ्यास करेंगे, तो हम सदा के लिए विघ्नों से मुक्त हो जाएंगे, विघ्नों को नष्ट करने वाले बन जाएंगे। तो आइए आज के सुंदर दिन पर हम सभी अपनी विघ्नों को नष्ट करने की शक्ति को पहचानें, उनमें वृद्धि करें और आगे बढ़ें। ऐसा जीवन जीना सीख लें जिसमें विघ्न हो ही नहीं, ऐसी सरलता अपने अंदर ले आएं, ऐसे शक्तिशाली बन जाएं, तो ये दिन आप सभी को विघ्नों से मुक्त करने वाला हो, अति शुभ हो, यही हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। ओम शांति।

0: रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। कार्यक्रम है मधुबन अनप्लग्ड। मधुबन अनप्लग्ड यानी कि संगीत का वो सफर, यानी कि शेर व शायरी, क्रिएटिविटी और पंक्तियों का सफर। जी हाँ, जब एक गाना बनता है तो शब्द मोतियों की तरह पिरोए जाते हैं, बातें वही होती हैं, लेकिन कहने का अंदाज इतना अलग होता है कि वो दिल में घर कर जाते हैं। और ऐसी ही कुछ बातें, ऐसी ही कुछ पंक्तियां, ऐसी ही कुछ लाइंस आज आपको मिलेंगी कार्यक्रम मधुबन अनप्लग्ड में। और इसको और खूबसूरत बनाने के लिए आज हमारे समक्ष है एक ऐसी अतिथि, एक ऐसी हस्ती जिन्होंने लेखन जगत में अपना नाम ही नहीं कमाया बल्कि ऐसा कंट्रीब्यूशन दिया जो प्रेरणा का स्रोत है। जी हाँ, हमारे समक्ष है डॉक्टर अलका अग्रवाल सिकतिया जी, जिन्होंने बीएससी की, फिर अंग्रेजी में भी उन्होंने पढ़ाई करी, हिंदी साहित्य में गोल्ड मेडलिस्ट रही, पीएचडी की उपाधि भी उन्होंने प्राप्त की। उनका शोध रहा हरिशंकर परसाई पर, लघु शोध और प्रबंधन शोध उन्होंने किया। कई प्रकाशन उनके नाम हैं, वैसे तो हम कुछ के नाम आपको जरूर लेकर सुनाते हैं। मुर्दे इतिहास नहीं लिखते, अदृश्य, मेरी तेरी, सबकी, मीरा कूल, व्यंग संग्रह है ये। कई पत्र पत्रिकाएं भी उनकी प्रकाशित हुई और इसके साथ साथ उन्होंने लेखन क्षेत्र में बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है। उनको कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है, चाहे वो गोदरेज कंज्यूमर फिल्म फेस्टिवल सम्मान हो, दुष्यंत सम्मान हो, रचनाकार आयोग द्वारा बिस्मिल्ला खां पुरस्कार हो, ऐसे कई अवार्ड भी उन्हें प्राप्त है। वैसे तो उनके करियर की लंबी व्याख्या है, लेकिन चलिए पहले उनका स्वागत करते हैं और उनके बारे में और जाने का आज अवसर हमें मिलेगा। आपका बहुत बहुत हृदय से स्वागत है अलका जी।
1: जी बहुत बहुत आभार, और ये मेरे लिए हार्दिक प्रसन्नता का विषय है कि आज ब्रह्मा कुमारी के रेडियो मधुबन में मुझे ये अवसर मिला है। और बचपन से हम सुनते आए हैं और मैं 90s में एक बार यहाँ पर आई भी थी।
0: अच्छा।
1: और उस समय बहुत से, हम जो मनुष्य होते हैं, जिज्ञासा तो हमारे भीतर होती है।
0: बिल्कुल।
1: तो बहुत से जिज्ञासाएं थी, तो मैं लगातार प्रश्न पूछती जा रही थी क्योंकि उस समय छोटी भी थी थोड़ी सी। तो वो जो दीदी थे तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात है कि आपके भीतर इतनी जिज्ञासा है, आप कहाँ रहती? मैंने बताया मुंबई, बॉम्बे, तब तो बॉम्बे था
0: जी।
1: तो उन्होंने कहा कि हमारे सेंटर पर जाइएगा, और कुछ ऐसा होता है ना कि हम छोटी छोटी सी बातों को लेकर कई बार परेशान भी हो जाते हैं, तो वो कुछ कोइंसिडेंस ऐसा हुआ कि जिज्ञासा और परेशानी दोनों थी, और मुझे पता नहीं क्यों मैं, मेरे कदम उठ गए आपके जो मलाड में सेंटर है वहाँ उठ गए।
0: ओके।
1: और वहाँ पर फिर मुझे बहुत से प्रश्नों का उत्तर भी मिला और मेरे मन की परेशानियों का समाधान भी हुआ था। तो मैं लगातार कई बार गई, लेकिन फिर बहुत सी बातें होती कि अगर आपने परिवार चुना है तो कुछ प्रायोरिटीज हो जाती हैं कि वी कांट गो अगेंस्ट दैट। तो ठीक है, मतलब फिर मैं गई नहीं, लेकिन हाँ, मैं जो आपके सिस्टर बीके शिवानी जी हैं, उनको तो सुनना किसको अच्छा नहीं लगता
0: जी, जी।
1: तो बहुत बार जब हम कहीं अटकते हैं ना, तो हम जब उन सुनने लगते हैं तो हमको बहुत से प्रश्नों का समाधान मिल जाता है
0: जी।
1: और अभी शिव बाबा ने, पता नहीं उनकी क्या मंशा है, मुझे नहीं मालूम है, फिर से उन्होंने बुलाया। और यहाँ पर भी जो आपका आर्ट एंड कल्चर का, आपके जो 3 दिन का पूरा कॉन्फ्रेंस होता है, राष्ट्रीय सम्मेलन, तो उसमें क्योंकि विषय इतना अच्छा था, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आपको समाज को बचाना है, देश को बचाना है और विश्व को बचाना है, तो परिवार को बचाना सबसे अधिक आवश्यक है।
0: बिल्कुल।
1: तो जो विषय था, और मेरा विषय था संस्कृति, संस्कार और परिवार के मूल्यों के संवर्धन की कला, तो ये बहुत आवश्यक है कि जैसे मुझे ये लगता है कि हम अपनी संस्कृति से दूर जा रहे हैं और जो दूसरे देश के लोग हैं वो हमारी संस्कृति की ओर आ रहे हैं।
0: आ रहे हैं।
1: तो खैर, ये तो मैंने बताया कि स्पीकर यहाँ आई थी, लेकिन आज आप सबसे रूबरू होने का मौका मिल रहा है और मेरी आवाज आप तक पहुँच रही है, तो उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ।
0: वैसे तो बहुत सारे प्रश्न है मेरे मन में, लेकिन मैंने आपकी बहुत सुंदर प्रोफाइल जो पढ़ी उसमें आप ये भी लिखा था कि आप फाउंडर हैं क्रिएटिव राइटिंग की।
1: सॉरी,
0: आप फाउंडर हैं क्रिएटिव राइटिंग।
1: जी जी,
0: हाँ। जी, तो अगर उसके बारे में कुछ बताएं।
1: जी जरूर। क्रिएटिव राइटिंग देखिए क्या होता है, जो लेखक होता है ना, नजर और नजरिए का फर्क होता है। अब सामने ये पेड़ दिख रहा है मुझे, है ना, मैं भी देख रही हूँ, कोई और भी देख रहा है, किसी को सिर्फ लगेगा कि उसमें पत्तियां हैं, लेकिन एक जो लेखक होता है उसमें अलग दृष्टिकोण से देखता है। एक अलग पर्सपेक्टिव से देखता है. तो बहुत से लोग कोविड में खास तौर पर बहुत, क्योंकि कोविड में लोग अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे थे, अंतर यात्रा कर रहे थे, और कई लोग जब बहुत परेशान थे तो कई लोगों ने हमसे संपर्क किया
2: जी.
1: मेरे साथ में दिनेश शाकुल जी हैं, जो चंद्रगुप्त बनते थे चाणक्य सीरियल में, और काफी बहुत अच्छे एक्टर हैं और बहुत नॉलेजेबल हैं
2: जी.
1: तो कई लोगों ने हमसे कहा कि लिखा कैसे जाता है, हम लिख तो रहे हैं. तो फिर हमने क्रिएटिव राइटिंग का जो है वो शुरुआत करी. और उसमें हमने कहा कि जो कविता क्या होती है, कविता में अलग अलग भाव होते हैं, नाद होता है, और उसमें किस तरह से आप उसको लिखते हैं. तो फिर हमने ये काफी सारी पूरा सिलेबस बनाया था. पांच मॉड्यूल्स थे, उसके पांच मॉड्यूल्स में हमने वो सिलेबस बनाया था.
2: अच्छा.
1: और उसमें हम उनको वो पूरी क्लासेस लेते थे और उसके बाद उनको हम होमवर्क देते थे. तो कई लोगों ने उसमें बहुत अच्छी कविताएं लिखना सीखा. और क्योंकि मैं महिला काव्य मंच है, अंतर्राष्ट्रीय है, जिसके फाउंडर है नरेश नाथ जी, तो उन्होंने मुझे महाराष्ट्र मकाम का अध्यक्ष बनाया. तो उसमें बहुत सी महिलाएं जुड़ी. और उसमें आरुषि जी क्या है कि मन से मंच तक.
2: अच्छा.
1: है ना
2: जी.
1: तो ये जो आपने कहा क्रिएटिव राइटिंग और मन से मंच तक, तो मन में बहुत से लोगों के भाव होते हैं ना. आप अनुभूति को जब अभिव्यक्ति में ढाल देते हैं, उसको उतार देते हैं कागज के कैनवास पर, तो वो कविता, कहानी, गजल कुछ भी बन जाती है
2: जी.
1: तो इसी तरीके से जब बहुत सी महिलाएं आई जिनको लिखना नहीं आता था और वो केवल कुछ भी या तो किसी की पढ़ देती थी, फिर हमने उनको थोड़ा सा और गाइड किया. तो इस तरह से जो क्रिएशन, क्योंकि देखिए कलाकार तो क्रिएशन करता है.
2: बिल्कुल.
1: और यहाँ पर एक चीज मैंने बड़ी अच्छी सुनी कि कलाकार यानी जो कल को आकार देता है.
2: क्या बात है.
1: तो मुझे बहुत अच्छा लगा. तो हम ये नहीं कहते कि हम सचमुच पूरा कल को आकार दे सकते हैं, एक चेतना जरूर पैदा कर सकते हैं. तो एक क्रिएटिव राइटिंग के क्रिएशन कैसे था, राइटिंग तो है लेकिन क्रिएशन क्रिएटिव कैसी हो, रचनात्मकता कैसे आए उसमें, तो ये जो है हमने पूरा मॉड्यूल बनाए हैं. और उसको लेकर के हमने पूरी कविता के ऊपर क्रिएटिव राइटिंग की. इसी तरह से कहानी पर भी हम मॉड्यूल बना रहे थे लेकिन किसी कारण से छूट गया. क्योंकि मैं कहती हूँ कहानी एक घटना से नहीं होती. जैसे जब हम छोटे थे, मैं बहुत छोटी उम्र से लिख रही हूँ, पहले तो मैं बता दूँ 6-7 साल के लिए जब से मैंने कुछ कुछ लिखना शुरू कर दिया था. उसके रीजंस भी हैं, अगर आप पूछेंगे तो मैं बता दूंगी.
2: बिल्कुल. खैर जानना चाहेंगे.
1: तो क्या होता है ना कि जैसे मैंने एक घटना कहीं देखी, दूसरी घटना कहीं देखी, तीसरी घटना कहीं देखी, तो हम जब सबको सिंक्रोनाइज करते हैं, क्योंकि जो रचनात्मकता होती है, रचनात्मक लेखन, क्रिएटिव राइटिंग होती है, वो रिपोर्टिंग नहीं होती है. उसमें आप यथार्थ के साथ में कल्पना का भी उसमें सम्मिश्रण रहता है.
2: बिल्कुल.
1: तो ये जो होता है, ये तो क्रिएटिव राइटिंग इज अ वेरी वास्ट फील्ड, और उसमें ये वाली बात है. और एक बात बहुत आवश्यक है कि क्रिएटिव राइटिंग कोई मशीनी तो वो होती नहीं. उसमें आपको भावनाओं में जब तक पगी नहीं हो ना, तो उसमें वो बात नहीं आ पाती है. तो मुझे लगता है कि हर जो रचनाकार है उसके अंदर भावनाएं तो होनी चाहिए, और वो अपने दुख के साथ दूसरे के दुख को भी उसी तरह से अनुभव कर सके,
2: संवेदनशील
1: कर सके. बिल्कुल. तो क्योंकि दुनिया तो बहुत बड़ी है और जिंदगी हमारे आसपास बिखरी पड़ी है, तो उस जिंदगी को जब आप रचनात्मकता में ढालते हैं, वो क्रिएटिव राइटिंग.
2: क्या बात है. कितनी सुंदर डेफिनेशन दी है आपने.
1: थैंक यू.
2: आपने फिल्मों के लिए लिखा है, आप रेडियो की बात करें या फिर कविताओं की बात करें, आर्टिकल्स की बात करें, कहानी, मतलब बहुत बहुत कुछ लिखा है आपने. आपके कई पुस्तकें भी प्रकाशित हुई हैं. कुछ एक किसी प्रकाशन के बारे में आप जरूर बताएं. जैसे मान लीजिए, ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग टाइटल लगा, मुर्दे इतिहास नहीं लिखते, तो इसके पीछे का क्या कहानी है, ये कैसे लिखा या क्या, उसके बारे में कुछ
1: बताती हूँ. एक तो आपने रेडियो की बात की, उस पे फिर मैं मुर्दे पे आऊंगी. तो रेडियो लेखन के लिए मैं आपको बताऊं कि क्योंकि जैसे मैं बॉम्बे से हूँ, तो एक बार किसी ने कहा कि बम्बई के में संयुक्त परिवारों पर आप कुछ एक लिखो.
2: अच्छा.
1: तो मुझे किसी ने चैलेंज किया कि आपको बॉम्बे में संयुक्त परिवार मिलने वाले ही नहीं है. लेकिन बोलते हैं ना, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, और मुझे तो करना था. आप मानेंगे नहीं आरुषि, जब मैं जब ढूंढने लग गई, 13 परिवार की जगह मुझे इतने परिवार मिलते चले गए, और वो मैं आज भी गूज़बम्स आते हैं मुझे जब मैं वो अनुभव शेयर करती हूँ. तो जिनके भी परिवार में गई, तो क्या होता है ना कि जैसे एक जगह अगर जब इकट्ठा होता जाता है पानी तो सड़ने लगता है, इसी तरह से ना परिवारों में भी कई कई बार कुछ कुछ भावनाओं में एक दूसरे से क्लैशेस होने लगते हैं. तो लेकिन जब मैं उनसे मिली, और एक परिवार अंधेरी का मैं आपको बताती हूँ, दुबे परिवार था, तो वहाँ बड़े भाई भाभी ने ही उनके पूरे मतलब छोटे भाई बहनों को बड़ा किया था और बहुत अच्छे से सारा कुछ उनका किया था. तो जब हमने ये किया तो वो लोग लिटरली रोने लग गए. और मुझे गले लगा लिया और उनने कहा कि जैसे एक विरेचन होता है ना जिसको कैथासिस कहते हैं, एरिस्टोटल ने जो दिया था कि उन्होंने कहा हमारे अंदर की सारी जो गलत भावनाएं आने लगी थी वो सब खत्म हो गई। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस तरीके से एक हमने जो काम किया, तो रेडियो लेखन में एक अनुभव मेरा बहुत अच्छा रहा। और ये रापा सीरियल अवार्ड होता है, रापा यानी जो टेलीविजन और दूरदर्शन में जो बेस्ट होता है, तो उसको बेस्ट रापा सीरियल अवार्ड भी मिला था।
2: क्या बात है
1: जी,
2: क्या बात।
1: अब आपने मुझसे मुर्दे इतिहास नहीं लिखते, तो आपको जैसे शीर्षक बहुत अच्छा लगा, तो दरअसल ये एक मेरे एक दोस्त हैं, तो वो पहले फिल्मों में एक्टिंग करते थे, अब वो बिहार में कहीं रहते हैं। तो क्या हुआ था कि मेरी कहानी पढ़ के उन्होंने मुझसे कॉन्टेक्ट किया कि मुझे बहुत अपनी अपनी सी वो कहानी लगे, बहुत मैं कनेक्ट हुआ हूँ उससे, तो फिर उनसे बातचीत होने लग गई। तो जो क्योंकि बॉम्बे में तो बॉलीवुड और बॉम्बे की लाइफ, तो बॉम्बे या तो मतलब ऐसे कहते गरीब से गरीब को भी भूखा नहीं सुलाता, अमीर से अमीर को भी। तो बॉम्बे एक ऐसी मिस्ट्री है कि जिसको हर कोई हल करना भी चाहता है, जिसमें जाकर फंस भी जाता है। तो ये हुआ कि वो रवि नाम है उनका, तो उनसे मेरी फिर अच्छी बातचीत होने लग गई। और वो फिल्मों में सीरियल्स में सब स्ट्रगल कर रहे थे, फिल्मों में स्ट्रगल बहुत ज्यादा है, बन गए तो बन गए, नहीं तो बहुत खत्म भी हो जाते। खैर तो वो जो बताते थे, फिर उनकी कविता थी मुर्दे इतिहास नहीं लिखते, और अच्छा। तो इस तरीके से तो वो फिर बाद में उनसे ही, क्योंकि उनकी लाइफ थी तो वो स्ट्रगल करते हुए दो दोस्तों की कहानी है। फिर अंत में ये होता है कि जो दो दोस्त हैं, मतलब एक दोस्त दूसरे दोस्त को संभालता है, फिर दूसरा दोस्त जब परेशान होता है तो ये संभालता है, लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है कि वो कुछ ऐसा समझौता करने के लिए तैयार हो जाता है और रूम से चला जाता है। उस समय पेजर हुआ करते थे जब मैंने ये कहानी लिखी थी, तो पेजर पर ये कबीर जो है पहला वाला दोस्त, वो आदित्य को मैसेज करता है कि मुर्दे इतिहास नहीं लिखते, इतिहास वो लिखते हैं जो धारा के विरुद्ध चलकर अपना रास्ता खुद बनाते हैं। तो अब मैं ये शीर्षक कैसे है, देखिए कई लोग कहते हैं मुर्दे, मतलब तुम्हारे शीर्षक मुझे समझ नहीं आए, जो समझ सकता है जैसे आपको अच्छा लगा। अब आप मुझे बताइए कि जो जीते जी मर जाएगा वो तो मुर्दा हो गया ना, और जीते जी जिसके अंदर जिजीविषा है, एक संघर्ष की कामना है, तो वो कभी मुर्दा नहीं हो सकता।
2: बिल्कुल,
1: इतिहास उनका ही लिखा जा सकता है,
2: और हार नहीं मानता
1: है ना, उसका इतिहास तो कभी नहीं लिखा जाएगा। तो ये बात है, और यही मैं अपने जिंदगी में भी कहती हूँ कि हार कभी मत मानो, है ना, जैसे वो है ना कि हार के आगे जीत है, तो यही वाली बात है कि अपने आप को हारने नहीं दो। और खास करके यहाँ आने के बाद इस डिवाइन में कि मतलब जब हम अपने आप से संवाद करते हैं, परमात्मा से खुद को जोड़ते हैं और अपने असत्य को पहचानते हैं, तो हमको लगता है कि नहीं हार तो कहीं है ही नहीं। तो कुछ इसी तरीके से कि इतिहास आप लिख सकते हैं, आप अपने जीवन में अपने आप को एक हमेशा कर्मठ बना के रखिए।
2: जी बिल्कुल, ये जब कभी कभी बहुत बड़ी मुश्किलें आती हैं तो उसको जीवित रखना बहुत जरूरी होता है, जो हमारे अंदर की आग है, जो हमारे अंदर की भावनाएं हैं। मैं एक और प्रश्न आपसे जरूर पूछना चाहूंगी यहाँ पे, क्योंकि आप कई आपने उपन्यास भी लिखे, कई कहानी संग्रह हैं, तो कहानियां लिखने के लिए अगर मान लीजिए कोई इंटरेस्टेड है, कोई युवा है जो इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो अगर आप कुछ टिप्स दें, कुछ ऐसी बातें जो मदद करें, जैसा आपने कहा ना अनुभूति को अभिव्यक्ति मिलाने के लिए, आपकी ओर से कुछ ऐसे,
1: मतलब आपका प्रश्न है कि कौन सी बातें कहानी लिखने में मदद करें।
2: जी जी जी,
1: हमारा जो मैका है वो कटनी एमपी में है, और वहाँ एक फार्म हाउस है हमारा। तो मेरे पापा जो थे उन्होंने पूरी अपना सारा एकदम रात से लाइफ छोड़ के, उनको फार्मिंग बहुत पसंद आई, तो वो हम मतलब 400 एकड़ जमीन थी, बंगला था, तो हम लोग वहाँ रहते थे। तो वहाँ जो गांव की लड़कियां आया करती थी उनसे हमारी दोस्ती हो जाती थी, और वो लड़कियों को देख करके ना मेरे जहन मतलब वो अंकित होती चली गई। उस समय तो मैं बहुत छोटी थी, लेकिन फिर धीरे धीरे क्योंकि मैंने छोटी उम्र में कहानी भी लिखनी शुरू कर दी थी, तो वो कहीं ना कहीं मतलब जैसे एक शिवरात्रि नाम की लड़की थी, हाँ उसका नाम ही शिवरात्रि था, और आज भी मुझे वो वैसे की वैसे याद है, एकदम लंबी छरहरी सांवले रंग की, बड़ी बड़ी आंखें, तो वो कहीं ना कहीं मेरे जहन में अंकित हो गई, है ना। इसी तरह से हमारे यहाँ पर एक गाल बाबा थे, तो उनकी बेटी का नाम था अमसा, था अमसा। अब आप बोलेंगे अमसा कोई नाम होता है ना, है ना। अब वो उसका रीजन क्या था कि मेरी दीदी ने उनकी बेटी का नाम रखा था अंशा।
2: अच्छा।
1: अब अंशा तो वो नहीं बोल सकते थे तो अमसा बोलते थे, तो एक कैरेक्टर मेरी अमसा बनी, एक कैरेक्टर मेरी शिवरतिया बनी, और फिर उनकी कहानी दूसरों कहीं से आए, जैसे जैसे मैंने बताया आपको कि कटनी की हूँ मैं, तो कटनी में ना चूने के भट्टे बहुत होते हैं, तो चूने के भट्टों में जो लोग काम करते हैं तो क्या होता है कि वहाँ उनको टीबी बहुत हो जाती है, तो वो जो सारी जो चीजें थी वो उसके बाद में रेलवे लाइन पर जैसे गरीब लोग हैं वो कोयले बिन रहे हैं, कोयले के जो वैन निकलती है ना कोयले गिरते हैं, तो वो कोयले बिनते बिनते ट्रेन से कट जाते हैं, कई बार उनको नहीं पता चलता था। तो ये जो मेरा जो एकदम मासूम सा मन था ये बहुत मुझे परेशान करती थी ये चीजें, और वो फिर सब मेरी कहानी में ना मतलब एक चीज वहां में जैसे बताया ना एक घटना ये एक घटना वो, तो ये जैसे कि जो मतलब मेरी कहानी में अमसा जो है वो गांव से शहर आती है, फिर वो इस तरह से उसकी और वो अमसा से मिलती है ये जो राइटर है, और वो चूने भट्टे के वहां जाती है तो वो बोलती है कि दीदी हम ना कक्का भाई, क्योंकि मैं वहां की तो मुझे भाषा भी आती, दीदी हम कब ना चूने के भट्टे में काम करीबे। तो वो फिर वो बोलती है, लेकिन जब दूसरी बार जाती तो देखती कि वो अमसा खांस रही है बुरी तरीके से, तो वो बोलती कि तुमको क्या हो गया, तब वो कहती कि दीदी हम कहे थे ना कि हम अम्मा वाला काम कभी ना करेंगे, लेकिन हमारे घर में खाने को नहीं बचा, दद्दा भूखे मर रहे हैं, दीदी भूखी मर रही, तो क्या करें, काम तो करवे को पड़ा थे। तो वो सारी जो चीजें थी तो वो मतलब वो मैंने वो भाषा वहां की, क्योंकि बचपन में उनके बीच में जाते थे। तो ये ना जो लेखक होता है ना वो बहुत ज्यादा ग्रहणशील होता है और उसका ऑब्जर्वेशन बहुत शार्प होता है और संवेदनाएं कहीं, और उस पर जो संवेदनाएं होती है ना, तो कहते हैं ना जैसे कि हीरे पॉलिश कर दिया है, तराशती है संवेदनाएं, इस तरह से कहानियां हमारी बनती हैं। जैसे आपसे ही मैं बात कर रही हूँ, अब आपकी स्माइल पर ही मैं कुछ कविता लिख दूंगी तो ये तो देखिए क्या होता है कि नजर की बात है,
3: नजर नजरिया जो आपने कहा,
1: बिल्कुल हाँ।
3: जैसा आपने कहा था कि आपने बहुत कम उम्र में ही लिखना शुरू कर दिया था, तो क्या ऐसी कहानियां थी जिन्होंने आपको इंस्पायर किया, या फिर क्या कोई ऐसा क्षण था जिसने आपको इंस्पायर किया, या कहां से लिखने की शुरुआत कितनी कम उम्र में कैसे हो?
1: क्या हुआ था आरुषि जी कि बचपन में मतलब मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था, अक्सर मैं साक्षात्कार में ये बात तो आती कि लोग पूछते हैं कि लिखना कैसे शुरू किया, क्या किसी ने जैसे आपने पूछा क्या किसी ने इंस्पायर किया या कोई ऐसा क्षण आया, तो मेरे जीवन में एक बहुत बड़ी घटना घट गई थी। तो मतलब हम लोग पांच बहन थे और मैंने अपना बहुत दीदी लोगों ने मेरा नाम जल्दी लिखा दिया था, तो मैं मम्मी पापा फार्म हाउस में रहते थे तो मैं दीदी लोग के साथ यहाँ रहती थी, और मैं बहुत छोटी सी थी, तो मेरी दीदी जो थी सबसे बड़ी वो खुद 18 साल की थी जब उनकी शादी हुई थी, और वो मेरे लिए माँ समान थी कि मम्मी फार्म हाउस पे रहते थे मम्मी पापा। तो उसके बाद मतलब उन्होंने ही मुझे डांस वगैरह, हम लोग का पिक्चर हॉल हुआ करता था तो डांस वगैरह करती थी, तो उनने कहा कि इसको डांस सिखाया जाएगा, तब तो लिखने जैसा कुछ सोचा भी नहीं था, मैंने नहीं सोचा ही नहीं था, मतलब 5-6 साल की बच्ची क्या सोचेगी ना उस वक्त। तो मैं क्या करती थी, पिक्चर हॉल से आती थी फिर वो लैच लगा के फिर गा के अंदर, तो बोले करती क्या अंदर ये, तो दीदी लोग ने देखा तो इसको डांस सिखाया जाएगा, और वो ही गा के सिखाते थे मुझे क्योंकि क्लासेस नहीं थी, कथक बेस है लेकिन मेरे डांस का। तो खैर फिर वो दीदी की शादी बहुत जल्दी हो गई, 19वें साल के पहले ही मतलब कहते हैं डाउरी डेथ थी उनकी, तो वो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था, मतलब आज भी कई बार आंसू आ जाते हैं उनकी बात करते हुए मेरे आंखों में। तो उनसे जो छोटी दीदी थी उन्होंने कहा कि तुम्हारे मन में जो आता है ना याद करके लिखा करो, और डांस शशि दीदी नाम था शशि, तो उनने कहा कि शशि को मतलब उनका मन था कि तुम डांस करो, तो मेरी जो प्रभा दीदी वगैरह थी उन्होंने मुझे लगा था डांस, तो मतलब मैंने कई सारे डांस में भी अवार्ड सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार बहुत सारे जीते हुए हैं, सरस्वती माँ की कृपा है जो उन्होंने मुझे कला दे करके भेजा, और मैं कहती हूँ लिखना मेरे लिए सांस लेने जैसा, अब बोलती हूँ क्योंकि तब तो मालूम नहीं था मुझे। तो मैं जो भी मन में कुछ भी आता था पेंसिल से लिखती जाती थी उसको, फिर धीरे धीरे टीन एज की जब हुई तब तक मैं कहानियां लिखने लगी थी जी। तो उस टाइम्स ऑफ इंडिया का एक पब्लिकेशन था सारिका, धर्मयुग अगर आपने सुना होगा सारिका, ये दोनों टाइम्स ऑफ इंडिया पब्लिकेशन हुआ करते थे, तो सारिका में मेरी पहली कहानी छपी नवांकुर विशेषांक में। उसके बाद तमाम जगहों से पत्र आने लग गए और बात और मंगाई जाने लग गई कहानियां, और मतलब उस समय मुझे अब बहुत सेलिब्रिटी बन गई, इतने सारे लेटर्स के बीच में छोटी सी अलका बैठी हुई पत्र पढ़ रही है सारे। खैर फिर वो एक सिलसिला शुरू हो गया आकाशवाणी जबलपुर और फिर तमाम जगह, फिर बॉम्बे भी गई, तो मेरे साथ में अच्छा ये हुआ क्योंकि मेरे पति वैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं लेकिन वो मेरे लेखन को बहुत पसंद करते रहे हमेशा से, तो उन्होंने कहा कि तुम लिखना बंद मत करो, और मुझे कुछ वहां पर जनसत्ता में सब रंग उनका आता था। तो शादी के बाद भी मेरा लेखन कभी ना रुका नहीं, तो यही वाली बात है कि आप दुख से या तो अपने आप को बना लीजिए या दुख में अपने आप को खत्म कर दीजिए, तो दुख ने मुझे बनाया है जी, इस तरह में लिखने लग गई, शब्दों में ढाल दिया अपने दुख को मैंने।
3: ये जो सेंटेंस है जी, दुख से या तो अपने आप को बना लीजिए या खत्म कर दीजिए, यही से वो जो आपका जो पहला टाइटल है शायद वो सिद्ध हो जाता है कि मुर्दे इतिहास नहीं लिखते. इतिहास वो लिखते हैं जैसे आप जैसे लोग जो जिन्होंने दुख से अपने आप को बना लिया. मुझे लगता है लाखों लोगों को दुख से निकालने के निमित्त बन गए. क्या इसके लिए फिर

0: आपको ऐसा कुछ लगा कि हाँ मुझे और ट्रेनिंग करनी है या और कहानियों को समझना, किसको मतलब आप पढ़ते किनको थे या कौन आपको बहुत पसंद, कौन किसका लेखन आपको बहुत पसंद था?
1: जैसे चित्रा मुद्गल जी का बहुत अच्छा लिखता लगता है मुझे, मधु काकड़िया इस समय जो है हमारे समय की, मतलब हम हमारे से बड़ी पीढ़ी की हैं, लेकिन मधु काकड़िया जी बहुत अच्छा लिखती हैं। उसके अलावा जैसे कि हरिशंकर परसाई जी को तो मैं खैर एक तरह से उनके लेखन को जीती हूँ। ज्ञान रंजन जी भी मुझे बेटी जैसे ही मानते थे और मेरा एक सौभाग्य रहा है कि मुझे इन सब से मिलने का मौका मिला है। मुक्तिबोध को मैंने पढ़ा है, अज्ञेय को मैंने पढ़ा है, तो कई बार जैसे बाबा नागार्जुन की कुछ कविताएं बहुत अच्छी लगती हैं। इसी तरह से अमरकांत मुझे बहुत पसंद थे, उनकी जिंदगी और जो क्या बहुत सारी, तो मतलब मैं ये नहीं बोल सकती कि मुझे एक कोई साहित्यकार पसंद है। कभी किसी की कुछ चीज अच्छी लगती है, कभी किसी की कोई चीज बहुत अच्छी लगती है। तो और आपको ना वो रास्ता जैसे बशीर बद्र उनकी आप शायरी सुनेंगे कि आप सुने कि हम बचपन में थे ना, तो वो रखते थे उजाले अपनी यादों के, हमारी साथ रहने दो न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। और बहुत सारे हैं कि मतलब उनकी मतलब बार बार हम उनके बहुत सारे शेर हमें याद आते हैं। तो जो भी अच्छा मिलता है, और कई बार ये भी होता है आरुषि जी की बहुत नाम नहीं होता है किसी का, लेकिन अचानक आप उठा के पढ़ते हैं तो अरे इतने ये लिख दिया, ये मैंने क्यों नहीं लिखा, तो ये होता है। और जैसे कि कई बार ये होता है कि जैसे ना जैसे अगर आप बोलेंगी तो मैं अपनी एकाध आपको रचना भी सुना दूंगी।
2: जी मैं एक्चुअली वो पूछने ही वाली थी कि कुछ पंक्तियां अगर आप सुनाएं अपने लेखन की हमें भी तो हमें बहुत अच्छा लगेगा।
1: तो पहले से मैं बताती हूँ कि ना बता जैसे मतलब हमेशा मुझे मेरे हस्बैंड कहते हैं, और मैं ना मैंने मुझे लगता है कि आपका भी मुझे लग रहा है आपके अंदर का भी बच्चा हमेशा जिंदा रखती है आप, तो अपने भीतर के बच्चे को हमेशा जिंदा रखना चाहिए। तो मेरे पति हमेशा कहते हैं मेरे मम्मी पापा ने तुमको बड़ा करके नहीं भेजा, तो मैं कहती थी कि कहते हैं वो कि हम बड़े नहीं हुए, कहते हैं वो कि हम बड़े नहीं हुए, बड़े होना मतलब झूठ बोलो शान से मक्कार हो जाओ, क्या करें इस परिभाषा पे हम खरे नहीं हुए तो कहते हैं वो कि हम बड़े नहीं हुए।
2: वाह वाह वाह।
1: तो क्या हुआ कि मेरी बेटी अब तो बड़ी हो गई है, तो जब वो 5 साल की थी ना तो एक बार मेरे साथ जा रही थी। अच्छा वो वैसे मम्मा बोलती है, लेकिन जब वो बहुत उसमें प्यार में होती है ना तो माँ बोलती है मुझे, और मुझे बहुत मतलब तो मैं लगती हूँ कि ना, और सचमुच मुझे लगता है कि जो रिश्ते आपको जो खुशी देते हैं ना वो कहीं नहीं मिलती है। और मैं आपको 2 कविताएं इसलिए सुनाऊंगी कि आपने अगर परिवार चुना है तो पहले मैं वो सुनाती हूँ फिर मैं अपनी बेटी पे।
2: प्लीज प्लीज जरूर जरूर
1: जी। तो क्या सपने बन गए बोनसाई, कहते हैं कुछ लोग कि स्त्री जब बनती है माँ करती जाती है अपने सपनों को छोटा छोटा बहुत छोटा, मारती जाती है अपने सपनों को खुद बेमौत या हो जाते हैं उसके सपने बौने, बन जाते हैं क्या बोनसाई, बन जाते हैं बोनसाई। सोच का बवंडर उठा अभी तर उसके, क्या ये सच उसका भी है, क्या ये सच उसका भी है, हो जाने दिया है उसने अपने सपनों को बौना, बना दिया हरे भरे वृक्ष से बोनसाई। विचार मंथन चल पड़ा अंतस में, अगर ऐसा होता तो मिट चुका होता कब का वजूद उसका, उसने टटोला खुद के वजूद को महसूस किया, अरे वो तो वहाँ है, मतलब उसका वजूद तो वहाँ है, बड़ा अजीब है व्यक्तित्व उसका, एक कोस्त्री विमर्श की बातें तमाम पर झेलती है यातनाएं भी, तो क्या छद्म है उसके बौद्धिकता, लेखन में विरोध के स्वर है मात्र दिखावा, तर्कों की मथानी से फिर मंथन वो करती है, तब सांसारिक सच की सोच नवनीत से उतरती है, पत्नीत्व और मातृत्व का चुनाव उसका ही तो है, तो फिर शायद जायज है समझौते भी, यातना सहते हुए भी खुद को खुश रख पाती है, अपने वजूद से पहचानी जाती है, यानी नहीं होने दिया उसने अपने सपनों को बौना, जिजीविषा के पानी महत्वाकांक्षा की खाद और आत्मसम्मान की धूप से बचाया है उसने अपने सपनों को बोनसाई बनने से। तो अब मेरी बेटी मेरे साथ जा रही थी, एक बार 5 साल की थी तब, वो तो ऐसे आंख बंद करके एकदम बैठी थी, मैं उसको देख रही थी, अचानक उसने मुझे जो बोला तब ये कविता निकली, क्या बोला था इसमें आएगा। सुबह की सुहानी बयार सी है वो, अल सुबह की शीतल ओस सी है वो, उसे देखकर लगता है ऐसे भर ली हो भोर की भीनी खुशबू भीतर जैसे, उसका मीठा बोसा लगता है यूं सहला गया ठंडी हवा का झोंका जूं, चूमती जब मासूमियत से आंखों को मेरी, कितना नाजुक पिघलता सा है वो एहसास, उस रोज उस रोज सुबह सुबह संग मेरे वो निकली, नन्ही परी ने आंखें बंद कर ली अपनी, खो गई एक प्यारी सी दुनिया में, एंजल सी चमकती चेहरे पे उसके, अपनी छोटी छोटी बाहों का घेरा मेरे गले में डाल, आंखों में सितारे भर कर कहा उसने, माँ माँ माँ मुझे सुबह बहुत अच्छी लगती है। अनाज ना सब बज उठा अंतस में मेरे, मंदिर में बज गई हूँ घंटियां जैसे, कैसे महसूस कर पाती है मेरी नन्ही सी कली सुबह की पावन खूबसूरती, कितनी मधुर है ये अनुभूति, बड़े प्यार से फिर वो मुझसे सटी, सीप सी पलकें बंद कर अपनी, झर झर झर झर झर झरते झरने सी आवाज में कहा उसने, सुबह कितनी अच्छी लगती है ना माँ, है ना माँ सुबह कितनी अच्छी लगती है ना। खिल उठी भीतर मेरे खुशियों की बीथियां, कितनी प्यारी होती हैं बेटियां, आगोश में अपने भर कर पेशानी उसकी चूम कर कहा मैंने, बेटी मेरी मुझे तो तू खुद सुबह सी लगती है, तू खुद सुबह सी लगती है।
2: क्या बात है। मतलब सच में ये जो आपने पंक्तियां कही हैं, हर माँ सुनेगी तो अपनी बेटी को, अगर वो उनसे थोड़ा सा भी दूर है तो मुझे लगता है वो उनके करीबी पल, वो उनकी आंखों के सामने वैसे तो रहते ही हैं, लेकिन वो आंखों में आंसू बन के बह जाएंगे। इतने खूबसूरत हैं ये पंक्तियां। आपकी बेटी क्या कहती है जब वो आपकी कविता सुनती है?
1: मेरी बेटी अभी मतलब बेटा भी है मेरा, अभी जॉब कर रहा है, और बेटी अभी लॉ कर रही है और फोर्थ ईयर में है। और अभी मैं आपको बताऊं कि पता नहीं, मतलब कई बार हमको लगता है कि शायद पता नहीं वो उतना प्यार करती है, लेकिन अभी इधर मैं भोपाल में किसी कार्यक्रम से गई थी, यहाँ पर हूँ मैं 26 तारीख से, तो वो मुझे बहुत मिस कर रही है, तो रोज फोन करती है, तो मुझे लग रहा है कि काश मैं जल्दी चली जाती। खैर, तो वो ना लॉ कर रही है। अच्छा, एक बात अच्छी कि वो इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखती है, मुझसे अच्छा। बेहतर लिखती है, और वो बहुत कम शब्दों में बहुत अच्छी बात कर लेती है। तो मैं कहती हूँ कि उसका नाम, वैसे हम लोग घर में मिष्टी बोलते हैं, वैसे उसका नाम शरण्या है।
2: अच्छा।
1: तो कई बार ना वो जब छोटी भी थी ना, तो जैसे मैं उसको लोरी सुनाया करती थी, तो वो मुझे अपनी गोद में सुला करके वैसे लोरी गाती थी। तो मैं कहती थी कि बेटी माँ बन जाती है, तो मतलब ये होता है। तो अभी भी ना कई बार मम्मा ऐसे नहीं करना, मम्मा वैसे करना है, तो मैं कई बार, मुझे लगता है, और मैं अभी उसको बोलने देती हूँ, क्योंकि मुझे भी लगता है कि हाँ वो मेरी माँ बन करके मुझे उस तरीके से वो कर रही है। तो बड़ी प्यारी सी, नाजुक सी है, और अच्छा लिखती है, और लॉ कर रही है, और उसका शुरू से ना बहुत ये मन था कि मैं इसमें रहूं, मतलब जो जासूसी जो सीरियल होते थे, हाँ, इस तरह के जो होते थे वो देखा करती थी, तो उसको उसमें मतलब बहुत इंटरेस्ट आता था, तो उस तरीके से वो अब वो लॉ कर रही है।
2: क्या बात है। अच्छा, इसीलिए उन्होंने वो प्रोफेशन बनाया उसको, और समाज की मदद के लिए, जैसे वो एक उसको इंटरेस्ट को भी उन्होंने उसको इस्तेमाल किया। क्या बात है। तो वो क्या करते हैं, तो जब आपके घर वाले आपकी कविताएं सुनते हैं तो क्या आपको फीडबैक देते हैं, कैसा लिखा है ये कहते हैं, या क्या महसूस हुआ, कैसा, मतलब पहले, सबसे पहले जब आप लिखते हैं तो किसको सुनाते हैं आप?
1: आपको बताऊं, मैं सबसे पहले अपने पति को सुनाती हूँ।
2: अच्छा,
1: ठीक है
2: जी।
1: वो मेरे सबसे बड़े क्रिटिक हैं, और वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, लेकिन मैंने देखा कि साहित्य की समझ उनके बहुत अच्छी है, और मैं ना बहुत जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी अभी जैसे बोल के बता रही हूँ आपको, मैं बहुत जल्दी जल्दी बोला कर
2: जी।
1: तो मुझे कहते हैं कि थोड़ा ना थम थम के
2: आराम
1: से, है ना। तो उन्होंने मुझे एक तो ये सिखाया, दूसरा वो कहते थे कि तुम्हारा जो फोर्टे है वो तुम्हारी भावनाएं, संवेदनाएं हैं, तो तुम अपने किसी के बोलने से ना उसको बदलो नहीं। और वो कई बार मुझे कहते हैं नहीं ये चीज ऐसे अच्छी नहीं लग रही है, तो वो मैं उनको बताती हूँ। अच्छा, कई बार ये भी होता था कि मैं अपने कुछ दोस्तों को भी बता देती थी, तो पता चलता था थोड़े दिन में मेरी चीज उनके नाम से आने लग गई। ये बहुत होता है आरुषि जी, मेरी तो आपको बताऊँ ये कविता है जो बहुत ज्यादा फेमस हुई है, द्रौपदी तुम्हें उठाने होंगे शस्त्र, तुम्हें ही बनना होगा सशक्त, नहीं आएंगे अब कोई कृष्ण, उसको चुरा के लोगों ने कह लिया सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो अपना आएंगे गोविंद, ये मैंने लिखी थी कविता।
2: अच्छा, उसमें एक दो शब्द बदल के
1: और ये मतलब एक मिनिस्टर है, नाम नहीं ले रही मैं यहाँ रेडियो पे, एक मिनिस्टर है, उन्होंने फिर एक और, तो तमाम उसको बहुत सारे राजनेताओं ने उसको कोट किया। तो मेरा बेटा मुझे बोलता है कि मम्मा आप लिखते हो, आप इतना अच्छा लिखते हो, आप उसके लिए, तो मेरे पास में मेल है वो, जब मैंने पहले लिखी थी, भेजी थी, पेपर में छपी भी थी। अच्छा, मैं एक और काम किया करती थी, उस कविता को हम तो जाते थे, हम मार्शल आर्ट वालों को लेकर के जाते थे, तो मार्शल आर्ट वाले जो थे वो वहां पे मार्शल आर्ट सिखाते थे लड़कियों को, एक मेरे साथ वकील जाते थे मेरे दोस्त, और मैं एक कविता गाती थी, बोलती थी, तो हम पूरी लड़कियों को, मैं कहती थी कि आप लड़कियों को इतना ट्रेन कर दो कि दो चार लोगों को से अपने आप को सेफ तो कर सके वो।
2: बिल्कुल।
1: तो ये मेरा ये पूरा का पूरा मोटो था, लेकिन खैर उसके बाद मेरे एक सीरियल को मेरा मैंने लिखी थी कहानी,
3: तपस्या वाला था वो क्या था, तपस्या थी उस सीरियल में. अब मैं सीरियल का नाम पता नहीं कैसे अचानक से अभी बात करते, तो उस पर

0: अपनी शर्ट उठा लो कि मतलब द्रौपदी अब जगह जगह पुकार रही है, लेकिन मतलब उसको खुद को ही सशक्त बनना होगा। तो ये तो है, लेकिन अभी फिलहाल ये है कि जैसे दूसरों को भी कि मतलब हम कहते हैं कि अपने दिल और जान में रखना, ना मेरा भी ध्यान में रखना, मुफलिसों को ना दो चांद तारे भले वाके उनके ध्यान में रखना। कि भाई आपके मन में एक दया भाव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने किरदार, ये देखिए जैसे कि अपने किरदार को बहुत मजबूत इस बदलते जहान में रखना। ऐसे नहीं कि आप बह गए धारा के साथ में, तो मेरा शीर्षक भी मुर्दे इतिहास नहीं लिखते। आपका अगर किरदार मजबूत है तो फिर आपको कोई बदल नहीं सकता है। कि इस बदलते जहान में रखना, तेरे कपड़ों पे जो है गर्दे सफर कामयाबी की शान में रखना। कई लोग कैसे होता है ना कि जब बड़े बन गए तो भूल जाते हैं। आप अपनी जमीन से हमेशा जुड़े रहे, तो ये मैं कहती हूँ कि तेरे कपड़े पे जो है गर्दे सफर कामयाबी की शान में रखना। हमेशा याद रखो कि हम कहाँ से उठे, कहाँ पहुँचे हैं। और तुमको आकाश है छूना अगर, तुमको आकाश है छूना अगर, पंख अपनी उड़ान में रखना, अपने दिल और ध्यान में रखना। और ये जो आपने कहा कि मुझे कई लोग कहते हैं कि तुम इतना मीठा बोलती हो कि मतलब हम तो बड़े अट्रैक्ट हो जाते हैं। मैंने कहा नहीं, वो ऊपर वाले ने देके भेजा है। तो ये शायद इस तरह है कि सुन के हो जाए जो फिदा तुम पर, सुन के हो जाए जो फिदा तुम पर, लुत्फ ऐसा जुबान में रखना, अपने दिल और ध्यान में रखना, अपने दिल और ध्यान में रखना। और कभी कभी होता है ना कि हम बहुत दुखी हैं तो हम बोल नहीं पाते हैं। तो अब जैसे अब तो बाबा है वो कोना, हमको कभी लगेगा तो हम बाबा को स्मरण करेंगे। तो कि रो सको जहाँ पे छुप छुप कर, रो सको जहाँ पर छुप छुप कर, ऐसा गोशा मकान में रखना, ऐसा कोना मतलब गोशा, ऐसा गोशा मकान में रखना। और वो गोशा आध्यात्मिक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और ये के कम नहीं है, हालांकि मैंने अलका अपना इसमें तलफ़ुज़ जो होता है मक्ता जो कहते हैं, लेकिन मैं इसको भी बदल देती फिलहाल यहाँ की। कम नहीं है किसी से कोई, कम नहीं है किसी से कोई, दोस्तों ये गुमान में रखना, दोस्तों ये गुमान में रखना। तो आपने जैसे कहा, तो मेरी कहानी थी बेटी
1: जी,
0: तो उसमें माँ अपनी बेटी के बारे में सोचती है। और वो पहले सोचती नहीं शादी, तो दूसरे कहते हैं भाई बेटी बड़ी हो रही शादी करा। तो बेटी को फिर बताने लगती है देखो तुम जाओगी एक राजकुमार जैसा लड़का होगा, तुम्हारा ध्यान रखेगा। और लड़की वो बेटी सपने पाल लेती है, शादी होती है, शादी होती है जब, तो वो जब आती है घर तो वो खुश नहीं है, मैके जब आती तब माँ को समझ में आता है कि उसको जो सपने बेटी को दे दिए हैं वो उसको हाथ में हाथ लेकर घुमाने नहीं लेकर जाता है। बहुत सारी जो चीजें,
1: राजकुमार आएगा,
0: राजकुमार आएगा, तो वो तो नहीं मिला उसको कि भाई नमक कम है तो भी बोलेगा है वो है। तब उसको समझ में आता है कि मैंने इसे गलत सपने दे दिए हैं। फिर वो उसको दूसरी तरह से कि एक एक कविता है कि हो जाती वो पयस्विनी, जब वो माँ खुद बनती है तो महिला, तो बेटी को फिर अलग तरीके से समझाती है।
1: अच्छा।
0: आपकी, और वो प्रेग्नेंट है जब बेटी आती तभी भी खुश नहीं, तो फिर उसको अलग तरह से समझा के भेजती है। और कि मतलब आपकी बार अगर दुखी हो जाएगी तो मैं इसे नहीं भेजूंगी, लेकिन उसको मालूम है कि मैंने इसे ऐसा समझा दिया है क्योंकि मैंने उसे गलत ट्रेन किया था। तो ये जो हम संस्कार देते हैं ना, तो वो हमारे भीतर कहीं ना कहीं पनप जाते हैं। तो माँ जो बच्चे को सिखाती है वो बहुत सोच समझ के बताना चाहिए कि उसको आगे जाकर के भी एक घर संभालना है। तो वो उस तरह से ट्रेन करे कि वो समझ पे आए कि हाँ मेरे ऊपर जिम्मेदारियां आ रही, अब मैं वो बच्ची नहीं रह गई हूँ। बहुत बहुत बदलना पड़ता है। तो मुझे जो मेरी टाइप करते थे उनने कहा कि एक दिन मुझे कहा कि क्या लड़कियां सब सोचती कि शादी के बाद ऐसा होगा। मैंने कहा अमूमन तो सभी सोचती,
1: अमूमन सभी सोचते,
0: तो मैंने भी सोचा था। बोले अच्छा। तो मुझे एक दिन फोन किया, मैं आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ। मैंने कहा कि क्यों? बोले कि आपकी कहानी से मैं अपनी पत्नी की भावनाओं को समझने लग गया, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर एक दिन मैंने बोला कि मेरे कुछ कहानियां टाइप कर दीजिए। बोले आज आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं नहीं कर सकता। मैंने कहा क्यों? बोले मैं आज अपनी पत्नी को डेट पर लेकर जा रहा हूँ और ये आपकी कहानी का असर है।
1: और इससे पहले शायद वो,
0: हाँ तो वो
1: रियलाइजेशन उनको हुआ उससे।
0: एक्चुअली मतलब क्या होता है ना, कई बार ना जो दूसरे घर से लड़की आती है ना, पति समझ ही नहीं पाता है कि ये कितनी अंदर अपनी भावनाएं लेकर आई है,
1: उनके सपने क्या है,
0: सपने लेकर आई है ना। और आप जब तक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ही नहीं आप कायम कर पाते, तो जब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है और हम एक दूसरे के साथ में साथ साथ कदम बढ़ा के चल रहे हैं ना, ये कोई नहीं सोचे कि मैं, ये तो आई है मैं ही, क्योंकि एक शोविनिस्टिक मेंटालिटी
1: सोचते हैं इनको एडजस्ट करना है, ये आई है यहाँ से, मगर वो सोच उनके मन में क्या चल रही है वो सोच समझ ही नहीं पाए।
0: वही वाली बात। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि उसके बाद उनको लगा कि अच्छा ये भी सपने लेके आई,
1: बदलाव कितना,
0: उसको समझना चालू कर दिया। तो मुझे

0: लगता है कि मेरा लिखना सार्थक हो गया. और इससे मुझे बहुत सारे इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं, जैसे कई लोगों ने मुझे कहा कि आपको देख के हमने डांस करना सीखा, आपको देख कर, मतलब कटनी में पहले मैं मारवाड़ी हूँ, हमारे दादाजी नगर सेठ हुआ करते थे, तो लड़कियों को डांस वगैरह, इवन मेरे बाबा जी ने वैसे बहुत हमको फ्रीडम दे रखे थे. हमको कभी पता, आप आरुषि जी, मैं बिल्कुल खुले दिल से बोलती हूँ कि मुझे कभी वो डिस्क्रिमिनेशन हमारे घर में नहीं हुआ,
1: लड़का और लड़की वाला.
0: हाँ, लड़का अच्छा. लड़की वाला कभी नहीं हुआ. हम लोग 5 बहनें थे, पर कभी नहीं, ना बाबा जी ने, दादा जी ने, ना पापा ने, मम्मी, किसी ने नहीं. तो फिर लेकिन वो लोग आए तो बोले डांस, तो उनने बोला भाई नगर सेठ की बेटी ने, लोकचंद फुलचंद की पोती डांस करेगी, तो बोले अगर आपकी बेटी डांस करेगी पोती तो बहुत सी बच्चियों, तो उन्होंने हाँ कह दिया.
1: अच्छा, कि हाँ, बाकी लोगों को भी और इंस्पिरेशन मिली.
0: हाँ, तो उन्होंने हाँ कहा. और मैंने पहला डांस जो किया था वो था होठों पे ऐसी बात.
1: हाँ,
0: और उसके बाद में कारी कारी कारी अंधी आ रही थी रात नवरंग की, तो उसमें भी मुझे दूसरी बार किसी ने डरा दिया, अरे तुमसे तो बहुत बड़ी डांसर आ रही, तुम क्या जीतोगे, छोड़ दो. मैं रोई तो मम्मी ने कहा अब तो तेरी असली परीक्षा है बेटा, अब तो तेरे को जीतना ही, दीदी लोगों ने भी. तो वो मैं फिर जीती, फिर मैं सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार बनी.
1: क्या
0: तो ये मतलब हमेशा मुझे, मतलब ये कि मुझे लोग फॉलो करते, अच्छा अलका ने किया, उनकी पोती ने किया, अब हमारी बेटियों को भी,
1: हमारी बेटियों को भी करना चाहिए ना, करना एक चाहिए. क्या बात है. मुझे आपकी बातों से ना एक चीज और बहुत समझ में आई कि साहित्य कैसे जीवन को आसान बनाने में मदद करता है, कैसे एक दूसरे को समझने में मदद करता है. तो हमें से बहुत लोग हैं जो पढ़ते नहीं है, मोबाइल में ही चले गए हैं जिंदगियां. तो अगर साहित्य के और नजदीक जाएंगे तो अपने आसपास वालों को भी और बेहतर समझ पाएंगे.
0: बिल्कुल सही बात है जी,
1: ये पढ़ना चाहिए. और जी
0: बिल्कुल, देखिए क्या होता है ना, आपने आप भी बचपन से पुस्तकें सबसे अच्छी दोस्त होती हैं. और मैं दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर में गई थी, तो आज तक वालों ने एक इंटरव्यू किया था, उनने कहा कि क्या आपको लगता है कि आजकल पुस्तकों का अस्तित्व खत्म हो रहा है. मैंने अगर ऐसा होता तो आप पुस्तक मेले में मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, और तमाम स्टॉल्स हैं और लोग खरीद रहे हैं किताबें, और स्पेशली जाते हैं, और खास करके बच्चों के माता पिता जाते. मेरी बेटी भी बहुत पढ़ती, ठीक है, वो अंग्रेजी में पढ़ती लेकिन बहुत किताबें पढ़ती है. तो कई बार क्या होता है कि जैसे जब हम मोबाइल पे, आजकल जो हम रील बोलते हैं ना, रील लाइफ में के कारण हम रियल लाइफ से दूर होते जा रहे हैं. और व्हाट्सएप, हम फेसबुक पे, अच्छा अभी हम परिचित हो गए, अच्छा आप में से कनेक्टेड है, अरे अलका जी आपकी तबीयत, ओ प्लीज गेट वेल सून, अपना ध्यान रखिएगा, ऐसे लगेगा आरुषि जी से ज्यादा तो मेरा कोई अपना है ही नहीं. लेकिन अभी मेरे घर में अगर कोई है, और मैं आपको तो पूछ रही हूँ, आप मुझे पूछ रहे, लेकिन आपके घर में तो मतलब लोग लीस्ट वरीड होते हैं, या सोचते भी नहीं कि घर में भी हमको वही चीजें करनी है. तो लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो साहित्य हमें एक एक, एक भावना देता है. जैसे मेरी जिंदगी में बहुत सी चीजें हैं कि मैंने कहानियां पढ़ रही हूँ, आलेख जैसे मैंने परसाई जी को, उनको पढ़ करके मेरी चीजें बहुत भीतर बदला है.
1: जो
0: आप उसको उस तरह से जब पढ़ेंगे ना, आपको बहुत एक प्रेरणा मिलती है. कई बार
1: पर्सपेक्टिव भी मिलता है, एक नया पर्सपेक्टिव भी मिलता है,
0: पर्सपेक्टिव मिलता है, नया पर्सपेक्टिव मिलता है जिंदगी को समझने का. अच्छा, कि हम तो अभी तक हम कूप में डूब बने रहते हैं, पर जब आप पुस्तकों को पढ़ते हैं, क्योंकि देखिए बहुत से लेखक, जैसे वो क्या होता है कि उन्होंने पूरी राजनीति पढ़ी होती है, तमाम माइथोलॉजी पढ़ी होती है, तमाम वेद पढ़े होते हैं, या नहीं भी तो और जिंदगी को पढ़ा होता है, और वो उसको उसका सार उसमें लिखते हैं. तो आपको तो सार पूरा मिल गया ना एक जगह, तो जब आपको सार मिल रहा है तो आपको साहित्य बहुत कुछ देता है. साहित्य का अर्थ होता है सहित, जिसमें हित हो, सबका हित,
1: सबका हित हो,
0: तो साहित्य तो हित ही करेगा, तो साहित्य पढ़ना ही चाहिए.
1: अलका जी, मैं आपसे ये जरूर जानना चाहूंगी, जो युवा हमें सुन रहे हैं, अगर आप कुछ किताबें सजेस्ट करें कि उन्हें क्या पढ़ना चाहिए, कुछ किताबें.
0: देखिए आजकल एक तो सेल्फ हेल्प की बुक्स बहुत आ रही, रॉबिन समथिंग, उनका ध्यान एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा, और रोंडा बर्न की भी, जैसे द मैजिक, और आप लोगों का भी साहित्य शायद जैसे अभी जीवन पलटने की कला है, तो ये तो एक अलग चीज है. लेकिन उसके अलावा जैसे कि बहुत सी अच्छी कविताएं आती हैं. हाँ, नेगेटिव बहुत ज्यादा मत पढ़िए. और उसके अलावा जैसे कि हमारे जो बहुत सारे पहले के साहित्यकार हैं, जैसे मैंने इंग्लिश में भी एमए किया है, तो आप वर्ड्सवर्थ को पढ़ते हैं या शैली को पढ़ते हैं, बहुत सारी चीजें हैं ऐसे, तो मुझे लगता है कि उनको पढ़ना चाहिए. और आजकल के भी जैसे अब देवदत्त पटनायक, जो आपके यहाँ शायद आ भी चुके होंगे, वो तो उन्होंने माइथोलॉजी को ना बहुत ही खूबसूरती से डिपिक्ट किया है. उनके एक हनुमान की रामायण है, पता है आपको?
1: अच्छा,
0: उन्होंने लिखी है, हाँ, कि हनुमान जी ने एक रामायण लिखी. तो वाल्मीकि जी को पता चला कि नारायण ने उनको बोला, नारद मुनि ने कहा कि आप जाइए एक बार हनुमान की रामायण देखिए. तो हनुमान जी की रामायण पता कहाँ लिखी थी? एक गार्डन में, एक बागीचे में, और केले के पत्तों में, इसमें उसमें उसमें. और वो वाल्मीकि जी पढ़ते जा रहे, रोते जा रहे, रोते जा रहे, तो हनुमान जी बोले क्यों रो रहे हैं आप ऐसे, तो बोले नहीं आपने जो लिख दिया मेरी रामायण कौन पढ़ेगा. आपने हनुमान जी ने क्या किया उसको सारे को खा लिया पत्तों को. बोले क्या किया आपने इतना सब लिखा. बोले मेरे राम मेरे अंदर है अब आपको हमेशा सब याद रखेंगे. तो इस तरह के जो आपको एक जगाने वाली अवेयरनेस जहाँ है वो सारी चीजें. और आजकल तो देखिए ये डिजिटल जमाना है आप
1: बिल्कुल
0: AI दे देता है गूगल को पूछे
1: आप डाउनलोड कर सकते हैं पढ़ सकते हैं ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं बहुत सारे नॉवेल्स भी उपन्यास भी.
0: हम बॉम्बे में रहते हैं मैं सोचती हूँ मैं अपनी लाइब्रेरी बहुत बना लूँ बड़ी बन तो कहाँ रखूंगी मैं सारी चीजें 3 BHK के फ्लैट में. अब आप ऑनलाइन करते जाए किंडल पे पढ़ लीजिए और उसमें देखिए कि सेल्फ हेल्प बुक्स मुझे जैसे जिस समय मुझे जो पढ़ने का मन है कि आई एम फीलिंग लो नहीं मुझे कुछ पढ़ना है मुझे आध्यात्मिक कुछ पढ़ना है तो सब कुछ तो आपके एक क्लिक में अवेलेबल है.
1: बिल्कुल
0: क्योंकि मैं बोल दूंगी ये पढ़ो तो नहीं क्या होता है जो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है
1: उनको क्या इंटरेस्ट है
0: उनको क्या पढ़ना है उनका क्या इंटरेस्ट है. तो जिसमें खुद की रुचि हो बस आप ये मत पढ़िए कि आप दूसरों का बुरा करने का सोचे. अपने आप को आप कैसे ग्रो कर सकते हैं कैसे इवॉल्व हो सकते
1: ऐसा
0: हैं
1: कुछ पढ़िए
0: एक कहते बेहतर इंसान बन सकते हैं जो कल से उससे बेहतर बनना है हमें और बेहतर करते करते दूसरों को भी साथ में लेके चलना है ऐसा कुछ पढ़िए.
1: बहुत सुंदर बात है और चाहे कहानियां पढ़े चाहे कविताएं पढ़े लेकिन और मुझे लगता है और संवेदनशील भी बनाती है हमें ये.
0: बिल्कुल मैं एक छोटी सी लघु कथा आपको बता देती
1: हूं. बिल्कुल, बिल्कुल
0: अभी हाल ही में जैसे क्या होता है और ये सचमुच में जब होता है ना क्योंकि कहानियां हमें जिंदगी से मिलती हैं आरुषि जी. तो आजकल कैंसर बहुत कॉमन हो गया है तो एक हस्बैंड वाइफ है और वो जो वाइफ है वो सोच रही कि आज वो अक्षत और लड़की का नाम है रंगोली अक्षत आज कहाँ रह गया अभी तक आया क्यों नहीं आ रही उसने मुझे वीट जूस भी बना के नहीं दिया है. वो अपने कमरे में जाती है और तमाम वो सारी देखती जहाँ उन दोनों की फोटोज हैं यहाँ गए थे वहाँ गए थे. अच्छा वो देखती है डेकोर पूरा उसके मन से तो अक्षत ने कराया पूरा पर्ल कलर का. फिर वो देखती है कि कहीं पर्दे का हवा का झोंका आता है और उसके बाल उड़ते हैं तो उसको याद आता है कि अक्षत कहता कि रंगोली तुम्हारे बाल कितने सुंदर है ना एकदम मतलब मुलायम ये रेशमी और ब्राउन कलर के वैसे सब तो वो अपने आंखों पे उसके बाल भी छा लेता. तो कहती अक्षत बाल तुम्हारे भी तो कितने सुंदर तुम रोमन गॉड जैसे दिखते हो. और अचानक वो सोचते सोचते दर्पण के सामने चली जाती है और देखती कि उसके सिर पे बाल नहीं है क्योंकि केमोथेरेपी से बाल चले गए तो 6 महीने पहले उसको कैंसर डिटेक्ट हुआ था. और इससे तो वो मतलब रोते रोते सो जाती थोड़ी देर में उसको स्पर्श महसूस होता है तो देखती अक्षत तुम कहाँ अक्षत तुम्हारे बाल कहाँ गए. तो वो बोलता है नहीं वो चलो सॉरी चलो खाना भी लगा है और तुम्हारा वीट जूस भी बना हुआ है. तो तब वो देखती तो बोलता है कि बस वो मतलब उसको मतलब वो बहुत प्यार से सताता है. तो वो सोचती कि आज जो रंगोली है वो अक्षत के प्यार से सज गई है. मतलब ये कि पति जो है उसके लिए उसने अपने बाल भी कि जब तक उसकी पत्नी के बाल नहीं आएंगे वो भी बाल ऐसे ही रखेगा. तो ये जो चीजें होती है ना कि मतलब एक पॉजिटिव संदेश मैं देना चाहती हूँ. आजकल मैं लघु कथाओं मतलब मैं लघु कथा शोध केंद्र बॉम्बे की अध्यक्ष बनी हूँ हाल ही में. तो हम लघु कथाओं पे बहुत काम कर रहे हैं और आजकल की लघु कथाएं जो एक संदेश देना चाह रही है वो बहुत पॉजिटिव संदेश देती हैं कि अब उसमें नेगेटिविटी नहीं हो और एक पॉजिटिव संदेश के साथ में अपनी लघु कथा को खत्म करिए. तो आजकल हम लोग वो कर रहे हैं.
1: कई बार हम सोशल मीडिया पे भी और अपने आसपास जिंदगी में बहुत चीजें देखते हैं लेकिन उन्हें भूल जाते हैं. कहते हैं ना आजकल की रात गई बात गई जैसे हो जाता है एक न्यूज आई दूसरी न्यूज चली गई. लेकिन जब लघु कथा के रूप में हम उन्हें सुन रहे हैं तो मुझे लगता है वो छाप छूट जाती है वो चीज फिर वो हमारे अंदर वो हमारा हिस्सा बन जाती है कहीं ना कहीं. बहुत प्रेरणादायक कहानियां हैं.
0: आपने जैसे बात की आपको याद है ना बचपन में हम सब ने कहानी सुनी ना कि एक पिताजी थे उन्होंने अपने बच्चों को बोला एक लकड़ी का गट्ठर दिया कि तोड़ो है ना.
1: बिल्कुल.
0: तो वो कोई नहीं तोड़ पाए जब अलग अलग करके तोड़ा तो तोड़ दिया. तो उन्होंने कहा यही चीज सिखा. तो कथा के माध्यम से वो बात हमेशा आपके जहन में जैसे आपने कहा बिल्कुल वही बात है कि हमारे जहन में अंकित हो जाती है हमारे अंदर अंकित हो जाती है हमें याद आती है. मैं अपनी बेटी को ना बचपन में और बेटे को भी एक कहानी सुनाती थी. हम लोग मारवाड़ी हैं हल्दी हल्दी मल्दी सटवा सूट. अच्छा. कि सटवा सूट जो है वो थोड़ी सी बिटर है दो बहनें हैं तो हल्दी मल्दी सबका भला करती है. जब हल्दी मल्दी अपनी नानी के घर जाती सबको मिलती सबका भला करती जाती तो जब वो लौटती तो उसको बहुत सारे गिफ्ट मिलते. सटवा सूट भी कहती कि मैं जाऊंगी और सबको तो जो भी बोलता क्यों मैं क्यों वो तो थी हल्दी मल्दी मैं हूँ सटवा सूट मैं नहीं करती तुम्हारा काम. अब वो आती तो उसको कोई कुछ नहीं देता. तो मेरी बेटी आज भी मम्मा मैं आपकी हल्दी मल्दी हूँ ना. तो ये हमें ना इस तरह की संस्कार कहानियों के माध्यम से हम अपने बच्चों को दे सकते हैं. और बिल्कुल आपने सही बात बोली कि आप भाषण देंगे ना कोई नहीं सुनेगा, उसको इंटरेस्टिंग वे में बता के कहिए तो आपको लोग जरूर सुनेंगे,
1: जरूर सुनेंगे। तो कहानियां और पढ़िए और सुनिए और सुनाइए, है ना। भारत की तो मतलब मुझे लगता है भारत में तो कहानियां बसती हैं हर कोने में,
0: बिल्कुल
1: हर भाषा में, हर लोकगीत लोक कथा में बहुत कुछ है सच में। तो आपने आज हमें वापस मुझे लगता है जोड़ दिया, जहाँ से हम थोड़ा दूर भी निकल आए थे, तो वापस उन कहानियों की ओर अब बढ़ जाएंगे। अलका जी, क्या कोई और आपकी ऐसी कविता या कोई एक ऐसा हमारे श्रोताओं के लिए अगर आप शेयर करें?
0: बिल्कुल सुना दूंगी आपको। वैसे लता दीदी पर भी एक, जब लता दीदी तो गजल तो मैं गा के तरन्नुम में तो अभी नहीं सुनाऊंगी
1: जी,
0: पर एक है ना ये, आजकल हम पर्यावरण के लिए बहुत परेशान मतलब है, देखिए तो मैं सुना देती हूँ कि क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं सुनाऊंगी कि जहाँ पर कहीं पर नेगेटिविटी हो।
1: okay.
0: एक ये बॉम्बे में आतंकी हमला हुआ था, है ना, तो उस समय अच्छा मैं एक चीज और बताती हूँ कि मैं जब बहुत दुखी होती हूँ ना और गुस्से में होती हूँ तो मेरे भीतर से कविता निकलती है, सिलसिलेवार जिंदगी कहानी बनती है, और मैं व्यंग भी लिखती हूँ, मेरे जैसे आपने व्यंग संग्रहों के नाम भी लिए, तो विसंगतियां व्यंग बन जाती। तो जब ये आतंकी हमले हो रहे थे लगातार, और हमारे भी बहुत परिचित लोग थे जो उसमें मारे गए थे, तो उस समय मैंने एक सिम्बॉलिक कविता लिखी थी कि मैं उसको कुछ तरन्नुम में भी गा के थोड़ा सा वैसे बता देती हूँ। एक चिड़िया दरख्त पर

बीच हरियाली छाई थी, खिले थे सुंदर फूल, तितलियां रंग बिरंगी उड़ रही थी उड़ रही थी। माँ तोती ने दरख्त पे बनाया एक घरवंदा, सुरक्षित रखकर बच्चे उसमें निकल गई लेने दाना। पर अचानक कहीं से आया एक कठफोड़वा, ये कठफोड़वा वो आतंकवादी है जो

चीखे डर डर के, तितली के पंख गिरे कट कट के, हरियाली बदली पतझड़ में, फैल गया आतंक, मिठू न जाने कहाँ गुम हो गया। तितलियों ने उड़ना छोड़ा, हो गए फूलों के रंग सभी बदरंग।

0: सच में वो उस इंसिडेंट ने, उस घटना ने हम सबको हिला दिया था, अंदर से झंझोर दिया था.
1: मुंबई का जो आतंकी हमला
0: था वो भूल नहीं सकते. और ये जो आपने कविता सिंबलाइज करके उसको जो वो हम भावनाओं को प्रकट किया, ये एक लेखक ही कर सकते हैं कि उस प्रकार से भी उस बात को कहा जाता है, हम सोच नहीं सकते. आपका बहुत बहुत धन्यवाद है अलका जी. मुझे लगता है आपकी इतनी कहानियां, इतनी सारी बातें हैं, अभी संभव नहीं है सब कुछ एक घंटे में समेट पाना, लेकिन फिर भी जो आपने जो आज सुनाया है वो हमारे सिर्फ आज तक नहीं, मुझे लगता है आगे तक वो प्रेरणा बन के हमारे साथ रहने वाला है.
1: मैं अगर एक मिनट होगा तो खाली आदर्श एक हमने फिल्म लिखी थी और आदर्श पे फिल्म के ऊपर हमने नॉवेल लिखी थी.
0: अच्छा.
1: तो उसमें मैंने क्यों इसलिए बोल रही हूँ कि यहाँ पर उसमें एक न्यूक्लियर फैमिली जो एकल परिवार होते हैं ना, एकल परिवार का बच्चा कैसे अपने आप को, कई बार तो हम बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग होने लगती है, तो वो कुछ ऐसा है, तो ये जो है परिवारों को बचाना कैसे जरूरी. तो आदर्श फिल्म जो है उस तरह से वो मैंने लिखी थी और वो बहुत ही खूबसूरत फिल्म है. बल्कि मैं तो चाहूंगी मैं आपको लिंक भेज दूंगी अपनी,
0: जरूर जरूर,
1: तो आप वो देखिएगा. तो मुझे लगता है कि ना हम लेखकों का एक दायित्व ये भी है कि सिर्फ लिखने के लिए ना लिखें, है ना, एक कुछ ना कुछ बदलाव. और जो कृतित्व और व्यक्तित्व है ना लेखक का वो एक हो, ये मैं चाहती हूँ कि आप लिख कुछ रहे हैं कुछ वो मत करिए, जो आप हैं वो लिखिए और समाज में बदलाव की चेतना के लिए जरूर लिखें. आप समाज सुधारक नहीं है हम, पर कोशिश करें कि कुछ तो बदले, कुछ तो अच्छा लिखें हम. तो बहुत अच्छा लगा मुझे आज आपके रेडियो मधुबन में, और क्योंकि यहाँ बहुत सारी पॉजिटिव वाइब्स हम लेकर जा रहे हैं और कोशिश करेंगे हम कि प्रयास हमारा ये रहेगा कि हम आगे भी जुड़े रहें और अपने घरों में भी उसी शांति के प्रकाश को फैला सकें. आपकी मुस्कान बहुत प्यारी है. आपकी मुस्कान के लिए मैं आपको बाद में कविता लिख भेज दूंगी. बहुत बहुत आभार आपका.
0: थैंक यू सो मच अलका जी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत कुछ सीखने को मिला. तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया, इतना समय आपने निकाला हमारे लिए.
1: बहुत बहुत आभार, धन्यवाद.
0: थैंक यू सो मच. तो दोस्तों फिलहाल तो वक्त हो गया इजाजत लेने का, लेकिन मैं यकीनन ये कह सकती हूँ कि आज कुछ आप अपने साथ जरूर लेकर जा रहे होंगे, कुछ ऐसा जो आपको जीवन के सफर में मददगार साबित होगा. फिलहाल वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का, मुलाकात होगी अगले एपिसोड में. रेडियो मधुबन सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए.

0: आवाज री दुनिया रा हम सफर दोस्तों अपनो समाज कार्यक्रम रे मायने रेडियो मधुबन ने सुनवा वाला सगला श्रोताओं ने केसी जिनगर रा घना घना राम राम गणी खम्मा अने जय माता दी। आप सुन रहा हो ब्रह्मा कुमारी रो सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन, सुनता रहो मुस्कुराता रहो। श्रोता बंधुओं कार्यक्रम रे मायने आपो समाज रे मैं फैलियोड़ी कुरुतियों वे है वन बारा में समाज रे लोगों ती बात करो हूँ और समाज रे मैं जागृति लावारी रेडियो मधुबन रे एक पूर्ण कोशिश है और अन्य अलावा अपने भारत देश में कई जातियों वे है उन का रीति रिवाज वे है वन बारा में समाज में जो भी समाज रे बंधु वे उन्हों ती बात करो हूँ और अपने समाज में कई बुजुर्ग मानस वे है वनो का तजुर्बा वे जीवन रा का पड़ाव वे वन बारा में भी अपने समाज रा बंधुओं पर बात करो हो वनो अनुभव आप तक शेयर करवा की कोशिश करो हो। अन्य अलावा अन्य कार्यक्रम रे मायने अपो अपने समाज सेवी जो भी बंधु वे समाज सेवा रा का कार्य कर रिया है उन्होंने भी अनुभव अन्य कार्यक्रम में लेवा रही आपो कोशिश करो हो। और वो जो अपनो समाज मारवाड़ी कार्यक्रम है वो आप रो अपनो है और आप समाज रा जो भी बंधु है आज रेडियो मधुबन रा लिसनर है जो भी श्रोता बंधु होबले रिया है मनोती एक अपील है कि आपरे मायती भी कोई आपरे समाज रा रीति रिवाज अपना अनुभव जो भी आप अन कार्यक्रम में प्रसारित करवारी मनसा राखो हो तो रेडियो रा नंबर माता है जरूर मैसेज करजो। रेडियो रा नंबर है 94-14-15-14-15। तो श्रोता बंधुओं हमें अपने मेहमान वैष्णव वैरागी संप्रदाय रा दो समाज बंधु है, एक रमेश जी वैष्णव है दूसरा जगदीश जी वैष्णव है। तो अनोती आपो अनोरा समाज रा रीति रिवाज ले यहाँ और अपने अनोरा समाज रा जो वैष्णव वैरागी समाज है अन्ना इतिहास बताया और अनोरा समाज रे में जो रीति रिवाज हाल रिया है वे अपन बता रिया है और कुछ अच्छा रिवाज है अनोरा समाज में कोई तरह री अनोरा समाज रे में कुरुतियों नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरा रिवाज है। एक तरह रो ब्राह्मण समाज है जो ठाकुर जी की पूजा ज्यादातर करे है और भगवान विष्णु रा ये मतलब वंशज है, मतलब भगवान विष्णु अनोरा आराध्य देव है जनती ये वैष्णव कहवाना है। तो हमें अपने साथ में आज एक समाज रा बुजुर्ग बंधु और भी है दशरथ जी वैष्णव। तो आज तीन बंधु अपने समाज रा जो भी बच्चियोड़ा रिवाज है वैष्णव समाज उन्होंने अपन आज बतावेला। तो सबसे पहला अपने जो मेहमान है वनोर परिचय, दो मेहमान रो परिचय तो आपने खबर है फिर भी अनोर परिचय लो हो। तो रमेश जी आप रो रेडियो मधुबन में स्वागत है।
1: जय श्री राम सर।
0: तो रमेश जी भी आबरूड में कई साल ते अडिस रह रिया है और अनोर पिताजी भी अडिस होटल रो धंधो करता चाय रो और पछे ए भी अपना जो भी व्यापार कर रिया है दुकान अपना बच्चों ने सेटल किया है धंधो कर रिया है और आज वैष्णव समाज में युवा मंडल रा जिला अध्यक्ष है और समाज में कुरूतियों ने कम करवास्ते समाज में विकास करवास्ते अपनो बीड़ो उठाया है और अपनी शुभकामना है उन्होंने रमेश जी ने कि अपने समाज में अच्छा कार्य करे और समाज रो नाम रोशन करे और समाज में विकास करे। अन्य अलावा एक बीजा मेंबर है अपना जगदीश जी वैष्णव जो गांधीनगर आबू रोड में रहे है और जैन श्वेतांबर धर्मशाला है वन में मुनिम जी रो काम कर रिया है। तो अनोरो भी रेडियो मधुबन में स्वागत है। तो जगदीश जी वैष्णव आप रो रेडियो मधुबन में स्वागत है।
2: जय श्री राम साहब।
0: तो श्रोता बंधुओं अपने तीसरा मेहमान है अनोरो भी रेडियो मधुबन में स्वागत करो हो। तो दशरथ जी आप रो रेडियो मधुबन में स्वागत है।
3: जय श्री राम। जय श्री राम।
0: दशरथ जी भी एक भगवान रा भगत है, खूब भक्ति करे है और सेवा करे है और उन्होंने पूछो हो कि आप आबू रोड में कतरा साल ती रहो और आप कटे रहो हो।
3: मैं आबू रोड में करीबन 39 साल वेगा 28 हूँ मैं और सातपुर मतलब का नाम मेरा अब मैं रहू हूँ।
0: सातपुर में रहो रिया 39 साल ती अटे रहो रिया हो, ठीक है। तो आप का धंधो करो वर्तमान में?
3: मैं जल्दा विभाग में सर्विस है था 78 ती 28 हूँ मैं जल्दा विभाग में सर्विस करी रही हूँ।
0: कार पोस्ट माते काम करो आप?
3: पंप ड्राइवर ही पोस्ट माते करूँ, पंप ऑपरेटर।
0: ठीक है। वंती पहला आप कटे रहता?
3: वनती पहला मैं प्राइवेट लाइट रो काम करता हूँ ने दो त्राई महीने नोदिया मैंने अलग गोमोरे में काम किया है।
0: तो आप रो मुख्य निवास कटे रही हो?
3: मुख्य निवास मोरा रोहिडा गोम में है, वटेस मोरे बापोती है, मोरे पिताजी भी वटेस है, मोरे बड़ा भाई साहब भी है, मार बाड़ने देशा भर में है, बाकी मोरा प्रॉपर घर मतलब रोहिडा में से है।
0: आपरे पिताजी का करता रोहिडा में पहला?
3: मोरे पिताजी टीचर था। अच्छा। हाँ, तो वे टीचर रो वर्क करता ने मंडे बाद रिटायरमेंट हुआ कह रहे अर्जी निवेशी रो काम करता है।
0: तो आपके पिताजी तो मार सकता तो आप बनिया क्यों नहीं पैसे छोटी मोटी नौकरी के मतलब बनिया नहीं की कने?
3: ना पढ़ाई तो करी लेकिन वो पहला मेरे को टेक्निकल मतलब मैं जॉब में रह गयी हो तो मैं इलेक्ट्रिशियन काम करता नहीं इलेक्ट्रिक काम मतलब प्राइवेट काम करते डेकोरेशन की घरे दुकान थी जनरेटर था और डेकोरेशन का काम करता हूँ लाइट लगाता हूँ लाइट फिटिंग का भी काम करता हूँ।
0: चलो अच्छी बात है तो हमें आप वाटर वर्क्स में पंप ड्राइवर रो नौकरी है आपरी ठीक है तो मैं आपने पूछना चाहूँगा आप डाबू रोड में 39 साल तेरा रह रहा हो तो आपने परिवार में कितना मेंबर है?
3: मारे परिवार में मारे 3 बच्ची ने 1 बच्चो है मारे घर तीन में मतलब करीबन 5 मेंबर हम है।
0: 3 बच्ची ने 1 बच्चो है तो आपने 3 बेटियों ने आप बनाई?
3: हाँ तीनों बेटियों ने पढ़ाई फर्स्ट ईयर थी बाद ने गी फ्री ने तीनों की शादी भेगी है तीनों रे बच्चा भी है और बच्चों भी पढ़ा लियो है और वो भी अब सर्विस में है सूरत में ने उसकी भी शादी हो गई उसके भी 2 बच्चे हैं।
0: चलो अच्छी बात है दशरथ जीरो भी रेडियो मधुबन में स्वागत हुआ है। हाँ तो श्रोता बंधुओं अपने मेहमान रमेश जी वैष्णव और जगदीश जी वैष्णव है जो अपने समाज रीति रिवाज बता रहा था पर आपको एक छोटो सो ब्रेक लो ब्रेक के बाद में फिर आपो हमारे समाज रीति रिवाज जोड़ला आप सुन रहा हो रेडियो मधुबन सुनता रहो मुस्कुराता रहो।

0: चांद मिश्रा, आप सुन रहे रेडियो मधुबन, सुनते रहे सुनाते रहे जन जन तक प्यार बरसाते रहे।
1: देख रहे बाद में अपना समाज कार्यक्रम रामायण रेडियो मधुबन ने सुनवा वाला सगला श्रोताओं का स्वागत है। अने अपने मेहमान वैष्णव समाज रा जो समाज बंधु है वनोरो भी स्वागत है।
2: तो हम आपने पूछू हूँ दशरथ जी कि आप बताओ आपरे समाज रमाए शादी करो तो केरा रिवाज करो।
3: शादी का रिवाज अपने नॉर्मल रिवाज है जो मतलब क्या नाम है रूढ़ी पीढ़ी थी जो चले रही है रिवाज तीस करे रही हमें शादी नहीं हटाती बरात ले जा आगे बच्ची रे बटे ने बटे जाए शादी मतलब हाथ फेरा खाए बटारो जो व्यवहार वे वो करे करावे पास हमें लेना हो रहा।
2: तो मैं आपने पूछू भाई शादी तो करो नॉर्मल रिवाज करो लेकिन शादी थी पहला कई रिवाज वे हो लगन लिखावना है तो गणित ठिकोणे का वे के बे महीना पहला लगन लिखावे गणित ठिकोणे हवा महीना पहला लिखा है गणित ठिकोणे आठ दस दिन पहला लिखावे तो आप रे लगन लिखावा रहा क्या रिवाज है।
3: मोरे आठ दस दिन पहला रो रिवाज है कि आठ दस दिन पहला लगन लिखा है दाड़ा थी मोरे गीत चालू हो जाए।
2: हाँ तो लगन जो लिखावा जाए तो यूं है कि गणित ठिकोणे छोरा वाला लड़की वाला टे जाए वटा लगन लिखन लावे गणित ठिकोणे वे के लड़की वाला होमे देवा आवे लगन तो आ प्रकार रिवाज
3: मोरे लड़की वाला होमा देवा आवे लगन। हाँ
2: तो कौन आवे गणित ठिकोणे तो नाई आवे गणित ठिकोणे वाला भाई बंद या कोई हाला आवे या कोई रिश्तेदार आवे आप कौन आवे।
3: मोरे वो घर रोज कोई भी बंधु वे जो आवे रो मोरे नाई या ब्राह्मण बहुत कम आवे मतलब। हाँ
2: चलो लगन ले आया तो बदावन ले आप रे।
3: हाँ मोरे लगन लेना है वर्णन वधावन ले वधावन लेन मन्ने बाद में मतलब माई गीत गावता हुआ वर्णन माई ले ढोल बजाता हुआ ने लेन मन्ने बाद में मतलब कानो मेरे लगन माई भगवान आलम मेली फिर पसे कानो मेरे वर्णन भी।
2: चलो आप क्यों भाई के लगन वदान दस दिन पहला आपने लिया पर होमा थी उन्होंने परिवार लड़के वाला तरफ थी कोई भी देवा आवे तो वो जो बंधु आवे अपने समाज रो तो आप लगन लेने वाला ने कोई ओडोमनी करो।
3: हाँ लगन जो लेन आवे वणन मेटा थी मतलब हवाई कोक दिया जो भी वे जो मतलब 500,000 1100 रुपया ने अलावा कपड़ा सापो वापो देख रहे वणन वणन कंप्लीट करें मतलब हटा दी होड़म निकरें ने मेला
2: लगन लिखिया आपको 10 दिन थी गीत चालू हो गया ठीक है तो आपरे पाठ कतरा दिन रा करो।
3: पाठ मारे पौसो पाणने तरबी वे ने तीसरो पाणने तरबी जो मुहूर्त निकलतो वे ने जो ब्राह्मण मुहूर्त काढ़े दे वणी हिसाब थी वे तो पशु पाणनेतर हाले ज्यादातर पहला तो लंबू हालतु नम्मू भी हालतु मतलब नव पाणनेतर में मम्मू खुद शादी की थी तो मारे नम्मू पाणनेतर दू
2: लाडू पेड़ा खादा मन को हटे जाए।
3: हाँ घना पेड़ा लाडू पेड़ा खादा मन को हटे जाए ने पड़ी थी वनोरा चालू वे परा ने वन्ने बाद में मतलब कानो मेरे हर घरे घरे जाए अपने भाईयों रे घर में है या अपने कोई प्रेमी भाई है या कोई धर्म बहन या धर्म भाई की दो वटा थी भी वनोरा आवे या अपने कोई पड़ोसी अपने जो जटे अपने रोटी भाती रो हालतु है वन घरे उतारो घरे है या ब्राह्मणों घरे थी भी वनोरो बने है के मतलब।
2: आप बताओ कि मतलब पाठ तो बेरा हो तो पहलो बंदोड़ो कौन दिए मतलब
3: पाठ बेरा होने पहलो बंदोड़ो मतलब मोरे भाईयों रे घरती स्वे ने मोटा भाई रे घरती वे ज्यादातर
2: बंदोड़ा में हगरी वे के खाली बस नॉर्मल वे
3: ना पहलो पाठ रो वनोरो हगरी वे। हाँ ने वन्ने बाद में छेलो जो वनोरी रो वनोरो वे वो ही पासो हगरी वे। हाँ
2: बीच महिला वनोरा भले
3: भले सिंगल जाए आदमी कोई भी मतलब कहा ना वीत जाए ना वीत रे हाथी भी एकाई जाए या घर रा भी ने इनका मोटो छोरो जाए जीवन पो 7 जना 10 जना जीवन पो आवे।
2: तो दशरथ जी आप बता रही भाई के वनोड़ा आप हगरी वे 10 दिन पहला आप लगन लिए प्राण 5 दिन राख 3 दिन राख पाठ वे ठीक है तो पाठ बैठा कौन आप तो खुद ब्राह्मण हो तो आप क्या ब्राह्मण आवे
3: मोरे शर्माली ब्राह्मण आवे रहो गोरवाल ब्राह्मण है या सरवाली ब्राह्मण आवे वो पाठ बिहार जाए रीति रिवाज रे हिसाब थी मंत्रों द्वारा मंत्र शक्ति थी जो सबरे बिहारे जीव अपने भी मतलब अपने हिसाब दिस करे। हाँ
2: चलो ठीक है अपने बीजा मेहमान है रमेश जी वैष्णव रमेश जी ने पूछू हूँ कि चलो वनोला खादा पार्टी बैठाया तो हमें रियो है कि भाई बारात लेन जाओ तो केरा रिवाज करो।
4: मोरे हेठाती जरी बरात लेन जाओ हेठा जी बरात लेन जाओ जी बेटे बरात छोटा माता पोस है बटे बटे मतलब यू कोई पटाखा वटाखा फोड़े करे कभी बरात स्वागत वे बीजो वे बने बाद में पसे बराती वे भाई आवे मल्ली वे मल्ली वे पसे बनी सवरी में बीच सवरी में जाए मैं लोग मल्ली करो एक बीजन मल्ली करो
2: मल्ली कंटेम करो मतलब वनोली लेन जाओ जा बान वीन टीकवाती पहला करो
4: वीन एक दाय वीन टीके ने एक दाय मल्ली वे मोरे
2: मल्ली में की कन वे मतलब कोई मीठो मीठो करावे करना ही
4: मीठो मीठो करावे पता साथी कराओ चाहे गुड़ थी कराओ चाहे मिठाई थी कराओ ज्यादा कर पता साथी करावे ने पसे वे मतलब एक वे थी मले हाड़ा हाड़ा थी मले मोमा मोमा थी मले बुहरा बुहरा थी मले यू बाग गाले गाले मले सर रंगरा सोटना नोके ने नारियल देन मैडम लिफाफा पकड़ावे पे यार
2: मतलब आप मंगनी करो वंटे में आपने लिफाफा भी दिया हाथ में पिया गालेन तो खाली सबने दिया या खाली मेन वेवई वे वनी निस दिए
4: मल्लीरा मोरे एक निवाज है सा के मल्लीर माए पोस हाथ नौ ग्यारह तेरे पंद्रह इरा आदमी सेलेक्ट करे के भाई अपने जरी कुटुंब मोटो हुए तो जिकन के कोई करने तो कुटुंब छोटो हुए तो वह संख्या कम वे जाए करने भाई संख्या ज्यादा वे ज्यादा कुटुंब मोटो हुए तो वनी संख्या पे वधारे तो वनी कुटुंब रे हिसाब थी वे एडजस्ट करे यू मतलब वन में वीद रे बाप विदनी रे बापे थी मल्ली करी विद रे मोमा विदनी रे मोमा थी मल्ली करी विद रे काको काका थी मतलब मल्ली करी अन्य तरीका थी मतलब आपस में मल्ली करे
2: आपर के बारे मतलब है कि पहला तीस अपने उन्होंने बतावना पड़ेगा मोरे पांच मनक वे या दस मनक वे मल्ली में उन्होंने आपने पेरावनी भी करनी है जो भी लिपापो भी देना है सब कुछ वो रिवाज पहला तो डिसाइडेड वे ठीक है चलो अच्छी बात है अन्य अलावा मैं फेरा तो लीदा फेरा खादा फेरा खाए तो वजह वटे भी कोई रिवाज वे एरा
4: फेरा में रिवाज मतलब जरी हाथ फेरा खावे वन टाइम में एरो कोई रिवाज नहीं है तो बनोरे जो माँ बाप और जो मनली जो मनोरे इच्छा है जो भाई बटे कन्यादान लगावे कि भाई माँ तरफ थी गौदान है बीजे है जो भी है मतलब बनोरे जो देनो करनो वो बटे वन टाइम वो लगावे
2: गणित को ना पहला गाय देता तो आप रे रिवाज है आज भी
4: पहला गाय मतलब रियल गाय मतलब लावे देता क्योंकि नजदीक थी बरात आती तो वह गाय ले जाता हाथी हाथी अबे बरात लंबी जाए कहीं 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर 500 किलोमीटर तक लंबी तो बटे बात संभव नहीं है लावने ले जाने अने हिसाब से आजकल बात चौंदी दी गाय दे तो वह रिवाज आज भी प्रथा चालू है
2: गाय मतलब अनुकार तो क्यों देता गाय
4: गाय गौ माता वे गौ माता रो दान मतलब मोटो दान वे

0: गौदान मतलब बड़ा दान है, वन्य सेवा करें वन्य मतलब वो एक बड़ी प्रथा, जूनी जो प्रथा हाली जी आज भी बरकरार रही।
1: चलो फेरा हुआ तो वैसे वन्य बाद में विदाई वे, तो विदाई में एक पाटरी रस्म वे आप रहे रस्म है पाटरी
0: मोरे जरी फेरा वे के वन्य बाद में वो पाट के ने घना देना वनी चीज ने डोरियो के
1: डोरियो हाँ। डोरियो मतलब वो इस वे हमें दो ही पार्टी मले अने आपस में जो भी डिस्कशन करें जो बातचीत लास्ट में विदाई रटेम वने डोरियो के तो अन में का कावे बताओ
0: वन में डोरियो में मतलब जो यथाशक्ति वनी विदनी रे बाप माँ बाप बापरी ने मारी जो इच्छा वे जो वो तिलक काड़े कारे वनी विद रे बापे ने वन भाई ने देवर ने जेठ ने जो भी वनना जो रिलेशन वाला वे वन हेमन जो भी हिक देनी है वनने बाद दे प्लस घर गृहस्थी ने बराती हिक देनी प्लस कोई घर गृहस्थी होमन कोई कटोरा थाली चम्मच वाटका जो भी वे जो दहेज रे मतलब दहेज नहीं वनी अब दहेज नहीं कहता मतलब वनी जो यथाशक्ति जो भी वनी श्रद्धा वे जो वे दे ने वो में बच्ची रहा थी वो हाथी जाए ले
1: गणित ठुकाने में देखो पार्ट वे जरे लास्ट में वैसे चुकाना पड़े घोड़ा रा पिया है कोई माली रा है कोई नाई रा पिया है तो बारात ले जाओ जा आप रे चुकाना पड़े रा
0: एरा ऐसा मोरे घना ठुकाने एरा रिवाज पहला ता अभी जीव जीव समय परिवर्तन वे जीव जीव लोगों में परिवर्तन आवे जीव है धीरे धीरे परिवर्तन आवे जीव है ने पहला घोड़ा रा भी देता बाजा जो भी जाजा कर ढोल ढोली रहा बीजा ने सब वर्णन देना पड़ता हमें वह सिस्टम घना ठकोने कम वेगा अबे नहीं है
1: परगना में जो आप संप्रदाय है अबरूड में जो परगनो है आप जितना है समाज अणो में कोई एरा रिवाज है आज भी
0: ना अबार जो जिले सिरोही जिला रो जो मु जिला अध्यक्ष हूँ युवा परिषद रो बट मैं मोरा जिला रे माँ कोई नियम नहीं है कि भाई आपने पिया देना पड़ी घोड़ा रा के भूसी रा के मतलब पन्नामणी पन्नोमणी के जो भी है सब अबार है सब सिस्टम अबार नहीं है ने धीरे धीरे मोरे प्रथा आ धीरे धीरे परिवर्तन आवे रही है बिल्कुल बंद करवा रही ने मारो तो मुख्य बार युवा संगठन उबो हुआ नवो नवो अड़ में मोरे लोगों एक प्लानिंग है के सब प्रथा खत्म करें सामूहिक विवाह रो आयोजन करवा रो मोरा एक बहुत मोटो मीड़ो उठावा रो मोरा प्रयास हाले रही है
1: बहुत अच्छो प्रयास है रमेश जी आप जो एक बात बताई के आज सामूहिक जो विवाह सम्मेलन करो आपो वन में कहा कि गरीब अमीर सब वन एक ठोकोण है मतलब निपजाला तो अच्छो प्रयास है मुत कहूँ कि हर समाज में आज वे रिया है सामूहिक विवाह सम्मेलन जनती कहा कि करने देवान वे नहीं देवान वे तो गरीब भी बटे अपना निभा है कन अमीर भी मतलब सब एक ठोकोण आ जाएला तो बहुत अच्छी बात है और मुत कहूँ आप जो प्रयास है उनमें आप जरूर सफल हो। हाँ तो श्रोता बंधुओं अपने मेहमान रमेश जी वैष्णव और जगदीश जी वैष्णव है जो अपने समाज रा रीति रिवाज बता रिया था पर आप एक छोटो सो ब्रेक लो ब्रेक रे बाद में फिर आप समाज रा रीति रिवाज जोनोला आप सुन रिया हो रेडियो मधुबन सुनता रहो मुस्कुराता रहो।

0: गणपति बाप्पा मोरिया,
1: मंगल मूर्ति मोरिया,
0: गणपति बाप्पा मोरिया,
1: मंगल मूर्ति मोरिया,
0: एक दो तीन चार,
1: गणपति तेरी जय जयकार,
0: एक दो तीन चार,
1: गणपति तेरी जय जयकार।
2: विघ्न विनाशक आ रहे हैं, आइए एकता और भाईचारे का यह पावन पर्व हम सब मिलकर मनाते हैं और हमारी श्रेष्ठ संस्कृति का संवर्धन करते हैं। रेडियो मधुबन 90.4 FM के सभी सुनने वालों को गणेश उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
3: देख रहे बाद में अपना समाज कार्यक्रम रामायण रेडियो मधुबन ने सुनने वाला सगला श्रोताओं का स्वागत है। अपने मेहमान वैष्णव समाज रा जो समाज बंधु है उन्होंने भी स्वागत है। श्रोता बंधुओं हमें अपने मेहमान बीजा है उन्होंने पूछो हाँ कि आपने समाज में बालिका शिक्षा ने कतरो

0: मम्मी मम्मी।
1: हाँ बेटा।
0: आज जब मैं स्कूल से आया तो मैंने पता क्या देखा कि एक बच्चा चाय बांट रहा है, वह फिसल गया और उसके हाथ से चाय का ग्लास गिर गया। उसे बहुत डांट पड़ी। मम्मी मैं सोच रहा हूँ कि हमारे घर के बाजू में जो शंभू है वह भी तो काम करता है, उसे भी तो ऐसी ही डांट पिटती होगी, क्यों ना हम उसे पढ़ाएं।
2: देख रहे बाद में अपना समाज कार्यक्रम रामायण रेडियो मधुबन ने सुन वाला सगला श्रोताओं का स्वागत है। अने अपने मेहमान वैष्णव समाज रा जो समाज बंधु है उनरो भी स्वागत है।
3: चलो हमें एक रिवाज है हर समाज में वे है जो आयो दुनिया में जानो है, तो आपरे समाज में कोई बंधुरी मृत्यु वे जाए तो केरा रिवाज करो।
4: मोरे साहब कणी समाज कोई कणी व्यक्ति री मृत्यु वे जाए तो वन में मैंने दूसरे तीसरे दिन तो मेल मतलब जो लोग हुए है कान एक हुए कान रोप सिस्टम करे वन सगा संबंधी आवे बटे ने वन श्रद्धांजलि अर्पित करे मृत आत्मा ने पसे 12 दिन बाद गंगा जी रो प्रोग्राम वे तो वो गंगा जी जाए अस्थि अस्थि विसर्जन बाद गंगा जी विसर्जन करे फिर श्रद्धा आवे तो वो अपने वो गंगा पूजन भी करावे और बाकी गंगा पूजन लगभग करावे जा सब जना तो गंगा पूजन करे बने में सब सामूहिक पूरा समाज रा बंधु गांव रा बंधु सब आवे नेवन टाइप जी धार्मिक मतलब प्रसंग करे।
3: श्रोता बंधु अपने जगदीश जी वैष्णव बताया कि भाई के कन्या मृत्यु हो जाए तो 3 दिन बाद में मेल वेल करे कौन करे, तो हमें अपने बीजा मेहमान है और डिटेल में आप जानकारी लो दशरथ जी वैष्णव है उन्होंने पूछो हूँ कि दशरथ जी आप बताओ जिकन कोई भाई री मृत्यु तो हुई बंधु री पर वंदन पे कहना है कई टुकड़ो ने मतलब वरना रिवाज वे जनधन वने लेन जाए तो वे रिवाज बताओ।
5: हमारे मतलब कोई भी कणी बंदूरी जो मतलब मृतकाल अकस्मात मृतकाल वे या बीमारी थी मुँह या कहीं भी मर हुआ तो मोरे जाति रे में समाज रे में मोरे रिवाज है कि मोरे मोड़वी वे मतलब पालकी बने और पालकी रे द्वारा मतलब ऑलरेडी बाजते ढोल नंगाड़े गाजते हुए मतलब उन्होंने में लेन जा ने वरने बाद में मतलब चारे कोदे चारे आदमी नहाए पहला नाइन स्नान करे मतलब ऑलरेडी मुंडन करावी मुंडन करावे वरने बाद झीले नहाए धोए मतलब मृत आदमी ने झीलारी ने झीलारी वरने बाद वरने मोड़वी रे में हणगार करे बिहारी ने मोड़वी पूरी हणगारी ने पालकी जो कृष्ण भगवान जी जो से पालकी जाए वन तरीके मोरे मतलब मृत्यु वाला आदमी ने वणिस तरीके पालकी ठेठ वाजते ढोल ठेठ वटा उदी ले जाए ने जटे उतारो आवे स्तोन आवे वटाती पसे ढोल नगाड़ा था पासा पा मेल ने वटाती मैं पसे आगे जाने राम धूंधरे माए मतलब मैं निकला हटाती मतलब।
3: चलो आप बताए कि भाई पालकी बनावे वणी ने पालकी सजान लेन जाए पर मु बीजा समाज में देखो श्रीमाली समाज वन में कहा एक जो परिवार जो मेंबर वे सब पीताम्बरी पहरे और वन्य बाद में वन्य स्कंदो वेश दिए तो आपरे समाज में कोई रिवाज है।
5: मोरे समाज में और रिवाज पहला जूनी प्रथा में तो वो पीताम्बरी बोले वगर पगर के मतलब लेन हालता ने वनिष तरीके जाता लेकिन हमें जीव जीव प्रथा वगड़ी ने थोड़ा बढ़िया गणिया ने वनने बाद मतलब का समय माते हारे हाजिर नहीं व्यक्ता है तो थोड़ा थोड़ा कंधो देन मतलब आगे पूटे मतलब थोड़ा हिसाब किताब करावे प्रो बाकी हारे मतलब बीजी समाज वाला वे के मोनो भी लाभ मनलो जो मैं भी कंधो दे तो अणी हिसाब थी प्रथा हाली तो मोरे भी थोड़ा थोड़ा मतलब सहयोग रे हिसाब थी वे बीजा देवा लागे ने लो थोड़ी लंबी मतलब पड़वा डूके पे अपने मतलब शमशान भूमि तो वे चार आदमी जो हाले वणों ने थोड़ी आपत वे तो वणों ने थोड़ी सुविधा मिले पे वे हिसाब थी मतलब बीजो भी कंधा देवा लागे।
3: चलो ठीक है आप बताओ कि दास संस्कार की दो कोई बंदूरो हमें तीसरे दिन आपो पासा फूल लेवा जाऊं तो गणित कोने से फूल लेना आवा जो कोई घरे लेना आवे मटकीम लेन गणित समाज में देखो कि शमशान रे आसपास में कोई पेड़ नीचे या पीपल रा पेड़ या कोई पेड़ में लटका दे कोई पेड़ जड़ों में रखे तो आप रे का रिवाज है।
5: मोरे रिवाज वो है कि मैं दूसरे दिन तो आरोग्य ठंडी करवा जा तीसरे दिन में जहाँ तो बटे मतलब का ना फूल ले फूल वीणे करें और वन ठोकोने मतलब का ना मैं वो आटो गऊ लेन मतलब वरना लड़ू वड़ू बनावे कौन वुअन दे करें वरने बाद में अस्थियां ले ने अस्थियां ले ने वन मतलब जल थी झीलाना दूध थी झीलाना झीलारे करें पसे मैं एक कोरा कुल कार्य माए ले ने लाल कपड़ो बो दे पसे वन में लेन आवा तो घर्रे माए प्रवेश नहीं करता घरे जरूर लेन आवा ने लेन आइया केरे पसे पासो कानो में वणिन बाली साइड में आरिया रे माए या कटेकन मतलब वन ठकोण मेले करे ने वणिन बटे सराका ने जनदारे गंगा जी जहाँ जरी पास वनिष्ठ ठकोणा थी मतलब मैं लेन पास वन वाजते ढोले उठा थी लेन जा।
3: तो आप समाज में गंगा जी लेन जाए पुष्कर जी भी लेन जाए अपन कौन सिद्धपुर है माउंट आबू नक्की झील है तो आप यू लेन जाए
5: ना मोरे ज्यादातर है तो गंगा जी ही लेन जाए जो गुजरात में अमुक भाई है वे कोई सिद्धपुर भी लेन जाए ने जो आगे ठेठ मतलब का नाम है महाराष्ट्र में है तो वे नासिक भी पूंगे बाकी मोरे राजस्थान एरिया रे माइला है जो ज्यादातर गंगा जी जाए ने गंगा जी हरिद्वार जाए ने वटे विसर्जन अस्थिय करावे वटारे मंत्र पूजा करे करावे ने वटे मतलब कानो मेरे पंडित ने दक्षिणा दे करे पसे वटाती आवे पुष्कर जी ने पुष्कर जी ने मैं मतलब कानो में वटाती धोन दक्षिणा दे करे ब्राह्मण ने कुछ दे करे वटे मतलब कानो मेरे पूजा पाठ करावे ने वन्ने बाद में घरे पूंगा।
3: पुष्कर जी क्यों जाए?
5: गंगा जी जाए वन्ने करी पुष्कर जी रो महात्मा है के बटे ब्रह्मा जी रो स्थान है ने मोटू पुष्कर गणी जा रही है राजस्थान रे मैं आज तीर्थ स्थान मोटू पुष्कर रो है तो वने हिसाब थी पुष्कर जानू बहुत जरूरी है। हरिद्वार जो जाए वने पुष्कर जानू जरूरी है।
3: मतलब एक पुरानी परंपरा है के जो गंगा जी जावला तो पुष्कर जी जाए पसे आमनो करे नहीं तो वन्य आत्मन शांति नहीं मिले रो कोई मतलब पुरानी परंपरा है।
5: हाँ पुरानी परंपरा है के जो मतलब हरिद्वार जाए वो पुष्कर जी जाए ने ही आवी तो वने आत्मा ने शांति मिली।
3: ठीक है घरे लाया गंगा जी तो मैं गंगा जल भरे तो गणी ठकोने लाखों रुपया खर्चा 5 लाख 10 लाख तो आपरे समाज में गंगा जल करे तो एरेस मोटो खर्चो वे या कम वे गणी ठकोने अमल भी गाले के मतलब रिवाज वे आपरे रिवाज है
5: ना गंगा जल करे तो गंगा जल में कोई मोटो खर्चा रो कोई वो नाप तोल तो नहीं है लेकिन आले ज्यादातर गंगा जल रहे में बहुत मतलब का है लिमिटेड इस राके गंगा जी लेना आओ गंगा जी लावे मतलब का ना मैं मंदिर में मेलो पो ने जन दारे गंगा जी रे अपने मोरे बारह दारो मायने करता मोरे 13 में है 15 में है 17 में है 21 में 31 में मतलब 12 दारो बाद में मतलब का ना मैं गंगा जल लो मतलब मोहरत राखा तो वन मैं आजू बाजू रहा अपने सगा संबंधी हुआणी भोणजी हारो ने बोलावा ने अपने जो प्रेमी भाई उन्होंने ने बोलावा ने गंगा जल काढ़ा पहला अमल रो रिवाज मोरे भी तो बाकी हमें अमल और रिवाज इतरो है नहीं ने मोरे समाज टूकी रहे हिसाब थी गोमवारा भी आवे बाकी हमें अमल अमल कोई गाड़ता नहीं है ने गंगा जी रो प्रसाद वटे वितरण वे अन्य लावा कोई राव या भाट वे तो वो आवे तो वही वटे आवे मतलब भी बोल के मतलब वणी ने दक्षिणा दिया ने बाकी जितरा भी हग हो आवे वणो गंगा जी रे माते मतलब वणो पूरो पेरमणी ओरमणी करीन पसे हुआणी भोणजीन करीन मैं मेला
3: मृत्यु भोज तो नहीं वे आपरे
5: ना मृत्यु भोज रो मोरे कोई एरो निश्चित नहीं है मृत्यु भोज वे मोरे मृत्यु भोज नहीं है मोरे गंगा जी है।
3: गंगा प्रसाद में कई ठिकाने कौन है के 5 पकवान बनावे एन वही बे बे तीन तीन टाइम जी में समाज री जो न्यात गंगा तो आप रे एरा रिवाज है
5: मोरे एरा रिवाज नहीं मोरे सिर्फ हगा हुई आवी होजरा जो खाली दाल बाटी खाई वन में कोई बीजो पकवान बने नहीं ने बीजे दारे जो मतलब का अपने परगनो या अपने जो भी मतलब न्यात वही अपने हिसाब थी हारे आवी रहा ने हगू हो अन्य अलावा मतलब का न्यात गंगा जनी के तो अपने परगना वाला आवी ने अपने समाज बंधु ने कोई प्रेमी भाई वो सबने बोलावा तो साधारण भोजने से रहे कोई मोरे यू गंगा प्रसादी रू या वो मतलब मोरे मृत्यु भोज नहीं है मृत्यु भोज कोई रिवाज नहीं है।
3: आपने मतलब गंगा जल करे तो कोई खर्चो नहीं है सिर्फ दाल रोटी जेरो सादो खाणो बने और समाज वाला जीमेन जाए क्यों गणी ठुको ने देखू गंगा जल जो काढ़ा जो वन एक रिवाज वे जो अतरा प्यार नीचे आ जाए मनक मु तो वही कहूँ जत्रो खर्चो वन में करो अतरो गौदान करो गाय ने चारो नोखो और भी दान करो तो कमती कम मुड़े तो जाए का वो फालतू खर्चो आपको करो हो 4-4 दिन तक पिया लागे मनक भी परेशान वे समाज भी जो रिश्तेदार वही परेशान वे मधु को ए रिवाज ने अपन कम करना जन आपरे वैष्णव समाज ने धन्यवाद है कि आपरे समाज में कोई ऐसी कुरुतियों नहीं है जो ज्यादा खर्चीली है बिल्कुल सादा रिवाज है आपरे समाज में मधु को अंश समाज थी सब समाज होबलन सीखे कि अपने समाज में कोई ऐसी कुरुति नहीं पनपे और हमेशा तत्पर रहे वनी ने कम करने वास्ते और ज्यादा खर्चीला रिवाज अपने समाज में नहीं करना है बहुत अच्छा अनोरा समाज का रिवाज है अन समाज ने धन्यवाद है। तो हमें अपने 3 मेहमान है उन्होंने मु धन्यवाद दे हूँ तो सबसे पहला रमेश जी ने कहूँ कि आप आज पधारिया हो तो आपने खूब खूब धन्यवाद है और बीजा दशरथ जी है तो आप भी आज अपना अमूल्य समय दीदो है तो आपने भी खूब खूब धन्यवाद है। तीसरा मेहमान जगदीश जी वैष्णव है उन्होंने भी खूब खूब धन्यवाद है कि तीन ही समाज बंधु मले नाज आपरे समाज का रीति रिवाज बताया है 3 हफ्ता थी आपरा समाज का रीति रिवाज आले रिया है और हर समाज वाला ने आपरे समाज के बारे में जानकारी मिली है और आपरा समाज एक विकसित समाज है और आपरा समाज में ये जो कुरुतियों नहीं है तो अपने सीखवान जरूर मले है तो एक छोटो सो संदेश 3 ही जना मले आप दो।
1: मो रमेश वैष्णव आपने मोरो जो युवा परिषद रो जो तुम्हारा जो आले रियो बीड़ो उनमें सामूहिक विवाह है ओडामनी वगैरह है उनमें बंद करावा है लाण बोटे वही सब बंद कराना अन तरीका थी सामाजिक जो कार्यक्रम है उन्होंने बढ़ावा देना वास्ते समाज में पढ़ाई है बच्चों रही वगैरह एजुकेशन वगैरह में बढ़ावा वन में मेहनत वन में मतलब मोरो योगदान ज्यादा कर रही
5: है। हमें मतलब का है कि थोड़े बच्चियों ने पढ़ावा माते थोड़ा ध्यान वधारे दिया अपने आजू बाजू साफ सुथरो राखनो अपने घर भी अपने सफाई थी राखनो आयोग्योरी मेहमानगिरी भी अपने हिसाब थी राखनो
4: अपने समाज में कोई भी कुरुति नहीं है अथवा नवी कोई कुरुति नहीं पनपे ध्यान रखना है बच्चों रो एजुकेशन रो है समाज में संगठन रो है समाज में कोई नवा कार्यक्रम रो कोई तेरा दूसरा कुरुति रिवाज है बंद करवा रहा बगैन टाइप थी समाज में।
3: श्रोता बंधुओं हमें अपने तीन मेहमान अपने अपना अपना विचार बताया समाज में और अच्छा रिवाज तानो रहा और मुई क्यों कैसी जिनगर आपने की अपने समाज में बच्चियों ने खूब बनाओ और बेटी वे तो खुशी मनाओ बेटो वे तो खुशी मनाओ घनी टुकड़े बेटी वे तो माता माता हाथ देन रोवे तो अपने एरो नहीं करना है बेयो ने समान समझना है और प्रधानमंत्री जी रो जो एक सपनो है कि अपने आसपास रा वातावरण ने स्वच्छ रखना है स्वच्छ भारत बनाना तो अपने भी साफ सफाई रखनी जरूरी है और हमें मुकेशी जिनगर अपनी वाणी ने विराम दे रही हूँ। आप सुन रहे हो रेडियो मधुबन सुनता रहो मुस्कुराता रहो।

वक्र तुंड महाकाय सूर्य कोटि सम प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी श्रोताओं को गणपति के इस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। रेडियो मधुबन सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: नमस्ते दोस्तों, मीठा मीठा बोलने से कभी झगड़ा नहीं होता। जो बच्चा घर का खाना नहीं खाता वो कभी तगड़ा नहीं होता, है ना मजेदार मेरी कविता। क्या कहा, मजा नहीं आया? कोई बात नहीं, मीना से मिलते हैं, क्योंकि मीना से मिलके तो आपको मजा आता है ना, क्यों? लेकिन ये मीना, हाँ वो रही, अपने घर में नाश्ता कर रही है। चलो हम भी वहीं चलते हैं।
1: मीना, सब्जी रोटी दाल कुछ और दूं?
2: बस माँ, पेट भर गया।
3: माँ मैं जाऊं?
1: अरे इतनी सुबह सुबह कहाँ जाना है बेटी, वो भी रविवार को?
3: अगले रविवार को गोलू और मेरा मुकाबला है।
1: मुकाबला?
3: हाँ माँ, दौड़ने का मुकाबला।
4: दौड़ने का मुकाबला, पीछे छोड़ने का मुकाबला।
1: मीना तुम्हारा मुकाबला तो अगले रविवार को है, फिर आज जाके क्या करोगी?
3: दौड़ की तैयारी।
1: ठीक है जाओ।
0: लो भाई, मीना तो नाश्ता करके चल पड़ी मुकाबले की तैयारी करने, और उधर गोलू के घर।
2: मैं जा रहा हूँ माँ।
5: अरे अरे ये खाना तो खाते जाओ।
2: नहीं माँ, मुझे देर हो रही है, मीना वहाँ पहुँच भी गई होगी।
5: देखे ना गोलू के बाबा, गोलू घर का बना खाना खाता ही नहीं, जब देखो कोई ना कोई बहाना बना देता है।
6: अरे तो इसमें क्या हो गया गोलू की माँ, घर का नहीं तो बाजार का खा लेगा कुछ?
5: लेकिन बाजार की चीजें तो सेहत को नुकसान पहुंचाती हैं।
6: अरे सब ठीक है, खाना तो खाना होता है, क्या घर का और क्या बाजार का।
2: बाबा कुछ पैसे दीजिए ना, चाट पकौड़ी खाऊंगा।
6: हाँ बेटा गोलू, ये ले पूरे 5 रुपए हैं, खूब जम के खाना चाट पकौड़ी, और हाँ उस मीना को हरा के आना।
2: बिल्कुल बाबा, वो भला मुझसे कैसे जीत सकती है।
6: शाबाश मेरे बेटे, अगर तू अगले रविवार को ये दौड़ का मुकाबला जीत गया तो एक खास इनाम मेरी तरफ से।
2: ओ बाबा फिर तो बहुत मजा आएगा, मैं सबको ये बात बताऊंगा।
0: और खेल के मैदान में
3: गोलू शुरू करें अपनी दौड़।
2: एक मिनट रुको मीना, पहले मैं ये चाट पकौड़ी तो खा लूं। ये लो तुम भी खाओ।
4: तुम भी खाओ, बीमार हो जाओ।
3: नहीं गोलू, मैं तो अपने घर से खाना खा करके आई हूँ, और वैसे भी मैं बाजार की चीजें नहीं खाती। याद नहीं बहन जी कहती हैं कि हमें हमेशा घर का बना खाना ही खाना चाहिए।
7: मीना ठीक कह रही है गोलू।
3: डॉक्टर बाबू आप? नमस्ते।
7: खुश रहो मीना। गोलू तुम्हें अपनी बहन जी की बात याद क्यों नहीं?
2: डॉक्टर बाबू मुझे घर का खाना बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं लगता।
7: ये तो अच्छी बात नहीं गोलू, अगर तुम घर का खाना नहीं खाओगे तो तुम्हारे शरीर को सही पोषण और ताकत कैसे मिलेगी?
3: और ताकत नहीं मिलेगी तो दौड़ोगी कैसे?
2: बहुत ताकत है मुझ में, पता है एक बार मैं।
7: अच्छा अच्छा ठीक है मीना, अब मैं चलता हूँ, लेकिन मेरी बात याद रखना गोलू, घर का बना खाना मतलब सही खाना।
4: सही खाना, गोलू भूल ना जाना।
3: डॉक्टर बाबू आप अगले रविवार को हमारी दौड़ का मुकाबला देखने आएंगे ना?
7: जरूर आऊंगा मीना।
0: मीना और गोलू ने आने वाले मुकाबले के लिए खूब तैयारी की, और तैयारी करते करते गोलू तो बुरी तरह थक गया।
2: मीना बस और नहीं भागा जा रहा, मुझे घर जाना है।
3: ठीक है गोलू, तुम अपने घर जाके आराम करो, कल स्कूल में मिलते हैं।
0: और अगले रविवार को यानी मुकाबले के दिन मीना और गोलू की दौड़ के मुकाबले को देखने के लिए उन दोनों के बहुत से दोस्त इकट्ठा हुए। डॉक्टर बाबू भी मुकाबला देखने आए। लो लाला जी भी पहुंच गए।
6: बच्चों इस दौड़ में जीतने वाले को मेरी तरफ से खास इनाम मिलेगा। वैसे जीतेगा तो मेरा गोलू ही।
7: पहले मुकाबला तो होने दीजिए लाला जी।
6: हाँ हाँ डॉक्टर बाबू, होने दीजिए मुकाबला।
8: मीना और गोलू अगली सीटी बजते ही एक साथ दौड़ेंगे, और सामने वाले पीपल के पेड़ पर चढ़कर वहाँ लगे एक एक झंडे को लेके उस दूर वाले टीले पे गाड़ेंगे। जो खिलाड़ी अपना झंडा पहले गाड़ेगा वही होगा इस दौड़ का विजेता। जीतने वाले खिलाड़ी को लाला जी की तरफ से एक खास इनाम मिलेगा, समोसे और कचौरी।
6: अबे बाबा के बच्चे, थोड़ी और तेज नहीं भाग सकता था? नाक कटवा दी,
4: दौड़ हरवा दी।
6: मीना तुम तो बहुत तेज दौड़ती हो, ये लो तुम्हारा इनाम, गर्मा गर्म समोसे और कचौरी, अभी बाजार से खरीदे हैं।
3: लाला जी, मैं ये इनाम नहीं ले सकती।
6: क्यों भाई, क्या खराबी है इन समोसों और कचौरी में?
3: लाला जी, बहन जी कहती है कि बाजार की बनी चीजें हमारी सेहत पे बुरा असर करती हैं, इसलिए मैं हमेशा घर का बना खाना खाती हूँ।
7: गोलू बेटा, देखा घर का बना खाना नहीं खाने का नतीजा?
6: क्यों जी, अगर मेरा गोलू बाजार की बनी चीजें खाता है तो इसमें क्या बुराई है?
7: लाला जी, घर का बना खाना बाजार के खाने के मुकाबले बेहतर, ताज़ा, साफ और ज्यादा पौष्टिक होता है। हम सबके लिए ये बहुत जरूरी है कि हम घर में बना खाना ही खाएं। और आपके गोलू जैसे बढ़ते बच्चों के लिए तो ये और भी जरूरी है।
8: हमेशा घर का बना खाना खाने वाली मीना ये मुकाबला जीत गई।
9: मीना, मीना, मीना, मीना।
8: और बाहर की चीजें खाने वाला गोलू इस दौर में हार गया।
3: डॉक्टर बाबू, आज से मैं भी मीना की तरह सिर्फ घर पे बनी चीजें ही खाऊंगा।
8: अरे वाह गोलू,
3: अगर ऐसी बात है तो आज के इस मुकाबले के असली विजेता तुम हो।
9: गोलू, गोलू, गोलू, गोलू।
0: भाई वाह, खेल खेल में कितनी जरूरी बात सिखा गई मीना। बच्चों, आप सब भी मुझसे वादा करो कि आज से सिर्फ घर की बनी चीजें ही खाओगे। वादा? ये हुई ना बात। चलो अब देखते हैं कि आज मीना और मिट्टू क्या नया कर रहे हैं।
3: सेहत और ताकत तो है जीवन का असली गहना,
4: घर के बने हुए खाने को कभी भी ना मत कहना।
0: भाई वाह, क्या बढ़िया कविता बनाई है मीना और मिट्टू ने। चलो अब सुनते हैं एक मजेदार हाँ गाना।

0: भाई गाना सुन के तो मजा आ गया और अब वक्त है खेलने का। चलो देखें मीना की बहन जी आज अपनी क्लास में बच्चों को कौन सा खेल खिला रही हैं।
1: प्यारे बच्चों आज हम खेलेंगे नाम अनेक अक्षर एक। आज मैं आपको एक अक्षर दूंगी और उस अक्षर से आप मुझे किसी व्यक्ति जानवर वस्तु और जगह का नाम बताएंगे, ठीक है?
2: जी बहन जी।
1: तो आज का अक्षर है ग। सबसे पहले बताओ ग से किसी मशहूर व्यक्ति का नाम।
3: मैं बताऊं बहन जी?
1: हाँ हाँ कृष्णा।
3: श्री गोविंद वल्लभ पंत।
1: बिल्कुल सही जवाब, शाबाश कृष्णा। और श्री गोविंद वल्लभ पंत कौन थे?
4: भारत के एक मशहूर स्वतंत्रता सेनानी।
1: बिल्कुल ठीक मीना। बच्चों हमारी राष्ट्रीय भाषा कौन सी है?
2: हिंदी।
1: हाँ, और पता है हिंदी को भारत की राष्ट्रीय भाषा बनाने में श्री गोविंद वल्लभ पंत का मुख्य योगदान था। चलो बच्चों अब ग से किसी जानवर का नाम बताओ।
4: गिरगिट।
1: शाबाश रानो। और गिरगिट क्या करने में माहिर होती है?
4: रंग बदलने में।
1: हाँ गोलू बिल्कुल ठीक। चलो बच्चों अब ग से शुरू होने वाली कोई चीज।
4: गमला।
1: शाबाश दीपू। और अब ग से किसी जगह का नाम कौन बताएगा?
4: गोरखपुर।
1: बिल्कुल सही बेला। और गोरखपुर भारत के किस राज्य में है?
2: उत्तर प्रदेश में।
1: हाँ, और गोरखपुर से जुड़े भारत के पड़ोसी देश का नाम है?
2: नेपाल।
1: शाबाश। तो मजा आया बच्चों?
2: बहुत मजा आया बहन जी।
0: तो आपको भी मजा आया ना? फिर ठीक है, जल्दी मिलते हैं एक नई कहानी नए गीत और एक नए खेल के साथ। तब तक अपनी प्यारी मीना को चिट्ठी लिखना मत भूलना, चाहे वो आपके सुझाव हो, आपके विचार हो या आपके अनुभव।
5: और मेरा पता है मीना की दुनिया यूनिसेफ पोस्ट बॉक्स नंबर 3008 लोधी रोड HPO नई दिल्ली 110003।

0: आपको भी बैंक के नाम से SMS आ रहे हैं। इन SMS में फिशिंग लिंक मिल रहे हैं, जो एक क्लिक से .apk फाइल को आपके फोन में डाउनलोड कर देते हैं। ऐसी फाइलें आपके फोन का पूरा नियंत्रण साइबर अपराधियों को दे देती है, यहाँ तक कि वो आपका बैंक OTP भी देख सकते हैं। याद रखें, कभी भी किसी संदिग्ध लिंक पर क्लिक ना करें। ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के शिकार होने पर तुरंत 1930 पर कॉल करें और किसी भी साइबर अपराध की शिकायत cybercrime.gov.in पर करें। सोशल मीडिया पर साइबर दोस्त को फॉलो करें। सतर्क रहें, साइबर सुरक्षित रहें।
1: EIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक हमारे आसपास का दूसरा पाठ, कहानी सपेरों की, पृष्ठ 15। मैं हूँ आर्यनाथ। तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ जो तुम में से शायद ही कोई कर सकता हो। जानते हो क्या, मैं बीन बजा सकता हूँ। हो गए ना हैरान? हाँ, मैं सांपों को अपनी बीन की धुरी पर नचा सकता हूँ। यह कला मैंने अपने लोगों से सीखी है। हमारे लोगों को कालबेलिया कहते हैं। मेरे दादा रोशन नाथ जी हमारी जाति में बहुत मशहूर थे। वे बहुत आसानी से खतरनाक और जहरीले सांपों को पकड़ लेते थे। वे मुझे कई बार अपने बीते दिनों के किस्से अभी भी सुनाते हैं। आओ तुम भी सुनो उनकी कहानी, उन्हीं की जबानी। पृष्ठ 16। यादें दादाजी की। मेरे दादा परदादा सभी सपेरे थे। हमारी जिंदगी सांपों से ही जुड़ी रही। कंधे पर कांवड़ जैसी पिटारी लटकाए हम एक गांव से दूसरे गांव में घूमते। हम जहां भी जाते हमें देखकर लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती। फिर हम पिटारी में रखी बांस की टोकरी में से निकालते अपने प्यारे सांप। सांपों का नाच देखने के बाद भी लोग वहीं रुके रहते। उन्हें पता होता कि हमारे टिन के डिब्बे में उनके कई रोगों की दवा होगी। ये सभी जड़ी बूटियां हम जंगल से इकट्ठी करते। मैंने भी यह सब अपने दादाजी से सीखा। मुझे लगता कि जहां डॉक्टर नहीं है वहां भी मैं अपनी दवाइयों से लोगों की कुछ मदद कर पाता। दवाइयों के बदले कभी लोग हमें अनाज दे देते तो कभी पैसे। बस इसी तरह गुजर बसर हो जाती। कई बार मुझे ऐसे घरों में भी बुलाया जाता जहां किसी को सांप ने काटा हो। तब मैं सांप के डंक के निशान से यह जानने की कोशिश करता कि किस सांप ने काटा है। उसे मैं सांप के काटने की दवा देता, पर मैं हमेशा समय पर नहीं पहुंच पाया हूं। जानते हो ना, कुछ सांप ऐसे भी होते हैं जिनके काटते ही जान चली जाती है, पर ज्यादातर सांप जहरीले नहीं होते। कभी कभी जब कोई किसान सांप सांप चिल्लाता हुआ भागा आता तब मैं ही उस सांप को पकड़ता। आखिरकार मैं बचपन से ही सांप पकड़ना जानता हूँ। पृष्ठ 17। वे बहुत बढ़िया दिन थे। लोगों की हम बहुत मदद कर पाते थे। लोग भी हमारी बहुत इज्जत करते थे। आजकल की तरह नहीं था। अब तो मनोरंजन के लिए ज्यादातर लोग TV देखते हैं। जब मैं बड़ा हुआ तो मेरे पिताजी ने मुझे सांप के डसने वाले दांत निकालने सिखाए, जहरीले सांप की जहर की नली बंद करना भी सिखाया। बताओ, क्या तुमने कभी किसी को बीन बजाते देखा है? कहाँ? क्या तुमने कभी सांप देखा है? कहाँ? क्या तुम्हें उससे डर लगा? क्यों? तुम्हें क्या लगता है, सभी सांप जहरीले होते हैं? तुमने पिछले पाठ में पढ़ा कि सांप के बाहरी कान नहीं होते। सोचो, क्या वह बीन की धुन सुन पाता होगा? या फिर बीन के हिलने से ही वह नाचता होगा। पृष्ठ 18। अब हम क्या करें? आर्यनाथ, तुम्हारे पिताजी बहुत छोटी उम्र से ही मेरे साथ गांव-गांव घूमा करते थे। उन्होंने बीन बजाना अपने आप ही सीख लिया था। आज की सोचूं तो बहुत परेशानी होती है। सरकार ने कानून बना दिया है कि ना तो कोई जंगली जानवरों को पकड़ सकता है और ना ही उन्हें अपने पास रख सकता है। कुछ लोग जानवरों को मारते हैं और उनकी खाल ऊंचे दामों में बेचते हैं, इसीलिए ऐसा कानून बनाया गया। पर ऐसे कानून बनाने से हमारी रोजी रोटी का क्या होगा? हम सपेरों ने कभी भी सांप को नहीं मारा, ना ही कभी उनकी खाल बेची। कुछ लोग कहते हैं कि हम सांपों को बुरी हालत में रखते हैं। चाहते तो हम भी सांपों को मारकर खूब पैसा कमा सकते थे, तब हमारी जिंदगी इतनी मुश्किल भरी ना होती। सांपों को मारने की बात तो दूर, ये तो हमारी पूंजी हैं, जो हम अपनी आने वाली पीढ़ी को सौंपते हैं। सांपों को तो हम अपनी बेटियों को शादी में तोहफे के रूप में भी देते हैं। हमारे कालबेलिया नाच में भी सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। आर्यनाथ, तुम्हें अपने लिए अलग तरह की जिंदगी सोचनी पड़ेगी। तुम भी अपने पिताजी की तरह बीन बजाने में माहिर हो। तुम अपने साथियों के साथ मिलकर एक बीन पार्टी बनाकर लोगों का मनोरंजन कर सकते हो, पर तुम पीढ़ियों से मिले सांपों के इस ज्ञान को व्यर्थ न गंवाना। तुम शहरों और गांवों के बच्चों को बताना कि सांपों से ना तो डरने की जरूरत है और ना ही नफरत करने की। उन्हें सिखाना कि कैसे जहरीले सांपों को पहचानना है। उन्हें यह भी बताना कि सांप तो किसान के दोस्त हैं। सांप ना हो तो खेतों में फसलों को चूहों से कौन बचाएगा? अब तुम उन सभी बच्चों को मेरी ये कहानी सुनाना, अपनी जिंदगी की एक नई कहानी भी बनाना अपने पोते पोती को सुनाने के लिए। पृष्ठ 19। लिखो, क्या तुमने कभी जानवरों के खेल या नाच होते देखे हैं? जैसे सर्कस में, सड़क पर, पार्क में। कब और कहां देखा? किस जानवर का खेल देखा? जानवरों के प्रति लोगों का क्या व्यवहार था? क्या कोई जानवर को परेशान भी कर रहा था? कैसे? वह खेल देखकर तुम्हारे दिमाग में किस किस तरह के सवाल उठे? मान लो तुम एक जानवर हो जो कैद में है। अब तुम इन वाक्यों को पूरा करो। एक, मुझे डर लगता है जब, रिक्त स्थान। दो, मेरी इच्छा है कि मैं, रिक्त स्थान। तीन, मैं उदास होता हूं जब, रिक्त स्थान। चार, अगर मुझे मौका मिलता तो मैं, रिक्त स्थान। पांच, मुझे यह बिल्कुल भी पसंद नहीं, रिक्त स्थान। पृष्ठ 20। क्या तुम जानते हो, हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में से केवल चार तरह के सांप ही जहरीले होते हैं। ये हैं नाग, करैत, दुबोइया और अफाई। सांप जब किसी को काटता है तो उसके दो खोखले जहर वाले दांतों में से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। इस जहर से बचने का एक ही उपाय है कि जिस व्यक्ति को सांप ने काटा है उसे तुरंत जहर के असर को खत्म करने वाली दवाई यानी सीरम दी जाए। यह सीरम सांप के जहर से ही बनाया जाता है और सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में मिलता है। लिखो, सपेरों के अलावा और कौन कौन लोग अपनी रोजी रोटी के लिए
2: जानवरों पर निर्भर होते हैं। सर्वे, जानवर पालने वालों का। अपने स्कूल या घर के आसपास कुछ ऐसे लोगों से बात करो जिन्होंने अपनी रोजी रोटी के लिए कोई जानवर पाला हो, जैसे तांगे के लिए घोड़ा, अंडों के लिए मुर्गियां आदि। कौन सा जानवर है? कितने जानवर पाले हैं? क्या जानवरों को रखने के लिए अलग जगह है? उनकी देखभाल कौन करता है? वे क्या खाते हैं? क्या कभी जानवर बीमार भी पड़ते हैं? तब पालने वाला क्या करता है? इसी तरह अपने मन से और प्रश्न भी पूछो। अपने इस सर्वे की रिपोर्ट तैयार करो और कक्षा में पढ़कर सुनाओ। पृष्ठ 21। बनाओ एक अनोखी कठपुतली। एक पुरानी जुराब लो, उसे अपने हाथ पर पहन लो जैसा चित्र में दिखाया गया है। आंखों के लिए दो बिंदी या बटन चिपकाओ। जीभ बनाने के लिए लाल कागज की पट्टी काटकर चिपकाओ। पट्टी के दूसरे सिरे पर जीभ के लिए कट लगाओ। लग रहा है ना सांप? अब मजे से इस कठपुतली से खेलो। हम क्या समझे? सरकार ने कानून बना दिया है कि ना तो कोई जंगली जानवरों को पकड़ सकता है और ना ही उन्हें अपने पास रख सकता है। तुम्हें क्या लगता है, क्या यह कानून सही है या नहीं? अपने

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: ट्रैक्स बने होते हैं एंड पानी उसमें बह रहा है, ठीक है, गार्डन है, रास्ते हैं, ट्रैक सपोज इधर ही इस सड़क पर एक ट्रैक बना हुआ है। अब वो रोज पानी उसी में बहता है, ठीक है। अब पानी का बहते बहते उस एरिया के अंदर वो एक ट्रैक बन ही गया ना। अब जैसे ही पानी आएगा वो दूसरी साइड पे कहीं जाएगा ही नहीं, राइट। वो ऑटोमेटिकली उसी ट्रैक में फ्लो होगा। होते होते होते वो ट्रैक उस पानी के लिए एक परमानेंट पाथ बन चुका है, राइट। अब अगर हम आज से चाहते हैं कि वो उस ट्रैक में नहीं जाए, उस डायरेक्शन में वो पानी नहीं जाए, लेकिन वो एक नए तरह से जाए, तो हमें थोड़े दिन के लिए, सिर्फ ज्यादा नहीं, थोड़े दिन के लिए जैसे ही वो पानी आता है, फ्लो होने लगता है, हमें उसको चैनलाइज करके एक डिफरेंट डायरेक्शन में जाना है। ऐसे ही माइंड भी जब एक थॉट क्रिएट करता है, फिर अगले दिन वही थॉट क्रिएट करता है, फिर अगली बार वो सिचुएशन आती है, फिर वो उसी तरह रिस्पॉन्ड करता है, तो एक फिक्स्ड पैटर्न बन जाएगा अंदर, जिसको हम कहते हैं ब्रेन में भी उसका एक ग्रूव बन जाता है। अब नेक्स्ट टाइम जब वो सिचुएशन आएगी तो आप चूज नहीं करते, आपकी थिंकिंग ऑटोमेटिकली उस पैटर्न से ही होती है, एंड करते करते करते वो ग्रूव एक बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न बन जाएगा, जिसको हम कहेंगे ब्रेन की मैपिंग, वो पैटर्न्स बन जाते हैं। अब हम एक जीवन अनेक जन्म उसी पैटर्न उसी मैपिंग से काम करते जा सकते हैं, लेकिन अगर हम आज डिसाइड करें तो हम आज चेंज कर सकते हैं।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: रोहानी तुझे पता है मुझे खाना बनाना और खाना भी पसंद है।
3: मुझे खाना बनाना तो बहुत ज्यादा पसंद है, खाना खाना थोड़ा थोड़ा पसंद है। और शिवांशी तुझे?
4: मुझे तो बस खाना खाना पसंद है, बनाने में तो आलस आता है।
2: हम बनाएंगे और आप खाओगे?
4: हाँ, तुम बनाओ मैं खाऊंगी।
5: क्या खाने पीने की बातें हो रही है, आज तो लग रहा है सबको भूख लगी है यहाँ पे।
6: हाँ दीदी।
5: अच्छा, तो यानी कि सबको मुझे लगता है बहुत सारी वैरायटी पसंद है खाने की।
6: हाँ दीदी।
5: गर्मी की छुट्टी में तो और याद आता है ना, ये खाना है वो खाना है।
7: हाँ दीदी। दीदी गर्मियों में तो और ज्यादा याद आता है,
5: क्योंकि स्कूल नहीं जाते हैं ना।
4: हाँ। बर्फ का गोला,
7: आइसक्रीम।
5: हाँ तो चलो एक काम करते हैं, बच्चों की दुनिया में आज खाने पीने के बारे में ही बात करते हैं।
6: हाँ।
5: इतना धीरे, हाँ, खाना नहीं खाया क्या किसी ने?
6: हाँ।
5: हाँ, अब लगा कि नाश्ता करके आए हैं सब लोग। तो कौन कौन है आज हमारे साथ स्टूडियो में?
4: मेरा नाम शिवांशी है, मैं क्लास 10th में हूँ।
7: मेरा नाम पलक है, मैं क्लास 6th में हूँ।
8: मेरा नाम शिक्षा है, मैं क्लास 10th में हूँ।
9: मेरा नाम अनुष्का है, मैं क्लास 5th में हूँ।
10: मेरा नाम रूहानी है, मैं क्लास 8th में हूँ।
11: मेरा नाम अमीक्षा है, मैं क्लास 7th में हूँ।
5: ओके, तो आज हमारे साथ स्टूडियो में है बहुत सारे बच्चे, अब 5th क्लास में भी हैं, 6th में भी हैं, 10th तक है। तो खाना खाना तो सबको पसंद है, खाना बनाना किस किस को आता है?
7: दीदी मेरे को।
12: दीदी मेरे को।
4: दीदी आता तो है, बस बनाने में थोड़ा वो लगता है कि हाँ बनाना पड़ेगा। हाँ। खाना खाना पसंद है, बस हमें
5: पसंद ज्यादा खाना खाना है, है ना?
7: दीदी सोचोगे नहीं, जब हम खाना बनाने जाते हैं ऐसे करते हैं।
5: हाँ, पसीना आ जाता है
7: क्योंकि गैस एकदम वैसी बवकरी होती है, उसमें खाना बना देना।
5: तो और कुछ कहना चाह रही है हमारे साथ रूहानी, भी बोलिए।
10: दीदी मुझे तो खाना बना के दूसरों को खुश करना बहुत पसंद है।
5: ओके वेरी गुड, और आप भी कुछ कहना चाह रहे हो शिवांशी?
4: दीदी हम तो बस खा के खुश होते हैं, बना के नहीं होते।
5: अच्छा,
11: हम बना के खुश होते हैं।
9: दीदी मैं भी बना के खुश होती हूँ।
5: अरे वाह। और शिक्षा?
8: मुझे तो खाना खाना पसंद है, क्योंकि जब भी कुछ बनाने के लिए जाती हूँ ना तो कुछ बन जाता है।
5: हाँ ऐसा होता है, ऐसा होता है, कुछ बनाने जाते हैं कुछ और बन जाते हैं, वो एक नई डिश का निर्माण हो जाता है ना।
7: पर दीदी मेरे साथ ऐसा हुआ है, नई डिश का निर्माण हुआ है ना, पर वो घर वालों को सबसे ज्यादा पसंद आई है।
5: हाँ, ऐसा भी हो सकता है भाई। तो भाई एक्सपेरिमेंट भी करते हैं खाने में, कुछ नया बनाते हैं, कुछ पहले से जो बना रहे होते हैं वही बनाते हैं।
10: दीदी मैं तो एक बार केक बनाया था, बहुत मस्त बना था केक, लेकिन बर्तन खराब हो गए तो दादी जी ने किचन में घुसना ही बंद कर दिया मेरा।
5: हाँ भाई, बर्तन को तो ध्यान रखना पड़ेगा ना, आगे भी तो बताना है।
11: और फिर वो लोग बोलते हैं चल बर्तन तो खराब कर दिया पर खाना अच्छा बनाया है।
10: ये भी नहीं बोलती मेरी दादी, तो बोलती तू खा ले खुद, मेरे को नहीं खाना।
5: हाँ, कई बार बड़ों को और बच्चों को जो पसंद होता है उसमें भी तो अंतर होता है ना। है ना, बड़ों को क्या पसंद होता है जो वो खाते आ रहे हैं ना, ट्रेडिशनल खाना. और कई बार हम बच्चों को क्या लगता है, अच्छा कुछ नया नया बनाना, केक बनाना, ये बनाना है,
9: फास्ट फूड
5: पसंद होता है. अच्छा आप लोगों की फेवरेट डिश क्या है?
4: दीदी खाना खाना तो पसंद है, पर कई बार जब मूड होता है ना कि हाँ चलो आज बना लेते हैं, तब बनाते हैं. वो मुहूर्त कभी कभी ही आता है.
5: कभी कभी आता है वो मुहूर्त, जब घर वाले इतने लकी हो कि उनको कुछ बना के खिलाया जाए, है ना?
4: जी हाँ.
5: ओहो,
10: एक बार तो मैं घर पे अकेली थी, तो मैं रोज एक घंटे के बाद मैं डिशेज बनाती जाती थी और खुद खा लेती थी. क्योंकि जब घर में होता है तब कोई किचन में जाने नहीं देता मेरे को ज्यादा.
5: क्योंकि अभी हमें खाना बनाना तो आता है, लेकिन और कायदे से बर्तन रखना और चीजें रखना वो कभी कभी मुश्किल हो जाता है.
10: वो मैं कर देती हूँ तब भी दादी जी कमियां निकालती रहती है, ये देख काला हो गया बर्तन, अब से पकाना मत इसमें,
5: काला हो गया होगा ना.
10: हाँ.
4: पर दीदी डांटते जरूर है, पर वो अंदर से खुश होते हैं, बस बताते नहीं है. अगर ऐसे डांट मारेंगे ना, कमियां बताएंगे, तो ही तो आगे उनको ऐसे सुधारेंगे.
5: को कमियां धीरे धीरे सुधर भी जाती हैं, है ना? अभी तो हम बच्चे हैं, है ना, धीरे धीरे करते करते. अभी से आप लोग इतना अच्छा कर रहे हो तो बाद में तो कितना ही अच्छा करोगे. अच्छा सबको क्या क्या पसंद है खाने में सबसे ज्यादा, कौन बताएगा पहले? शिवांशी.
4: दीदी आलू के परांठे.
5: ओके.
7: दीदी मुझे छोले भटूरे.
5: शिक्षा को
11: पाव भाजी,
9: आलू के पराठे.
10: मेरे को पनीर की सब्जी.
5: ओके.
11: मुझे सब कुछ पसंद है.
5: कुछ फेवरेट नहीं है?
11: फेवरेट है क्या? पाव भाजी फेवरेट है.
5: तो किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है. दो लोगों को आलू के पराठे, दो लोगों को पाव भाजी. हाँ
7: दीदी आपको पता है भाजी मुझे पसंद है, पर पाव से मैं दूर भागती हूँ.
5: क्यों?
7: पसंद नहीं, ब्रेड का होता है, ब्रेड मुझे पसंद नहीं.
5: तो फिर रोटी से खा लो.
7: अलग रोटी बनती है.
10: पाव तो घर में भी बनते हैं, मेरी बड़ी दीदी बनाती हैं.
5: हाँ बना सकते हैं घर में भी. अनुष्का कुछ कहना चाह रहे?
9: दीदी मैं महाराष्ट्र गई थी तो मेरी मौसी ने बनाया था पाव भाजी.
5: बहुत अच्छा बना था. ओके. सबसे अच्छा खाना अभी तक, मतलब खाना तो हमेशा ही अच्छा खाते हो, पर आपके घर में जो बनता है वो आपको क्या पसंद है, जो आपके घर वाले बनाते हैं बहुत टेस्टी जो लगता है? अमीक्षा से शुरू करते हैं.
11: मुझे मेरे नानी यहाँ के हाथ की आलू की सब्जी बहुत पसंद है.
5: ओके.
10: मेरे को दो चीज पसंद है, एक कटहल की सब्जी, दूसरी पनीर की.
5: कौन बनाता है?
10: दादी जी.
5: अरे वाह.
9: मेरे को पराठे.
5: कौन बनाता है घर पे?
9: नानी.
5: अरे वाह कितने लकी हो आप लोग.
8: मुझे मेरी मम्मी के हाथ की बनाई हुई भिंडी की सब्जी अच्छी लगती है.
7: दीदी मेरी मम्मी के हाथ के बने मुझे कटहल की सब्जी अच्छी लगती है, मेरे बहन के हाथ के बनाए हुए मोमोज अच्छा लगते हैं.
5: ओके. शिवांशी.
4: दीदी मेरी मम्मी तो सब कुछ अच्छा बनाती है, जो बनाती है बस हम खा लेते हैं.
5: सबसे अच्छा लेकिन क्या लगता है?
4: मशरूम की सब्जी.
5: तो कभी मम्मी लोग को थैंक यू बोला नानी को दादी को कि आपने बड़ा अच्छा बनाया आज, ऐसा बोलते हो कि नहीं बोलते हो?
10: हाँ, हमेशा ही बोलती हूँ मैं.
4: दीदी बोलते तो है, फिर कहते मक्खन मत लगा, पता है कुछ और बनाने की बात होगी.
5: कुछ और बनवाना होगा.
7: ये आपको पता है मम्मी के हाथ का हर एक खाना अच्छा लगता है,
5: जो बनाते सब अच्छा लगता.
7: हाँ.
5: है.
7: और अब बहने बना दे दूर भागते खाना अच्छा नहीं बनता था.
5: हाँ मिक्षा.
11: दीदी ये सब खाना सुन के मुँह में पानी आ गया
5: है ना. अभी तो एपिसोड पूरा भी नहीं हुआ, अभी तो शुरू ही हुआ है.
7: दीदी सही बोला.
5: अब लेकिन बात शुरू हुई है तो आगे तो जाएगी, है ना. खाने के बारे में थोड़ी और बातें करते हैं.
10: जब मैं दादी को बोलती हूँ ना, दादी मेरी फेवरेट सब्जी बना दो, तो दादी जी बोलती है इसलिए तंग करती है मेरे को, नहीं बनाना जा. फिर मैं घर पे आती हूँ ना तब बनाई हुई रहती हूँ.
5: देखो दादी कितना प्यार करती है आपसे, है ना. हाँ.
4: दीदी हमने तो अपनी फेवरेट डिश बता दी, आप तो बताओ.
5: मेरी फेवरेट डिश, मुझे भी पनीर की सब्जी बहुत पसंद है, एकदम फेवरेट. मैंने आलू का पराठा.
4: कौन सा पनीर दीदी? शाही पनीर,
10: मक्खन पनीर,
4: आलू पनीर.
5: नहीं शाही पनीर, हम लोग बचपन में इतने वैरायटी पनीर तो नहीं खाते थे, शाही पनीर मोस्टली होता था, तो वो बहुत अच्छा लगता है.
7: दीदी किसके हाथ का शाही पनीर?
5: मम्मी के हाथ का. सबको मम्मी के हाथ का कुछ ना कुछ पसंद होता है. हमारी क्योंकि दादी और नानी जो थे ना वो दूर दूर रहते थे, तो उनसे मिलना थोड़ा कम होता था. लेकिन आप लोग बहुत लकी हो, क्योंकि जो दादी और नानी का प्यार मिलता है ना वो बड़ा स्पेशल होता है.
7: और दीदी मेरी तो नानी भी नहीं है, नाना भी नहीं है, दादी भी नहीं है, दादा भी नहीं है.
5: हाँ कोई बात नहीं, जो भी बड़े हैं जिनको दादी नानी का मिलता है वो भी, मम्मी पापा का मिलता है वो भी, और बहनों का जो मिलता है वो भी.
7: वो तो दीदी बहुत अलग है.
5: भाई बहनों से लड़ाई भले होती है, लेकिन देखो आपकी बहनें आपको बना के खिलाती है कि नहीं?
7: उनको मैं भी बनाती हूँ, बना के खिलाती हूँ, मेरे को बना के खिलाती है.
5: हाँ.
11: दीदी एक बार है ना मैंने ना आलू की सब्जी बनाई थी ना, तो मेरे भाई ने बोला कि मेरे को नहीं खानी, तूने बनाई है तो कड़वी बनाई होगी. मैंने बोला आलू की सब्जी कौन कड़वी बनाता है, तो बोले मैंने बोला नहीं खानी, तो बोले नहीं खाने। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, तो फिर मैंने रख दिया। मैंने कहा वो तो नहीं खा रहा, मैं शाम को खा लूंगी। फिर मैं सो गई, फिर जब उठी ना तब देखा मेरा भाई किचन के जो वो होता है ना खाना बनाने का, उस पे चढ़ के खा रहा था। बोले इतना बुरा तो नहीं बनाया।
5: भाई बहनों की तारीफ करना थोड़ा मुश्किल होता है ना।
4: दीदी ऐसे लगता है अगर तारीफ कर दी ना इज्जत कम हो जाएगी,
5: तो फिर तारीफ नहीं कर सकते ना बुरा। फिर कुछ अच्छा काम किया उसने तो क्या करेंगे फिर,
4: बस ऐसे कर दिया बस, और क्या बाद में चाहे सोचेगी हाँ अच्छा काम कर, और उसके सामने नहीं बोलेंगे।
11: और दीदी बोलते हैं बस लगा लिया मक्खन और थोड़ा लगा ले,
10: अगली बार और बेहतर करता।
7: दीदी अगर हमने खाना चखा अच्छा लगा, तो अगर पूछती अच्छा लगा, मैं बोलती हूँ नहीं नहीं ले जाया तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा।
5: अच्छा होता है तब भी।
7: हाँ बोलती है मेरे खाने की हमेशा ऐसी तारीफ करती है। मैंने बोला इज्जत नहीं कम करनी मेरे को।
5: फिर खाने को मिलता है कि नहीं
7: मिलता है ना दीदी,
5: है ना।
7: वो जाती है कहीं और मैं उसको प्लेट को लेके बैठती हूँ खाना खाने।
5: शिक्षा
8: मेरी दीदी तो मुझे घर में बहुत सारी चीजें बना के खिलाती है, बस मुझसे कहती है तुम कब खिलाओगे।
5: क्या बनाती है दीदी?
8: दीदी फोन पे से देखती है तरीके तरीके की चीजें, मोमोस बनाती है घर पे, उन्होंने पाव भाजी बनाई, पास्ता के नए रेसिपी ट्राई करते हैं।
5: अरे वाह।
8: और मैं कभी कुछ बनाऊं गंदा बनता है ना, तो अभी दीदी है ना बुरा नहीं बताते। और पापा तो अगर मैंने पराठा कच्चा भी सेका हो ना, वो भी खुशी से खा लेते हैं क्योंकि उसने ट्राई किया। और दीदी भी है ना कभी कुछ बनाती है मुझसे ही पूछती है, क्योंकि मैं ही उनका परफेक्ट बताती हूँ कि हाँ अच्छा है या इसमें नमक कम है ज्यादा है। बाकी मम्मी पापा तो कभी कोई कमी नहीं निकालते,
5: उनको लगता है कि बनाया तो अच्छा, इतना बनाया वो बहुत अच्छा ना, घर वालों को तो बहुत अच्छा लगता।
11: हाँ,
5: है
11: ट्राई तो किया है,
5: ट्राई तो किया बड़ी बात है बिल्कुल, और अच्छा बनता भी है।
8: हाँ।
5: कभी थोड़ा बहुत तो हो ही सकता है।
10: दीदी ऐसा हो तो हमारा घर ही स्वर्ग ना बन जाए।
5: तो वो तो आपको बनाना पड़ेगा ना स्वर्ग घर को, है ना।
10: लेकिन कोई इतना सपोर्ट करे घर में
5: तो सपोर्ट आप करो सबको।
10: हाँ वो तो मैं करती हूँ,
5: है ना। बहुत अच्छी बात है। और बड़ों की तो डांट में भी प्यार होता है ना। हाँ, उसको तो सिखाने के लिए वो डांटते हैं हमको, असल में थोड़ी डांटते हैं वो। हमारा बुरा सोच सकते हैं क्या कभी, बताओ सच्ची में बुरा सोच सकते हैं कभी हमारा?
10: नहीं,
5: कभी भी नहीं। और कितना प्यार करते हैं, जो फेवरेट चीजें बना के खिलाते हैं।
10: हाँ।
7: और दीदी अगर मान लो गुस्सा हो गए ना, फिर आके बोलते हैं ये तो मेरा प्यार था, तू क्यों गुस्सा हो गई।
4: ऐसे ही बोलते हैं क्या?
7: नहीं नहीं ऐसे नहीं, पर मेरी आवाज ऐसी है, ऐसे आएंगे मारेंगे फिर बोलेंगे ये तो मेरा प्यार था, तू गुस्सा क्यों हो गई।
5: हाँ असल में तो प्यार ही होता है वो।
7: दीदी आपको एक और बात बताऊं, देखो जो खाना बनाते हैं घर का वो मेरी मम्मी बनाती है, वो वैसे बनाती है। और जो बाहर की चीजें जैसे मोमोज, चाउमीन, पाव भाजी, ये सब ये मेरी बहना बनाती है, उसको हमारे घर का मास्टर शेफ बोलते हैं।
5: हाँ कुछ नई नई डिशेस देख के ट्राई करते हैं ना यूट्यूब से।
7: यूट्यूब से नहीं, उसको पहले से बनानी आती
5: है, उनको पहले से आती है। अरे वाह ये भी बहुत अच्छी बात है, खाना बनाना तो बहुत बड़ी आर्ट है।
4: मेरी मम्मी तो ना जब भी उनका मन करेगा कभी मोमोज बना देंगे कभी कुछ बना देंगे, बस उनकी मर्जी की बात है, हमारी मर्जी का कुछ बस नहीं चलेगा। जब उनकी मर्जी होगी हाँ आज अमृतचरी बड़े बनाना है तो अमृतचरी बड़े ही बनाने, कुछ और नहीं बनेगा घर में।
5: उनको तो रोज सोचना पड़ता होगा ना आज क्या बनाना है, आज क्या बनाना है, है ना। घर में तीन टाइम बनाना और फिर प्लानिंग करना उसकी बहुत मुश्किल है।
11: और दीदी पूछते कुछ और है और बनाते कुछ और है।
5: ऐसा तो होता है,
4: एक बार ऐसा ही हुआ था, मम्मी ने पूछा था मोमोज खाएगी, मैं कहा हाँ हाँ बना लेते हैं बना लेते हैं। मैं जब शाम को फिर घर आकर देखती हूँ ना, मैंने क्या देखा, मम्मी ने नूडल्स बना रखे हैं। मैं कहा अब तो मोमोज बना रहे, कहते नहीं मेरा मन बदल गया था।
5: हाँ।
4: मैंने इतने मूड बना रखा था कि हाँ आज तो मोमोज खाएंगे, सारा मूड खराब।
5: नूडल्स कैसे लगे फिर?
4: नूडल्स तो टेस्टी थे,
5: टेस्टी थे ना।
10: कभी कभी दादी जी पूछती है भिंडी खाएगी आलू, मैंने बोला भिंडी, तो उन्होंने बोला नहीं आलू ही बना लेती हूँ। मैं बोलती हूँ फिर पूछा क्यों।
11: पूछते कुछ और बनाते किचन में जाके कुछ और है, बोलते हैं मैं तो भूल गई।
5: और भी काम होते हैं ना बहुत सारे।
11: हाँ।
5: लेकिन वो लगता कैसे, लगता तो टेस्टी है ना।
10: हाँ।
7: यदि मम्मी के दादी के हर हाथ का खाना अच्छा ही लगता,
5: सब
7: है
5: सब अच्छा लगता है। अच्छा चलो अब अपने हाथ की बात करते हैं, आप लोगों ने क्या क्या बनाया है मुझे ये बताओ अब तक घर पे। दर्शिवांशी
4: दीदी बना तो सब कुछ रखा है, बस वो कभी कभी बनता है।
5: क्या क्या बनाया? अच्छा एक आध चीज बताओ।
4: आलू के परांठे हो गए, केक हो गया, पिज्जा हो गया।
5: अरे वाह
4: होता नहीं तो बताने लगूंगी तो रात हो जाएगी ना।
5: सब कुछ बनाया आपने खुद?
4: हाँ जी सब कुछ बनाया, बस वो कभी कभी बनता है कुछ स्पेशल डे पे।
5: ओके वेरी गुड।
7: दीदी मैंने केक बना रखा है घर में, चावल बना रखे, चावल को छौंक भी रखा है, 10 पराठे बना रखे और रोटी बना रखी है और चाय बना रखी है,
5: वेरी गुड,
7: और शरबत बना रखे है।
5: शिक्षा आपने क्या क्या बनाया?
8: मैं तो घर पे ज्यादा ज्यादा मम्मी मुझसे सेव भाजी बनवाती है, बोलती है तुम वही अच्छा बनाते हो, जब भी घर पे है ना सब्जी नहीं होगी कुछ तो मम्मी मार्केट से है ना सेव वाले नमकीन मंगाएंगे और मुझसे बोलेंगे तुम बनाओ जा। और जैसे कि भिंडी वगैरह हुआ ये चीज बनाते हैं ना, तो ये चीज तो मैं ही बनाती हूँ घर पे, क्योंकि बोलते हैं तुम्हारे हाथ से ही अच्छा लगता है ये टेस्ट।
5: भिंडी?
8: हाँ।
5: अरे वाह, सेव भाजी भी बहुत अच्छी डिश है ना।
8: हाँ।
5: बहुत अच्छी लगती है। और अनुष्का कुछ आपने ट्राई किया? अभी तो आप छोटे हो है ना।
9: हाँ, मैंने तो केक मेरे को ज्यादा बनाना आता है।
5: केक आता है आपको बनाना? बापरे, अच्छा किससे सीखा आपने?
9: नहीं, मैं खुद ही फोन में रील्स आती है ना उसमें देख के बना सकती हूँ, उसमें बहुत सिंपल दिखा।
5: अच्छा, तो आपने बनाया है कभी केक या नहीं?
9: हाँ, एक दिन तो मेरे भाई के बर्थडे पे मैं बना रही थी, मेरा भाई ना बोला चल इतना भी अच्छा नहीं बनाएगी, नहीं बनाना। हाँ, वैसे कि वो बुराई निकालते लेकिन जब खाते तब अच्छा लगता है उनको।
5: ऐसे करते हैं ना भाई बहन, पहले तो ऐसे बोलते हैं और फिर खा लेते हैं चुपके से, कभी कभी तो सामने ही।
9: हाँ, चुपके से खाते हैं।
5: सब भाई बहन जैसे होते हैं,
7: फिर बोलते इतना बुरा तो नहीं बना,
5: इतना बुरा भी नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा ऐसा नहीं बोलते ना।
7: अगर दीदी ऐसा बोल दिया जिस दिन हमने बोल दिया वाह ऐसा बोला, बोलते इज्जत कम हो गई, नहीं बोलना था मुझे।
5: हाँ, ये भाई बहनों का प्यार दिखाने का तरीका है।
4: जिस दिन ऐसे बोल दिया ना उस दिन तो धरती में स्वर्ग आ जाएगा।
5: और रानी ने क्या क्या बनाया?
10: मैंने केक बनाया, पिज्जा बनाया, पोटेटो नगेट्स बनाए, फ्राइज बनाए और शरबत भी बनाए बहुत सारे। और घर की चीजें तो आती है, दाल चावल सब्जी रोटी, मैं तो नई चीजें ट्राई।
5: हाँ, शरबत तो आपने यहाँ भी सबको पिलाया था, बहुत अच्छा आम पना बनाया था रूहानी ने।
10: हाँ,
5: है ना, बहुत अच्छा, वेरी गुड। और अमीक्षा?
11: दीदी मैंने नूडल्स बनाए, चाउमीन बनाया है और घर की चीजें तो मैंने सब्जी रोटी सब कुछ बनाया है। मैं नए नए फोन में से देख देख के बनाती हूँ, और चाउमीन और नूडल्स तो मेरे मासी ने सिखाए थे मुझे।
5: अच्छा, वेरी गुड। तो आप लोग तो बड़ी सारी चीजें बना लेते हो अभी से।
10: दीदी जब मैं छोटी थी ना मैं सोचती थी दादी जी को देख के कि इतने सारे मसाले दादी जी याद कैसे रखती है, कब कौन सा डालना है, मुझे तो समझ भी नहीं आता मसाले का नाम क्या होता है। फिर अब जाके पता चला सब एक साथ ही डालना है।
5: हाँ, लेकिन फिर भी कितना डालना है, कितनी क्वांटिटी, मम्मी लोगों को, दादी नानी को कितनी प्रैक्टिस होती है, बहुत एक्यूरेट डालते हैं कि नमक भी ठीक पड़ेगा, हल्दी भी ठीक पड़ेगी, है ना। एक्यूरेसी कितनी होती है। हाँ मीक्षा।
11: और दीदी एक बार तो मेरी नानी ने बोला गरम मसाला ले, मैं कोई और ही मसाला लेके आ तो नानी ने बोला कि तुझे मसाले में अंतर नहीं दिखता, मैंने बोला नहीं मुझे सारे मसाले एक जैसे ही लगते,
5: एक जैसे लगते हैं। हाँ
4: दीदी जब मैं छोटी थी ना मतलब 3rd-4th class में, तो मम्मी ने मेरे को बोला था गरम मसाला ले बाजार से, मैं बाजार में गई तो सिर्फ मसाला कहने दिया, मैं अंकल मसाला तो गरम ही नहीं है, गरम मसाला तो घर आके मम्मी को बताया, कहते पागल गरम मसाला ना मैं गरम नहीं होता
5: असल में, गरम नहीं होता। हाँ जब छोटे होते तो हमें थोड़ी पता होता है कि क्या मतलब है ना
4: उस बात पे। अभी मेरे भाई बहन मेरे को चिढ़ाते हैं, कहते गरम मसाला लेके आती नहीं है तू,
5: ठंडा मसाला ले आए। हाँ। तो अब आप लोगों को सब दालों के नाम पता है, सब मसालों के नाम पता है सबको?
7: दीदी मेरे को पता है नमक, मिर्ची, गरम मसाला, हल्दी और पिसा हुआ धनिया, अजवाइन, राई, जीरा,
11: ये तो हमें याद है, हमें वो दाल होती है ना उसके नाम याद,
5: दाल कोई भी। अच्छा पहचान में आ जाती है कौन सी दाल बनी है?
4: दीदी दालों के नाम तो याद नहीं रहते, कलर से याद करते हैं, ऑरेंज वाली दाल, येलो वाली दाल, ब्लैक वाली दाल,
10: यही होता है।
5: तो
10: बस खाने में टेस्टी होती है उतना बहुत है मेरे।
5: इस बार गर्मियों की छुट्टियों में सारी दाल के नाम पता करके आना, कौन सी दाल होती है, अरहर की है कि मसूर की है ना, कौन सी दाल।
7: आपको पता है मेरे को दालों के नाम कैसे पता है? क्योंकि घर की दाल मैं ही लेके आती हूँ।
5: हाँ जो लेके आता है उसको तो पता ही है, लेकिन नहीं भी लाते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन पता करके आना इस बार, ठीक है सब लोग। हाँ बताओ
9: जी आपकी फेवरेट डिश कौन सी है?
5: मेरी फेवरेट डिश जैसा मैंने बताया था वो भी पसंद है मुझे, और अभी के अगर डिशेस की बात करें तो अभी भी अच्छे लगते हैं, नूडल्स भी अच्छे लगते हैं, पिज्जा भी अच्छा लगता है, बहुत सही फेवरेट डिश है ना।
10: दीदी आपने कभी ट्राई किया क्या कोई डिश बनाने की?
5: हाँ बहुत कुछ, क्योंकि मैं तो काफी समय से अलग भी रहती थी, जैसे बाहर पढ़ाई करने गए तो हम खुद खाना बनाते थे अपना, तो समय दाल रोटी सब्जी ये सब तो बनता ही था, कचौड़ी तहरी नूडल्स वगैरह भी बनाते थे। आपने दाल की कचौड़ी खाई है?
4: हाँ जी दीदी,
5: है वो बनाते थे
11: दीदी, बहुत अच्छी लगती है।
5: है बहुत अच्छी लगती है ना
4: दीदी, इतने वैरायटी के खाने सुन के ना सही में भूख लग रही है
5: अब। हाँ नाश्ता किया है थोड़ी देर पहले पर फिर भी भूख लगने लगी है ना।
11: दीदी मुँह में पानी आ रहा है,
10: पानी में मुँह आ रहा है।
7: पानी मम्मू कैसे आएगा?
9: मेरा पानी
5: तो चलो इस बार यानी समर्स में आप लोग कुछ और भी हेल्दी, इस बार एक काम करते हैं, एक थीम रखते हैं कि आप लोग जो हेल्दी डिशेस होती है ना, जिसमें बहुत फ्राई नहीं करना पड़ेगा, और कौन कौन सी चीजें ऐसे यूज करके कोई हेल्दी ड्रिंक या हेल्दी डिश क्या बना सकते हो, वो कोई नई जो अब तक नहीं आती, जो अब तक सीखी नहीं है, वो सोच के या देख के आना, ठीक है? तो दालों के नाम याद करने हैं इस बार, और कोई हेल्दी डिश या ड्रिंक क्या बना सकते हैं और क्या खिलाई जा सकती है, कैसे बनाई जा सकती है, वो तैयार करके आना है, ठीक है?
4: ठीक है,
5: तो फिर नेक्स्ट टाइम हम लोग एक दूसरे के साथ वो रेसिपीज शेयर करेंगे, ठीक है? तो हेल्दी डिश की रेसिपीज और हेल्दी ड्रिंक्स की रेसिपीज भी अगर आपको जाननी है तो बच्चों की दुनिया में बने रहिएगा, क्योंकि बच्चे जो हैं वो आपको बताएंगे बहुत नई नई इंटरेस्टिंग डिशेस, और उनकी दुनिया में भी हम सफर करेंगे और जानेंगे कैसी होती है बच्चों की दुनिया, क्योंकि भाई बड़े भी तो कभी ना कभी बच्चे थे, तो वो दुनिया तो हमारे अंदर भी हमेशा ही रहेगी। फिलहाल वक्त हो गया है लेने का इजाजत, तो रेडियो मधुबन 107.8 FM पर हम सभी आपको करते हैं गुड बाय।

0: गणपति बाप्पा मोरिया,
1: मंगल मूर्ति मोरिया,
0: गणपति बाप्पा मोरिया,
1: मंगल मूर्ति मोरिया,
0: एक दो तीन चार,
1: गणपति तेरी जय जयकार,
0: एक दो तीन चार,
1: गणपति तेरी जय जयकार।
2: गुणाधिपति विद्यापति रिद्धि सिद्धि के नायक पधार रहे हैं, आइए बड़े उमंग से गणेश जी का स्वागत करें। गणेश उत्सव के महान पर्व को सभी मिलकर मनाते हैं और अपनी संस्कृति का संवर्धन करते हैं। रेडियो मधुबन 90.4 FM के सभी सुनने वालों को गणेश उत्सव की बहुत बहुत

नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की जानिब से पेश है सातवीं जमात की उर्दू की मुआविन दर्सी किताब उर्दू गुलदस्ता में शामिल नज़्मों पर मुश्तमिल प्रोग्राम।

इस प्रोग्राम में पेश खदमत है एक नज्म, उन्वान है ये दुनिया हसीन है, शायर है जानिसार अख्तर।

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज पर, 107.8 एफएम पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। एक और रोमांचक दिन खेलने के लिए आप सुन रहे हैं खाना पकाना और खेलना।
3: छोटी बड़ी बातें, इनमें छुपी है बच्चों के दिल की बात।

घर और बाहर के रोजाना काम करते वक्त भी। अब देखिए, कल सब्जियां खरीदते वक्त मेरी बेटी और मैंने एक बहुत ही आसान और मजेदार खेल खेला। मैंने उससे पूछा कि उसे कौन सी सब्जी खरीदने का मन है। उसने जवाब दिया, आलू गोभी मटर खाएंगे कचर कचर। अब उसकी बात सुन के मैंने जवाब दिया, एक था बंदर पसंद था जिसे चुकंदर। बस ऐसे ही बातों बातों में खेल बन गया। हम दोनों को बहुत मजा आया। मेरी बेटी ने बोला, अब वो हमेशा मेरे साथ सब्जियां खरीदने आएगी। तो चलो सुनते हैं एल्मो के मम्मी पापा आज एल्मो के साथ क्या खेल खेल रहे हैं।

0: एल्मो, बुझो तो जानो।
1: पूछो, एल्मो को गेस करना बहुत पसंद है।
0: हाँ, हरी है, भरी है, सर पे टोपी पहनी है।
1: हरी है, भरी है, हरी भरी मतलब हरी सब्जी।
0: हाँ,
1: पालक, पालक हरी भरी होती है।
0: पालक हरी भरी तो होती है, पर क्या उसके सर पे टोपी होती है?
1: सर पे टोपी तो नहीं होती। हाँ, एमो को पता है, बैंगन, बैंगन के सर पे टोपी होती है।
0: टोपी तो है, पर बैंगन का रंग होता है
2: बैंगनी।
1: पापा, पापा आ गए। पापा, एमो को पूछना है मम्मी क्या बना रही है।
2: आहा, मम्मी दाल बना रही है।
1: कुकर में नहीं, हमें पूछना है कि मम्मी कढ़ाई में क्या बना रही है।
0: हरी है, भरी है, सर पे टोपी पहनी है।
2: अच्छा, लौकी,
1: तुरई,
2: टिंडे।
0: बूझो तो जाने, सब्जी का नाम मिलता है पिंडी से।
1: है? पिंडी?
2: तुक मिलाने वाला शब्द। जैसे गिंडी, मिंडी,
1: निंडी, रिंडी।
2: या एल्मो की फेवरेट।
1: एल्मो की फेवरेट तो है भिंडी।
0: हाँ, मैं बना रही हूँ हरी भरी सर पे टोपी वाली एल्मो की फेवरेट भिंडी। एल्मो, प्लेट्स और कटोरिया निकालो प्लीज।
1: पापा, प्लेट्स निकालने के पहले एल्मो करेगा शिकी शिकी शिक शिक।
0: शिकी शिकी शिक शिक,
1: पूछो तो जानो। शिकी शिकी शिक शिक में बनता है झाग।
2: शिकी शिकी और झाग, एल्मो साइकिल धोएगा।
1: नहीं पापा, शिकी शिकी शिक शिक में बनता झाग हाथ हो जाते जिससे साफ।
0: एल्मो साबुन से हाथ धोएगा।
1: हाँ,
2: बढ़िया आइडिया, मैं भी शिकी शिकी कर लेता हूँ।
0: खाना पकाते पकाते हम सब खेल भी रहे हैं एक साथ, बहुत मजा आ रहा है। लो, खाना भी तैयार हो गया।
2: अब ये बूझो, पप्पा को लग रही है
0: भूख।
1: एमो को भी,
0: मुझे भी।
3: मैं काम करते करते आपने तो खेल लिया और खाना भी तैयार कर लिया, कैसा लग रहा है आपको?
0: हाँ, खाना पकाते पकाते काम भी और खेल भी, ऐसे ही रोज मैं एल्मो के साथ खेलती हूँ और उससे बातें करती हूँ कोई भी काम करते हुए, और एल्मो के पापा भी हमारे साथ खेलते हैं।
3: बच्चों के साथ खेलने के लिए हमें अलग से वक्त निकालने की जरूरत नहीं है, हम कुछ भी करते हुए खेल सकते हैं, जैसे कपड़े धोते हुए, सफाई करते हुए,
0: सब्जी खरीदते हुए, स्कूल या मार्केट जाने के समय, या घर का कोई भी काम करते हुए, कई तरह के खेल खेल सकते हैं। कभी पोयम बना ली, तो कभी क्विज खेल लिया, या फिर एल्मो का फेवरेट खेल, चीजों को छाट के अलग अलग करना, काम भी पूरा हो जाता है और बच्चों का खेल और मस्ती भी।
3: बिल्कुल, बच्चों के साथ खेलने में बहुत मजा आता है और खेल खेल में बच्चे सीखते भी हैं, पर सबसे ज्यादा जब हम अपने बच्चों के साथ खेलते हैं तो उनके साथ हमारा रिश्ता और मजबूत होता है। कभी भी, कहीं भी और कोई भी काम करते हुए बच्चों के साथ खेला जा सकता है, तो चलो खेलें सब संग।
4: सेसेमी वर्कशॉप इंडिया द्वारा निर्मित, यूबीएस ऑप्टिमस फाउंडेशन और ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट द्वारा समर्थित।

0: गणपति बप्पा,
1: गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया।
0: गणपति कहाँ आ रहे हैं?
2: हाँ बिटिया, गणपति आ रहे हैं हम सबके घर और हम स्वागत करेंगे धूमधाम से।
3: गणपति जी के आगमन पर आप सभी को रेडियो मधुबन की ओर से शुभकामनाएं। गणपति जी के साथ आइए, उनके प्यार, सेवा और शक्ति के गुणों को भी करें धारण। मनाएं गणेश उत्सव उमंग और हर्ष उल्लास के साथ।

0: बाल संसार प्रिय श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम बाल संसार में। आज हमारे साथ हैं विशेष अतिथि डॉक्टर अजय शुक्ला, जो हमें मर्यादाओं का अनुकरण और मूल्यपरक सिद्धांतों के महत्व पर अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का विषय दूसरों के प्रति सम्मान और मूल्यपरक सिद्धांतों के प्रति विश्वसनीय आस्था। डॉक्टर शुक्ला हमें बताएंगे कि कैसे मर्यादाओं का अनुकरण हमें दूसरों का सम्मान करना सिखाता है और यह हमारे जीवन को खुशहाल और संतुष्ट बना सकता है।
1: नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बाल संसार इस कार्यक्रम में। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। बाल संसार में हम लोग पिछले कुछ सीरीज में आप 15-16 एपिसोड सुन चुके हैं और जिसमें हमने बाल मनोविज्ञान के बारे में बातें कर रहे हैं। और आज के हमारे अतिथि जैसे कि हमेशा की तरह डॉक्टर अजय शुक्ला जी हैं जिनसे हम लोग बात करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने

0: अनुसरण करने में, करने से हमें दूसरों का सम्मान करने में कैसे मदद मिलता है, ये बताइए।
1: बहुत ही मर्यादित प्रश्न भी है और मर्यादा को लेके भी है, तो बड़ी खुशी भी हो रही है। आत्मा का जो स्वभाव होता है, संस्कार होता है, स्वमान होता है, वो नेचुरल रूप से बहुत सारे मूल्यों के स्वरूप में ही होता है, और उस स्वरूप की विस्मृति हो जाने के कारण लोक व्यवहार में जब हम आते हैं, जिसको कई बार हम कह सकते हैं कि संगत गुण असर होता ही है, जिस भी माहौल में हम रहते हैं वो चीज़ें धीरे धीरे हमारे अंदर असर करती हैं, और कई बार उसका प्रयोग जब हमारे द्वारा होता है या बच्चों के द्वारा होता है, तो माता पिता को या मर्यादाओं का पालन करने वाले इंसान को ये लगता है कि अचानक इस बच्चे ने इस बिहेवियर पर कैसे अपने मूवमेंट को शिफ्ट कर लिया। तो उसका कारण ये होता है, बच्चे से हालांकि वहाँ पर डांट डपट करके या कुछ उनको पनिश करके आप रोक सकते हैं, लेकिन गार्जियन को ये पूछना चाहिए कि जिस मर्यादा के अनुसार अपना आप आचरण कर रहे थे, उस मर्यादा के आचरण को निरंतर बनाए रखने में, या हमें लगा था कि आपने पिछले अपने व्यवहार से सिद्ध कर दिया था कि ये मर्यादाएं किसी भी स्थिति में बनी रहेंगी, तो ऐसी स्थिति अभी जो देखने में आ रही है वो कुछ थोड़ा सा अंतर लग रहा है, तो क्या कारण है कि ऐसा हो रहा है, और कुल मिला के आप इन मर्यादाओं का अनुकरण नहीं कर पा रहे हैं, उसमें कहाँ दिक्कत आ रही है। तो वो बच्चा ये बताने का प्रयास करता है कि जिन बच्चों के साथ मैं खेलता हूँ मैं, या जिन बच्चों के साथ में मैं पढ़ाई करता हूँ, या जिस स्कूल के वातावरण में रहता हूँ, या स्कूल से आने के बाद में जब मैं अपनी कोचिंग्स में जाता हूँ, वहाँ पर मुझे जो गाइड करने वाले टीचर हैं, या वहाँ जो ग्रुप है, जो समूह है, या बच्चे हैं, तो ये अलग अलग सुबह, दोपहर और शाम को अलग अलग सर्कमस्टांसेस में मेरा मूवमेंट होता है, और वहाँ पर जिस व्यवहार को वहाँ पूर्ण किया जाता है, या जो भी लोक व्यवहार में भाषा बोली जाती है, तो सबसे पहले वाणी के द्वारा हमारे पूरे बिहेवियर पर असर होता है। कोई बात किसी ने कही तो मेरा मन दुखा और मैंने उनको ऐसा जवाब दे दिया, और जवाब देने के बाद में मुझे लगा कि ऐसा मुझे नहीं बोलना चाहिए, तो ये जो इंटरप्रिटेशन है वो ऑटो सजेशन के द्वारा मुझे पता चल गया, ये बच्चा अपनी भाषा में कहने का प्रयास करता है। लेकिन बड़े जरूर इस चीज़ को समझ जाते हैं कि अभी मेरे बच्चे का या मेरा स्वयं का ये जो व्यवहार में अंतर आ रहा है, या मर्यादा के पालन करने में मुझे कुछ कठिनाई महसूस हो रही है, तो ये कठिनाई क्यों हो रही है। तो वहाँ जो संगत गुण असर है, जैसे बच्चे का उदाहरण मैंने आपको दिया, ऐसे ही ऑफिशियल प्रोसेस में पिता के साथ हो सकता है, माँ अगर बाहर कार्य करने जाती हैं तो उनके साथ में ऐसा हो सकता है, या किसी एनजीओ में कार्य करते हैं, या किसी सोशल ऑर्गेनाइजेशन में अपना समय देते हैं, तो ये तमाम परिस्थितियों के बीच में जो हमारी अपेक्षा है, उपेक्षा है, और कुछ हमारे भाव हैं जो हमें लगता है कि ये एवरी टाइम मेंटेन रहना चाहिए, हम करते भी हैं प्रयास, लेकिन कुल मिला के जब ये टूटन पैदा होती है, जब ये एक सैचुरेशन पॉइंट क्रिएट होता है, तो सैचुरेशन में इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ ऐसा नहीं है कि अच्छी बात करते करते हम बोर हो गए हों, बल्कि वो उस वातावरण ने हमको ऐसा बाध्य कर दिया कि हम चाहकर भी इन मर्यादाओं का अनुकरण नहीं कर पा रहे हैं। अब आपका जो भाई जी प्रश्न था कि क्या ये मर्यादाएं हम जब अनुपालन इनका करते हैं तो मूल्यपरक जो सिद्धांत होते हैं वो हमारी कितनी मदद करते हैं, तो निश्चित रूप से मदद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने अगर अपने जीवन में कुछ प्रिंसिपल डेवलप किए हैं, या बड़ों के द्वारा कुछ मार्गदर्शन गाइडेंस हमको मिला है, और एक सिद्धांत जब बनता है तो उसके पहले वो बहुत सारे उदाहरण जीवन में होते हैं, बहुत सारी कहावतें होती हैं, बहुत सारे प्रयोग होते हैं, और उसके बाद में कोई फाइनल एक हम एक शेप क्रिएट कर पाते हैं कि इस सिद्धांत का हम अनुसरण करेंगे, या इसका अनुकरण करेंगे, आत्मसात करेंगे, जीवन में इसको फॉलो करेंगे। तो वो सिद्धांत अगर आपने बहुत अच्छे से अपनी लाइफ में प्रयोग किए हैं, उनको अपनाया है, तो वो सिद्धांत एवरी टाइम हमको मर्यादाओं में रहने के लिए नेचुरल रूप से गाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आपने ये नियम बनाया है कि भाई हमें सुबह और शाम को टहलने जाना है, तो एक जो सिद्धांत है कि टू वॉक इन द मॉर्निंग यूजफुल फॉर द हेल्थ, या आफ्टर लंच रेस्ट ए माइल, और आफ्टर डिनर वॉक ए माइल, तो ये भोजन के बाद में रेस्ट का समय, या वज्रासन में आप बैठे हुए हैं, तो एक प्रिंसिपल ही आपने तमाम लेवल पर अपने इस सिद्धांत को फॉलो कर लिया। आपको लगा कि नहीं, मुझे सुबह घूमने जाना है, फ्रेश एयर मुझे मिलती है, ऑक्सीजन की रिकवरी मेरे को पूरी शरीर में हो जाती है, और ये भी एक सिद्धांत आपने, क्योंकि एक सिद्धांत के डीपनेस में एक सिद्धांत और पाया जाता है। जैसे आप ये प्रोसेस कर रहे हैं, तो ये भी कोई कह सकता है कि ठीक है भाई, एक स्टेटमेंट है आपने फॉलो कर लिया, लेकिन इसका जो एक अल्टीमेट प्रिंसिपल क्या है कि स्वस्थ

0: शरीर में स्वस्थ आत्मा का निवास होता है। तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ आत्मा का निवास होता है, इस सिद्धांत के तहत में हम सुबह घूमने का या शाम को घूमने का या दिन में भोजन के बाद में रेस्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, या कुल मिला के बॉडी की फिटनेस के लिए हम प्रॉपर नींद भी कर रहे हैं, मेंटल रिलैक्स भी कर रहे हैं और फिजिकल रिलैक्स भी कर रहे हैं। तो ये सारे सिद्धांत को फॉलो करने के लिए जो एक सुनिश्चित मर्यादाएं हैं, चाहे वो समय से सोना है, समय से उठना है या समय से आपको भोजन करना है, तो ये सारी चीज़ें आप समय से क्यों कर पा रहे हैं? और कुछ ऐसी चीज़ें जो आपकी आत्मा को भी बलवान बनाती हैं, जैसे सत्संग है, तो सत्य का संग करना ये आत्मा को बलवान बनाने में मददगार होता है, क्योंकि वहाँ आप किसी अच्छाई के प्रति न केवल आस्थावान है बल्कि आपकी बहुत गहरी श्रद्धा है। तो वहाँ आप उस अच्छाई को ढूंढते हैं, उसको खोजते हैं, उस अच्छाई में स्वयं को देखते हैं। तो ये सारी बातें आपके माध्यम से मर्यादित रूप से अगर विधिवत रूप से संपन्न हो रही हैं, तो इसके पीछे मूल्यपरक जो सिद्धांत हैं वो काम कर रहे हैं और एवरी टाइम वो हमको इंस्पायर करते रहते हैं, जिससे कि हम अपनी मर्यादाओं को फॉलो करने में या मर्यादाओं के प्रति आस्थावान रहने में या मर्यादाओं को कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उसके साथ जीने के लिए हम नेचुरल रूप से प्रिपेयर हो जाते हैं। जी
1: डॉक्टर अजय शुक्ला जी, काफ़ी अच्छी बातें आपने बताया है और आशा करूंगा हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है आपकी बातें सुनकर, कैसे हम जो है मर्यादाओं का अनुसरण करके दूसरों को सम्मान दे सकते हैं। एक और बात आती है यहाँ पर, दूसरों का सम्मान करने का क्या मतलब है और ये हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है?
0: जी देखिए, दूसरों को सम्मान करने के पहले हम क्या करते हैं, इस पर अगर हम गौर करेंगे तो हमको ये पकड़ में आ जाएगा कि दूसरों का सम्मान हमें क्यों करना चाहिए, ये हम क्यों करते हैं। तो यहाँ एक सत्य है कि आप सबसे पहले स्वयं का सम्मान करते हैं, और एक स्टेटमेंट भी है कि सेल्फ रिस्पेक्ट एंड रिस्पेक्ट टू अदर्स, और इसी को स्पिरिचुअल लैंग्वेज भी जब हम लेके चलते हैं तो वहाँ आती है बात कि जब हम स्वयं का रिस्पेक्ट करेंगे तभी हम दूसरों को रिस्पेक्ट दे पाएंगे, अर्थात हम रिगार्ड देंगे तो रिगार्ड मिलेगा, रिटर्न में वही आएगा और हमारा रिकॉर्ड अच्छा होगा। तो ये सारी चीज़ें शब्दावली भले ही हमको यहाँ विशेषीकृत रूप में दिखाई देती है या सुनने में आती है, लेकिन इसके पीछे का सत्य क्या है कि यहाँ तीन घटनाएं एक साथ हो रही हैं कि आप अपने को सम्मान दे रहे हैं, आप दूसरों को सम्मान दे रहे हैं, और इसलिए दे रहे हैं कि जो भी चीज़ हम रिफ्लेक्ट करेंगे वही रिफ्लेक्शन हमारे पास में आएगा। जो हम करते हैं या जो हम सोचते हैं, जो हम विचार करते हैं, जो हम संकल्प करते हैं, इसका जो पूरा कंक्लूजन है, इसका जो निष्कर्ष है, वो आपके व्यवहार में झलकता है और वही व्यवहार आपको एक दूसरे से जोड़ने और जोड़ने में मदद करता है। जैसे कई बार आप अननोन सेक्टर में भी जाते हैं तो आप देखेंगे कि दूसरों का सम्मान करने का आपका जो नेचर है, भले ही वो शुरुआत में वो नेचर बाध्यतापूर्ण लग रहा है, मर्यादाओं का भी अनुकरण हम करते हैं तो उससे हमें लगता है कि कुछ दबाव साइकोलॉजिकल रूप से हमारे ऊपर है, लेकिन वो दबाव एक समय में आपका स्वभाव बन जाता है। तो जब जीवन में बहुत अनिवार्य आपके सामने मर्यादाएं होती हैं और कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, आचार संहिता होती है, जैसे आचार संहिता की हम बात करेंगे तो एक नियम बड़ा अच्छा लगता है कि ओबीडियंस टू ऑर्डर, आज्ञाओं के प्रति आज्ञाकारिता। एक आज्ञा हमको दी गई है कि आपको ये करना है, हमारे बड़ों ने कहा, माता हैं, पिता हैं, गुरुजन हैं या जो हमारे मेंटर हैं, तो हम उनके प्रति आज्ञाकारी रहते हैं, अर्थात उनकी बात हम मानते हैं, इसलिए मानते हैं कि उनके पास एक एक्सपीरियंस है, उन्होंने दुनिया को देखा है, समझा है, आपसे बड़े हैं और इस सृष्टि में कहीं ना कहीं हमें गाइड कर रहे हैं। तो गाइड करने का अर्थ यहाँ पर है कि कई बार उस गाइडेंस में आपकी आलोचनात्मक व्याख्या भी हो सकती है, आपके साथ में कुछ बिहेवियर पर कुछ चीज़ें इम्प्रूव करने की बात भी हो सकती है, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि अच्छाई और सच्चाई के रास्ते पर चलने के लिए या एक दूसरे का रिस्पेक्ट करने के लिए, तो रिस्पेक्ट के एंगल पर हम जाके स्वयं को स्थापित करते हैं, तो वो जो राइट एंगल है वो क्या है कि आपने सामने वाले को ये भी महसूस कराया कि आलोचक की भी आस्था होती है, वो आलोचना कर रहा है लेकिन उसकी आस्था है, ये जानते हुए कि शास्त्र हमको हमारी मदद करता है कि अगर सत्य अप्रिय हो तो आप मत बोलें, सत्य अगर प्रिय है तो आप बोलें। लेकिन लोक भाषा में हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि भाई आप बुरा मत मानना मैं एक बात कहूँ, इसका मतलब सामने वाले को हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसको आगाह कर रहे हैं, सतर्क कर रहे हैं कि ये बात थोड़ी सी कड़वी हो सकती है, क्योंकि हमें उस बात को सामने वाले तक पहुँचाने के लिए अपनी जो एक रिस्पेक्ट देने की परंपरा है उसमें ऑप्शन नहीं मिल रहा है, ऑप्शंस हैं वहां पर, लेकिन कई बार हम जल्दबाजी में होते हैं, उसको ढूंढ नहीं पाते हैं। अब वो बात आपने कम्युनिकेट कर दी, समझा दिया, अब वो सामने वाला व्यक्ति बुरा मान गया, अब आप उसके पास गए और फिर आपने बोला कि कल मेरी आपसे बातचीत हुई थी, मैं चाहता था कि एक रिस्पेक्टिव एंगल से आपको ये बात कहूँ, लेकिन ऐसा नहीं हो कि रिस्पेक्ट कैसे मैं करूँ, किस प्रकार से करूँ, ये बात पहुँचे कि नहीं पहुँचे, इसमें कुछ संदेह था, मैंने डायरेक्टली वो बात बोल दी आपको, तो डायरेक्ट बोली तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने आपका रिस्पेक्ट नहीं किया, लेकिन ऐसा लगा आप बॉडी लैंग्वेज से कि आप ऐसा समझ रहे हैं कि मेरा रिस्पेक्ट नहीं हुआ और मुझे डिसरिगार्ड मिला या थोड़ा सा मेरे को हर्ट करने का प्रयास किया गया, तो आप जाके उनको सॉरी बोलते हैं, जबकि वो कई बार दो दिन तीन दिन बाद में सोचते हैं कि भाई साहब वो तो बात भूल ही गया था, मैंने तो उसको बिल्कुल एग्जैक्ट लिया और जैसा आप चाहते थे वैसे ले लिया। तो ये एक बड़ी बात है कि उन्होंने उस चीज को स्वीकार किया, आपको कम्युनिकेट किया, लेकिन सामान्य तौर पर ऐसा नहीं होता है। जहां कुछ हर्ट करने वाली बात है, एक ह्यूमन नेचर है कि वो उसको हर्ट हो गई, भले इतना हो सकता है कि अच्छे साधक हैं वो, स्पिरिचुअलिटी में अपने आप को डुबा के चलते हैं, तो इन तमाम कारणों से हो सकता है कि उसके उसका ड्यूरेशन कम हो जाए। फॉर एग्जाम्पल कि कोई हिमालय के संत हैं और वो धरती पर आ जाए, तो हो सकता है कि आपके खराब बोलने के बाद उनको एक सेकंड का असर हो, लेकिन अगर वो कोई आश्रम में या मंदिर में या कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में रहते हैं तो उसका असर उनको दो मिनट का हो, कोई सामान्य गृहस्थ में रहता है तो उसका असर उसको तीन दिन का हो, या किसी को महीने भर का भी हो। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि कोई ये भ्रम में नहीं रहे कि हम अगर रिस्पेक्ट कर रहे हैं या रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं या रिस्पेक्ट बढ़ाने का जो प्रयास कर रहे हैं उसमें ये सारी प्रोसेस का असर नहीं होगा। असर होगा और असर का ड्यूरेशन कम हो सकता है, कम या ज़्यादा हो सकता है, उसको रिमूव करने के लिए प्रयास कर सकते हैं, लेकिन एज ए ह्यूमन बींग हमको उस चीज का इफेक्ट होता है। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हम सबसे पहले स्वयं का सम्मान करें, और स्वयं का सम्मान करेंगे तो मन वचन कर्म समय संकल्प संबंध और स्वप्न पर नियंत्रण हमारा बढ़ता जाएगा, और सिद्धांत रूप में जो बात कही गई है कि मनसा वाचा कर्मणा से हमको पवित्र रहना चाहिए, और इसको जब हम प्रैक्टिस में लेके आते हैं, स्पिरिचुअल लेवल पर अपने आप को लेके जाते हैं, तो वहां सभी संकल्प आपके या सभी किसी भी समय की बात हो, 24 घंटे में कभी भी हमारे संकल्पों में लघुता नहीं आना चाहिए, कमी नहीं आना चाहिए, बल्कि उचितता उसकी पवित्रता बनी रहना चाहिए। तो वो समय है, संकल्प है, संबंध है। संबंध और संबोधन के बीच में आज बहुत अंतर आ गया है, तो जो संबंध है उसी संबोधन के साथ में उसको स्वीकार करना चाहिए, उसमें कहीं फ्लक्चुएशन नहीं आना चाहिए, तो वहां रिस्पेक्ट और रिगार्ड बना रहता है। और ये फ्लक्चुएशन आने के कारण आज एक नया क्वेश्चन आ गया है कि रिस्पेक्ट और रिगार्ड कर रहे हैं और अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन संदेह के बादल वहां पर बने हुए हैं। जी
1: डॉक्टर अजय शुक्ला जी, काफी अच्छी बातें आपने बताया, आशा करूंगा हमारे सभी श्रोताओं को और बच्चों को भी अच्छा लग रहा है। तो आइए यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत, उसके बाद फिर हम लोग बातें करेंगे। आप सुन रहे हैं बाल संसार, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ बात कर रहे थे हम लोग बाल संसार। इस कार्यक्रम में मर्यादाओं का अनुसरण करते समय हमें सम्मान करने में कैसे मदद मिलता है, उसके बाद क्या सम्मान करने से हमारे जीवन को प्रभावित करता है क्या। तो आइए इस गहरी बात को समझने के साथ साथ एक और बात सामने आती है। डॉक्टर अजय शुक्ला जी फिर से स्वागत है। और मूल्य परक सिद्धांतों के प्रति विश्वसनीय आस्था का क्या महत्व है, इसके बारे में बताइए।
1: बहुत अच्छी बात है और निश्चित तौर पर जब हम मर्यादा के अनुसरण की बात करते हैं, उसके अनुसरण के साथ साथ में उसके अनुकरण की बात करते हैं, कुल मिला के आत्मसात करने की बात करते हैं, तो ये बात हमारे सामने निकल के आती है कि आखिर इसका बैकग्राउंड क्या है। तो जितने भी सिद्धांत दुनिया में बने हुए हैं, उन सिद्धांतों के प्रति अगर हमारी स्थायी आस्था है, अर्थात हम ये मान के चलते हैं कि ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, फॉर एग्जाम्पल कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे उत्तम नीति है, तो ये नीति है, लेकिन इसका प्रयोग अगर हमने जीवन में किया है, अर्थात मर्यादाओं के माध्यम से इस नीति को जितना अधिक व्यवहार में आपने लागू किया होगा, उतनी हमारी मान्यता स्थायी होती जाती है। स्थायी कई बार होती है और उसको हम देखते हैं कि वो मान्यता हमारे जीवन में धीरे धीरे घर कर जा रही है और हमारे जीवन का भी सिद्धांत बन जाता है। और कई बार इन स्थायी मूल्यपरक मान्यताओं के प्रति आपको लेके भी टिप्पणी की जाती है कि भाई ये सत्य के मामले में इनका जो व्यवहार है वो बिल्कुल अडिग है, अचल है और इसमें ये स्थिर बने रहते हैं। तो इससे पता चलता है कि कई बार आपके जीवन में जो बहुत सारे गहरे सिद्धांत होते हैं जिनके प्रति स्थायी मान्यता होती है, उनसे आपका जुड़ाव हो जाता है। और जुड़ाव इस प्रकार से होता है कि जैसे कि कोई कह सकता है कि आपके ब्लड के अंदर ऑनेस्टी समाई हुई है। तो ये बात मैं इसलिए सपोर्ट करके कह रहा था कि कोई भी एक गुण, मनोविज्ञान एक सिद्धांत भी है कि किसी एक गुण में आप अगर बहुत अमीर होते हैं, धनी होते हैं, आपके अंदर रिचनेस होती है, तो उसका एक परिणाम ये होता है कि उससे जुड़े हुए सद्गुण भी आपके पास में आ जाते हैं। एक ट्रेनिंग प्रोग्राम का मैं हवाला देता हूं, वहां पर यह वाक्य आया था कि एक सीनियर प्रोफेसर जी ने सभी पार्टिसिपेंट से कहा था और मैं भी उसमें एक सहभागी के रूप में शामिल था कि आपके जीवन में कौन सी ऐसी बात है जो एवरी टाइम आपको सपोर्ट करती है, तो वो बात आपको बोर्ड पर आके लिखनी है। और सपोर्ट क्या करती है, कुल मिला के उन्होंने एक और सपोर्ट जोड़ा उसमें कि आपके दादा दादी या नाना नानी या माता पिता के द्वारा कभी आप जब घर से बाहर निकलते हैं तो उस समय एक प्रिकॉशंस आपको ध्यान होगा कि वो हमेशा कहते हैं कि आप एक काम करना, आप जाते रहो लेकिन इस बात का ध्यान रखना, भले ही आप शहर से दूर जा रहे हों, गांव से दूर जा रहे हों, या कहीं स्टडी के लिए आप जा रहे हों, किसी जॉब के लिए आप जा रहे हों, तो एक बात जो उनके द्वारा होती है वो हमेशा आपके साथ शेयर होती है कि आप इस बात का ध्यान रखना। तो ये बात भी आप बोर्ड पर आके लिख सकते हैं। तो पूरा बोर्ड लगभग भर गया था और मेरा जब नंबर आया तो मुझे भी लिखना था कि मैं लिखूं कि मेरे माता पिता ने या मेरे बड़ों ने या मेरे गुरुजनों ने मुझसे क्या चाहा है और क्या अपेक्षा की है और कौन सी बात का ध्यान रखने के लिए कहा है। तो मैंने वहां पर जाके लिख दिया ईमानदारी। जब ईमानदारी लिखा तो जो गुरुजन थे उन्होंने उस शब्द को बीच में थोड़ा स्थान बना के था वहाँ लिख दिया और ये कहा कि ये एक ऐसा सद्गुण है, अगर ये है तो जितनी बातें आपने बताई हैं ये सब किसी न किसी रूप में आपके अंदर रहेंगी। तो इससे मुझे बड़ा बल मिला, एक मनोबल मिला कि देखो जो चीज़ें जिस एक सिद्धांत को मैं स्थायी रूप से स्वीकार करता था और वो स्वीकारोक्ति का परिणाम यहाँ ट्रेनिंग प्रोग्राम में मिला कि हमारे बड़ों ने ये बात रखी और उस बात को यहाँ पर प्रतिपादित करते हुए उन्होंने इस बात को शेयर भी किया कि अगर ऑनेस्टी वाला गुण आपके अंदर है तो ये बहुत सारी जो वैल्यूज़ है वो अपने आप आ जाएंगी। इससे ये भी पता चलता है कि जो वैल्यू बेस्ड लाइफ है उसके पीछे मूल्य परक सिद्धांत काम करते हैं और ये मूल्य परक सिद्धांत नेचुरल रूप से ऑटो सजेशन के माध्यम से व्यक्ति तक निश्चित रूप से पहुँचते हैं और उसका मन, उसका वचन, उसका कर्म इसको प्यूरीफाई भी करते हैं। और प्यूरीफिकेशन का परिणाम ये होता है कि अगर कहीं उस इंसान से कोई थोड़ा सा आगे पीछे बिहेवियर हो भी गया तो वो अपने अंदर एक गिल्टी महसूस करता है और उसको बहुत कम टाइम में रिमूव कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि एक इंसान है, मुझे दो व्यक्तियों को सम्मान करना हो और मैं एक का कर पाया, एक का नहीं कर पाया, तो उस समय इसको मैं कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में विश्लेषण करूँगा और देखने का प्रयास करूँगा कि मैं इसको कैसे बैलेंस कर सकता हूँ। तो एक के साथ मैंने न्याय किया तो नेक्स्ट डे को मैं उस इंसान को कॉल कर लूंगा, उनको साथ समय देने का प्रयास करूंगा, ये बताऊंगा कि कल की सिचुएशन में, कल मैं सम्मान जब दे रहा था तो उस समय मैं इतना ज़्यादा कई चीज़ों में इन्वॉल्व हो गया कि आपकी ओर ध्यान नहीं गया, आज इसलिए मैंने आपको बुलाया है, और कल जो जाने अनजाने मेरे से अन्याय हुआ या जब ऐसा हो रहा था तो मुझे सबकॉन्शियस माइंड में ये महसूस भी हो रहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं मनुष्य हूँ और चाहकर भी मैं दोनों को संतुष्ट नहीं कर पा रहा था, तो अभी सेटिस्फेक्शन के एक लेवल पर मैं अपने कार्य को कर पाया और आज मैं आपसे बड़े सुकून से बात करने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ भी ये हो सकता है कि जिससे आप बात कर रहे हैं उसको भी ऐसा फील हो कि कल मैं बहुत हर्ट हुआ था और आज मुझे आपसे मिलना तो है लेकिन मैंने एक फॉर्मेलिटी कर ली, लेकिन धीरे धीरे मैं आपसे विड्रावल कर लूँगा, ये भी सिचुएशन आ सकती है, क्योंकि मनुष्य है, जरूरी नहीं है कि आपके बहुत खराब बिहेवियर पर ही किसी को दुख हो, आपके नॉर्मल और सामान्य बिहेवियर में भी किसी को हर्ट हो सकता है, ये सारी बातें एक ह्यूमन बींग होने के नाते होती हैं एक इंसान के अंदर। मेरा कुल मिला के कहने का मतलब है कि अगर हम अच्छी चीज़ों से गवर्न हो रहे हैं, अगर हमें अच्छी चीज़ें मोटिवेट कर रही हैं, अगर हमारे पास में सत्य अहिंसा का जो मूल्य है वो बना हुआ है हमारे जीवन में, तो इसका मतलब है कि जो मूल्यपरक सिद्धांत हैं वो बहुत गहरे स्तर पर हैं और वो कई युगों से इस सृष्टि में विद्यमान है, उसकी जो कालावधि है वो बड़ी बड़ी है, कई बार शताब्दी से कोई नियम चल रहा है और कई बार आप देखेंगे कि 200, 500, 400 या हजारों साल का इतिहास है वो भी आपके साथ में चल रहा है, तो ये मूल्य कभी भी मृत्यु इनकी नहीं होती है, बस ज़रूरत होती है कि इसकी जीवंतता को हम स्वीकार करें और मानवीय मूल्यों के साथ में जो आत्मा की शक्ति है उसको पहचानें और उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए हमेशा भले ही थोड़ा सा कठोरता हमको लगे, बल प्रयोग करना पड़े। कुल मिला के मैं कहना चाहूँगा कि अच्छे सिद्धांतों और मूल्यों को फॉलो करने के लिए हमें अगर हठ योग भी करना पड़े तो हमें करना चाहिए, क्योंकि कुल मिला के वो आपके जीवन को प्रिजर्व करते हैं, अर्थात सगुण और निर्गुण दोनों ही धारा में प्रवाहित होने में मदद करते हैं। जी
0: डॉक्टर अजय शुक्ला जी, काफ़ी अच्छी बातें आपने बताया, धन्यवाद, शुक्रिया आपका, और बहुत सुंदर जो बातें आपने बताया कि कैसे हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं मूल्यों को समझकर जानकर। इसी के साथ हम लोग कार्यक्रम को यहाँ पूरा करते हैं और फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर, और मूल्यों की पहचान और उनके अनुरूप जीवन जीने से क्या लाभ मिलता है इस विषय को लेकर जिस तरह से हम लोग मूल्य महत्व पर बात कर रहे थे, और जितना हम लोग विश्वास को अपने जीवन में अपनाते हैं और जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं तो विचार आपके जो है बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और जिस तरह से डॉक्टर अजय शुक्ला जी ने बताया कि विचारों को अगर हम लोग समझने की कोशिश करें और विचार परिवर्तन किए जा सकते हैं, व्यक्ति परिवर्तन हमेशा असंभव सा है लेकिन आपके खुद के विचारों को परिवर्तन करने के लिए ये संभव कार्य है, हर व्यक्ति कर सकता है, तो देखिए कि आप अपने विचारों को कैसे चेंज अप कर सकते हैं, तो जितना आप अपने विचारों में बदलाव लाएंगे उतना जीवन आप बेहतर बना पाएंगे। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर से एक बार अजय शुक्ला जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाल संसार इस कार्यक्रम में बस इतना ही, और इसी के साथ मैं आपसे चाहूंगा इजाजत, सलाम नमस्ते।
2: अभी बचे हैं दोपहर के 4, एक मिनट प्रभु की याद से मन में लाए अच्छे विचार।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। साथियों, आपने चारों तरफ खूबसूरत पंडाल देख रहे होंगे और हर पंडाल एक दूसरे से सजावट में भिन्न यानी अलग होता है। बहुत ही खूबसूरती से सजावट किया जाता है, साथ ही साथ गणेश जी की मन मोहिनी प्रतिमाएं भी आपको देखने को मिलता है। साथ में आरती गणेश जी के और मंत्र, फूलों की सजावट, रात में तो लाइट्स बहुत ही खूबसूरत होते हैं, एक जैसे कि सुंदर समा बांध देती हैं। तो हर तरफ एक बहुत ही सुंदर भक्ति भाव से परिपूर्ण उमंग उत्साह का वातावरण आप सभी देख रहे हैं। हम ये बात इसलिए करेंगे क्योंकि गणेश चतुर्थी पर्व की जो अब लगभग संपूर्ण भारत में ही लोग मनाने लगे हैं, तो चलिए सुनाते हैं आपको एक खूबसूरत गणेश आरती। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: अर्थ होता है एक रास्ता। चाहे हमारे जीवन में प्रतिदिन एक रास्ता नहीं होती है, मगर जब कोई भी उत्सव आता है तो परिवार के सभी सदस्य एक रस हो जाते हैं। यानी कि सभी का सुबह उठना, पूजा आरती करना और साथ ही उन दिनों में जो भी खाना हमारे घर में यानी शुद्ध और सात्विक रीति से बनता है उसको बहुत ही खुशी से ग्रहण करना और घर में शुद्ध वातावरण व वाइब्रेशन रखना, तो ये सारे ही एक रास्ता के प्रतीक है। तो ये हमारे त्योहारों की विशेषता होती है और भारत तो वैसे भी त्योहारों का देश है, तो यहाँ तो हर त्योहार पर उमंग उत्साह का माहौल सभी को प्रफुल्लित करता है। तो आज हम आपको गणेश चतुर्थी के विषय में तो बताएंगे ही, साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि इसमें कितने धार्मिक रहस्य छिपे हैं जो कि हमें पता ही नहीं होते हैं, और इस त्योहार का क्या विशेष महत्व है।
1: जी वंदना जी, काफी अच्छी बातें आपने बता दिया गणेश चतुर्थी के बारे में। ये पूरा उत्सव जो है 10 दिनों तक चलता है और अनंत चतुर्थी के दिन गणेश विसर्जन के साथ समापन होता है। इसमें गणेश भगवान की मिट्टी की सुंदर मूर्तियां ही पंडाल व घरों में स्थापित किया जाता है। गणपति बप्पा को विशेष रूप से लड्डू यानी कि मोदक का भोग लगाया जाता है। वैसे इसमें फल का खीर आदि भी रखते हैं, लेकिन सुबह शाम की आरती की जाती है तथा धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए, कारण वरना झूठ कलंक या आरोप लगने का डर होता है, ऐसा कुछ बताया जाता है। तो चलिए हम आपको अभी फिर सुनाते हैं एक बहुत ही खूबसूरत सा गणेश जी का भजन। सुनते रहो,
0: मुस्कुराते रहो।

0: उसमें प्राण होती है। उन्होंने इस बालक का नाम गणेश रखा और उसको द्वार की पहरेदारी पर बिठा दिया। माता पार्वती ने गणेश को ये आदेश दिया कि जब तक वह स्नान कर रही है तब तक वह किसी भी पुरुष को अंदर ना आने दे। वहाँ कुछ देर बाद जब भगवान शंकर तपस्या करके वापस लौटे और अंदर जाने लगे तो बालक गणेश ने उन्हें द्वार पर ही रोक दिया। तब क्रोधित होकर शिव ने उसका सर काट दिया। माता पार्वती को जब ये मालूम चला तो वह अत्यंत क्रोधित व दुखी हुई और गणेश को भगवान शिव से पुनर्जीवित करने को कहा। तब भगवान शिव ने कहा अपने गुरु को कि जाओ और जो भी पहला जीव उत्तर दिशा की ओर मिले जिसकी माता उसकी तरफ पीठ करके सोई हो उसका सर काट कर ले आओ। तो गण हाथी के बच्चे का सर काट कर ले आए और शिव ने गणेश को हाथी के बच्चे का सर काट कर लगा दिया और उनको पुनर्जीवित कर दिया। तो श्रोताओं, ये कहानी आपने शायद पहले पढ़ी व सुनी होगी, लेकिन क्या आपने इसके रहस्य पर गौर किया है? शायद नहीं। यह है भी कितना असामान्य कि शरीर तो मानव का और सर हाथी का। तो हमारे पुराणों में ही सारी बातें प्रतीकात्मक तरीके से बताई गई हैं, क्योंकि पहले ऋषि मुनियों के समय में प्राचीन काल में हमारा ज्ञान चरम पराकाष्ठा पर था तो समझ थी, लेकिन इस कलयुगी समय में हम इन चीजों के रहस्यों को बिना जाने ही सिर्फ खाना पूर्ति करते हैं और इन रहस्यों को जानते हैं। लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं भगवान गणेश का ये सुंदर गीत। आप सुन रहे हैं रेडियो 107.8 FM पर। सुनते रहो,
1: मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है गीत के बाद। और अभी चलिए हम लोग बात करते हैं गणेश जी के बारे में। जी हाँ, गणेश जी के बारे में हम लोग जैसे कि आप सभी जानते हैं, उनका जो रूप है, उनका जो आकार है वो यूनिक है, बहुत ही अलग है। उनका पूरा शरीर जो है अलंकारों से संपन्न है, इसलिए उनको अलंकारी देवता के रूप में याद किया जाता है। क्यों? क्योंकि इनके पूरे अंगों में डिवाइन जो वैल्यूज हैं, हमारी जो विशेष गुण है वो दर्शाते हैं। जैसे आप देखेंगे, सर की बात करें, गणेश जी का जो सर है वो हाथी का है, तो हाथी को सभी जानवरों में बुद्धि या विवेक का प्रतीक माना जाता है। तो हाथी एक छोटे मासूम बच्चे को अपनी सूंड में सुरक्षित तरीके से उठा लेता है, और ये उनकी खासियत होती है। तो आप सोचिए कि एक हाथी का बच्चा बड़ा ही होता है, और सूंड से उसे बड़े प्यार से उठाना, ये अपने आप में एक आर्ट है। तो एक बुद्धिजीवी प्राणी के साथ साथ उनके अंदर एक आर्ट है, कला है, ये उसकी बुद्धि और विवेक का प्रतीक है। जो गणेश जी को उनका सर से हम लोग उन्हें बुद्धि के देवता के रूप में याद करते हैं, है ना। शंकर जी ने अपने ही बच्चे गणेश का सर जब काटा था कहानी में, तो उनको फिर से जीवित करने के लिए, उनको एक पहचान देने के लिए उन्होंने हाथी का सिर लगा दिया। यहाँ पर कलयुग में भी जब हम बच्चे परमात्मा को भूल जाते अज्ञानता वश, तो परमात्मा आकर हमें फिर से दिव्य बुद्धि का ज्ञान देते हैं, अर्थात हमें अपनी पहचान देते हैं। अज्ञानता ने हमारा सर यानी बुद्धि को खत्म कर दिया था, और परमात्मा आकर जब ज्ञान देते हैं तो फिर से हमें जो है एक नया सिर यानी हमारा बुद्धि जागृत हो जाती है, हमारा विवेक जागता है, ठीक है ना। तो ये अज्ञानता की हत्या और फिर से दिव्यता की जन्म को बताया गया है, ये आध्यात्मिक ज्ञान है, ठीक है ना। तो अब आइए आगे बढ़ते हैं। और हम जब पूरी तरह से अपने पिता को भूल जाते हैं तो हमारे अंदर जो डिविनिटी थी वो ख़त्म हो जाता है। जैसे ही फिर हम अपने पिता परमात्मा को पहचान लेते हैं तो हम पवित्रता से, डिविनिटी से भरने लगते हैं। शिव जी ने अपने बच्चे का नाम गणेश रखा, अर्थात जो गुणों से संपन्न व्यक्ति को गणेश कहते हैं, गुणों से भरपूर। और इनकी सर की और विशेषता ये है, इनका सर बड़ा और आंखें बहुत छोटी। उनकी आंखें छोटी होते हुए भी दूरांदेशी का प्रतीक माना गया। वो जो भी कर्म करेंगे उसका परिणाम उन्हें पता होता है। तो हम जब कर्म करते हैं तो हमें परिणाम का पता ही नहीं चलता, है ना। जब रिजल्ट आता है तब हमें पता चलता है, लेकिन यहाँ ऐसे नहीं। गणेश जी की आंखें छोटी होने के बावजूद भी उनकी दूरान दृष्टि थी। सिर बड़ा का मतलब है विशाल, बुद्धिशाली। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और बात बताते हैं, वॉइस इंटेलेक्ट एंड फार साइटेडनेस ऐसा भी बताया जाता है। उनका मुंह छोटा यानी कि कम बोलना, कान बड़े यानी कि ज्यादा सुनना ये उसका प्रतीक है। उनके कान बड़े ही नहीं बल्कि सूप जैसा होता है। जी वंदना जी, आप इसको सही से बताएंगे
1: तो श्रोताओं, अभी आपने जैसे कि रमेश जी बता रहे हैं, तो अब आगे हम आपको बताएंगे कि जैसे गणेश जी का मुंह छोटा दिखाया गया है यानी कि कम बोलना, और कान बड़े यानी कि ज्यादा सुनना, इसका मतलब हुआ टॉक लेस एंड लिसन मोर। और उनके बड़े कान बड़े ही नहीं बल्कि सूप जैसे दिखाए गए हैं, और सूप ऐसा ही नहीं, सूप करता है छन्नी का काम, यानी कि रिफाइननेस का प्रतीक होता है। वह सिर्फ सार को ही ग्रहण करता है। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बता दूं कि गांव में भी अभी तो शायद चीजें होती होंगी, जो सूप होता है जब आप उससे अनाज को साफ करते हैं, जितना भी कूड़ा होता है वो सारे का सारा निकाल देता है और सिर्फ अनाज को ही ग्रहण करता है। तो इसी तरीके से ये संदेश देते हैं कि जो हमें सिर्फ सार को ही ग्रहण करना है और कचरा फेंक देना है, यानी कि सिर्फ हम अच्छी बातों को ग्रहण करें, एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल दें। तो ये तो खराब तो हमें सुनना ही नहीं है, सिर्फ अच्छी बातें व लोगों की विशेषताओं को ही ग्रहण करना है। और आगे उनकी और विशेषता है, गणेश जी के दो दांत हैं मगर उनका एक दांत टूटा हुआ दिखा देते हैं। तो इस इस टूटे दांत का क्या होता है, तो चलिए आपको बताते हैं। और इसका मतलब होता है कि हमारे जीवन में द्वैत भाव है, ड्यूअलिटी है, यानी कि जैसे ड्यूअलिटी होती है चाहे मेल फीमेल की हो, रिलीजन की हो, एज की हो, कास्ट की हो या सीनियर जूनियर की हो। तो इस तरीके से जब परमात्मा हमें ज्ञान देते हैं तो बताते हैं मैं आत्मा और तुम आत्मा, तो सारा द्वैत भाव यानी कि ड्यूअलिटी खत्म हो जाती है एंड वन वर्ल्ड एंड वन फैमिली। तो जब ये विजडम जीवन में आ जाती है तो सब कुछ खत्म हो जाता है। तो चलिए इसी उस पर हम आपको एक और बहुत खूबसूरत गणेश जी का गीत सुनवाते हैं। सुनते रहो,
0: मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार गीत के बाद। आशा करूंगा आप बिल्कुल अच्छी तरह से गणेश जी की प्रतिमा का जो अलौकिक अलंकार जिनको कहते हैं उनके शरीर के हर अंग को, उसकी विशेषताएं और वो किस तरह से प्रतीकात्मक बताया गया है, उन रहस्यों को आप समझ रहे हैं। तो जैसे कि हमने सूंड की विशेषताओं के बारे में चर्चा की, एक छोटे बच्चे को भी बड़े प्यार से उठाती है हाथी अपने सूंड से, तो एक बड़े पेड़ को भी जड़ से उखाड़ती है। आत्मा जब ज्ञान प्राप्त होता है तो बहुत सॉफ्ट भी होती है, लविंग भी होती है और बहुत पावरफुल भी होती है। कई बार हम ये सोचते हैं कि स्पिरिचुअलिटी हमें बहुत सीधा बना देती है, तो हमें लोग चीट कर देंगे, मगर ये सत्य नहीं है। जब हमें ज्ञान मिलता है तो हम बहुत लव एंड लॉ का बैलेंस सीखते हैं, सॉफ्टनेस भी होता है और पावरफुल भी हम बनते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी हमें बैलेंस सिखाती है। गणेश जी का पेट बहुत बड़ा है, जो वाइस आत्मा है वो हर बात को अपने में समा लेती है। आजकल किसी ने कुछ सुना दिया तो हम 10 लोगों को बता देते हैं, मगर इधर सुना और उधर सुना दिया, ये ज्ञानी नहीं, ये ज्ञानी आत्मा नहीं होती है। ये सिंबल है पावर टू एक्सेप्ट, हर किसी की बात को समाना। हर किसी के अलग अलग संस्कार होते हैं, मगर सबको उनके संस्कारों के साथ एक्सेप्ट करते जाए, ये यहाँ पर सीखने को मिलता है।
1: जी हाँ, तो गणेश जी की जो विशेषताएं बता रहे हैं रमेश जी, आपने बहुत अच्छी बताई, आगे और बताते चले। और रमेश जी, लगता है हमारे श्रोताओं के प्रोग्राम बहुत पसंद आ रहा होगा
0: जी।
1: अभी तक तो क्या है कि हम बिना जाने सारी चीजें करते चले जाते हैं, रिचुअल्स जो करते हैं, और जब भी प्रोग्राम करते हैं हमेशा यही बताते हैं आप त्योहार तो करिए लेकिन उसको जानकर करिए। जब हम किसी चीज को जानकर करते हैं तो उसका आनंद ही और होता है, और एक क्लियर पाथ हमारे सामने होता है और कोई भटकाव नहीं होता है।
0: बिल्कुल।
1: तो अब देखिए, यहाँ आगे दिखाते हैं गणेश जी की 4 भुजाएं दिखाते हैं, और हर भुजा में बहुत सुंदर अलंकार है। जैसे कुल्हाड़ी देखा होगा, तो कुल्हाड़ी का लोग मतलब नहीं समझते होंगे, यहाँ कुल्हाड़ी का मतलब दिखाया है। अगर हम स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से समझे कि परमात्मा से जब हमें ज्ञान मिलता है तो अपने पास्ट के जो रॉन्ग अकाउंट्स हैं हमारे, तो उसको हम कुल्हाड़ी से काट देते हैं और उनको खत्म करना, उनको एकदम फिनिश करना। साथ ही उनके दूसरे हाथ में दिखाते हैं रस्सी, तो रस्सी यानी कि रोप जो होती है, इसका मतलब है ज्ञान यूज किया, उसको धारण किया। लेकिन जीवन में धारणा तब होगी जब डिसिप्लिन होगा, संयम नियम के बिना धारणा कभी नहीं हो सकती है। तो रमेश जी, जैसे क्योंकि आप भी ब्रह्मा कुमारी इसमें हैं और मैं भी ब्रह्मा कुमारी इसमें हूँ, तो जैसे हम देखते हैं यहाँ हमारे जो नियम है सब, और हम तभी सब उस पर चलते हैं पता ही नियमों पर जबकि हमारे जीवन में संयम होता है, मानते हैं ना आप इस बात?
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और जो संयम नहीं होगा, जो ईश्वर बताते हैं उस पर नहीं चलेंगे, तो फिर ज्ञान का कोई मतलब ही नहीं होता है।

0: सोच, सही बोल, सही कर्म और सही धन कमाने का क्या तरीका होता है, तो ये मर्यादाओं को रस्सी से बांध लो। और तीसरे हाथ में अब रमेश जी बताएंगे क्या दिखाया जाता है।
1: जी जी जी वंदना जी, बहुत ही अच्छी बात आपने कहा कि कैसे हम जो है इन चीज़ों को समझ रहे हैं, और वो चीज़ मर्यादा के अकॉर्डिंग हमारे लाइफ में आती है। अब तीसरी बात जो है, हाथ को गणेश जी के ब्लेसिंग देते हुए दिखाते हैं, तो उनको सबको देना है, सबको आशीर्वाद देना है। कोई भी आत्मा कैसे भी संस्कार लेकर आए, मगर सबको क्या करना है, दुआएं देते जाओ, देते जाना है, देना ही है आशीर्वाद का जो हाथ उनका दिखाया गया है। अब इसके बाद आपने देखा होगा चौथा हाथ में मोदक, हाथ में मोदक दिखाते हैं, अर्थात स्पिरिचुअलिटी को अपने जीवन में जब हम लाते हैं तो केयरलेस होकर नहीं हो सकता। मोदक बनाने के लिए जैसे मेहनत लगता है, किसी भी मिठाई को आप बनाएंगे और खास करके जब मोदक बनाते हैं तो बहुत मेहनत लगती है, लेकिन अगर एक बार वो मेहनत कर ली तो मोदक मीठा बहुत होता है, मतलब मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। तो इस बात को यहाँ पर बताया गया, इसमें आपको महिमा भी मिलेगी, सफलता भी आपको मिलेगी, लेकिन उसे समय ये विशेष ध्यान भी रखना होता है। क्या ध्यान रखना होता है, इस ज्ञान का, इस विशेषता का आपके अंदर अहंकार बिल्कुल ना आ जाए, ये ध्यान रखना है। गणेश जी के हाथ में जो मोदक दिखाते हैं मगर वो उसको खाते नहीं है, मतलब महिमा व सफलता मिलेगी मगर उसको स्वीकार कभी भी नहीं करना है। ये है अध्यात्म का रहस्य, जहाँ पर अहंकार सूक्ष्म होकर खत्म हो जाता है। ज्ञान का अहंकार तो बहुत ही सूक्ष्म होता है। गणेश जी को बैठा हुआ दिखाते हैं, एक पैर उनका फोल्ड दिखाया गया, धरती को टच करता हुआ है, इसका मतलब है कि इस दुनिया में रहना है और सब कुछ कामकाज करना है, सारे रिश्ते नाते निभाना है, मगर इस दुनिया से डिटैच भी रहना है।
0: जी हाँ, प्यारे और प्यारे, एक्चुअली जैसे इतनी सारी बातें श्रोताओं को आपने बताई, इस बीच में चले लेते एक और हम अच्छा सा ब्रेक और सुनाते हैं भगवान गणपति का बहुत प्यारा सा खूबसूरत भजन।
1: जी
0: रेडियो 107.8 FM पर
1: सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: जैसे कि आपने अभी सुना श्रोताओं की सारे रिश्ते नाते हमें निभाना है और हमें डिटैच रहना है, यानी कि हम रहें भी और ना भी रहें, दोनों ही बातें इसमें बताई गई हैं। और किसी चीज को हमें छोड़ना नहीं होता है, जैसे अभी बताया न्यारे और प्यारे रहना है, हमें सब कुछ करना है मगर किसी के प्रभाव में नहीं आना है। इतनी विशेषता धारण करके श्री गणेश जी का वाहन क्या दिखाते हैं? चूहा। तो चूहा किसका प्रतीक है? बहुत बार आप लोगों ने भी सोचा होगा, लेकिन शायद आपको इसके बारे में पता नहीं चलता होगा। सोचा होगा चलिए भगवान गणेश चूहे पर बैठ गए, ऐसे ही सही। लेकिन यहाँ जो है हमारे ब्रह्मा कुमारी में जो ज्ञान है बहुत स्पष्ट रूप से बताया जाता है ज्ञान को। तो यहाँ चूहा प्रतीक है कि सारे दिन चूहा, चाहे उसके खाने की चीज है चाहे नहीं है, चाहे प्लास्टिक है चाहे कुछ भी है, वो कुतरता रहता है। तो ये जो कुतरने की चीज है ये बताती है कि ये प्रतीक है हमारी कर्म इंद्रियों का। सारे दिन चाहे खाते जा रहे हैं, कुछ देखते जा रहे हैं, कुछ सुनते जा रहे हैं, यानी कि हमारा कर्म इंद्रियों से कंट्रोल खत्म हो गया है। और चूहा जब और किसी के घर में घुसता है तो चूहे को बहुत छोटी सी जगह की जरूरत होती है घर में घुसने की, और जो अंदर घुसाता है तो हम कहते हैं अरे चूहा यहाँ हमारे घर में कैसे आ गया। तो इसी प्रकार से हमारे अंदर जब कमी कमजोरियाँ आती हैं तो आते समय हम ध्यान नहीं देते हैं और कैसे चुपचाप हमारी लाइफ में आ जाती हैं, और उन कमजोरियों को हम बहुत इंजॉय करते हैं। रमेश ऐसा होता है ना?
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: कमजोरी एंजॉय करना, जैसे कि आपने देखा मोबाइल कमजोरी तो कहेंगे ना, और एंजॉय करते हैं। लेकिन उन जब कमी कमजोरियों से आगे चल के हमारे जीवन में नुकसान होता है तब हमें पता चलता है कि अरे तो खराब बात हमारी जिंदगी में। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें वक्त रहते पता नहीं चलता और समझते कैसे आ गई।
1: बिल्कुल।
0: तो इसी तरीके से जब हम विशाल बुद्धि होंगे, दूरंदेशी हैं और बड़े कान यानी कि अच्छा सुनेंगे,
1: कम बोलेंगे, सॉफ्ट
0: भी बोलेंगे कम बोलने के साथ साथ, और मतलब बोलना भी है लेकिन बहुत सॉफ्टनेस के साथ हमें बोलना है
1: जी।
0: और पावरफुल भी होंगे और बातों को अपने अंदर संभालेंगे, ज्ञान की मर्यादाओं पर चलेंगे, अज्ञानता से ज्ञान की कुल्हाड़ी को हम से हम काटेंगे, और यानी कि ब्लेसिंग्स सबको देंगे, ईगो में कभी नहीं आएंगे और ह्यूमिलिटी में रहेंगे। जब हम ये सब कुछ कर लेंगे तब हम अपनी कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त करेंगे।
1: बहुत ही अच्छी बात आपने बताया वंदना जी। मुझे लगता है ये प्रतीकात्मक जो चीज़ें हैं अलंकार और उनके अंगों को आपने अलग अलग तरीके से जो है बताया, जहाँ पर पूरी जो है एक अध्यात्म का पूरा ज्ञान आपने बांटा है आज। और ऐसा लगता है कि जैसे इन सारी चीज़ों को अगर हम अपने जीवन में उतारेंगे तो हम भी एक अध्यात्म शक्ति से संपन्न हो जाएंगे। ऐसी आत्मा यानी जिनके पास ज्ञान आ जाता है तो गणेश जी को चूहे के ऊपर बैठा दिखाते हैं। इसके अलावा गणेश जी के साथ रिद्धि सिद्धि दोनों को दिखाया गया। गणेश जी जैसे आत्मा को समृद्धि और सुख के लिए भागना नहीं पड़ता, मेहनत और स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। श्रोताओं, अगर आप भी गणेश जी को अपने घर में लाते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, तो आप भी इन सारी बातों को जो हमने सुनाया है गुण को अपने जीवन में धारण कीजिए। ऐसा नहीं कि हर साल हम सिर्फ गणपति को ला रहे हैं और हमारे अंदर कोई बदलाव ही नहीं और कोई गुण ही धारण नहीं करते। तो आप अपने जीवन को खुशियों, गुणों व समृद्धि से भरना है। आशा करते हैं आपको हमारे इस प्रोग्राम के माध्यम से जो आज हमने गणेश जी की बातें, ज्ञान युक्त बातें, प्रतीकात्मक बातों को कैसे जीवन के साथ जोड़ के बताया, ये पसंद आया होगा वंदना जी।
0: जी, और साथ ही साथ हम जैसे अपने श्रोताओं को बताते हैं, और हमारे श्रोता तो वैसे ही बहुत अच्छे हैं।
1: जी जी जी।
0: तो जब आप गणेश जी लाते हैं तो इन चीजों का आप जरूर ध्यान रखिएगा, यानी कि केयरफुल होकर जब हम चीजों को करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे जीवन बहुत कुछ सही
1: हो जाता है।
0: और स्पेशली हम भगवान को लेकर आ रहे हैं, उनको कितने आपने देखा होगा, आप तो वैसे ही महाराष्ट्र से हैं।
1: जी जी जी जी।
0: गणेश उत्सव होता है, कमाल
1: का, बहुत प्यार से उनको लेके आते हैं, पूरी तैयारी करते हैं और स्वच्छता सफाई करके डेकोरेट करते हैं, बस फिर वही 7 दिन के बाद या 10 दिन के बाद या 5 दिन के बाद या 1.5 दिन के बाद अलग अलग लोग अलग अलग कैपेसिटी के अनुसार गणेश जी को अपने घर में रखते हैं और उसके बाद उनको फिर जाके उनका विसर्जन करते हैं। तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा गम जो है हमारे घर के अंदर जिस स्थान पे हम गणपति को रखते हैं उसके बाद जब जिस दिन उनको विसर्जन के लिए ले जाते हैं तो वो एक खालीपन जो है ना, वो कमरा खुद हमको जो है हल्का सा जो है एक हल्का सा जो खालीपन आ जाता है और उस खालीपन को शायद पूरे साल भर में भी हमें याद ही रहता है और इसीलिए आंखें नम हो जाती है। तो निश्चित तौर पे ये चीजों को समझने की जरूरत है।
0: जी हाँ, अगर... तो यहाँ मैं आपको एक बात और बता रहा हूँ कि मैंने भी काफी समय तक ना गणेश जी को रखा है। और हम जैसे कॉलोनी में रहते थे फिर काफी लोग भी रखते थे और खूब अच्छे बाजे बाजे से उनको लेकर आना, बहुत सुंदर प्रतिमा लेकर आना और जैसे आपने बताया कि बहुत सारे भोग बनाते हैं, वातावरण बहुत अच्छा रहता है। और ये बिल्कुल ठीक है, जब वो मैं तो 10 दिन के गणेश जी रखा करते थे और जब लेकर जाते हैं उनको विसर्जन करने के लिए, तो वाकई जो आपने बताया वो चीज बिल्कुल ठीक है, बहुत खाली पंसा होता है, आंखें भी नम हो जाती हैं, फिर हम इंतजार करते हैं गणपति बप्पा मौर्या अगले बरस तो जल्दी
1: दिया।
0: तो इंतजार करते हैं, इतनी सारी चीजें हैं और जो हम करते हैं अपनी जिंदगी को खुशियों से तो भरते ही हैं। आसपास का वातावरण भी आपने देखा होगा कि कितना खुशियों से भर जाता है। साथ ही अब तो ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में जो गणपति जी के देखिए बड़ी बड़ी प्रतिमाएं रखे सब लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं, अच्छा रहता है ये सारा महोत्सव।
1: सही बात,
0: आशा करते हैं आज हमारे श्रोताओं को हमारे रेडी बंधन की प्रस्तुति जरूर पसंद आई होगी। आपको छोड़ जाते हैं गणेश भगवान के
1: एक बहुत ही प्यारा सा गीत और इसी के साथ हम चाहेंगे इजाजत, फिर मिलते हैं एक नए कार्यक्रम में, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते खमा गणिसा, जय हिंद जय भारत, ओम शांति।

0: गणपति बाप्पा मोरिया,
1: मंगल मूर्ति मोरिया,
0: गणपति बाप्पा मोरिया,
1: मंगल मूर्ति मोरिया,
0: एक दो तीन चार,
1: गणपति तेरी जय जयकार,
0: एक दो तीन चार,
1: गणपति तेरी जय जयकार।
2: विघ्न विनाशक आ रहे हैं, आइए एकता और भाईचारे का यह पावन पर्व हम सब मिलकर मनाते हैं और हमारी श्रेष्ठ संस्कृति का संवर्धन करते हैं। रेडियो मधुबन 90.4 FM के सभी सुनने वालों को गणेश उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं।

0: ओए रुक रुक, कुछ सुनाई नहीं देती। और ये पुकार है आपकी गड्डी की, तो कह रही है कि बिना पिए मेरे को चलाओ। और ये पुकार आपके बच्चों की भी हो सकती है, तो जो सलामत घर पहुंचना हो तो बिना पिए गाड़ी चलाना, समझे? चलो निकल लो अब। और हाँ, हैप्पी जर्नी मेरी तरफ से अवलदार कड़क। हाँ, जो आपको कहता है डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। और ठीक ना? ठीक।
1: ब्रह्मा कुमारीज के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: गणपति बाप्पा मोरिया,
1: मंगल मूर्ति मोरिया,
0: गणपति बाप्पा मोरिया,
1: मंगल मूर्ति मोरिया,
0: एक दो तीन चार,
1: गणपति तेरी जय जयकार,
0: एक दो तीन चार,
1: गणपति तेरी जय जयकार।
2: गुणाधिपति विद्यापति रिद्धि सिद्धि के नायक पधार रहे हैं, आइए बड़े उमंग से गणेश जी का स्वागत करें। गणेश उत्सव के महान पर्व को सभी मिलकर मनाते हैं और अपनी संस्कृति का संवर्धन करते हैं। रेडियो मधुबन 90.4 FM के सभी सुनने वालों को गणेश उत्सव की बहुत बहुत

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। आइए, आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में विशेष मेहमान है डॉक्टर गोपाल नारसन जी, जिनसे बातें करने वाले हैं। निश्चित तौर पे आप इनको रेडियो के माध्यम से अलग अलग विषय को लेकर जब बात करते हैं तो सुना भी होगा, जर्नलिज्म के बारे में, पर्यावरण के बारे में और अलग अलग विषय, पत्रकारिता के बारे में, ब्रह्मा कुमारीज के बारे में आपने सुना है। तो आज हम लोग, जैसे कि 14 सितंबर है तो हिंदी दिवस है, हिंदी दिवस के उपलक्ष में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप सभी की तरफ से डॉक्टर गोपाल नारसन जी का बहुत बहुत स्वागत है जी।
1: ओम शांति भाई
0: साहब। ओम शांति।
1: आपको भी हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाई
0: जी। बिल्कुल,
1: और निश्चित रूप से हिंदी भारत की आत्मा है और मैं तो हिंदी को जन की भाषा मानता हूँ
0: जी,
1: आत्मा की भाषा मानता हूँ। और हिंदी को बढ़ावा देने में जो योगदान ब्रह्मा कुमारीज का है, शायद ही किसी अन्य संस्था का हो।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि हिंदी के माध्यम से ही मूल संदेश ईश्वरीय वाणी, यानी जिसको मुरली बोलते हैं, उसका संचालन होता है। हालांकि वो विभिन्न भाषाओं में छपती भी है, लेकिन जो मूल संवाद है वो हिंदी में ही है। तो हिंदी के माध्यम से मुरली का जन्म होता है और परमात्मा की वाणी है, और ये पूरे 140 देशों में जाती है। तो मैं कह सकता हूँ कि ब्रह्मा कुमारीज को इस हिंदी के विस्तार का श्रेय जाना चाहिए। हिंदी एक और आशाजनक मुकाम पर जा रही है कि विधि और विज्ञान की पढ़ाई भी अब हिंदी में होने लगी है।
0: क्या बात है।
1: तो ये नई पाठ्यक्रम जो शुरुआत हुई है, तो उसमें हम कह सकते हैं कि जो अभी तक केवल अंग्रेजी भाषा का ही था, अभी हमारे उत्तराखंड के अंदर भी MBBS की जो पढ़ाई है वो हिंदी माध्यम से होने लगी है।
0: अरे वाह।
1: तो ये एक क्रांतिकारी कदम हम कह सकते हैं। और इतना ही नहीं, हिंदी केवल भारत की भाषा नहीं है, हिंदी दुनिया की भाषा बनने जा रही है। आज हिंदी दुनिया में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है, इसको तीसरी भाषा कह सकते हैं हिंदी। भारत के साथ साथ मॉरिशस, युगांडा, गुयाना, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, सुरीनाम, त्रिनाद, साउथ अफ्रीका जैसे देशों में भी हिंदी बोलने और हिंदी लिखने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। अमेरिका, यूरोपीय, एशियाई व खाड़ी देशों में भी हिंदी का निरंतर विकास हो रहा है। रूस के तो कई विश्वविद्यालयों में हिंदी साहित्य में शोध हुआ है। हिंदी साहित्य में जितना अनुवाद रूस ने कराया उतना किसी अन्य भाषा के साहित्य का नहीं कराया गया, यह हिंदी के प्रति रुझान का प्रमाण है। तो हम कह सकते हैं कि हिंदी जो है वो भारत में ही नहीं दुनिया की भाषा बनने जा रही है। आप जैसे जानते हो कि दक्षिण भारत में भी आचार्य वल्लभाचार्य, रामानुज, रामानंद, शंकराचार्य आदि ने भी इस भाषा के माध्यम से अपने मतों का प्रचार किया, और अहिंदी भाषी राज्यों के भक्त संत कवि हो, जैसे असम के शंकरदेव, महाराष्ट्र के ज्ञानेश्वर व नामदेव, गुजरात के नरसिंह मेहता, बंगाल के चैतन्य आदि ने भी हिंदी को माध्यम बना करके धर्म और साहित्य का प्रसार किया। इंटरनेट पर हिंदी भाषा सामग्री लिखने व पढ़ने की संख्या में भी हर साल एक रिकॉर्ड रूप में 94% की वृद्धि हो रही है, जो हम कह सकते हैं कि हिंदी बढ़ रही है। अंग्रेजी भाषा में हालांकि हम गिरावट देखने को मिल रही है हिंदी के बनस्पत। आज अंग्रेजी 17% घटी है और हिंदी बढ़ी है। तो जो हम कह सकते हैं कि इस साल के अंत तक एक रिकॉर्ड रूप में दुनिया में 20 करोड़ से अधिक लोग हिंदी को अपना लेंगे। संसार के 175 से अधिक विश्वविद्यालयों में हिंदी एक भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो रही है। हिंदी अध्ययन, अध्यापन और अनुसंधान तीनों क्षेत्रों में बढ़ रही है। फिजी में, अवधी में, भोजपुरी में और क्षेत्रीय बोलियों से भी हिंदी निरंतर आगे चल रही है। अमेरिका के 30 से अधिक विश्वविद्यालयों में हिंदी पर काम हो रहा है। जापान में हिंदी के प्रति रुचि और इसे करियर व्यवसाय के रूप में हिंदी पाठ्यक्रम के साथ जोड़कर देखा जा रहा है, जो एक शुभ संकेत हम कह सकते हैं। अभी आप देखा होगा कि अंग्रेजों के द्वारा भी जनता और सरकार के बीच जो संवाद है पहले कहते थे कि इंग्लैंड केवल अंग्रेजी आवश्यक है, लेकिन आज इंग्लैंड के लोग भी हिंदी सीख रहे हैं क्योंकि हिंदी उनकी आवश्यकता है। भारत एक बड़ा बाजार है और बाजार में व्यवसाय के लिए उनको हिंदी सीखनी पड़ रही है, ये आज उनकी आवश्यकता बन गई है, जो हिंदी के लिए हम कह सकते हैं बड़ा उपलब्धि है। और आप देखिए कि हिंदी केवल आज की भाषा नहीं है, मैं तो ये कहता हूँ कि हिंदी जन्म की भाषा है। जब बच्चा रोता है तो उसके जो स्वर व्यंजन है वो हिंदी में ही गूंजते हैं, वो उसी तरह से रोता है जैसे हिंदी के शब्द प्रस्फुटित हो रहे हों। ऐसी कोई बच्चा नहीं है, कोई दुनिया में जीव नहीं है जो अंग्रेजी में रोता हो, जो मराठी में रोता हो, जो कन्नड़ में रोता हो, या कोई अंग्रेजी में रोता हो, तो कोई नहीं ऐसा। तो केवल हिंदी ऐसी भाषा है जहाँ पर हिंदी के स्वर व्यंजन प्रत्येक नवजात के रुदन में प्रतिबिंबित होते हैं। तो रमेश भाई जी, हम कह सकते हैं कि हिंदी आज बढ़ रही है और जो हिंदी दिवस है उस पर हमें ये निश्चित रूप से संकल्प लेना चाहिए कि हम हिंदी आदत में लाएं, व्यवहार में लाएं, तभी हिंदी आगे बढ़कर के अपना मुकाम पा सकती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर गोपाल नारसन जी, काफ़ी अच्छी बातें आपने बता दिया, हिंदी को लेकर किस तरह से बातें हो रही हैं, हिंदी किस तरह से काम कर रही है। और निश्चित तौर पे हमारे सभी जो सुन रहे हैं रेडियो मधुबन को लिसनर्स हैं, उन सभी को भी अच्छा लग रहा होगा कि हिंदी के माध्यम से हम जो है सहज महसूस करते हैं, और कहीं भी जाएंगे पूरे भारतवर्ष में तो हमें हिंदी में बोलने से जो है ईजी हो जाता है, हम अपने रास्ते को, अपनी मंजिल को बहुत जल्दी आसानी से पहुंच सकते हैं मंजिल पर। तो आइए हिंदी को लेकर, जैसे आपने, सरकार भी जागरूक है और काफ़ी जो है विज्ञान की जो पढ़ाई भी है वो हिंदी में हो रहा है, इसके अलावा सरकार और क्या कर रही है, किस तरह के जागरूकता कार्यक्रम कर रही है उसके बारे में भी बताइए। पिछली बार हमारे यहाँ विशेष हिमाचल से और उत्तरांचल से लोग आए हुए थे और यहाँ पर दूरदर्शन में हिंदी का प्रचार प्रसार को लेकर उस पर चर्चा की थी, सेमिनार की थी। तो आपको इस तरह के कुछ और सेमिनारों के बारे में जानकारी हो तो ज़रूर हमारे सभी श्रोताओं को बताएं।
1: पर आज भले ही राष्ट्रभाषा न बन पाई हो, लेकिन हिंदी को लेकर के ऐसा कोई विश्वविद्यालय नहीं है, ऐसा कोई संस्थान नहीं है, ऐसा कोई विभाग नहीं है जहाँ पर राजभाषा विभाग न हो। राजभाषा विभाग हर जगह है और कम से कम सितंबर माह में हिंदी पखवाड़ा, हिंदी सप्ताह और हिंदी दिवस वो मनाया जाता है। और एक, लेकिन मेरा मानना यह है कि हिंदी केवल एक दिन की भाषा न हो, हिंदी केवल उस विशेष अवसर की भाषा ना हो, हिंदी केवल पर्व की भाषा ना हो, हिंदी व्यवहार की भाषा बने, हिंदी जन जन की भाषा बने। और वो उसका, मैं कह सकता हूँ कि जो हिंदी सिनेमा है उसका बहुत बड़ा योगदान है हिंदी को विश्व पटल पर ले जाने में। आप देखिए कि किसी भी भाषा का व्यक्ति हो, लेकिन हिंदी फिल्में हर व्यक्ति को अच्छी लगती है, हर व्यक्ति को सलमान खान अच्छा लगता है, हर व्यक्ति शाहरुख खान का दीवाना है, हर व्यक्ति अमिताभ बच्चन को चाहता है। तो वो किस लिए?
0: हिंदी की वजह से।
1: वो सहज समझने वाली भाषा है, हृदय पटल तक पहुंचने वाली भाषा है, इसलिए हिंदी आगे बढ़ रही है। और हिंदी का इतिहास अगर हम देखें तो महर्षि दयानंद सरस्वती जो गुजराती भाषक है, उनको हिंदी बहुत कम आती थी और वे गुजराती और संस्कृत के जानकार थे, लेकिन उन्होंने चूंकि हिंदी एक आम लोगों की समझने वाली भाषा है, एक बड़े विस्तार तक पहुंचने वाली भाषा है, इसलिए उन्होंने जो भी लिखा, जो भी बोला, जो साहित्य रचा वो सब हिंदी में रचा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि आर्य भाषा के देशोन्नति को आगे करने में हिंदी का बड़ा योगदान रहा, जिसमें महती भूमिका महर्षि दयानंद की रही है। इसी तरह से महर्षि अरविंद घोष ने कहा था कि लोग अपनी अपनी मातृभाषा की रक्षा करते हुए सामान्य भाषा के रूप में हिंदी को ग्रहण करें। इसी तरह एनी बेसेंट ने भी कहा था, भारतवर्ष के भिन्न भिन्न भागों में जो अनेक देशी भाषाएं बोली जाती हैं, उनमें एक ऐसी भाषा है जिसे से सब भाषाओं की अपेक्षा एक भारी विशेषता है, वह यह है कि उसका प्रचार सबसे अधिक है और वह भाषा हिंदी है। हिंदी जानने वाला आदमी संपूर्ण भारतवर्ष में यात्रा कर सकता है, उसे हर व्यक्ति से संवाद करने में सहजता हो सकती है, साथ ही हम राष्ट्रीय स्तर पर संवाद स्थापित करने में भी हिंदी सहायक है। चूंकि हिंदी बहुसंख्यक जन की भाषा है, एक प्रांत के लोग दूसरे प्रांत के लोगों से सिर्फ इस भाषा के माध्यम से ही अपने संवाद स्थापित कर सकते हैं। तो ये निश्चित रूप से एक शुभ संकेत है। और जैसा कि मैं विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ से आता हूँ, तो हमारा काम भी हिंदी को प्रसारित करना है, हिंदी को बढ़ावा देना है। और हम हिंदी को लेकर के ही हम खाली देश के स्तर पर नहीं, दुनिया के अनेक देशों में हम जो हिंदी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनको हम सम्मानित करते हैं, उनको हम आगे बढ़ाते हैं और उनको प्रोत्साहित करते हैं ताकि हिंदी एक प्रायोगिक भाषा हो बने, हिंदी आत्मसात की भाषा बने और हिंदी हिंदुस्तान की भाषा बने।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया हिंदी पर। और हिंदी दिवस पर हमारे सभी रेडियो मधुबन के श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आप रेडियो मधुबन भी सुनते हैं तो हिंदी भाषा में ही सुनते हैं, तो ये भी अपने आप में एक बहुत ही बड़ा जो है चैनल है जो हिंदी को प्रमोट करता है। और आप सभी अन हिंदी यानी जो लोग हिंदी नहीं जानते, गुजराती और मारवाड़ी जो है यहाँ का लोकल भाषा जानने वाले भी रेडियो के माध्यम से हिंदी सीख रहे हैं, हिंदी समझ रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं। और बहुत ही अच्छा लगता है जब आप कॉल करके बातचीत करते हैं। तो गोपाल नारसन जी हमारे साथ हैं, डॉक्टर गोपाल नारसन जी से बातें हो रही हैं। और आप विक्रमशिला विद्यापीठ में भी अपनी सेवा देते हैं एज ए डीन, और निश्चित तौर पर पत्रकारिता में आप और एडवोकेट भी है, तो बड़े ही अलग अलग जगह पे आपकी महत्वाकांक्षा है और आप हिंदी में ही काम करना पसंद करते हैं। तो क्या अलग अलग जगह पे जैसे पत्रकारिता हो या फिर आपका वकालत हो या फिर यूनिवर्सिटी हो, इसमें हिंदी को लेकर कहीं कुछ मुश्किलें आती हैं या हिंदी सहज उपलब्ध हो जाती है और इसके वजह से कार्य सुचारू रूप से हो जाता है? जी
1: देखिए रमेश जी, हिंदी जो है वो चूंकि आम जन की भाषा है, तो इसलिए हिंदी को अपनाना क्यों जरूरी है? आप ये बताइए कि जब एक व्यक्ति इंजीनियर बनता है तो अगर वो अंग्रेजी में पढ़ाई करेगा लेकिन फील्ड में तो उसको वहीं जाना पड़ेगा, गांव देहात में ही, उसको मजदूर भी चाहिए, उसको जो है मिस्त्री भी चाहिए तो वो संवाद कहाँ से करेगा? तो अगर उसको वास्तव में एक अपनी भाषा का परीक्षण सही रूप में करना है तो उसको हिंदी ही अपनानी पड़ेगी, अंग्रेजी में नहीं होता। इसी तरह से एक डॉक्टर है, डॉक्टर जब किसी रोगी का उपचार करता है तो अभी उसको क्या था कि अगर वो अपनी रोग के बारे में बताएगा तो अंग्रेजी में तो नहीं बताएगा, वो तो हिंदी में बताएगा या फिर मराठी में बताएगा या फिर पंजाबी में बताएगा या फिर गुजराती में बताएगा। तो हमें क्षेत्रीय भाषाएं जो है ये भी आगे बढ़ाने चाहिए, साथ साथ हिंदी चूंकि हमारी मातृभाषा है तो हिंदी इन भाषाओं की भी जननी है, तो इसलिए हिंदी को हमें प्रेशर देना चाहिए और हिंदी के माध्यम से ही जो हम रिजल्ट ले सकते हैं वो अंग्रेजी के माध्यम से नहीं ले सकते। आप देखिए उपचार करने वाला व्यक्ति अगर डॉक्टर है, अगर वो हमारे मरीज से हिंदी में संवाद करेगा तो उसके रोग को अच्छी तरह समझ लेगा
0: जी।
1: उसको समझा भी देगा, तो इसके व्यवहार में हिंदी आनी चाहिए। इसी तरह से न्याय की भाषा, न्याय में अगर एक वकील एक वादकारी से जिरे कर रहा है तो वो तो हिंदी जानता है, वो तो अंग्रेजी नहीं जानता। अब किसी का बयान ले रहे हो तो हिंदी में तो देगा ना वो,
0: बिल्कुल।
1: अगर आप वो हिंदी में बयान लेने वाले तो अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो लिटिगेंट है, जो वादकारी है, अगर उसको उसकी भाषा में ही आप व्यवहार करेंगे, उसके कानूनी लड़ाई लड़ेंगे तो उसको सहज समझ में आएगी कि वकील साहब मेरी बात क्या कर रहे हैं। और जज साहब जो फैसला देंगे अगर वो भी उसी के भाषा में दिया जाए, हिंदी भाषा में दिया जाए, तो वो अपने फैसले को पढ़ भी लेगा। अब आप एक जज साहब ने एक बात करने का फैसला अंग्रेजी में कर दिया अब वो बेचारा उसको उठाए उठाए फिरेगा, उसको पता ही नहीं कि मुझे न्याय मिला या अन्याय मिला या क्या मिला है। तो इसलिए आप भारत सरकार भी इस विषय में सोच रही है और व्यवहारिकता भी यही है कि हमें जिस वादकारी को न्याय देना है वो तो उसकी भाषा में ही मिले, जिस व्यक्ति रोगी का उपचार करना है वो उसकी भाषा में ही उसका उपचार हो, अन्यत्र भाषा में अगर हम कुछ करेंगे तो उसके साथ अन्याय होगा, ये मेरा कहना है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। और निश्चित तौर पर हमारे सभी देश बंधु रेडियो मधुबन को जो सुन रहे हैं उन्हें भी ये बात समझ में आ रहा होगा कि जो भाषा आप जानते हैं उसी भाषा में आपको अगर उत्तर मिल जाता है तो सहज हो जाता है। बाकी आप वैश्विक स्तर पे जहाँ भी आपको ट्रैवलिंग जो भाषा है हमारा वो मातृभाषा के रूप में हिंदी अगर आप सीख लेते हैं तो आपके जीवन में एक जो है सहजता आ जाती है और आप उसमें अच्छा कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। तो हिंदी दिवस की फिर एक बार सभी को शुभकामनाएं और अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक, सुनते एक बहुत ही प्यारा सा गीत। सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। हिंदी दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। और हिंदी दिवस पर हिंदी पर बातें हो रही हैं। हिंदी को लेकर आपने भी काफ़ी काम किया है, काफ़ी पुस्तकें लिखी हैं और कविताएं भी रोज लिखते हैं आप। तो हिंदी आपको किस तरह से प्रभावित करती हैं, हिंदी से आप जो है किस तरह से जो है अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, वो थोड़ा सा बताइए अपने मनोभाव।
1: देखिए, हिंदी जो है वो चूंकि मैं मानता हूँ कि जन्म की भाषा है, तो इसलिए हिंदी जिस तरह से हम सांस लेते हैं ना, कि सांस लेंगे तभी व्यक्ति जीवित रहेगा, इसी तरह से अगर हम हिंदी को अपनाएंगे तो तब हम उसका उद्धार कर सकते हैं। और उसके लिए क्या है कि हमें हिंदी में लिखना चाहिए, हिंदी में सोचना चाहिए। अब आप देखिए कि 90% जितने भी हमारे हिंदुस्तानी भाई हैं, जब वो विदेश जाते हैं ना, तो वो वहाँ की भाषा, ठीक है, वहाँ की भाषा फ्रेंच हो सकती है, जर्मनी हो सकती है, इंग्लिश हो सकती है, इटालियन हो सकती है, लेकिन अगर वो व्यक्ति वहाँ जाएगा और वो भले उसको फ्रेंच आती है, उसको भले अंग्रेजी आती है, लेकिन वो सबसे पहले अपने मन के अंदर जो संवाद करना चाहेगा उसके अंदर हिंदी के भाव आएंगे, हिंदी के भाव को ट्रांसलेट करके फिर वो आगे बढ़ता है। तो हिंदी चूंकि हमारी आत्मा की भाषा है, तो इसलिए हिंदी को इग्नोर कर ही नहीं सकते हम। आप देखिए, कहीं भी आप होटल में जाइए आप, तो आप सपोज करो डॉलर वहां पर चलते हैं और आपने खाना खाया, आपका बिल आया, तो आप क्या है उस डॉलर को में व्यवहार नहीं करेंगे, आप उस डॉलर को कन्वर्ट करके हिंदी में करेंगे कि कितने पैसे हो गए। इसका मतलब हम अपने जो हमारा मूल स्वरूप है उसको नहीं भूल पा रहे हम, और ना भूलते हैं। जिस तरह से एक शरीर के अंदर आत्मा है, आत्मा तो शरीर तो ड्रा एक
0: इंस्ट्रूमेंट है,
1: एक आत्मा तो मूल रूप में है, तो आत्मा का अगर हम आत्मबोध करना भूल जाएंगे
0: तो जीवन
1: क्या हो, जीवन तो बिल्कुल
0: बेकार हो जाए,
1: निष्प्रभावी हो गया। लेकिन यदि आत्मबोध में हम रहेंगे, आत्मबोध में रहने के बाद ही हम परमात्मा बोध पा सकते हैं, वरना बिना उसके तो नहीं हो सकता। जब आपको अपना ही पता नहीं तो परमात्मा कैसे पता होगा। इसी तरह से यदि हम अपनी भाषा के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं तो हम दूसरी भाषा के साथ भी सम्मान नहीं कर पाएंगे, उनको भी न्याय नहीं दे पाएंगे। तो हमें पहले अपनी भाषा का सम्मान करना चाहिए और उसको व्यवहार में लाना चाहिए। आजकल क्या होता है कि कॉन्वेंट स्कूल के चक्कर में, अंग्रेजी स्कूलों के चक्कर में, अपने बच्चों के करियर बढ़ाने के चक्कर में अब लोग एक होड़ लगी हुई है कि मेरे बच्चे के 99% आए, मेरे बच्चे के 100% आए। आप ये बताइए रमेश जी, क्या ये संभव है? जब हम पढ़ते थे तो हमारे तो हिंदी में तो कभी भी 50% से ऊपर नहीं नंबर आए, और जो 60% था तो फर्स्ट डिवीजन आती थी उसकी। और वो होशियार होते थे, वही कलेक्टर बनते थे, वही एसपी बनते थे, और वही देश के प्रधानमंत्री बनते थे, राष्ट्रपति बनते थे। लेकिन आज जो 100% वाला है वो क्यों पिछड़ रहा है? वो क्यों डिप्रेशन में जा रहा है, अवसाद का शिकार हो रहा है वो? क्योंकि वास्तव में

0: उसका हमने उद्धार किया ही नहीं, वो केवल हमने कागजी रूप में उसको तैयार किया है, उसका चारित्रिक रूप से, नैतिक रूप से और साथ साथ उसके मनो के हिसाब से जो हमें उसका माइंड वॉश करना चाहिए था, उसको खुली हवा में अटखेले करना चाहिए था उसको, तो वो हम कर नहीं पाए, उसका सर्वांगीण विकास ही नहीं हो पाया, वो हम खाली नंबरों के चक्कर में रह गए। तो इसी तरह से यदि बच्चे को आप शुरू की जो एजुकेशन है वो उसकी मातृभाषा में अगर देंगे आप, तो वो सबसे पहली गुरु कौन है, माँ ही तो है, तो जो माँ की भाषा होगी वही बच्चा सीखेगा, तो वो उसका अधिकार है, उस अधिकार को छीनना उसके साथ अन्याय होगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो यही भाषा का अंतर है, क्योंकि अगर मेरी भाषा हिंदी है तो मुझे पहली पढ़ाई मुझे हिंदी में करने का मेरा अधिकार होना चाहिए, और जो दूसरी भाषाएं हैं वो मेरे करियर में सहायक हो सकती है, मेरे जीवन में सहायक हो सकती है, लेकिन मूल भाषा वो नहीं बन सकती, हिंदी का स्थान वो नहीं ले सकती।
1: जी जी, जी। चलिए गोपाल नारसन जी, काफ़ी अच्छी बात है आपने बताया, हिंदी किस तरह से हमारे जीवन को प्रभावित करता है, हमारे कार्य क्षेत्र को प्रभावित करता है, इवन हमारे व्यक्तित्व को भी प्रभावित कर देता है। तो जाते जाते मैं चाहूँगा कि हिंदी को लेकर जिस तरह से हमारे आज के नौजवान हैं मोबाइल टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हुए हैं, और आजकल एक ट्रांसक्रिप्शन भी आ गया है, अब भाषा का भेद कहीं भी नहीं होगा, मोबाइल के माध्यम से वो एप्लीकेशन अगर आप इंस्टॉल कर लेते हैं तो भले किसी भी भाषा में बंदा आपके सामने बात कर रहा हो, आप उस भाषा को उसमें रिकॉर्ड करके उसको दे देंगे तो वो हिंदी या इंग्लिश में जो आपकी भाषा है उसमें वो ट्रांसलेट करता है। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी कितना सहायक हो सकता है, क्या ये यूजफुल है?
0: नहीं देखिए, अभी है ये चीजें, गूगल में सब आता है, गूगल गुरु बोलते हैं उसको, और एआई ने तो बिल्कुल ही कमाल कर दिया, एआई तो आपको आपके दिमाग से जाते ही चलता है वो तो। लेकिन अगर आप एआई के भरोसे रहेंगे, यदि आप गूगल के भरोसे रहेंगे, तो मैं कहता हूँ तब भी वो न्याय नहीं कर पाओगे, क्योंकि हमें वर्तनी भी देखनी चाहिए। अब आज पहले क्या होता था, मुझे 35 वर्ष हो गया अखबार में काम करते हुए, कि पहले हमारे यहाँ अखबारों में प्रूफ रीडर होते थे, अब प्रूफ रीडर खत्म कर दिए। अब अगर आप किसी भाषा की कोई त्रुटि है तो वो ठीक नहीं होगी तो उसके साथ तो अन्याय होगा, हमें भाषा का शुद्धिकरण भी रखना चाहिए ना। तो अगर हम जैसे अपने शरीर को शुद्ध रखते हैं, अपने मन को शुद्ध रखते हैं, ऐसे ही भाषा का भी शुद्ध रखना चाहिए हमें, और भाषा को शुद्ध रखने के लिए प्रूफ रीडर होना बहुत जरूरी है, कहीं गलती उसको ठीक कौन करेगा भाई है? लेकिन आज क्या है, अखबारों में प्रूफ रीडर गायब हो गए, स्कूलों में कोई देखता नहीं है भाषा का। तो अभी हम देखते हैं कि न लोगों पे अच्छी अंग्रेजी आती, न लोगों पे अच्छी हिंदी आती, तो हम उसमें बहुत पिछड़ रहे हैं। अगर हम केवल गूगल के भरोसे रहेंगे या एआई के भरोसे रहेंगे तो गलतियां बढ़ती जाएंगी। आप कैलकुलेटर के भरोसे रहिए तो आप जो आपने जो पढ़ाई करी है अंकगणित की या गुणा जोड़ भाग की,
1: वो खत्म हो जाएगी,
0: वो खत्म हो जाएगी। तो अगर वो आप परिपक्व हैं तो आप 2 मिनट में बता देंगे, लेकिन अगर आप कैलकुलेटर सारे ना, कैलकुलेटर चूंकि इलेक्ट्रॉनिक है वो गलती कर सकता है, आपको एक सर्किट गलत हो गया तो गलत रीडिंग आ जाएगी उसकी, तो वहां संभावना है गलती की। लेकिन अगर आप खुद आप परिपक्व हैं, खुद प्रशिक्षित है उसमें, तो आप उसके साथ न्याय करेंगे। इसी तरह से अगर हम हिंदी के को जानते हैं, हिंदी के व्याकरण को जानते हैं, हिंदी की वर्तनी को जानते हैं, हिंदी की भाषा की गहराई को जानते हैं, हैं और अलंकार को जानते हैं, तो वो सब चीजें हिंदी की साज सज्जा में हमें न्याय करने में, हिंदी को एक सुसंस्कृत बनाने में, हिंदी को एक सुंदर बनाने में हमारी वो सहायक होगी। तो निश्चित रूप से हमें हिंदी की पढ़ाई करनी चाहिए, गहनता के साथ करनी चाहिए, और आज व्याकरण खत्म होती जा रही है एक तरह से कह सकते हैं।
1: जी जी, जी।
0: जबकि आज बहुत जरूरी है, अंग्रेजी में भी ग्रामर खत्म हो रही है, तो हमें वो दोबारा से वो युग लाना पड़ेगा जिसमें किसी भी भाषा की उनकी वर्तनी, उसके व्याकरण, उसका जो पक्ष एक भाव पक्ष है वो सब
1: उसमें सम्मिलित होना चाहिए,
0: और उसमें सम्मिलित हो और एक शुद्ध भाषा हो, लेकिन इतनी क्लिष्ट भी ना हो,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: कि वो आम भाषा
1: से अलग हो,
0: से अलग हो जाए, तब वो हिंदी के प्रति जाती होगी।
1: बिल्कुल।
0: तो हिंदी एक व्यवहार की भाषा को अपनाए, हिंदी केवल क्लिष्ट भाषा के रूप में, जैसे हम कह सकते हैं कि एक हमारे साथी थे लेखक, तो उनकी बहुत क्लिष्ट भाषा थी, तो हाँ जयशंकर प्रसाद जी,
1: जी, जी
0: हमारे एक मित्र हैं डॉक्टर यहाँ पर मिश्रा जी हैं मुजफ्फरनगर में, उनकी बहुत अच्छी, लेकिन शुद्ध है, वो विद्वान है, मैं कहता हूँ कि शुद्ध होना चाहिए, लेकिन अगर उसका सरलीकरण हो जाए, आज आप श्रीमद् भागवत गीता का सरलीकरण कर दो,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो वो ज्यादा पठनीयता बढ़ेगी। और रामचरित मानस का
1: सरलीकरण करो,
0: तो पठनीयता बढ़ जाएगी। तो अगर हम, लेकिन वो शुद्ध रहे, शुद्ध हो सकता है, भाषा सरल भी हो सकती है ना,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: शब्द सरल बन सकते हैं। तो क्लिष्टता की बजाय अगर हम सरलीकरण करके हम भाषा को एक सहज रूप में प्रस्तुत करेंगे, परोसेंगे स्कूलों में, तो बच्चे सहज रूप से एक्सेप्ट करेंगे, स्वीकार भी करेंगे, और उससे भाषा का प्रभाव बढ़ेगा। जैसे कि हिंदी फिल्मों के माध्यम से भाषा बहुत दूर तक जा रही है, ये एक सकारात्मक संकेत है। हिंदी साहित्य के माध्यम से भी हिंदी का विस्तार हो रहा है, और मार्केट के माध्यम से भी हाल के समय में जो वाणिज्य है, हमारा जो लेन देन है, व्यापारिक व्यापार है, उसके माध्यम से भी भाषा उन्नत हो रही है। और हिंदी के बाजार में टिक रहने के लिए, मतलब अगर आप भारत में किसी को व्यापार करना है तो उसको हिंदी को सीखना पड़ेगा। हिंदी को सीख कर ही वो बाजार में टिका रह सकता है। तो हिंदी आज व्यापार की भाषा भी है, हिंदी आज आत्मसम्मान की भाषा भी है, और हिंदी आज राष्ट्र की भाषा भी है।
1: जी जी, डॉक्टर गोपाल नारसन जी, बहुत ही सुंदर बातें आपने हिंदी पर अपनी भावनाएं व्यक्त किया, और आशा करूंगा हमारे सभी श्रोता बंधुओं को भी अच्छा लग रहा है। तो चलिए, आशा करूंगा हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं करते हैं। निश्चित तौर पे हम अपने बच्चों को आज से जो है, जैसे किसी भी भाषा को जब आप प्रायोगिक तौर पे लाते हैं तो उसको एक किताबी लैंग्वेज तो हो ही, लेकिन उसमें सरलता इतनी हो कि आम जन उसे पढ़ सके और पढ़ के उसका आनंद भी ले सके। अब हिंदी फिल्मों का उदाहरण जैसे डॉक्टर गोपाल नारसन जी ने दिया कि वो भाषा इतनी सरल हो गई, लोग उसे समझने लगे और उससे प्यार करने लगे और उस फिल्मों को देखने लगे। वैसे ही हमें हर भाषा को जो है सरल करनी है, और हिंदी को अपने जीवन में अपनाकर जिस तरह से हम संतोष पाते हैं, वैसे अन्य भाषाएं भी, या फिर हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, रामचरितमानस हो गया, और भी गीता हो गया, महाभारत हो गया, जो पुराण हो गए, इन सभी चीज़ों को अगर सरलीकरण करके हम फिर से प्रस्तुत करेंगे तो निश्चित तौर पे भारत की जो ज्ञान है वो बढ़ेगा, और भारत की सभ्यता संस्कृति का प्रचार भी ज़्यादा होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। एक छोटा सा मैसेज क्या देना चाहेंगे आप सबके लिए?
0: मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप अंग्रेजी तो छोड़ दीजिए और हिंदी अपनाइए। अंग्रेजी कैरियर का माध्यम हो सकती है, लेकिन संस्कार का माध्यम नहीं हो सकती। हिंदी संस्कार की भाषा है, हमारे आत्मसम्मान की भाषा है, हमारे राष्ट्र की भाषा है, हमारे स्वाभिमान की भाषा है, हमारे अध्यात्म की भाषा है। इसलिए हिंदी को अपनाइए, और हिंदी परमात्मा की भाषा भी है।
1: चलिए डॉक्टर गोपाल नारसन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मित्रों, आशा करूंगा डॉक्टर गोपाल नारसन जी का ये संदेश आप तक पहुंच गया होगा। तो आज से हिंदी को अपनाएं, हिंदी से आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, और अध्यात्म में भी आप बेहतर हो सकते हैं, क्योंकि अध्यात्म भी हिंदी से ही जुड़ा हुआ है। तो इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलते हैं अगली कड़ी में, तब तक आप बने रहिए। फिर से एक बार हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: अभी बजे हैं
1: शुरू।

गुड़ होता है और दूसरा नारियल होता है और कण होते हैं या कहते हैं उसको बूंदी बहुत पसंद होती है, बूंदी के लड्डू भी उसको बहुत पसंद होते हैं। बूंदी में भी स्वीटनेस और एक एक कण जुड़े हुए भावार्थ के मधुरतापूर्ण व्यवहार करके हर आत्मा को जोड़ने की जो क्षमता थी वो उसी में थी, जिससे एकता के सूत्र में बांधना स्नेह के सूत्र में बांधने का प्रतीक है। और इतने बड़े गणेश जी का वाहन चूहा दर्शाया है। चूहे की एक विशेषता है कि जब चूहा काटता है तो फूंक मार के काटता है, जिससे व्यक्ति को कभी तो पता ही नहीं चलता है, खून भी बह रहा होता है, लेकिन फूंक मार मार के काटने की जो एक बात है वो चूहे में होती है। लेकिन गणेश जी ने ऐसी जो जीवन के अंदर बातें आती है जो हमें नुकसान भी पहुंचाती है लेकिन पता भी नहीं चलता है, उनके ऊपर भी विजयी, उनके ऊपर भी अधिकार प्राप्त कर लिया। तो ये गणेश जी के जीवन दर्शन हमें प्रेरणा देता है कि ये अष्ट शक्ति अगर जीवन के अंदर हम ग्रहण कर दे तो वो जीवन कितना सुंदर हो जाएगा। कौन सी अष्ट शक्ति? विशाल सोच, सकारात्मक सोच, दूरदर्शिता, अच्छी बातों को जीवन के अंदर ग्रहण करने का, व्यवहारिक कुशलता, अमूल्य बोल हमारे मुख से निकले, अनेकों की बातों को जीवन में समाते जाए, ये नहीं कि जहां भी आए बोलते जाए, और फिर भी हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, स्नेह के बंधन में बांधना और अनेकों के कर्म बंधन को तोड़ते हुए समाप्त करने की शक्ति रखना और कमल पुष्प के तरह न्यारा रहना और जो भी लाइफ में डिसीशंस लेना है डाउन टू अर्थ डिसीशंस ले, ये अष्ट शक्तियां जब हम अपने जीवन के अंदर ग्रहण करते हैं तो हमारा जीवन कैसा हो जाता है। इसीलिए गणेश जी की दो पत्नियां दिखाते हैं, रिद्धि और सिद्धि। सिद्धि यानी सफलता, रिद्धि माना यथार्थ विधि। जो अपने जीवन के अंदर यथार्थ विधि से ही सिद्धि को, सफलता को प्राप्त करता है, और यथार्थ विधि ये अष्ट शक्तियों को जीवन में धारण करने से ही उस सिद्धि स्वरूप बनना। तो यथार्थ विधि से जब सिद्धि को प्राप्त करते हैं तो उसमें व्यक्ति अपने जीवन के अंदर सुकून को भी अनुभव करता है और कोई भी प्रकार के विघ्नों को आने की मार्जिन नहीं रहती है, गलत तरीके हमेशा विघ्नों को आवाहन करता है। इसीलिए गणेश जी विघ्नहर्ता, जिन्होंने सारे विघ्नों को समाप्त किया, साथ ही साथ उसको गणनायक कहते हैं, वो लीडर बनते हैं जो अनेकों को प्रेरणा देने वाले हो जाते हैं, उसको अष्ट विनायक इसीलिए कहा कि जो अष्ट शक्तियों को अपने जीवन के अंदर ग्रहण करते हुए विनय के साथ चलने वाला एक नायक, अनेकों के प्रेरणा स्रोत। साथ ही साथ उसको सिद्धि विनायक भी कहते हैं, जिन्होंने सिद्धि भी प्राप्त की लेकिन उसका अभिमान नहीं आया, विनम्रता के साथ लीडर बने। इस तरह उनके हर नाम के अंदर भी उनके कर्तव्य और जीवन के सद्गुण समाये हुए हैं। तो क्यों नहीं आज खाली गणेश जी की पूजा अर्चना या आवाहन खाली न करें, लेकिन गणेश जी के जीवन से इन प्रेरणाओं को अपने जीवन में लेकर अपने जीवन को हमेशा के लिए निर्विघ्न बना दे। तो शिव जी के बच्चे तो हम सभी है ही है, और शिव जी के बच्चे होने के नाते हम सबके अंदर परमात्मा शिव से इन शक्तियों को प्राप्त करते हुए अपने जीवन को उस ऊंचाई तक ले जाना है। ओम शांति।

सुनकर इतना ज्यादा शोर, पार्वती आई उस ओर। डरकर माता उमा के आगे दुम दबाकर मूषक भागे, पर अपनी धुन में मस्त गजानन थिरक रहे।

0: गणपति बप्पा,
1: गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया।
0: गणपति कहाँ आ रहे हैं?
2: हाँ बिटिया, गणपति आ रहे हैं हम सबके घर और हम स्वागत करेंगे धूमधाम से।
3: गणपति जी के आगमन पर आप सभी को रेडियो मधुबन की ओर से शुभकामनाएं। गणपति जी के साथ आइए, उनके प्यार, सेवा और शक्ति के गुणों को भी करें धारण।

0: चलो चलो वो आ गए हैं,
1: हमारे घर में उन्नति लाए हैं।
2: अरे गीत गाओ, उत्सव मनाओ, शुभकामनाएं दो।
3: हाँ, खुशियों को वो अपने साथ लाए हैं।
4: कौन आया है हमारे घर?
5: सिर्फ आपके नहीं बल्कि हमारे और सभी के घर शुभ कदमों से आए हैं गणपति बाप्पा। आइए उनका खूब सत्कार करें, मनाएं गणेश उत्सव, उमंग और

आज गणेश चतुर्थी का शुभ दिन है। गणेश चतुर्थी का उत्सव भी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, विशेषकर महाराष्ट्र में तो गणेश जी इष्ट देव हैं। जो भी त्योहार हम भारतवर्ष में मनाते हैं, उनके पीछे कोई ना कोई आध्यात्मिक रहस्य होता है। ऐसे गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है, सिद्धि विनायक कहा जाता है, बुद्धि के देवता कहा जाता है, तो वो विघ्न विनाशक हैं। किस आध्यात्मिक अर्थ से हम उन्हें विघ्न विनाशक कहते हैं? जैसे हम देखते हैं कि उनका जो शारीरिक बनावट है, वो सभी देवी देवताओं से बहुत अलग है। उनको हाथी का सिर दिखाया गया है और हाथी का सिर बड़ा सिर होता है। हाथी का सिर जो है वो बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। तो इसके पीछे शास्त्रों में कहानी आती है कि जब पार्वती जी नहाने गई, तो उन्होंने गणेश जी जो उनके पुत्र हैं उनको उन्होंने पहरे पर खड़ा कर दिया कि किसी को भी अंदर नहीं आने देना। लेकिन उसी बीच में शंकर जी पहुंच गए और वो गणेश जी अब अपने पिता को पहचानते नहीं थे, क्योंकि वो बहुत समय के बाद आए थे। तो उन्होंने उनको अंदर नहीं जाने दिया। शंकर जी ने उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं माने तो गुस्से में आकर के उन्होंने उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। और जब पार्वती जी को पता चला, वो बाहर आई तो वो विलाप करने लगी, क्योंकि उनके पुत्र का सिर अलग कर दिया गया था। और जब शंकर जी को सारी बात समझ में आई, तो फिर उन्होंने उसी समय हाथी का सिर वो गणेश जी के धड़ पर लगाया और इस तरह से उनको ये रूप मिला। तो वास्तव में इसका भाव ये है कि परमात्मा अहंकार का, जो ईगो का सिर है, वो काट करके हमें दिव्य बुद्धि प्रदान करते हैं। तो ये उसका प्रतीकात्मक है। गणेश जी को बड़े बड़े कान दिखाते हैं, तो बड़े कान जो हैं वो सुनने की शक्ति का प्रतीक है। ज्यादातर मनुष्यों में बोलने की आदत ज्यादा होती है, सुनने की क्षमता कम होती है, लेकिन गणेश जी हमें इस बात का प्रतीक है कि हमें दूसरों की बातों को ध्यान से सुनना भी चाहिए। और जब हम सुनते हैं, समझते हैं, तभी हम सही निर्णय दे पाते हैं। ऐसे उनकी लंबी सूंड जो है, जैसे सूंड से हाथी कितने काम करता है, वो बड़े बड़े पेड़ों को भी तने से पकड़कर जड़ से उखाड़ देता है, और उसके साथ साथ वो सबको नमन भी कर लेता है सूंड से, किसी को प्यार से सहला भी लेता है। तो सूंड दोनों ही कार्य करती है। तो ये स्नेह और शक्ति का प्रतीक है कि जितना स्नेह होना चाहिए जीवन में, उतना ही शक्तिशाली होना भी आवश्यक है। ऐसे ही उनका एक दांत जो है, वैसे दो दांत होते हैं लेकिन एक दांत उनका टूटा हुआ दिखाते हैं, तो ये एकता का प्रतीक है कि उन्होंने सभी को, चाहे समाज में इतनी विभिन्नताएं हैं, लेकिन सभी को एक ही दृष्टि से, यानी सबको एक सम दृष्टि से सबको देखा। और उनका पेट बड़ा है, तो बड़ा पेट जो है वो समाने की शक्ति का प्रतीक है कि किसी की भी कमियां, क्योंकि हम बहुत लोगों के संबंध संपर्क में आते हैं, सबके वैरायटी संस्कार होते हैं, लेकिन वो स्वीकार करने की शक्ति, उनकी बातों को, कमियों को समाने की शक्ति उनके अंदर है। इसलिए वो पेट का आकार जैसे अन्य देवताओं को इस तरह से नहीं दिखाते, लेकिन उनका दिखाते हैं। फिर उनकी बैठक भी इस तरह से दिखाते हैं कि एक पैर जमीन पर है और एक पैर ऊपर है। तो एक पैर जमीन पर है माना संसार में है, और अपने कर्म करना है, सभी संबंधों को भी निभाना है, लेकिन फिर न्यारा भी रहना है। पैर ऊपर है माना जितना वो इन्वॉल्व है, जितना वो शामिल है अपने कार्यों में, रिश्तों में, उतना ही वो न्यारापन भी उनके अंदर है। और विघ्नहर्ता उन्हें जैसे कहा कि वो कहा जाता है, तो वास्तव में जो विघ्न होते हैं वो हमारे जीवन में आंतरिक बुराइयों से आते हैं, आंतरिक शत्रु जिन्हें हम कहेंगे, वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, ये सब
भावनाएं जीवन में विघ्न के रूप में आती रहती हैं। तो आत्मिक शक्ति के द्वारा हम इन विघ्नों पर विजय पा लेते हैं। तो वो शक्ति हमारे अंदर परमात्मा की याद से आती है, हमारी आत्मिक शक्ति उससे बढ़ती है। तो गणेश जी का जीवन और उनका जो रूप है वो इन सब शक्तियों और गुणों का प्रतीक है। और जब हम गणेश चतुर्थी मना रहे हैं, उनका नमन वंदन कर रहे हैं, तो इस आध्यात्मिक अर्थ को समझते हुए अगर हम मनाएंगे तो सचमुच उन गुणों को भी हम अपने जीवन में लाएंगे, उसे अनुभव करेंगे। तो गणेश चतुर्थी की सभी को बहुत बहुत

0: नमस्कार, मैं हूँ हरमीत सिंह।
1: दुनिया बनाई मैंने हाथों से।
0: वन ऑफ द मीत ब्रदर्स अंजन, म्यूजिक डायरेक्टर्स एंड सिंगर्स फ्रॉम द फिल्म ओ माई गॉड।
1: मिट्टी से नहीं जज्बातों से।
0: और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी म्हारो गांव म्हारो अंचल। इस कार्यक्रम के तहत हमें बहुत खुशी होता है जब गांव और अंचल में जाते हैं, अपना गाँव वासी से मिलते, अपनापन आता है। जिस गाँव और अंचल में हम रहते हैं पले बड़ौर यहाँ तक पहुँचे, खासकर मंदिर कितना आवश्यकता है गाँव के लिए, आस्था विश्वास भक्ति को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। अब तो इस कार्यक्रम में हमारे साथ पूर्व सरपंच जी है मोरथला ग्राम पंचायत के, जब भी जाते हैं एक इशारा से हमको सहयोग देने के लिए आते हैं, जिसके चलते हमको बार बार आने के लिए इच्छा होता है। तो आज जब मोरथला ग्राम पंचायत में आए, महिला सामूहिक विकास के लिए, महिला का सशक्तिकरण करने के लिए जो बात हो रही है, क्योंकि महिला जब तक जागरूक नहीं होंगे आगे नहीं बढ़ेंगे तो हम जो चाहते आदर्श गाँव हो नहीं पाएगा। नारी जितने शिक्षित होगी, बच्चे परिवार सभी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि महिलाएं घर में सबसे उठती है, लास्ट में सोती है, लास्ट में खाती है, सबको खिलाती है, सबके लिए बनाती है। बीमारी होता तो महिला को ही चिंता होता है। ये सब चीज़ करने के बावजूद भी पुरुष प्रधान में थोड़ा सा जो हो रहा है ऊपर नीचे, वो नहीं होना चाहिए। इसका चलते और मंदिर मस्जिद जब गांव में रहता है, गुरुद्वारा रहता है, भावना को प्रकट करने के लिए, आस्था विश्व अपना मन का बात को रखने के लिए आते हैं। तो इस संदर्भ में हमारा साथ एक्स सरपंच लक्ष्मण जी है, तो उनको स्वागत करते हैं। सर, आपका वेलकम इस कार्यक्रम में, और खासकर आप अपना गांव में मोरथला में आए, तो आप अचानक जब आए इशारा करें तो आप आ गए मंदिर के पास, और आप क्या कहना चाहेंगे हमारा सभी जो आस्था विश्वास और खासकर महिलाओं को क्या कहना चाहेंगे?
1: मैं महिलाओं को ये कहना चाहूँगा
0: जी सर
1: कि हम लोग, हमारा देश आज़ाद हुए कम से कम 73 साल हो चुके हैं, 73 ईयर्स,
0: राइट।
1: लेकिन ना हम एक आदिवासी क्षेत्र से आते हैं और बहुत गरीब परिवार के हैं, और ये गांव हमारा एक गरीब गांव था और आज़ादी के बाद भी इस गांव के अंदर बहुत से का विकास नहीं हो पाया था। क्यों नहीं विकास हो पाया? कि हमारे में जागरूकता कम थी, यहाँ के लोग कम पढ़े लिखे थे, औरतें कुछ समझती नहीं थी। लेकिन अभी वर्तमान में मैं देख रहा हूँ, जब से मैं सरपंच बना हूँ तो हमारे गांव के अंदर कुछ लोग जागरूक हो रहे हैं, विकास की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, खुद भी कोशिश कर रहे हैं कि हम हमारे गाँव को कुछ विकास करके कुछ अच्छी इसको कुछ दिखाएं हम।
0: जी जी,
1: तो हमारे गाँव के अंदर अभी इस हाल में देखो, पहले 5वीं क्लास थी, बड़ी मुश्किल से हमने 5वीं क्लास तक स्कूल खोली थी, उसके बाद में 8वीं करी, 8वीं के बाद में 8वीं भी हमारे यहाँ पर दिल्ली के MLA थे, हमारे कास्ट के थे
0: जी जी।
1: उनका नाम था भीखा भाई भील कई समय यहाँ आए थे, उन्होंने उद्घाटन करा था कि वहाँ पर पहले स्कूल है। हमारे यहाँ पर केवल आबू रोड के अंदर एक स्कूल थी
0: जी।
1: और वो थी हायर सेकेंडरी स्कूल। हायर सेकेंडरी स्कूल एक थी, यहाँ पर कई स्कूल नहीं थे, दूर दूर से 12-12, 20-20 किलोमीटर दूर से बच्चे वहीं पढ़ने जाते थे।
0: ओ,
1: भीखा भाई भील ने अनाउंस करा था कि सबसे पहले मिडिल स्कूल बनेगी तो मेरा ट्राइब जो एरिया है, भीलों का एरिया है, वहीं बनेगी। परंतु किसी कारणवश हम लोग पीछे रह गए और वो स्कूल हमारे यहाँ नहीं बन पाई। कई सालों तक हम कोशिश करते रहे, स्कूल वो नहीं बनी। उसके बाद में अपने गांव के देखा, लोगों ने बाहर से आके देखा कि यहाँ के बच्चे बेचारे गरीब हैं, और सरकार ने भी हमारी मदद करी, इस गांव को कुछ आगे बढ़ाओ। तो आज फिर वो मिडिल स्कूल, सब जगह स्कूल मिडिल स्कूल बन चुकी थी, उसके बाद रह गया केवल ओनली फॉर मोरथला। जब जाके मोरथला में मिडिल स्कूल बनी, इसके बाद में हायर सेकेंडरी बनी। हायर सेकेंडरी स्कूल को बनाने के लिए मेरे पास कहीं प्रस्ताव है कि सब वहाँ रखो। मैंने कहा हाँ, मैं गरीब, हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, स्कूल की जो हमारे गांव की लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, वो यहाँ से आव रोड पढ़ने नहीं जा सकती है। अब यहाँ से या तो नाइन्थ करके या एट्थ करके वो स्कूल छोड़ देती है, और घर पे बेचारी घूमते रहते, मजदूरी करती है। लेकिन हमने पीछे पढ़ के यहाँ पर 12वीं तक के स्कूल हमारे गांव में
0: सीनियर सेकेंडरी स्कूल
1: यहाँ पर
0: उच्च माध्यमिक विद्यालय।
1: तो आज इस मोरथला के अंदर उच्च माध्यमिक विद्यालय है, बच्चियाँ ज्यादा से ज्यादा बच्चियां यहाँ पढ़ रही है, और अच्छे परसेंटेज दे रही है यहाँ के बच्चियां। उसके हिसाब से हम देख रहे हैं कि अभी हमारे ये, हम भले गरीब हैं लेकिन बच्चे हमारे विकास की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अगर ये आगे बढ़ेंगे तो हमारा गांव और ही कुछ और ढंग का दिखेगा।
2: सही बात, कितना सुंदर प्रस्तुत है और भावना कितना, देखो हमारे बच्चे शिक्षा को लेकर आगे बढ़े, क्योंकि शिक्षा बिना जीवन अधूरा है, जैसे नीम बिना भवन अधूरा है, तो बच्चों का शिक्षा बिना जीवन अधूरा है। जैसे आज लक्ष्मण सर ने बताया, शिक्षा के लिए अपना गांव सबसे आगे बढ़े और सभी बच्चे यहीं पर ही 12 तक कम से कम कर, बाहर कोई गांव में नहीं जाए, तो उनका जो प्रयास से आज यहां तक पहुंचा, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद पुनः मिलेंगे, सुनते रहिए कार्यक्रम मेरा गाँव मेरा अंचल, खासकर शिक्षा को लेकर आज उनका बात बताए। ब्रेक के बाद पुनः मिलेंगे, सुनते रहिए कार्यक्रम मेरा गाँव मेरा अंचल।

0: नमस्ते, अल्प विराम के बाद पुनः मिल रहे हैं। खासकर हमारा साथ शिक्षा को लेकर अपना भावना को बच्चों का सर्वांगीण उन्नति के लिए शिक्षा स्वास्थ्य यातायात सबको आवश्यकता है और आदर्श गांव के लिए तो ये आवश्यकता ही है। शिक्षा बिना जीवन अधूरा। तो इस कार्यक्रम में हमारे साथ लक्ष्मण सर उपस्थित है और खासकर मंदिर के प्रांगण में बैठकर मंदिर मस्जिद और अपना आस्था विश्वास, चाहे गणगौर त्यौहार हो चाहे अपना कुलदेवी का मंदिर जब गांव में रहता है तो गाँववासियों को कितना आस्था विश्वास और भावना में आगे बढ़ाता है, उत्प्रेत होते हैं और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। हर साल कुछ ना कुछ फंक्शन होता है, तो इस संदर्भ में आपका गांव में क्या क्या मंदिर है और आम जहां पर आज बैठे हैं यहां पे
1: कोई सहयोग मिलेगा या आप कुछ पेड़ लगाए जाएं तो हम सब गांव वाले इकट्ठे होकर और ज्यादा करके यहां पर एक हमारे यादव क्रेशर वाले हैं उनका पूरा सहयोग रहा, तो उन्होंने हमारे साथ मिलकर पेड़ लगाए और आज पेड़ों की कंडीशन कैसी है जो हरी भरी दिख रही है। आज बैठने की भी बहुत बढ़िया व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था नहीं थी, हमने वहाँ अलग से ट्यूबवेल करवा के और मोटर लगाकर उसमें पानी की भी पीने के लिए पानी की व्यवस्था हो गई, क्योंकि यहाँ पर हर साल मेला भरता रहता है, लोग पानी के लिए भी परेशान होते हैं, तो अलग से सेफ मोटर भी लगवा दी। अब पानी की सुविधा भी है और यहाँ पर खूब आओ खूब जाओ
0: सबके लिए, जनसाधारण के लिए,
1: ये जनसाधारण के लिए, ये नहीं कि हमारे लिए, ये सार्वजनिक कहलाता है, मंदिर एक सार्वजनिक होता है।
0: कोई भी मैंने गांव का समूह का काम होता है बा कोई अच्छा काम होता है तो यहाँ पर आकर अपना कर सकते हैं।
1: जो भी काम होता है इकट्ठे होके यहाँ पर मिलो बैठो निर्णय लो और सबके लिए मंदिर सबके लिए होता है, कोई भी आओ गांव का मंदिर का बैठो, वो कोई गांव में मेला भी भरता है या समाज का भी काम है तो मंदिर में आके सब बैठते हैं और यहाँ पर सब निर्णय लिए भी जाते हैं।
0: सामूहिक का जो भावना है इस मंदिर में आते तो ये अपना पराया कुछ नहीं, भाई भगवान का काम है और अपना एक मानविकता नाते जितना हम हो सके दे और जनकल्याण के लिए और खासकर सरपंच साहब हो चाहे जो एग्जीक्यूटिव बॉडी बनता है पंचायत ऑफिस में जो उनका पास पावर आता है ग्राम का विकास करने के लिए, तो आपको जनता है।
1: मैंने जब ये मंदिर बनवाया था, जब मंदिर बन गया बना था, जब मैंने उद्घाटन कर रहा था तो ये मेरे टाइम में हुआ था उद्घाटन, मंदिर बनना शुरू हो गया था लेकिन उद्घाटन मेरे सरपंच बनने के बाद ही हुआ था।
0: जी
1: हमारे यहाँ पर पूजा हुई थी, पंडित आए थे, तीन दिन का इनका कार्यक्रम चला था, उसमें मुझे बाबा ने हुक्म दिया था, इतना हुक्म दिया था कि बाबा हम तो आपके शरणों में बैठे हैं और मेरे गांव का विकास, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे गांव का विकास चाहिए, और मुझे बाबा ने इतना हुक्म दिया था कि 70% तेरे गांव का विकास होगा, और आज मैं देख रहा हूँ कि इनकी मेहरबानी से ही मेरे गाँव के अंदर 70% से ज़्यादा विकास हो गया है, अब 30% और रह गया है, मैं उसके लिए हम पूरी अब कोशिश और कर रहे हैं और 100% इस गांव का विकास करके इस गांव को मुझे चमन और बनाना है, ये मेरी इच्छा है, पूर्ण भावना है कि मेरा गांव का नाम रोशन होवे, आगे नाम आवे कि भाई मोरसला भी कोई गांव है, पहले कोई मोरसला को जानते नहीं था, आज मोरसला कम से कम जगह उजागर तो हो रहा है कि भाई मोरसला भी कोई गाँव है और आज अच्छा विकास कर रहा है,
0: क्योंकि मोरथला गांव का विकास को देखकर ही लोग आते हैं, हाँ यहाँ पर हम कुछ करेंगे तो और विकास होगा, क्योंकि जो विकासशील में तत्पर रहते हैं उनको देने के लिए कोई ना कोई आते रहते, जैसे आज रेडियो का माध्यम से सामुदायिक का आवाज़ सामुदायिक तक पहुँचा है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं सिर्फ अपना गाँववासी ही जानते हैं, वह अपना परिवार वाले ही जानते हैं, जब इस तरह साधन मिलता है तो कहाँ से कहाँ तक चला जाता है, और क्योंकि माध्यम है, मीडिया एक माध्यम है जिस माध्यम का हिसाब से आपका गांव में क्या हो रहा है सब तक पता पड़ रहा है, क्योंकि मोर नाच रहा है जंगल में कोई थोड़े देखा है, जब हम देखते हैं जाकर हम विश्वास आता है, तो आप क्या काम कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं और क्या करने किसके किसका सहयोग से हम और आगे बढ़ पाएंगे, जब हम बताते हैं तो देने वाले खुद कराने वाला तो ऊपर वाला है वो कराता है किस तरह, तो
1: हमारा फर्ज मेहनत करना, कोशिश करो, मतलब किसी काम के पीछे लग जाओ तो कुछ करके बताओ।
0: जी
1: हम तो इसी उद्देश्य से आगे बढ़ते रहते हैं,
0: क्योंकि मंदिर और मस्जिद चाहे हमारे आस्था विश्वास को आगे बढ़ाने के लिए ये एक अच्छा सामुदायिक प्लेस है जनसाधारण के लिए, बहुत खुशी लगता है जब मेला भरता है चाहे कोई भी पब्लिक का काम होता है तो यहाँ पर आकर अपना कुछ भी नहीं हो घर में कुछ टेंशन होता है तो यहाँ पर मंदिर में आओ शांत से बैठकर अपना दिल का बात को ऊपर वाला को दे दो।
1: बिल्कुल थोड़ी देर बैठते हैं मंदिर में बैठते हैं तो शांति आती है,
0: क्योंकि शांति का बना हुआ तो इसलिए मंदिर, जैसे हम स्कूल जाते तो हमें पढ़ाई मिलता है तो मंदिर में आते हैं तो हमको शांति कुछ समय के लिए मिलती है,
1: कुछ समय के लिए शांति मिलती है।
0: तो बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और एक ब्रेक लेते हैं, अभी हम सुन रहे थे खासकर आस्था विश्वास और भावना आध्यात्मिकता भक्ति को लेकर हम मंदिर में जब बैठे तो उस बात हो रही थी और होना भी चाहिए प्रत्येक गांव में और हो ही है क्योंकि हम सुबह से शाम तक भगवान का याद में मेला लगाते हैं बा कोई देवी देवता पूजा करते हैं और इसका पहले ब्रेक का पहले भी सुने थे जो शिक्षा हमारा जीवन में कितना आवश्यक और गाँव मोरथला गाँव में शिक्षा को लेकर कितना तत्पर आज सीनियर सेकेंडरी वो भी बताए अभी ब्रेक के बाद सुनेंगे स्वास्थ्य एवं सड़क के बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे लेकिन अल्प विराम के बाद

0: नमस्कार, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम जब मंदिर में आए थे, बच्चों का भी यहाँ पर भी मंदिर है, बच्चों का मंदिर, क्योंकि बच्चे आज स्कूल से थोड़ा डिस्टेंस को मेंटेन करके आए हैं खुला जगह में, तो बहुत अच्छा लगा मंदिर में जब बच्चे पढ़ रहे थे, क्योंकि मैडम भी स्कूल से थोड़ा सा हट के खुला जगह में लेकर आए। तो आज इस कार्यक्रम में छोटे छोटे गुड़िया हमारे साथ हैं, मासूम मासूम बच्चे, तोतले तोतले आवाज़ से अपना बात को रेडियो में सुनाएंगे। तो आपका नाम सुनाओ। नाम?
1: इमानसी।
0: कौन सा क्लास?
1: तीसरी।
0: आपका?
1: डिंपल तीसरी।
0: ओके।
1: डिंपल तीसरी।
0: ओ, डबल डिंपल। अच्छा।
1: कल्पना तीसरी।
0: कल्पना। अच्छा, कल्पना, डिंपल और सुभांशी ना, क्या नाम है?
1: हिमांशी।
0: ये तीनों के लिए, चारों के लिए ताली बजा जोर से। ताली बजाने में तो होशियार है बच्चे। ओके, ताली बजा कर हमको तो खुशी करा दिया। और बच्चों को भी तो सुनाएंगे आज, कौन सा कविता गीत सुनाएंगे सभी मिलकर। और स्कूल का नाम कौन बताएगा? आपका स्कूल का नाम?
1: मोरतला स्कूल।
0: मोरतला स्कूल। चलो शुरू करिए।

वाह, चलो चालू करो। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद, ताली बजाओ। मोरथला के बच्चे और मोर का बारे में गीत सुना करो, हम तो खुशी करा दिए। और सार भी मोरथला का बारे में बहुत कुछ जानकारियाँ दिए लक्ष्मण सार ने।

0: तो बच्चों का गीत सुनने के बाद और एक बच्चा वो भी बोलेगा हम भी कुछ बोलेंगे। तो हमारा इस कार्यक्रम में क्या नाम है तुम्हारा? नाम
1: वासुदेव।
0: बाप रे, नाम ही कितना सुंदर, वासुदेव ना। हाँ, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। भाई वासुदेव के लिए ताली बजाओ। गुड। देखा वासुदेव, तुम्हारा नाम बहुत सुंदर है। मोरथला में वासुदेव जो कृष्ण रहते हैं ना, पहले कृष्ण का सिर में मोर का पंछी रहता था, है ना? मोर को देखा है सभी? हाँ। तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। तो वासुदेव हमारा साथ छोटा सा है अभी, वासुदेव है, बड़े होकर बड़ा वासुदेव बनेगा। और बड़े होकर क्या बनेगा? क्या बनेगा बड़े होकर? डॉक्टर, इंजीनियर और पायलट, ट्रेन चलाने वाला। बोल, पुलिस। बाप रे भाई, पुलिस बनेगा भाई, पुलिस। देखो सभी चोर लोग थोड़ा सतर्क हो जाओ, क्योंकि पुलिस आ गया आपका गांव में मोरतला में। गुड। पुलिस, पुलिस को कभी देखा है वासुदेव? देखा है। कहाँ पर?
1: बाजार में।
0: अरे ये तो होशियार है। कौन बोलता होशियार नहीं है, एक तो पूरा होशियार हमसे भी आगे है। तो बढ़ेगा तो पुलिस बनेगा, चोर को तो पकड़ेगा, आपका गांव में भ्रष्टाचार नहीं रहेगा, और आपको देखकर सब लोग डरेंगे ना। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ मैडम जी कैसे बच्चों को शिक्षा देते, 2 मिनट आप हेलो करिए, तो आपका शुभ नाम बताइए, क्योंकि बच्चों को पढ़ाने के लिए मैडम हमेशा तत्पर रहते, 2 परिवार को संभालते, स्कूल परिवार को, विद्यालय परिवार और घर का परिवार। तो आप बच्चों को इस तरफ जो प्रेरणा देते, अभी हम देख रहे थे बच्चों को कितना सुंदर रूप में बैठाकर और कोरोना काल में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर मंदिर का प्रांगण में बच्चों को पढ़ा रहे, जो दिशा निर्देश आपको मिला है उसी हिसाब से चल रहे। तो आपका शुभ नाम?
1: कुसुमलता तनोजी।
0: तो कहाँ से आप?
1: आबू रोड से।
0: आबू रोड से। तो खासकर बच्चों को पढ़ाने के लिए जो उमंग आता है, किस तरह आप बच्चों को पढ़ाते हैं? खेल खेल
1: सर, ये बच्चों से ही, बच्चों के कारण ही हमको जो है आय वगैरह होती है, तो हम क्यों ना इनके प्रति ध्यान देवे। हालांकि अभी कोरोना काल चल रहा है, इनको पढ़ाना नहीं है, लेकिन ऐसा भी है कि भाई स्कूल से दूर जाके इनको मास्क लगाते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और जो COVID-19 की जो गाइडलाइन है उनका पालन करते हुए इनको हम पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं सर। क्योंकि जब कुछ भी नहीं ले पा रहे घर पे सर, एक एक बच्चे के घर पे जाना तो इम्पॉसिबल है सर, और वहाँ पर इतने बच्चे गैदरिंग भी नहीं हो पाते हैं, तो यहाँ कम से कम हम दूर दूर बिठा कर बच्चों को पढ़ाने का प्रयास।
0: और खासकर बच्चों को, जैसे बच्चा भी कितने तोतले तोतले आवाज से अपना बात को रखते, इस तरह रेडियो का माध्यम से जब आते हैं बच्चे आगे के लिए, ये लोग का जो मंच मिलता है रेडियो मधुबन, एक मंच दिया, इस मंच का माध्यम से बच्चे जो आज धीर आए हैं, कल और आगे आएंगे, तो इससे बच्चों को क्या प्रेरणा मिलेगा, माँ बाप क्या उनका जब सुनेंगे गीत को रेडियो का माध्यम से, तो उनको कितना खुशी होगा?
1: जी, वो प्राउड भी महसूस करेंगे सर कि हमारा बच्चा आज इस स्थिति में कि वो बोल पा रहा है
0: रेडियो में
1: बजा।
0: तो रेडियो आज आपका पास आया तो बच्चों को एक मंच मिला,
1: लेकिन
0: अचानक
1: उनका कॉन्फिडेंस भी जागेगा सर आगे, और ये थोड़ा और एक्टिव होकर बोलेंगे।
0: जैसे तीनों कुछ को बोलना नहीं पड़ा, खुद बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए, है ना बढ़ चढ़ हिस्सा लिए ना, बहुत अच्छा। तो बड़े होकर क्या बनेगी तुम? डॉक्टर, इंजीनियर, मैडम, क्या बनेगी बोलो? क्या बनेगी तुम?
2: मैडम।
0: ओके,
2: मैडम।
0: तुम भी मैडम? सब मैडम। भाई जिसको भी मैडम को लेना हो आपका गांव के लिए, तो हमारे यहाँ पर मोरथला में मैडम ही मैडम है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। लेते हैं एक ब्रेक के बाद मिलेंगे लक्ष्मण सर से, लेकिन सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन। ठीक है बच्चे, बाय बाय।

0: चलो चलो वो आ गए हैं,
1: हमारे घर में उन्नति लाए हैं।
2: अरे गीत गाओ, उत्सव मनाओ, शुभकामनाएं दो।
3: हाँ, खुशियों को वो अपने साथ लाए हैं।
4: कौन आया है हमारे घर?
5: सिर्फ आपके नहीं बल्कि हमारे और सभी के घर शुभ कदमों से आए हैं गणपति बाप्पा। आइए उनका खूब सत्कार करें, मनाएं गणेशोत्सव उमंग और हर्षोल्लास से। रेडियो मधुबन के सभी श्रोताओं को गणपति बप्पा के आने की ढेरों शुभकामनाएं।

वेलकम बैक दोस्तों। और अभी हमने दो गाने बैक टू बैक सुने, दोनों गाने ही मेरे भी पसंदीदा था। और फिरोज जी जो पालनपुर से, तो उन्होंने भी एक ऐसी फरमाइश की थी कि जिसमें ये हो कि बापा अगले बरस तुम्हें जल्दी आना है, आना ही है, या ऐसे कुछ वर्ड्स हो।

जिसमें वो गाने सुनने हैं, तो हमने दो बैक टू बैक गाने सुनाए उन्हें, एक तो अनुराधा पौडवाल जी की आवाज़ में था, और एक ये जो अभी हमने गाना सुना मोरिया रे, फिल्म डॉन मूवी से ये गाना था, डॉन पुरानी वाली नहीं, डॉन नई वाली, जी हाँ, जिसमें शाहरुख खान जी ने अभिनय किया था, इसे गाया था शंकर महादेवन जी ने, इसे लिखा था जावेद अख्तर जी ने, इसको म्यूज़िक दिया था एहसान नूरानी जी ने, एहसान लॉय जो एक पूरी तिगड़ी है म्यूज़िक में, शंकर एहसान लॉय के नाम से जाना जाता है, उन्होंने इसके म्यूज़िक डायरेक्ट किया था। और चलते हैं, बढ़ते हैं अगले इसी तरह से एक और प्यारी सी आरती की तरफ, एक और ऐसा एक एल्बम है गणेश जी के, और आज का दिन ही, आज का पूरा शाम जो हमने समर्पित किया है गणेश चतुर्थी के नाम पर पे, तो एक और गाना सुनते हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: मैं हूं उदित नारायण और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: वेलकम बैक दोस्तों। दोस्तों, वक्त का पता ही नहीं चला आज के इस सफर में, जहां गणपति बापा के दिन के लिए हमने इतने प्यारे प्यारे प्यारे प्यारे गाने सुने, और भी बहुत सारे गाने लाइन में हैं, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि वक्त की कमी हो रही है, क्योंकि अभी एक और फरमाइश हमारे बुरहराम जी ने जो बहुत ही प्यारा भजन गाया था वो भी हमें सुनाना है, और हमारे भूरीलाल जी ने भी हमें एक गाना दिया था कि ये दोस्ती हम ना तोड़ेंगे, ये वाला गाना भी उन्हें सुनना है। तो चलिए, हम लेते हैं आपसे इजाज़त, आप सुनिए ये दोनों बैक टू बैक गाने। हम फिर मिलेंगे आपसे कल, तब तक के लिए शुभरात्रि, शब्बा खैर, गुड नाइट।

0: ગણપતિ બાપા મોર્યા,
1: મંગલ મૂર્તિ મોર્યા,
0: ગણપતિ બાપા મોર્યા,
1: મંગલ મૂર્તિ મોર્યા,
0: એક દો તીન ચાર,
1: ગણપતિ તેરી જય જયકાર,
0: એક દો તીન ચાર,
1: ગણપતિ તેરી જય જયકાર.
2: વિઘ્ન વિનાશક આ રહે હૈ, આઈએ એકતા ઓર ભાઈચારે કા યહ પાવન પર્વ હમ સબ મિલકર મનાતે હૈ ઓર હમારી શ્રેષ્ઠ સંસ્કૃતિ કા સંવર્ધન કરતે હૈ. रेडियो मधुबन 90.4 एफएम के सभी सुनने वालों को गणेश उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं.
3: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम. ये है कार्यक्रम सहज स्वास्थ्य. मैं हूं आपका दोस्त आरजे श्री. दोस्तों, जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो अक्सर लोग ये सोचते हैं कि किसी बीमारी का ना होना ही स्वास्थ्य है, मगर क्या स्वास्थ्य इतना ही है? आज अगर हम स्वास्थ्य का ना होना भी बीमारी का ना होना ही स्वास्थ्य समझते हैं, तो भी आज हम देखते हैं कि कई लोग दवाइयों को खाते हुए अपने आप को स्वस्थ समझकर चलते हैं. कई लोगों को आदतन गोलियां खाने की या किसी न किसी प्रकार की दवाइयों का सेवन करने की आदत हो जाती है. लोग कहते भी हैं कि भाई, इन दवाइयों के साथ तो ठीक चली रही है गाड़ी, तो फिर हमें ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है. ऐसा भी कई लोग मानने लगते हैं. जब हम स्वास्थ्य के बारे में सही जागरूकता नहीं रखते तो ऐसा होता है कि हम अपनी अपने स्वास्थ्य की मान्यताओं को ही सत्य मानने लगते हैं. इसलिए ये जानना भी आवश्यक है कि सही अर्थों में हम स्वास्थ्य को कैसे समझें और अपने परिवार और अपने स्वजनों को स्वस्थ बनाने में हम क्या भूमिका अदा कर सकते हैं. आइए आज सहज स्वास्थ्य कार्यक्रम में हम कुछ ऐसे ही विषयों पर चिंतन करते हैं. आज हमारा मार्गदर्शन के लिए स्टूडियो में जुड़ रहे हैं डॉक्टर राहुल मोदी जी. डॉक्टर राहुल मोदी जी पेशे से एक एलोपैथी डॉक्टर हैं, भारत के जाने माने ऑस्टियोपैथ हैं, स्पोर्ट्स मेडिसिन के क्षेत्र में लंबा अनुभव रखते हैं और साथ ही भारत के प्राचीनतम प्रकृति चिकित्सा केंद्रों में से एक आरोग्य मंदिर गोरखपुर में प्रैक्टिस करते हैं, जहाँ पर उनके परिवार के अनेक पीढ़ियों ने लोगों को स्वास्थ्य लाभ दिया है. डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम में.
4: नमस्कार, ओम शांति.
3: सर्वप्रथम तो मैं इसी प्रश्न से शुरू करना चाहूंगा डॉक्टर साहब, कि बहुत बार हम लोग ये सोचते हैं कि भाई, जब तक किसी व्यक्ति को शारीरिक रूप से कोई व्याधि ना हो, कोई पेन नहीं हो बॉडी में, तो लोग समझते हैं कि ऐसे किसी प्रकार का पेन ना होना या बीमार ना होना ही स्वास्थ्य है. ऐसा कई लोग समझ लेते हैं और कई कई बार तो लोग उससे भी एक कदम आगे चले जाते हैं. लोग कहते हैं कि भाई, मैं अगर ये दवाई लेता रहता हूँ, हर दिन मैं ये गोली खाता रहता हूँ, तो मेरी तबीयत ठीक रहती है, तो मैं स्वस्थ ही हूँ, मुझे कोई ज्यादा समस्या नहीं है. इसको भी स्वास्थ्य का एक मॉडिफाइड डेफिनेशन समझकर लोग चलने लगते हैं. इस विषय पर आप क्या कहेंगे
4: श्री भैया? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो स्वास्थ्य की परिभाषा बताई है, उसमें फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग की बात की है, एंड नॉट मियर एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी. मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन भी ये बात करता है कि सिर्फ शरीर का दर्द नहीं, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से भी आप स्वस्थ रहने चाहिए. आज इस भाग दौड़ की दुनिया में जब हम अखबार अभी देखेंगे खोलकर, जब बच्चों का 10वीं या 12वीं का रिजल्ट निकलता है, उनका परीक्षा फल आता है, तो बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रहता है कि ये बच्चा 99.99% पाया, और कुछ बच्चे तो इतना अच्छा नंबर पा रहे हैं, मैं उनको सबको बधाई देता हूँ. पर आप ये भी तो देखिए कि बहुत बच्चे मेहनत के बाद भी अच्छे नंबर नहीं पा रहे हैं, तो वो तो मानसिक रूप से परेशान हो ही जा रहे हैं, साथ साथ उनके माता पिता भी उस बच्चे के नंबर न होने से भी परेशान हो जा रहे हैं. तो आप इस पूरी व्यवस्था को स्वस्थ व्यवस्था नहीं कह सकते. आप अगर किसी भी व्यक्ति के बढ़ने से कुछ उसके जीवन में अच्छा हो रहा है और आप अगर उससे ईर्ष्या कर रहे हैं, तो आप उसको स्वस्थ व्यवस्था नहीं मानेंगे. आप ये सोच रहे हैं, आपका दिमाग कुछ ज्यादा सोचता रहता है कि जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है, क्या मेरे खाने में कुछ गलत मिला हुआ है, अरे लोग क्या कहेंगे, क्या ये जो मैंने कपड़ा पहना है ये मेरे लिए अच्छा है कि नहीं. अगर आप बार बार बार बार इसी चीज के लिए परेशान होते रहेंगे, तो आपको ठीक से स्वस्थ व्यक्ति नहीं माना जाएगा. सिर्फ शरीर में कोई दर्द ना होना, कोई व्याधि ना होना, कोई परेशानी ना होना, जैसे हम लोग अभी डायबिटीज की बात की, आप पेशेंट को, मरीज को मालूम ही नहीं चलता है कि डायबिटीज है उसको, पता चला कंधा बस जाम है, कंधा जाम है, अरे कुछ तरह दर्द हो गया होगा, अरे जिम में खींच गया होगा, अरे हाथ खींच लिए होंगे, ये सारा हम बस बोलते रहेंगे और पता चलता है कि अरे भाई ये तो डायबिटीज निकल गई। महिलाएं कितनी आती हैं कि उनको मासिक धर्म की समस्या हो रही है, महिलाएं आ रही हैं जिनको बाल झड़ रहे हैं, थकान बहुत लग रही है, उनको पसीने में दुर्गंध होने लगी, फिर अरे ये तो बहुत दिन से चला, हमने तो उस पर ध्यान ही नहीं दिया, तब मालूम चले रहे आपको तो थायराइड की समस्या शुरू हो गई, हार्मोनल समस्या शुरू हो गई। तो मैं सब बहुत एक खतरनाक एग्जाम्पल कैंसर है, आदमी को मालूम ही नहीं चला, जब वो सेकेंड फेज थर्ड फेज में चला गया तब पता चला रे भाई तो मुझे कैंसर हो गया। तो मैं ये कहूंगा कि अगर आपको दर्द नहीं हो रहा है आपके शरीर में कहीं पे और आप सोच रहे हैं कि आप स्वस्थ हैं, पर आपको मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप तीनों तरह से स्वस्थ रहना चाहिए। दूसरी चीज, अगर जरूरत ना हो तो कृपा करके रोज कोई दवा या गोली अपने दिमाग से, अपनी कॉमन सेंस से, अपने सेंस से मत खाइए। जब तक किसी डॉक्टर ने आपको ना लिखी हो, जब तक आपको ये समस्या हो, कुछ गड़बड़ आपके अंदर निकले, कुछ ठीक चीज ना हो, तो आपको वो दवा खानी चाहिए। पर जो लोग ये सोचते हैं कि रोज मैं ये गोली खा लूं तो मैं ठीक महसूस करूंगा, रोज मैं ये, सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो मैं देता हूँ, इतने मरीज आते हैं, आप उनसे कहिए कि आप ये दवा खाते हैं, हाँ सुबह उठ के गैस की गोली खा लेते हैं, क्यों, हमको गैस बहुत बनती है। अच्छा, आप भोजन में कोई अपने वो किए, नहीं नहीं भोजन में हमने कोई बदलाव नहीं किया, हम बस ये गैस की गोली सवेरे खा लेते हैं, फिर हमें जो मन में आता है हम खाते रहते हैं। अरे अपना भोजन सुधार लीजिए, आप अगर अपना भोजन सुधार लेंगे तो शायद आपको वो गोली की जरूरत न पड़े। तो इसीलिए मैं सबको ये बोलूंगा कि प्लीज अपने आप को सुधार लीजिए, अपने भोजन को सुधार लीजिए, और जहां तक हो सके अगर जरूरत ना हो तो कृपा करके दवाई का प्रयोग मत करिए। मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि आयुर्वेदिक दवाइयों का, होम्योपैथी का, एलोपैथी का, इवन नेचुरोपैथी का अगर जरूरत ना हो तो कृपा करके उनका प्रयोग मत करिए।
3: ये बात समझ में आती है कि आज हम दवाइयों के साथ अपने जीवन को ठीक चला रहे हैं और इसे हम स्वास्थ्य का परिचायक समझकर अगर चलते हैं तो वास्तविकता में ये हमारी भूल है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग, ये बात समझ में आती है। अब दवाइयों के साथ जो चीजें हम कर रहे हैं, दवाइयां हर दिन खाने वाली जो चीजें एक रेगुलर चीज बन गई है, वो आम बीमारियों के रूप में भी हम देखने लगे हैं। उदाहरण के तौर पर हम डायबिटीज और बीपी, इनके लिए लोगों को गोली लेते हुए देखते हैं। डायबिटीज के लिए मरीज डायबिटीज की गोलियां ले रहे होते हैं और कोई को अगर बीपी की समस्या है तो वो बीपी की गोलियां लेते रहते हैं। पिछले एपिसोड में हम ये बात कर रहे थे कि बीपी क्या है और इसे कैसे समझने की जरूरत है और क्या इसमें होता है शरीर में, ये चीज हम समझ रहे हैं। अब एक और प्रश्न उठता है कि आजकल हम देख रहे हैं कि हम आम लोगों को, जैसे कोई घर आए मेहमान को पूछते हैं, वैसे ही हम पूछ लेते हैं कि अच्छा आपको डायबिटीज या बीपी तो नहीं है, और कहते हैं कि हाँ उनको बीपी है या डायबिटीज है तो भी हम बोलते हैं हाँ अच्छा ये भी ठीक है, मतलब एक एक्सेप्टेबल नॉर्म के रूप में इस बीमारी को देखने लगे हैं। तो प्रश्न उठता है कि डायबिटीज के बारे में तो धीरे धीरे धीरे धीरे हम समझते आए हैं, मगर बीपी की समस्या क्यों बढ़ती जा रही है? पहले तो हम इतना नहीं सुनते थे कि भाई बीपी भी कोई चीज है, बट आजकल ये एक कॉमन नोशन बन गया है, हर कोई मतलब बीपी की दवाई के बारे में बात करता है, बीपी शब्द का इस्तेमाल करता है, तो ये बढ़ क्यों रहा है, इसका इसकी वजह क्या है?
4: जैसा भैया हम लोग ने आज शुरुआती बात में किया कि जैसे हेल्थ की जो डेफिनेशन की बात की कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तीनों रूप से आदमी को स्वस्थ रहना चाहिए, और कल जो हमने बातों में ये बात समझी कि देश में करीब 15 से 20 करोड़ लोग इस समस्या के मुहाने पे खड़े हैं, मतलब और हमें जनसंख्या इतनी बड़ी है, इसीलिए फिगर हमेशा बहुत बड़े हैं, हम इतने स्ट्रेस में इस समय रह रहे हैं कि हमारा जो तनाव है वो हमारा ब्लड प्रेशर को बढ़ा के रखता है। बहुत एकदम अगर साधारण रूप से समझिए कि अगर आप किसी चीज पे गुस्सा करते हैं तो आपका चेहरा लाल हो जाता है, आपकी आवाज तेज हो जाती है, आपका गला सूखने लगता है, आप पूरे शरीर में आपके कंपन होने लगता है, तो इसका सीधा साधा ये मतलब है कि आपका ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ने लगता है। ये एक फिजियोलॉजिकल चीज है कि मतलब आप किसी पे गुस्सा हुए तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया। अगर आपकी प्रवृत्ति यही है कि आप बार बार हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा होने लगेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर हमेशा बढ़ा हुआ ही मिलेगा। तो सबसे जो बड़ी चीज ये है कि आप मानसिक रूप से बहुत चिंता कर रहे हैं, बहुत परेशान रह रहे हैं, आप छोटी छोटी बातों को लेकर बार बार परेशान हो जा रहे हैं। आपके ऑफिस में अगर कुछ हो रहा है, आपके परिवार में कुछ हो रहा है, आपके व्यापार में कुछ हो रहा है, आप उसके लिए बार बार चिंता करेंगे तो उससे आपका मानसिक तनाव बढ़ेगा, और अगर आपका मानसिक तनाव बढ़ेगा तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। दूसरी चीज जो बहुत कॉमनली मिल रही है वो है लैक ऑफ स्लीप, मतलब आदमी कम सो रहा, और उसका सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो हमारा मोबाइल फोन है। हम लोग ने पिछले एपिसोड में बात किया है, कृपा करके अपने मोबाइल फोन को अपने बिस्तर से दूर रखिए। अगर वो आपके हाथ में रहेगा तो आपको वो सोने नहीं देगा, और अगर आपको वो सोने नहीं देगा तो आप फिर अगले दिन सवेरे ठीक से काम नहीं कर पाएंगे। जी भैया, आप लोग ने ये भी देखा है कि जो ब्रह्म कुमारी का लिटरेचर है वो बहुत पॉजिटिव लिटरेचर माना जाता है, वो बड़ा अच्छा लिटरेचर माना जाता है, और ये भी कहा जाता है कि आप अगर उसको अध्ययन करेंगे तो आपके जीवन में पॉजिटिविटी आएगी, आपके जीवन में सकारात्मकता आएगी। तो हम क्यों नहीं उस मोबाइल को छोड़कर कुछ किताब पढ़ लें, हम क्यों नहीं उस मोबाइल को छोड़कर कुछ अच्छी चीज का अध्ययन कर पाए। ये तो हम और आप दोनों जानते हैं कि अगर बच्चे को सुलाना तो कोर्स की किताब दे दीजिए वो तुरंत सो जाएगा। तो हम अगर अच्छे विचार पढ़कर अगर हम सोएंगे तो हमारी नींद ठीक रहेगी, हमको मानसिक रूप से आराम मिलेगा, शांति मिलेगी, और हम अपने जो दिमाग है और हमारा जो शरीर है उस दोनों का तनाव कम कर पाएंगे। तो मैं सभी श्रोताओं को ये कहना चाहूंगा कि प्लीज जरा ठीक से सोइए, पूरा 6 से 7 घंटा सोइए। मोबाइल के बाद जो दूसरा कारण ये देखा जा रहा है जो नींद लोगों की कम होती है वो है ट्रैवल टू वर्क, मतलब आप अपने घर से अपने काम करने की जगह पे कितना दूर जाते हैं। मैं बॉम्बे में प्रैक्टिस करता हूँ, मैं ये देखता हूँ लोग वहां पे 1.5 घंटा 2 घंटा एक तरफ, मतलब दिन में 24 में से नॉर्मल है 2.5 से 3 घंटा वो अपना सिर्फ अपने काम की जगह पे जाने में और काम की जगह से अपने घर जाने में समय बिता दे रहे हैं। तो सोचिए 24 में से 3 घंटा तो लोगों का अपने सफर में ही बीत गया। तो आपके पास जो नींद का समय, जो 8 घंटे की नींद आपको चाहिए वो कैसे मिली। तो ये चाहूंगा कि थोड़ा सा अगर हो सके तो अपना ट्रैवल टाइम कम करने की कोशिश करिए, और सोते समय प्लीज मोबाइल को जो प्रयोग है उसको कम करिए तो आपकी नींद ठीक हो जाएगी।
3: डॉक्टर साहब, जो आप अभी बात कह रहे हैं वो पता चलता है कि वो कितनी प्रासंगिक है। एक तो हम आज अपने ही ख्याल रखने के बारे में ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम या तो अपने काम से रिलेटेड चीजें जो है उसको ही ज्यादा प्रामुख्यता देखते हैं, और ये भूल जाते हैं कि अगर हम सेल्फ केयर नहीं करते, अपने ख्याल रखने के बारे में हम ध्यान नहीं देते तो हमारे अपने स्वास्थ्य को हम दरकिनार करते हुए इसका खामियाजा भी हमको भुगतना पड़ता है और इसके फाइनेंशियल कॉस्ट भी हैं, ये बात समझ में आती है। और जैसे आपने कहा कि एक सकारात्मक लिटरेचर जो है, ऐसी पॉजिटिव चीजें जो ब्रह्म कुमारी इस परिवार में लोगों को मार्गदर्शन के रूप में मिलती है वो उन्हें सशक्त बनाने के लिए है कि वो अपने जीवन में कुछ ऐसे सकारात्मक परिवर्तन ला सके। बहुत बार लोग ये कहते हैं हम करना तो चाहते हैं मगर होता नहीं है, मगर उसका उदाहरण यहाँ ब्रह्म कुमारी इस परिवार में हम देखते हैं कि लाखों लोग आज यहाँ सिखाए जाने वाले इन सरल विधियों को सीख कर अपने जीवन को सशक्त जीवन बनाते हैं, जीवन में छोटी छोटी तब्दीलियां करते हैं, पूरी आदतों से बच जाते हैं, अपने क्लॉक को, बॉडी क्लॉक को रीसेट करने के लिए सोने और जागने के समय को निर्धारित करते हैं। वो जैसे अक्सर राजयोग ये शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें यही बताया जाता है कि आप स्वयं के राजा बनते हैं, आप अपने इंद्रियों के गुलाम नहीं रहते, आप अपने काबू में स्वयं को, अपने मन को, आप जो करना चाहते हैं वो सशक्त होकर कर सकते हैं, बात पता चलती है। अब स्वास्थ्य की दृष्टि से डॉक्टर साहब मैं ये चीज जानना चाहूंगा कि बहुत बार हम बीपी के बारे में सुनते हैं, तो पहले तो ये चीज समझने की जरूरत भी है कि हम इसमें मन का क्या रोल है, हमारे शरीर का क्या रोल है और हमारे डाइट, खान पान इत्यादि का क्या रोल है बीपी की बीमारी को हम आमंत्रित करते हैं या इससे ग्रसित होते हैं।
4: भैया आपने अभी बड़ा अच्छा बताया, और जो अपनी बॉडी क्लॉक को सेट करने आते हैं, मैं जो भी सुन रहा है मैं चाहूंगा प्लीज एक बार माउंट आबू वाले सेंटर पे जरूर जाइए। जब वो सवेरे 4 बजे आपको उठाएंगे मेडिटेशन के लिए, और उठाएगा कोई नहीं, ये बात गलत है, आप अपने आप उठ जाएंगे, आप अपने आप, आपके अंदर से आवाज आएगी यार इतने दूर आए हैं चलो चल के देखें क्या होता है। और मैं सभी श्रोताओं को ये कहना चाहूंगा, जहां पहला दिन थोड़ा सा परेशान करेगा, दूसरे तीसरे दिन तो बाप रे आपको इतना आनंद आने लगेगा कि उसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि आप अपने जो मन है मानसिक रूप से शांत होते चले जाएंगे। आप खुद देखिए ब्लड प्रेशर के इलाज में जो चीज सबसे पहले कही जाती है कि प्लीज थोड़ा मेडिटेशन करिए। ये बड़ा ही ब्रॉड टर्म है मेडिटेशन, मगर आप किसी भी विधि से, किसी भी गुरु के सिखाए हुए तरीके से अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आपको मानसिक रूप से शांति मिलेगी। अगर आप मानसिक रूप से शांत रहेंगे तो आप बहुत कुछ पॉजिटिवली डेवलप कर सकते हैं अपने आप को, और आप बीपी से बच सकते हैं। अभी मैं एलोपैथी की पढ़ा हूं, तो अगर आप किताबों को पढ़िए और अगर आप क्लिनिक्स में भी जाइए डॉक्टर के यहाँ, तो पहले वो तुरंत बोलते थे कि अरे ये गोली खा लो और ठीक हो जाएगा। अब वो देखिए आपको अपने प्रिस्क्रिप्शन पे क्या लिखते हैं, एक्टिव लाइफस्टाइल, मतलब कुछ एक्सरसाइज करिए। सेकंड, यूज ऑफ योगा आसन एंड प्राणायाम, कि आप कुछ आसन करिए मतलब फिजिकल एक्टिविटी करिए, प्राणायाम करिए मतलब ब्रीदिंग पे अपने कंट्रोल करिए। यूज ऑफ मेडिटेशन, प्लीज यूज मेडिटेशन, मतलब आप मेडिटेशन करिए। और उसके बाद नीचे लास्ट में लिखा जाता है कि अवॉइड सॉल्ट इनटेक। पहले जैसे हमेशा बोला जाता था ब्लड प्रेशर है तो आप 4 चीजें अपने भोजन में से निकाल दीजिए, जो है चूरन, चटनी, अचार और पापड़, कि अगर आप ये चीज जिसमें भयंकर सॉल्ट है, और खासकर आबू राजस्थान में है तो वहां तो बड़ा अच्छा नमक का प्रयोग करते हैं, मतलब बहुत अच्छा नमक और बहुत अच्छा घी का प्रयोग किया जाता है और वो पचा भी लेते हैं उसको। तो अब डॉक्टर्स भी ये मानने लगे हैं कि आपको अपने जो लाइफस्टाइल है, जो आपकी जीवन शैली है, उसको ठीक करना चाहिए। और इसमें भी ये कहा जा रहा है कि अगर आप आलसी प्रवृत्ति के हैं, मतलब आप दिन भर कुर्सी पे बैठ रहे हैं, आप खा रहे हैं, आप ही मतलब कुर्सी पे बैठे ही बैठे काम कर रहे हैं, आप हिल डुल नहीं रहे हैं, आप कोई भी फिजिकल काम नहीं कर रहे हैं, तो आपकी समस्या बढ़ जाएगी। ब्लड प्रेशर ठीक करने का सबसे अच्छा तरीका है कि अपने को थोड़ा सा एक्टिव लाइफस्टाइल जीनी पड़ेगी। कहा जाता है प्ले एनी स्पोर्ट्स, कोई भी स्पोर्ट्स खेलिए। आप वो नहीं कर सकते तो बेसिक वॉकिंग करिए, आप टहलिए। और ये भी कहा जाता है प्लीज घर के बाहर जाके टहलिए। अपने घर में ट्रेडमिल ले आए उस पर टहल रहे हैं, ठीक है कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पर कोशिश करिए कि आप बाहर जाके भी अगर टहल पाए तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि आपका जो मन है वो वातावरण को देखेगा, आपको फ्रेश एयर मिलेगी, आप कुछ लोगों को देखेंगे, आप अगल बगल आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। तो आपको एक्टिव लाइफस्टाइल रहनी चाहिए। और ये हुआ मेंटल बात की, मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम का प्रयोग करिए, फिजिकल एक्टिविटी करिए, अपना आलस्य जीवन जो है उसको छोड़िए। और तीसरा जो कहा जाता है, मतलब माइंड ठीक हो गया मेडिटेशन से, बॉडी ठीक हो गई ठीक ठाक खाने से, एक्सरसाइज, बॉडी ठीक हो गया, और फिर बोला जाता है कि डाइट को कंट्रोल करिए, मतलब अपने भोजन को कंट्रोल करिए। और सबसे पहली बात जो बोली जाती है लो सॉल्ट डाइट, मतलब आप प्लीज ऐसा मतलब भोजन करें जिसमें नमक की मात्रा कम हो, और जो आज के परिवेश में मैं जो बोलना चाहूंगा कि प्लीज फ्रोजन एंड फ्राइड, मतलब जो भी भोजन फ्रीज किया गया हो और उसका प्रयोग हम फिर से तल के या गर्म करके या माइक्रोवेव करके या ओवन में डाल के उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो चीज आपके लिए बहुत ही हानिकारक है। क्योंकि आप एक बात समझिए, किसी चीज को भी प्रिजर्व करने के लिए भी नमक का प्रयोग किया जाता है। तो किसी भी चीज को जिसको तला बहुत ज्यादा गया है, जिसपे नमक बहुत ज्यादा डाला गया हो, इन सारी चीज को अपने भोजन से हटा दीजिए और अच्छा एक्सरसाइज करिए, अच्छा घूमिए टहलिए और थोड़ी देर मेडिटेशन करिए, ये सब आपको बहुत फायदा देगा।
3: बहुत ही सुंदर बात आप ये समझा रहे हैं कि एक और हम बीपी के बारे में बेहतर समझ तो हासिल कर ही रहे हैं, मगर साथ ही साथ हम इसके निदान के लिए या इससे बचाव के लिए भी हमें क्या करने की जरूरत है, ये भी चीज हमें समझ में आ रही है। दोस्तों, ये ना समझें कि बीपी उम्र के साथ आने वाली बीमारी है और इससे हम नहीं बच सकते, ऐसा नहीं है। अगर हम आज से ही अपने जीवन शैली में परिवर्तन लाते हैं, कुछ न कुछ पॉजिटिव बदलाव लाते हैं, सकारात्मक बदलाव लाते हैं, तो अपने स्वास्थ्य की ओर एक कदम बेहतर बढ़ा रहे हैं। बहुत ही ज्यादा तला हुआ या नमकीन चीजें खाना, और खासकर आज क्योंकि हम बहुत सारी चीजें घर में नहीं बनाते हैं और आसानी से ये चीजें बाहर से हम खरीद के खा लेते हैं, ये सारी चीजें हमारे लिए घातक हो सकती हैं, हमें बीमारियों के कगार पर लाकर खड़ा कर सकती हैं। इसलिए अपने आप के प्रति, अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें और कुछ सकारात्मक कदम उठाएं, जैसे कि आप थोड़ा योगा, थोड़ा मेडिटेशन, थोड़ा एक्सरसाइज और थोड़ा अपने भोजन के प्रति ध्यान देना शुरू करेंगे तो बहुत सारा परिवर्तन हो सकता है। आज समय को देखते हुए इस एपिसोड में यहाँ रुकते हैं दोस्तों, मगर डॉक्टर राहुल मोदी जी ने आज हमारे प्रश्नों का उत्तर दिया और हमें मार्गदर्शन दिया है। आप सभी श्रोता मित्रों की ओर से मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका।
4: नमस्कार, ओम शांति।
3: दोस्तों, आज के सहज स्वास्थ्य की इस कड़ी में हमने बीपी, जो एक ऐसी बीमारी है जिसे ब्लड प्रेशर के रूप में हम जानते हैं, उसके बढ़ते हुए कारणों के बारे में समझा। साथ में ये भी समझा कि हम क्या ऐसे छोटे कदम उठा सकते हैं जिससे हम अपने आप को स्वस्थ बनाए रख सकते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी इस जानकारी का इस्तेमाल करेंगे और अपने स्वास्थ्य को बेहतर करने की ओर एक कदम आगे बढ़ाएंगे। आज के सेहत स्वास्थ्य में ये रुकते हैं, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।

0: रेडियो मधुबन की ओर से आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं।
1: हेलो बच्चों, आप सभी का सपनों की सैर कार्यक्रम में मनी दीदी और परी करते हैं स्वागत।
2: हाँ बच्चों, और पता है ना, गणपति बाप्पा का समय हो गया है आने का।
1: हाँ,
3: आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
2: तो बच्चों, गणपति के त्योहार में कितनी मजा आती है ना, कितना सारा डेकोरेशन हम करते हैं।
1: हाँ, और घर में गणपति बप्पा को लेकर आते हैं तो ऐसा लगता है घर में एक नया मेहमान आ गया है।
2: बिल्कुल मनी दीदी, और बहुत सारी मिठाइयाँ भी तो खाने को मिलती है।
1: हाँ, और खासकर लड्डू,
2: मोदक।
1: हाँ तो बच्चों, आपको पता है ना गणेश जी के जन्म के पीछे कौन सी कथा आती है, कौन सी कहानी आती है?
2: हाँ बच्चों, सिर्फ मिठाई खा के थोड़ी पूरा होता है, उसका राज भी जानना चाहिए।
1: हाँ
2: बच्चों, पता है माता पार्वती ने अपने शरीर के उपटन से एक बालक की रचना की और उसमें प्राण डाल दिए।
1: हाँ, और फिर उसका नाम रखा गणेश और कहा तुम मेरे द्वार की रक्षा करना।
2: और बच्चों, जब भगवान शिव वहाँ आए तो गणेश जी ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया
1: और फिर दोनों के बीच में युद्ध भी होने लगा, क्योंकि गणेश जी ने अपना अहंकार दिखाया और शिव जी ने क्रोध में गणेश जी का सिर काट दिया, अर्थात उनके अहंकार रूपी शीश को काट दिया।
2: फिर माता पार्वती बहुत दुखी हुई, तब भगवान शिव ने गणेश जी को हाथी का सिर लगाकर उन्हें पुनः जीवन दिया।
1: हाँ, तो इससे हमें क्या सीख मिलती है कि हमें हमेशा माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए और कभी भी अपना अहंकार नहीं दिखाना चाहिए।
2: हाँ बच्चों, तो देखा गणपति बापा हमें कितना कुछ सिखाते हैं।
1: हाँ, तो ऐसे ही अभी हम रोज गणेश जी के बारे में नई नई बातें जानेंगे।
2: तो चलो बच्चों, अब सुनते हैं ये प्यारा सा गाना।
1: सुनते रहो, मुस्कुराते रहो,
2: रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

0: हाँ आवाज चली गई और गाने का मन कर रहा है बताओ।
1: अरे भैया के पैर के ऊपर आपने अपना पैर रख दिया है माधुरी जी।
2: अरे रे माफ करना भाई साहब, माफ करना मुझे, मैं है ना अब चलती हूँ अपने घर। चल माधुरी, नहीं तो तेरी ही न्यूज बन जाएगी।
3: बेचारे वीरेंद्र जी अपने पांव का पा ही बोल पाए। क्या लगता है आपको, इनकी पत्नी मतलब राजकुमारी जी क्या सही दवा देंगी? इनकी आवाज जाने पर और कितने कारनामे होंगे ये तो अब भगवान ही जाने, लेकिन हम इतना जानते हैं कि आपके लिए होंगे ठहाके ही ठहाके। रेडियो मधुबन 107.8 FM पर फिर मिलेंगे कार्यक्रम घर ऑन एयर के अगले एपिसोड में। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
4: घर ऑन एयर, पात्र परिचय, दादाजी भगवत सिंह राठौर, आरजे ज्ञानेश्वर, दादी जी अंबिका देवी राठौर, आरजे संध्या, चाचा किशन सिंह राठौर, आरजे श्रीनिधि, ताऊ जी गजेंद्र सिंह राठौर, आरजे रोहित, ताई जी चंद्रावती, आरजे प्रभा, बुआ रागनी राठौर, आरजे कृष्णा, बुआ शांति राठौर, आरजे मोना, वीरेंद्र राठौर, आरजे विशाल, राजकुमारी राठौर, आरजे आरुषि, बच्चे रूहानी, अमीक्षा, नैरेटर आरजे अमित। आशा करते हैं घर ऑन एयर का पहला एपिसोड आप सभी को पसंद आया होगा। इंतजार कीजिए अगले एपिसोड का, क्योंकि राठौर परिवार की कहानी तो अभी बस शुरू ही हुई है। रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी म्हारो गांव म्हारो अंचल इस कार्यक्रम के तहत हमें बहुत खुशी होता है जब गांव और अंचल में जाते हैं, अपना गाँव वासी से मिलते, अपनापन आता है। जिस गाँव और अंचल में हम रहते हैं पहले बड़ा और यहाँ तक पहुँचे, खासकर मंदिर कितना आवश्यकता है गाँव के लिए, आस्था विश्वास भक्ति को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। अब तो इस कार्यक्रम में हमारा साथ पूर्व सरपंच जी है मोरथला ग्राम पंचायत के, जब भी जाते हैं एक इशारा से हमको सहयोग देने के लिए आते हैं, जिसके चलते हमको बार बार आने के लिए इच्छा होता है। तो आज जब मोरथला ग्राम पंचायत में आए, महिला सामूहिक विकास के लिए महिला का सशक्तिकरण करने के लिए जो बात हो रही है, क्योंकि महिला जब तक तो जागरूक नहीं होंगे आगे नहीं बढ़ेंगे तो हम जो चाहते आदर्श गाँव हो नहीं पाएगा। नारी जितने शिक्षित होगी, बच्चे परिवार सभी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि महिलाएं घर में सबसे उठती है, लास्ट में सोती है, लास्ट में खाती है, सबको खिलाती है, सबके लिए बनाती है। बीमारी होता तो महिला को ही चिंता होता है। ये सब चीज़ करने के बावजूद भी पुरुष प्रधान में थोड़ा सा जो हो रहा है ऊपर नीचे वो नहीं होना चाहिए। इसका चलते और मंदिर मस्जिद जब गांव में रहता है, गुरुद्वारा रहता है, भावना को प्रकट करने के लिए, आस्था विश्व अपना मन का बात को रखने के लिए आते हैं। तो इस संदर्भ में हमारा साथ एक्स सरपंच लक्ष्मण जी है, तो उनको स्वागत करते हैं। सर, आपका वेलकम इस कार्यक्रम में, और खासकर आप अपना गांव में मोरथला में आए तो आप अचानक जब आए इशारा करें तो आप आ गए मंदिर के पास, और आप क्या कहना चाहेंगे हमारा सभी जो आस्था विश्वास और खासकर महिलाओं को क्या कहना चाहेंगे?
1: मैं महिलाओं को ये कहना चाहूँगा
0: जी सर
1: कि हम लोग, हमारा देश आज़ाद हुए कम से कम 73 साल हो चुके हैं, 73 ईयर्स, लेकिन ना हम एक आदिवासी क्षेत्र से आते हैं और बहुत गरीब परिवार के हैं, और ये गांव हमारा एक गरीब गांव था और आज़ादी के बाद भी इस गांव के अंदर बहुत से का विकास नहीं हो पाया था। क्यों नहीं विकास हो पाया? कि हमारे में जागरूकता कम थी, यहाँ के लोग कम पढ़े लिखे थे, औरतें कुछ समझती नहीं थी। लेकिन अभी वर्तमान में मैं देख रहा हूँ, जब से मैं सरपंच बना हूँ तो हमारे गांव के अंदर कुछ लोग जागरूक हो रहे हैं, विकास की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, खुद भी कोशिश कर रहे हैं कि हम हमारे गाँव को कुछ विकास करके कुछ अच्छी इसको कुछ दिखाएं हम।
0: जी जी,
1: तो हमारे गाँव के अंदर अभी इस हाल में देखो, पहले 5वीं क्लास थी, बड़ी मुश्किल से हमने 5वीं क्लास तक स्कूल खोली थी।

0: उसके बाद में आठवीं करी, आठवीं के बाद में आठवीं भी हमारे यहाँ पर दिल्ली के एमएलए थे, हमारे कास्ट के थे
1: जी जी,
0: उनका नाम था भीखा भाई भील। भीखा भाई भील कई समय यहाँ आए थे, उन्होंने उद्घाटन करा था कि वहाँ पर पहले स्कूल है। हमारे हमारे यहाँ पर केवल आब रोड के अंदर एक स्कूल की थी, एक स्कूल थी
1: जी।
0: और वो थी हायर सेकेंडरी स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल एक थी। यहाँ पर कई भी स्कूल नहीं थे, दूर दूर से 12-12, 20-20 किलोमीटर दूर से बच्चे वहीं पढ़ने जाते थे।
1: ओ,
0: भीखा भाई भील ने अनाउंस करा था कि सबसे पहले मिडिल स्कूल बनेगी तो मेरा ट्राइब जो एरिया है, भीलों का एरिया है, वहीं बनेगी। परंतु किसी कारणवश हम लोग पीछे रह गए और वो स्कूल हमारे यहाँ नहीं बन पाई। कई सालों तक हम कोशिश करते रहे, स्कूल वो नहीं बनी। उसके बाद में अपने गांव के देखा, लोगों ने बाहर से आके देखा कि यहाँ के बच्चे बेचारे गरीब हैं, और सरकार ने भी हमारी मदद करी, इस गांव को कुछ आगे बढ़ाओ। तो आज फिर वो मिडिल स्कूल, सब जगह स्कूल मिडिल स्कूल बन चुकी थी। उसके बाद रह गया केवल ओनली फॉर मोरसला, जब जाके मोरसला में मिडिल स्कूल बनी। इसके बाद में हायर सेकेंडरी बनी। हायर सेकेंडरी स्कूल के बनाने के लिए मेरे पास कहीं प्रस्ताव है, सब वहाँ रखो वहाँ रखो। मैंने कहा हाँ, मैं गरीब, हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। स्कूल की जो हमारे गांव की लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, वो यहाँ से आब रोड पढ़ने नहीं जा सकती है। अब यहाँ से या तो नाइन्थ करके या एट्थ करके वो स्कूल छोड़ देती है, और घर पे बेचारी घूमते रहते, मजदूरी करती है। लेकिन हमने पीछे पढ़ के यहाँ पर 12वीं तक के स्कूल हमारे गांव में
1: सीनियर सेकेंडरी
0: स्कूल, यहाँ पर
1: उच्च माध्यमिक विद्यालय।
0: तो आज इस मोरसला के अंदर उच्च माध्यमिक विद्यालय है, बच्चियां ज्यादा से ज्यादा बच्चियां यहाँ पढ़ रही है, और अच्छे परसेंटेज
1: जी जी,
0: अच्छे परसेंटेज दे रही है यहाँ के बच्चियां।
1: ओ,
0: उसके हिसाब से हम देख रहे हैं कि अभी हमारे ये, हम भले गरीब हैं लेकिन बच्चे हमारे विकास की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अगर ये आगे बढ़ेंगे तो हमारा गांव और ही कुछ और ढंग का दिखेगा।
1: सही बात, कितना सुंदर प्रस्तुत और भावना, कितना देखो हमारे बच्चे शिक्षा को लेकर आगे बढ़े, क्योंकि शिक्षा बिना जीवन अधूरा है, जैसे नीम बिना भवन अधूरा है, तो बच्चों का शिक्षा बिना जीवन अधूरा है। जैसे आज लक्ष्मण सर ने बताया, शिक्षा के लिए अपना गांव सबसे आगे बढ़े, और सभी बच्चे यहीं पर ही 12 तक कम से कम कर, बाहर कोई गांव में नहीं जाए, तो उनका जो प्रयास से आज यहां तक पहुंचा, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद पुनः मिलेंगे, सुनते रहिए कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल, खासकर शिक्षा को लेकर आज बात मन का बात बताएं। ब्रेक के बाद पुनः मिलेंगे, सुनते रहिए कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
1: नमस्ते, अल्प विराम के बाद पुनः मिल रहे हैं। खासकर हमारा साथ शिक्षा को लेकर अपना भावना को बच्चों का सर्वांगीण उन्नति के लिए शिक्षा स्वास्थ्य यातायात सबको आवश्यकता है और आदर्श गांव के लिए तो ये आवश्यकता ही है। शिक्षा बिना जीवन अधूरा है। तो इस कार्यक्रम में हमारे साथ लक्ष्मण सर उपस्थित है और खासकर मंदिर का प्रांगण में बैठकर मंदिर मस्जिद और अपना आस्था विश्वास, चाहे गणगौर त्यौहार हो चाहे अपना कुलदेवी का मंदिर जब गांव में रहता है तो गांववासियों को कितना आस्था विश्वास और भावना में आगे बढ़ाता है, उत्प्रेरित होता है और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। हर साल कुछ ना कुछ फंक्शन होता है। तो इस संदर्भ में आपका गांव में क्या क्या मंदिर है और हम जहां पर आज बैठे हैं यहां पे
2: कोई सहयोग भी मिलेगा या कुछ पेड़ लगाए जाएं तो हम सब गांव वाले इकट्ठे होकर और ज्यादा करके यहां पर एक हमारे यादव क्रेशर वाले हैं, उनका पूरा सहयोग रहा तो उन्होंने हमारे साथ मिलकर पेड़ लगाए और आज पेड़ों की कंडीशन कैसी है जो हरी भरी दिख रही है। आज बैठने की भी बहुत बढ़िया व्यवस्था है। पानी की व्यवस्था नहीं थी, हमने वहाँ अलग से ट्यूबवेल करवा के और मोटर लगाकर उसमें पानी की भी पीने के लिए पानी की व्यवस्था हो गई, क्योंकि यहाँ पर हर साल मेला भरता रहता है, लोग पानी के लिए परेशान होते हैं। तो अलग से सेफ मोटर भी लगवा दी, अब पानी की सुविधा भी है और यहाँ पर खूब आओ खूब जाओ
1: सबके लिए, जनसाधारण के लिए,
2: जनसाधारण के लिए, ये नहीं कि हमारे लिए। हाँ, ये सार्वजनिक कहलाता है, मंदिर एक सार्वजनिक होता है।
1: कोई भी मैंने गांव का समूह का काम होता है बा कोई अच्छा काम होता है तो यहाँ पर आकर अपना कर सकते हैं।
2: जो भी काम होता है इकट्ठे होके यहाँ पर मिलो बैठो निर्णय लो और सबके लिए मंदिर सबके लिए होता है। कोई भी आओ गांव का मंदिर का बैठो, वो कोई गांव में मेला भी भरता है या समाज का भी काम है तो मंदिर में आके सब बैठते हैं और यहाँ पर सब निर्णय लिए भी जाते हैं।
1: सामूहिक का जो भावना है इस मंदिर में आते तो ये अपना पराय कुछ नहीं, भाई भगवान का काम है और अपना एक मानविकता नाते जितना हम हो सके दे और जनकल्याण के लिए और खासकर सरपंच साहब हो चाहे जो एग्जीक्यूटिव बॉडी बनता है पंचायत ऑफिस में जो उनका पास पावर आता है ग्राम का विकास करने के लिए। तो आपको जनता है,
2: मैंने जब ये मंदिर बनवाया था जब मंदिर बन गया बना था जब मैंने उद्घाटन कर रहा था तो ये मेरे टाइम में हुआ था उद्घाटन। मंदिर बनना शुरू हो गया था लेकिन उद्घाटन मेरे सरपंच बनने के बाद ही हुआ था।
1: जी जी जी,
2: हमारे यहाँ पर पूजा हुई थी, पंडित आए थे, तीन दिन का इनका कार्यक्रम चला था। उसमें मुझे बाबा ने हुक्म दिया था, इतना हुक्म दिया था कि बाबा हम तो आपके शरणों में बैठे हैं और मेरे गांव का विकास, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे गांव का विकास चाहिए। और मुझे बाबा ने इतना हुक्म दिया था कि 70% तेरे गांव का विकास होएगा। और आज मैं देख रहा हूँ कि इनकी मेहरबानी से ही मेरे गाँव के अंदर 70% से ज़्यादा विकास हो गया है, अब 30% और रह गया है। मैं उसके लिए हम पूरी पूरी अब कोशिश और कर रहे हैं और 100% इस गांव का विकास करके इस गांव को मुझे चमन और बनाना है, ये मेरी इच्छा है, पूर्ण भावना है कि मेरा गांव का नाम रोशन होवे, आगे नाम आवे कि भाई मोरसला भी कोई गांव है, पहले कोई मोरसला को जानते नहीं था, आज मोरसला कम से कम जगह उजारण तो हो रहा है कि भाई मोरसला भी कोई गाँव है और आज अच्छा विकास कर रहा है।
1: क्योंकि मोरथला गांव का विकास को देखकर ही लोग आते हैं, हाँ यहाँ पर हम कुछ करेंगे तो और विकास होगा, क्योंकि जो विकासशील में तत्पर रहते हैं उनको देने के लिए कोई ना कोई आते रहते। जैसे आज रेडियो का माध्यम से सामुदायिक का आवाज़ समुदाय तक पहुँचा है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं सिर्फ अपना गाँववासी ही जानते हैं, वह अपना परिवार वाले ही जानते हैं। जब इस तरह साधन मिलता है तो कहाँ से कहाँ तक चला जाता है, और क्योंकि माध्यम मीडिया एक माध्यम है जिस माध्यम का हिसाब से आपका गांव में क्या हो रहा है सब तक पता पड़ रहा है, क्योंकि मोर नाच रहा है जंगल में कोई थोड़े देखा है, जब हम देखते हैं जाकर हम विश्वास आता है। तो आप क्या काम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं और क्या करने किसके किसका सहयोग से हम और आगे बढ़ पाएंगे, जब हम बताते हैं तो देने वाले खुद कराने वाला तो ऊपर वाला है, वो कराता है किस तरह। तो
2: हमारा फर्ज मेहनत करना, कोशिश करो, मतलब किसी काम के पीछे लग जाओ तो कुछ करके बताओ।
1: जी जी जी,
2: हम तो इसी उद्देश्य से आगे बढ़ते रहते हैं,
1: क्योंकि मंदिर और मस्जिद चाहे हमारे आस्था विश्वास को आगे बढ़ाने के लिए ये एक अच्छा सामुदायिक प्लेस है जनसाधारण के लिए। बहुत खुशी लगता है जब मेला भरता है चाहे कोई भी पब्लिक का काम होता है तो यहाँ पर आकर अपना कुछ भी नहीं होगा, घर में कुछ टेंशन होता है तो यहाँ पर मंदिर में शांत से बैठ कर अपना दिल का बात को ऊपर वाला को दे दो।
2: बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ी देर बैठते हैं मंदिर में, बैठते हैं तो शांति आती है,
1: क्योंकि शांति का बना हुआ तो इसलिए मंदिर। जैसे हम स्कूल जाते तो हमें पढ़ाई मिलता है, तो मंदिर में आते हैं तो हमको शांति कुछ समय के लिए मिलती है,
2: कुछ समय के लिए शांति मिलती है।
1: तो बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और एक ब्रेक लेते हैं। अभी हम सुन रहे थे खासकर आस्था विश्वास और भावना आध्यात्मिकता भक्ति को लेकर हम मंदिर में जब बैठे तो उस बात हो रही थी और होना भी चाहिए प्रत्येक गांव में और हो ही है, क्योंकि हम सुबह से शाम तक भगवान का याद में मेला लगाते हैं, कोई देवी देवता को पूजा करते हैं। और इसका पहले ब्रेक का पहले भी सुने थे जो शिक्षा हमारा जीवन में कितना आवश्यक और गाँव मोरथला गाँव में शिक्षा को लेकर कितना तत्पर आज सीनियर सेकेंडरी वो भी बताए। अभी ब्रेक के बाद सुनेंगे स्वास्थ्य और सड़क के बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे, लेकिन अल्प विराम के बाद।

नमस्कार। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, हम जब मंदिर में आए थे, बच्चों का भी यहाँ पर भी मंदिर है, बच्चों का मंदिर, क्योंकि बच्चे आज स्कूल से थोड़ा डिस्टेंस को मेंटेन करके आए हैं खुला जगह में, तो बहुत अच्छा लगा मंदिर में जब बच्चे पढ़ रहे थे, क्योंकि सामने मैडम भी स्कूल से थोड़ा सा हट के खुला जगह में लेकर आए। तो आज इस कार्यक्रम में छोटे छोटे गुड़िया हमारे साथ हैं, मासूम मासूम बच्चे, तोतले तोतले आवाज़ से अपना बात को रेडियो में सुनाएंगे। तो आपका नाम सुनाओ।

0: नाम?
1: हिमांशी।
0: कौन सा क्लास?
1: तीसरी।
0: आपका?
1: डिंपल तीसरी।
0: ओके।
1: डिंपल तीसरी।
0: ओ डबल डिंपल, अच्छा।
1: कल्पना
0: कल्पना, अच्छा कल्पना डिंपल और सुभांश ना हिमां क्या नाम है?
1: हिमांशी।
0: ये तीनों के लिए, चारों के लिए ताली बजा जोर से। ताली बजाने में तो होशियार है बच्चे। ओके, ताली बजा कर हमको तो खुशी करा दिया। और बच्चों को भी तो सुनाएंगे आज, कौन सा कविता गीत सुनाएंगे सभी मिलकर? कहा स्कूल का नाम कौन बताएगा? आपका स्कूल का नाम?
1: मोरतला स्कूल।
0: मोरतला स्कूल, चलो शुरू करिए।

0: वाह, चलो चालू करो।
1: वाह, बहुत बहुत धन्यवाद, ताली बजाओ। मोरथला के बच्चे और मोर का बारे में गीत सुनाकर हम तो खुशी करा दिए, और सार भी मोरथला का बारे में बहुत कुछ जानकारियाँ दिए लक्ष्मण सार ने।

0: तो बच्चों का गीत सुनने के बाद और एक बच्चा वो भी बोलेगा, हम भी कुछ बोलेंगे तो हमारा इस कार्यक्रम में। क्या नाम है तुम्हारा? नाम
1: वासुदेव।
0: बाप रे, नाम ही कितना सुंदर, वासुदेव ना। हाँ, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। भाई वासुदेव के लिए ताली बजाओ। गुड। देखा वासुदेव, तुम्हारा नाम बहुत सुंदर है। मोरथला में वासुदेव जो कृष्ण रहते हैं ना, पहले कृष्ण का सिर में मोर का पंछी रहता था, है ना? मोर को देखा है सभी? हाँ। तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। तो वासुदेव हमारा साथ छोटा सा है अभी, वासुदेव है, बड़े होकर बड़ा वासुदेव बनेगा। और बड़े होकर क्या बनेगा? क्या बनेगा बड़े होकर? डॉक्टर, इंजीनियर और पायलट, ट्रेन चलाने वाला। बोल, पुलिस। बाप रे भाई, पुलिस बनेगा भाई, पुलिस। देखो सभी चोर लोग थोड़ा सतर्क हो जाओ, क्योंकि पुलिस आ गया आपका गांव में मोरतला में। गुड। पुलिस, पुलिस को कभी देखा है वासुदेव? देखा है। कहाँ पर?
1: बाजार में।
0: अरे ये तो होशियार है, कौन बोलता होशियार नहीं है, तो पूरा होशियार, हमसे भी आगे है। तो बड़े होकर तो पुलिस बनेगा, चोर को तो पकड़ेगा, आपका गांव में भ्रष्टाचार नहीं रहेगा, और आपको देखकर सब लोग डरेंगे ना। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ मैडम जी कैसे बच्चों को शिक्षा देते, 2 मिनट आप हेलो करिए, तो आपका शुभ नाम बताइए, क्योंकि बच्चों को पढ़ाने के लिए मैडम हमेशा तत्पर रहते, 2 परिवार को संभालते, स्कूल परिवार को, विद्यालय परिवार और घर का परिवार। तो आप बच्चों को इस तरफ जो प्रेरणा देते हैं, अभी हम देख रहे थे बच्चों को कितना सुंदर रूप में बैठाकर और कोरोना काल में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर मंदिर का प्रांगण में बच्चों को पढ़ा रहे, जो दिशा निर्देश आपको मिला है उसी हिसाब से चल रहे। तो आपका शुभ नाम?
1: कुसुमलता।
0: तो कहाँ से आप?
1: आबू रोड से।
0: आबू रोड से। तो खासकर बच्चों को पढ़ाने के लिए जो उमंग आता है, किस तरह आप बच्चों को पढ़ाते हैं? खेल खेल
1: सर, ये बच्चों से ही, बच्चों के कारण ही हमको जो है आय वगैरह होती है, तो हम क्यों ना इनके प्रति ध्यान देवे। हालांकि अभी कोरोना काल चल रहा है, इनको पढ़ाना नहीं है, लेकिन ऐसा भी है कि भाई स्कूल से दूर जाके इनको मास्क लगाते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और जो COVID-19 की जो गाइडलाइन है उनका पालन करते हुए इनको हम पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं सर। क्योंकि जब कुछ भी नहीं ले पा रहे घर पे सर, एक एक बच्चे के घर पे जाना तो इम्पॉसिबल है सर, और वहाँ पर इतने बच्चे गैदरिंग भी नहीं हो पाते हैं, तो यहाँ कम से कम हम दूर दूर बिठा कर बच्चों को पढ़ाने का।
0: और खासकर बच्चों को, जैसे बच्चा भी कितना तोतले तोतले आवाज से अपना बात को रखते, इस तरह रेडियो का माध्यम से जब आते हैं बच्चे आगे के लिए, ये लोग का जो मंच मिलता है रेडियो मधुमन, एक मंच दिया, इस मंच का माध्यम से बच्चे जो आज धीरे आए हैं कल और आगे आएंगे, तो इससे बच्चों को क्या प्रेरणा मिलेगा, माँ बाप क्या उनका जब सुनेंगे गीत को रेडियो का माध्यम से, तो उनको कितना खुशी होगा?
1: जी, वो प्राउड भी महसूस करेंगे सर कि हमारा बच्चा आज इस स्थिति में कि वो बोल पा रहा है
0: रेडियो में
1: बजा।
0: तो रेडियो आज आपका पास आया तो बच्चों को एक मंच मिला, ठीक है ना, अचानक
1: उनका कॉन्फिडेंस भी जागेगा सर आगे, और ये थोड़ा और एक्टिव होकर बोलेंगे।
0: जैसे तीनों कुछ को बोलना नहीं पड़ा, खुद बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए, है ना बढ़ चढ़ हिस्सा लिए ना, बहुत अच्छा। तो बड़े होकर क्या बनेगी तुम? डॉक्टर, इंजीनियर, मैडम, क्या बनेगी बोलो? क्या बनेगी तुम?
2: मैडम।
0: ओके,
2: मैडम।
0: तुम भी मैडम? सब मैडम भाई, जिसको भी मैडम को लेना हो आपका गांव के लिए, तो हमारे यहाँ पर मोरथला में मैडम ही मैडम है ना। बहुत बहुत धन्यवाद, लेते हैं एक ब्रेक, ब्रेक के बाद मिलेंगे लक्ष्मण सर से, लेकिन सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन, ठीक है बच्चे, बाय बाय।

0: शिव शंकर भोलेनाथ
1: की जय हो।
0: खेम सिद्ध महाराज
1: की जय हो।
0: केसरिये कमार।
2: अगर कहीं भी आग लगने की देनी हो जानकारी तो तुरंत कॉल कीजिए फायर ब्रिगेड के इमरजेंसी नंबर पर। डायल कीजिए 101 अपने फोन से। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: चलिए ब्रेक के बाद पुनः मिलने हैं। तो खासकर आपका गांव में हम जब आते तो देखें तो आपका अभी जहां बैठे यहां पर भी सड़क का जो व्यवस्था है जाता है तो वो जब मिट्टी नहीं दिखाई दे रहा, तो गांव को सड़क से जोड़ने के लिए बाबू रोड से आपका गांव को आने में क्या क्या रास्ता, कहां से आ सकते हैं आपका गांव?
1: हमारे गांव में आने के लिए अगर ट्रेन से आते हैं तो यहाँ पर बाबू रोड में एक रेलवे स्टेशन है, बड़ा
0: वो नज़दीक है।
1: बहुत नज़दीक है, यहाँ से कम 4 किलोमीटर स्टेशन से 4 किलोमीटर मोटला है, और मोटला भी एक स्टेशन कहलाता है, मोटला भी एक स्टेशन है।
0: जी जी,
1: मोटला स्टेशन, यहाँ पर पैसेंजर गाड़ियाँ रुकती है, मेल एक्सप्रेस ट्रेन यहाँ पर नहीं रुकते हैं, पैसेंजर ट्रेन आती है वो यहाँ पर रुकती है। अब जैसे आबू रोड पहुँच जाते हैं तो आबू रोड से आने के लिए हमारे को टेम्पो भी मिलते हैं, तो टेम्पो के द्वारा हम मोटला पहुँचते हैं। आने के लिए हमारे सीधे माउंट आबू रोड स्टेशन से माउंट आबू रोड पर जाते हैं। माउंट आबू जब रोड जाते हैं तो बीच में एक रजवाड़ी पुलिया है, अंग्रेजों के टाइम का बना हुआ बनास नदी के ऊपर रजवाड़ी पुल है। रजवाड़ी पुल से पहले कम से कम, ज़्यादा तो नहीं लेकिन 200-250 मीटर दूरी पर एक राइट हैंड साइड में एक रोड आता है, उस रोड पर सीधे आएंगे तो एक आता है गाँव तरतोली, तरतोली आएंगे, तरतोली से फिर आगे बढ़ते हम तो एक पूर्व की तरफ रेलवे लाइन चल रही है, रेलवे लाइन के नीचे अंडर ब्रिज है, उस अंडर ब्रिज के नीचे नहीं जाना है, आपको सीधे चलना है और आगे बढ़ोगे तो स्टेशन आएगा रेलवे स्टेशन मोरसला का, वहां से सीधे निकलोगे तो हम सीधे मोरसला गांव के अंदर प्रवेश कर देते हैं।
0: वाह वाह वाह। तो जो भी आना चाहेंगे, देखना होगा तो ग्राम पंचायत को सर का जो भावना सही है कि गलत है, आकर एक बार देखो, मिलो और अपना गांव को आदर्श बनाने के लिए कोई भी कसूर नहीं छोड़ो। और यातायात का जब नहीं रहेगा गांव को, कोई आएगा कैसे? यातायात का रहना जरूरी है, और खासकर मुख्य स्थान से जैसे आबू रोड चाहे पिंडवाड़ा हो, तो कम्युनिकेशन चाहे ट्रेन का हो, चाहे बस का हो, चाहे फ्लाइट का भी
1: फ्लाइट के लिए भी है,
0: जैसे फ्लाइट मानपुर,
1: जैसे फ्लाइट के फ्लाइट से आते हैं तो मानपुर है हमारा एरोड्रम है, वहां पर फ्लाइट उतरते हैं तो वहां उतरो, वहां से सीधे वापस आपको माउंट आबू की तरफ नहीं जाना है,
0: उदयपुर से यहाँ पर आ सकते हैं,
1: उदयपुर से भी आ सकते हैं आप, जयपुर अहमदाबाद मतलब इंडिया से कहीं से भी यहाँ पर आ सकते हैं, लेकिन रजवाड़ी ब्रिज,
0: जी जी जी,
1: रजवाड़ी ब्रिज को याद रखना है, जब एरोड्रम से आते हैं तो रजवाड़ी ब्रिज को पार करके पूर्व की तरफ आना पड़ता है, और पूर्व से फिर उत्तर दिशा की तरफ,
0: जी जी, मोड़ना है
1: उत्तर की दिशा की तरफ मोड़ेंगे तो सीधा रोड आएगा, तरतोली आएगा, तरतोली से आपको राइट हैंड साइड में नहीं मुड़ना है, रेलवे लाइन से नीचे होकर नहीं गुजरना, सीधे आपको आगे बढ़ना,
0: तो खड़ा चला जाएंगे,
1: उधर निकलोगे तो खड़ा आ जाएगा
0: हाईवे को,
1: फिर हाईवे पहुंच जाओगे वापस, तो मोड़ना आपको मिलेगा नहीं।
0: जी जी, साइड में
1: यहाँ पर क्या है, कई बार लोग भटक जाते हैं, हमारे गाँव में थला नाम के 3 गाँव पड़ते हैं आसपास में,
0: ओके,
1: एक मोरथला, आमथला और मूंगथला। अब इसमें क्या है, कहीं भ्रमित हो जाते हैं लोग कि वो मोरथला की जगह आमथला निकल जाता है या मूंगथला निकल जाता है, तो मोरथला को तो भूल जाता है, कहीं लोग आमथला चले जाते हैं, कहीं लोग मूंगथला चले जाते हैं, वो भ्रमित।

0: हो जाते, तो ये मोरथला है कि बिल्कुल आप रोड के नजदीक, पहला स्टेशन मोरथला, मूंगथला तो दूर है, आमथला भी दूर है, लेकिन मोरथला नजदीक है, मोरथला रेलवे स्टेशन है।
1: इसलिए
0: जब जाके आप मालूम पड़ेगा हमको तो स्टेशन में मोरथला स्टेशन बताओ ना, तो कोई भी बता देगा तो सीधा मेरे गांव में पहुंच जाएगा।
1: और कोई भूलेगा नहीं, क्यों आप तो बता दिए पहले से ही, क्योंकि आमथला, मोरथला और मूंगथला, और मोरथला ही सिर्फ
0: रेलवे स्टेशन,
1: मोरथला ही रेलवे स्टेशन
0: से जुड़ा हुआ है, रेलवे स्टेशन से
1: जुड़ा हुआ है, नजदीक है। तो बहुत अच्छा बात बताया, ये हो गया परिवहन के बारे में बताया, बहुत सुंदर प्रस्तुति। और यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खासकर स्वास्थ्य को लेकर आपका गांव में क्या सुविधा है वो भी जानकारी लेंगे, क्योंकि स्वास्थ्य बिना हमारा मन परमात्मा तक हो चाहे रोड में भी चल नहीं सकते, क्यों हम जब बीमारी पड़ेंगे तो रोड क्या काम आएगा, सिक्का क्या काम आएगा, वो तो काम करेगा नहीं। इसलिए स्वास्थ्य तन भी बहुत आवश्यकता है, तन मन और धन, और खासकर तन के लिए सुविधा के लिए शारीरिक बीमारी जब होता है, कोई भी बीमारी होता है, तो आपका गांव अचानक कुछ होता है तो क्या क्या सुविधा है?
0: हमारे यहाँ पर गांव के अंदर सब मजदूर आदमी कहलाते हैं, और मजदूर आदमी जब काम करते हैं तो उनका पसीना निकलता है।
1: जी जी,
0: जब पसीना निकलेगा तो आधी बीमारी तो पसीने के साथ निकल जाएगी। बीमारी कब होती है? शरीर में से पसीना बाहर नहीं निकलेगा तो बीमारी पैदा होती है। तो इस गाँव के अंदर मैंने देखा है कि इतने मेहनत लोग करते हैं, पत्थर तोड़ रहे हैं, मिट्टी खोद रहे हैं, उससे पसीना निकल जाता है, तो बीमारी का इस गांव के अंदर बीमारी को तो हमने ऐसे नियंत्रण कर रखा है मेहनत करके।
1: बहुत अच्छा बात बात है, मुझे हंसी आ रहा है, क्योंकि हॉस्पिटल का जरूरत नहीं, खुद ही हॉस्पिटल है।
0: उसके बाद कई बार होता है भाई, कोई बीमार होता है तो नुस्खे हमारे पुराने नुस्खे आते हैं, जैसे भाई ब्लैक टी बना दो, है कि नहीं, उसमें ये काली लौंग मिर्च डाल दो, वो पी के सो जाते हैं, उनका बुखार बुखार भी कम हो जाता है
1: जी।
0: तो कुछ लोग तो हम घरेलू दवाई करते हैं, उसके बाद भी सरकार ने हमारे यहाँ पूरी व्यवस्था कर रखी है। नंबर एक उप स्वास्थ्य केंद्र बढ़िया है यहाँ पर,
1: क्या बात है,
0: उप स्वास्थ्य केंद्र है यहाँ पर, नर्स ऑलरेडी लगी हुई रहती है, वो यहाँ पर ड्यूटी दे रही है। उसके बाद
1: आयुर्वेदिक ना
0: होम्योपैथिक,
1: होम्योपैथिक डॉक्टर
0: यहाँ पर, होम्योपैथिक भी है, मतलब अच्छी दवाई मिल रही है,
1: होम्योपैथिक तो अच्छा है,
0: तो होम्योपैथिक से बहुत अच्छा इलाज है। और यहाँ पर जो गजेटेड ऑफिसर कह जाते हैं डॉक्टर, वो होम्योपैथिक में ऑलरेडी बैठे हुए हैं, और जब भी जाते हैं उनको अच्छे से अच्छी दवाई मिल रही है, और उनकी दवाई से मैंने भी देखा प्रयोग करके कि उनकी दवाई से और लाभ भी होता है, और लोगों के कई, हमारे गांव में बहुत बीमारी बहुत कम है, इतना तो हमारे गाँव बीमारियों से तो वंचित है ज्यादा करके।
1: बहुत अच्छा बात बताए, और स्वास्थ्य बिना हम अपना जीवन को सुंदर सरस मजबूत नहीं कर पाएंगे। स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, स्वास्थ्य मीन्स संपदा, तन गया मीन्स कुछ गया, धन गया तो गया नहीं कुछ, लेकिन चरित्र गया तो सब चीज चला जाता है। जब चरित्रवान रहेंगे सभी, हमारा गांववासी, अंचलवासी, सरपंच से लेकर सभी जो उनका टीम का साथ, गांववासियों जब स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, और अपना जीवन में चरित्रता भर देंगे, जैसे शांति, प्रेम, आनंद, खुशी और भाईचारा, क्योंकि भाईचारा का बिना हम एक दूसरे को नहीं दे पाएंगे, इसलिए परिचय होना बहुत जरूरी है। परिचय का बिना हमारा आदान प्रदान नहीं हो पाता है, तो परिचय जैसे अभी सार का साथ परिचय हुआ, तो परिचय जो हुआ था अभी जब भी चाहे तो साधन, हाँ ये तो अपना आदमी और देना जरूरी है, पूरा परिचय बिना एक आइडेंटिफिकेशन हो जाता है, एक मालूम पड़ता है।
2: लव एज ट्रस्ट इज फास्ट बिकमिंग अ रेयर एंड a precious gem.
3: How sweet.
2: How sweet and how sad.
3: No, it's not sad. It is.
2: It's become such a rare gem.
3: Yes, but then once we realize that what is the truth? See, how many of us keep saying to each other that I love you, I love my children, I love my friends, I love my siblings, I love my parents. We claim to love so many people. We can even say I love people in my neighborhood, I love so many things, and yet at the same time it's so easy to separate love from trust. And then very often we also say I love them but I just can't trust them anymore because of this and this what they did. And what you just shared with us is so beautiful, that love is trust, and if we don't trust, which means we don't love. Because when we say, I don't trust them anymore, I've just withdrawn that love and respect. And because we were trusting not the person, but trusting what they would do or how they would behave. And what you have shared with us, if we just keep this much with us, that love always, even if the promise is

0: रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। कार्यक्रम है मधुबन अनप्लग्ड। मधुबन अनप्लग्ड यानी कि संगीत का वो सफर, यानी कि शेर व शायरी, क्रिएटिविटी और पंक्तियों का सफर। जी हाँ, जब एक गाना बनता है तो शब्द मोतियों की तरह पिरोए जाते हैं, बातें वही होती हैं, लेकिन कहने का अंदाज इतना अलग होता है कि वो दिल में घर कर जाते हैं। और ऐसी ही कुछ बातें, ऐसी ही कुछ पंक्तियां, ऐसी ही कुछ लाइंस आज आपको मिलेंगी कार्यक्रम मधुबन अनप्लग्ड में। और इसको और खूबसूरत बनाने के लिए आज हमारे समक्ष है एक ऐसी अतिथि, एक ऐसी हस्ती जिन्होंने लेखन जगत में अपना नाम ही नहीं कमाया बल्कि ऐसा कंट्रीब्यूशन दिया जो प्रेरणा का स्रोत है। जी हाँ, हमारे समक्ष है डॉक्टर अलका अग्रवाल सिकतिया जी, जिन्होंने बीएससी की, फिर अंग्रेजी में भी उन्होंने पढ़ाई करी, हिंदी साहित्य में गोल्ड मेडलिस्ट रही, पीएचडी की उपाधि भी उन्होंने प्राप्त की। उनका शोध रहा हरिशंकर परसाई पर, लघु शोध और प्रबंधन शोध उन्होंने किया। कई प्रकाशन उनके नाम है, वैसे तो हम कुछ के नाम आपको जरूर लेकर सुनाते हैं। मुर्दे इतिहास नहीं लिखते, अदृश्य, मेरी तेरी, सबकी, मीरा कोल, व्यंग संग्रह है ये। कई पत्र पत्रिकाएं भी उनकी प्रकाशित हुई और इसके साथ साथ उन्होंने लेखन क्षेत्र में बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है। उनको कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है, चाहे वो गोदरेज कंज्यूमर फिल्म फेस्टिवल सम्मान हो, दुष्यंत सम्मान हो, रचनाकार आयोग द्वारा बिस्मिल्ला खां पुरस्कार हो, ऐसे कई अवार्ड भी उन्हें प्राप्त है। वैसे तो उनके करियर की लंबी व्याख्या है, लेकिन चलिए पहले उनका स्वागत करते हैं और उनके बारे में और जाने का आज अवसर हमें मिलेगा। आपका बहुत बहुत हृदय से स्वागत है अलका जी।
1: जी बहुत बहुत आभार, और ये मेरे लिए हार्दिक प्रसन्नता का विषय है कि आज ब्रह्मा कुमारी के रेडियो मधुबन में मुझे ये अवसर मिला है। और बचपन से हम सुनते आए हैं, और मैं 90s में एक बार यहाँ पर आई भी थी।
0: अच्छा।
1: और उस समय बहुत से, हम जो मनुष्य होते हैं, जिज्ञासा तो हमारे भीतर होती है।
0: बिल्कुल।
1: तो बहुत से जिज्ञासाएं थी, तो मैं लगातार प्रश्न पूछती जा रही थी, क्योंकि उस समय छोटी भी थी थोड़ी सी। तो वो जो दीदी थे, तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात है कि आपके भीतर इतनी जिज्ञासा है, आप कहाँ रहती? मैंने बताया मुंबई, बॉम्बे, तब तो बॉम्बे था
0: जी।
1: तो उन्होंने कहा कि हमारे सेंटर पर जाइएगा, और कुछ ऐसा होता है ना कि हम छोटी छोटी सी बातों को लेकर कई बार परेशान भी हो जाते हैं, तो वो कुछ कोइंसिडेंस ऐसा हुआ कि जिज्ञासा और परेशानी दोनों थी, और मुझे पता नहीं क्यों मैं, मेरे कदम उठ गए आपके जो मलाड में सेंटर है वहाँ उठ गए।
0: ओके।
1: और वहाँ पर फिर मुझे बहुत से प्रश्नों का उत्तर भी मिला और मेरे मन की परेशानियों का समाधान भी हुआ था। तो मैं लगातार कई बार गई, लेकिन फिर बहुत सी बातें होती कि अगर आपने परिवार चुना है तो कुछ प्रायोरिटीज हो जाती हैं कि वी कांट गो अगेंस्ट दैट। तो ठीक है, मतलब फिर मैं गई नहीं, लेकिन हाँ, मैं जो आपके सिस्टर बीके शिवानी जी हैं, उनको तो सुनना किसको अच्छा नहीं लगता
0: जी, जी।
1: तो बहुत बार जब हम कहीं अटकते हैं ना, तो हम जब उन सुनने लगते हैं तो हमको बहुत से प्रश्नों का समाधान मिल जाता है
0: जी।
1: और अभी शिव बाबा ने, पता नहीं उनकी क्या मंशा है, मुझे नहीं मालूम है, फिर से उन्होंने बुलाया, और यहाँ पर भी जो आपका आर्ट एंड कल्चर का, आप ये जो 3 दिन का पूरा कॉन्फ्रेंस होता है, राष्ट्रीय सम्मेलन, तो उसमें क्योंकि विषय इतना अच्छा था, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आपको समाज को बचाना है, देश को बचाना है और विश्व को बचाना है, तो परिवार को बचाना सबसे अधिक आवश्यक है।
0: बिल्कुल।
1: तो जो विषय था, और मेरा विषय था संस्कृति, संस्कार और परिवार के मूल्यों के संवर्धन की कला, तो ये बहुत आवश्यक है कि जैसे मुझे ये लगता है कि हम अपनी संस्कृति से दूर जा रहे हैं, और जो दूसरे देश के लोग हैं वो हमारी संस्कृति की ओर आ रहे हैं। तो खैर, ये तो मैंने बताया कि स्पीकर यहाँ आई थी, लेकिन आज आप सबसे रूबरू होने का मौका मिल रहा है और मेरी आवाज आप तक पहुँच रही है, तो उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ।
0: वैसे तो बहुत सारे प्रश्न है मेरे मन में, लेकिन मैंने आपकी बहुत सुंदर प्रोफाइल जो पढ़ी, उसमें आप ये भी लिखा था कि आप फाउंडर हैं क्रिएटिव राइटिंग की।
1: सॉरी,
0: आप फाउंडर हैं क्रिएटिव राइटिंग।
1: जी जी, हाँ।
0: जी, तो अगर उसके बारे में कुछ बताएं।
1: जी जरूर। क्रिएटिव राइटिंग, देखिए क्या होता है, जो लेखक होता है ना, नजर और नजरिए का फर्क होता है। अब सामने ये पेड़ दिख रहा है मुझे, है ना, मैं भी देख रही हूँ, कोई और भी देख रहा है, किसी को सिर्फ लगेगा कि उसमें पत्तियां हैं, लेकिन एक जो लेखक होता है उसमें अलग दृष्टिकोण से देखता है। एक अलग पर्सपेक्टिव से देखता है. तो बहुत से लोग कोविड में खास तौर पर बहुत, क्योंकि कोविड में लोग अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे थे, अंतर यात्रा कर रहे थे, और कई लोग जब बहुत परेशान थे तो कई लोगों ने हमसे संपर्क किया
0: जी.
1: मेरे साथ में दिनेश शाकुल जी हैं, जो चंद्रगुप्त बनते थे चाणक्य सीरियल में, और काफी बहुत अच्छे एक्टर हैं और बहुत नॉलेजेबल हैं
0: जी.
1: तो कई लोगों ने हमसे कहा कि लिखा कैसे जाता है, हम लिख तो रहे. तो फिर हमने क्रिएटिव राइटिंग का जो है वो शुरुआत करी.
0: ओके.
1: और उसमें हमने कहा कि जो कविता क्या होती है, कविता में अलग अलग भाव होते हैं, नाद होता है, और उसमें किस तरह से आप उसको लिखते हैं. तो फिर हमने ये काफी सारी पूरा सिलेबस बनाया था. पांच मॉड्यूल्स थे, उसके पांच मॉड्यूल्स में हमने वो सिलेबस बनाया था.
0: अच्छा.
1: और उसमें हम उनको वो पूरी क्लासेस लेते थे और उसके बाद उनको हम होमवर्क देते थे. तो कई लोगों ने उसमें बहुत अच्छी कविताएं लिखना सीखा. और क्योंकि मैं महिला काव्य मंच है, अंतर्राष्ट्रीय है, जिसके फाउंडर है नरेश नाथ जी, तो उन्होंने मुझे महाराष्ट्र मकाम का अध्यक्ष बनाया. तो उसमें बहुत सी महिलाएं जुड़ी. और उसमें आरुषि जी क्या है कि मन से मंच तक.
0: अच्छा.
1: है ना
0: जी.
1: तो ये जो आपने कहा क्रिएटिव राइटिंग और मन से मंच तक, तो मन में बहुत से लोगों के भाव होते हैं ना. आप अनुभूति को जब अभिव्यक्ति में ढाल देते हैं, उसको उतार देते हैं कागज के कैनवास पर, तो वो कविता, कहानी, गजल कुछ भी बन जाती है
0: जी.
1: तो इसी तरीके से जब बहुत सी महिलाएं आई जिनको लिखना नहीं आता था और वो केवल कुछ भी या तो किसी की पढ़ देती थी, फिर हमने उनको थोड़ा सा और गाइड किया. तो इस तरह से एक जो क्रिएशन, क्योंकि देखिए कलाकार तो क्रिएशन करता है.
0: बिल्कुल.
1: और यहाँ पर एक चीज मैंने बड़ी अच्छी सुनी कि कलाकार यानी जो कल को आकार देता है.
0: क्या बात है.
1: तो मुझे बहुत अच्छा लगा. तो हम ये नहीं कहते कि हम सचमुच पूरा कल को आकार दे सकते हैं, एक चेतना जरूर पैदा कर सकते हैं. तो एक क्रिएटिव राइटिंग की क्रिएशन कैसे था, राइटिंग तो है लेकिन क्रिएशन क्रिएटिव कैसी हो, रचनात्मकता कैसे आए उसमें, तो ये जो है हमने पूरा मॉड्यूल बनाए हैं और उसको लेकर के हमने पूरी कविता के ऊपर क्रिएटिव राइटिंग की. इसी तरह से कहानी पर भी हम मॉड्यूल बना रहे थे लेकिन किसी कारण से छूट गया. क्योंकि मैं कहती हूँ कहानी एक घटना से नहीं होती. जैसे जब हम छोटे थे, मैं बहुत छोटी उम्र से लिख रही, पहले तो मैं बता दूं 6-7 साल के लिए जब से मैंने कुछ लिखना शुरू कर दिया था. उसके रीजंस भी हैं, अगर आप पूछेंगे तो मैं बता दूंगी.
0: बिल्कुल. खैर जाना चाहेंगे.
1: तो क्या होता है ना कि जैसे मैंने एक घटना कहीं देखी, दूसरी घटना कहीं देखी, तीसरी घटना कहीं देखी, तो हम जब सबको सिंक्रोनाइज करते हैं, क्योंकि जो रचनात्मकता होती है, रचनात्मक लेखन, क्रिएटिव राइटिंग होती है, वो रिपोर्टिंग नहीं होती है.
0: बिल्कुल.
1: उसमें आप यथार्थ के साथ में कल्पना का भी उसमें सम्मिश्रण रहता है.
0: बिल्कुल.
1: तो ये जो होता है, ये तो क्रिएटिव राइटिंग इज अ वेरी वास्ट फील्ड, और उसमें ये वाली बात है. और एक बात बहुत आवश्यक है कि क्रिएटिव राइटिंग

0: मुर्दे इतिहास नहीं लिखते, तो इसके पीछे का क्या कहानी है, ये कैसे लिखा या क्या उसके बारे में कुछ
1: बताती हूँ। एक तो आपने रेडियो की बात की, उस पर फिर मैं मुर्दे पे आऊंगी। तो रेडियो लेखन के लिए मैं आपको बताऊं कि क्योंकि जैसे मैं बॉम्बे से हूँ, तो एक बार किसी ने कहा कि बम्बई के में संयुक्त परिवारों पर आप कुछ एक लिखो।
0: अच्छा।
1: तो मुझे किसी ने चैलेंज किया कि आपको बॉम्बे में संयुक्त परिवार मिलने वाले ही नहीं है। लेकिन बोलते हैं ना, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, और मुझे तो करना था। आप मानेंगे नहीं आरुषि, जब मैं जब ढूंढने लग गई, 13 परिवार की जगह मुझे इतने परिवार मिलते चले गए, और वो मैं आज भी गूज़बम्प्स आते हैं मुझे जब मैं वो अनुभव शेयर करती हूँ। तो जिनके भी परिवार में गई, तो क्या होता है ना कि जैसे एक जगह अगर जब इकट्ठा होता जाता है पानी तो सड़ने लगता है, इसी तरह से ना परिवारों में भी कई कई बार कुछ कुछ भावनाओं में एक दूसरे से क्लैशेस होने लगते हैं। तो लेकिन जब मैं उनसे मिली, और एक परिवार अंधेरी का मैं आपको बताती हूँ, दुबे परिवार था, तो वहाँ बड़े भाई भाभी ने ही उनके पूरे मतलब छोटे भाई बहनों को बड़ा किया था और बहुत अच्छे से सारा कुछ उनका किया था। तो जब हमने ये किया तो वो लोग लिटरली रोने लग गए और मुझे गले लगा लिया और उनने कहा कि जैसे एक विरेचन होता है ना, जिसको कैथासिस कहते हैं, एरिस्टोटल ने जो दिया था, कि उन्होंने कहा हमारे अंदर की सारी जो गलत भावनाएं आने लगी थी वो सब खत्म हो गई। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस तरीके से एक हमने जो काम किया, तो रेडियो लेखन में ये एक अनुभव मेरा बहुत अच्छा रहा। और ये रापा सीरियल अवार्ड होता है, रापा यानी जो टेलीविजन और दूरदर्शन में जो बेस्ट होता है, तो उसको बेस्ट रापा सीरियल अवार्ड भी मिला था।
0: क्या बात है
1: जी,
0: क्या बात।
1: अब आपने मुझसे मुर्दे इतिहास नहीं लिखते, तो आपको जैसे शीर्षक बहुत अच्छा लगा, तो दरअसल ये एक मेरे एक दोस्त हैं, तो वो पहले फिल्मों में एक्टिंग करते थे, अब वो बिहार में कहीं रहते हैं। तो क्या हुआ था कि मेरी कहानी पढ़ के उन्होंने मुझसे कॉन्टेक्ट किया कि मुझे बहुत अपनी अपनी सी वो कहानी लगी, बहुत मैं कनेक्ट हुआ हूँ उससे। तो फिर उनसे बातचीत होने लग गई, तो जो क्योंकि बॉम्बे में तो बॉलीवुड और बॉम्बे की लाइफ, तो बॉम्बे या तो मतलब ऐसे कहते गरीब से गरीब को भी भूखा नहीं सुलाता, अमीर से अमीर को भी। तो बॉम्बे एक ऐसी मिस्ट्री है कि जिसको हर कोई हल करना भी चाहता है, जिसमें जाकर फंस भी जाता है। तो ये हुआ कि वो रवि नाम है उनका, तो उनसे मेरी फिर अच्छी बातचीत होने लग गई, और वो फिल्मों में सीरियल्स में सब स्ट्रगल कर रहे थे, फिल्मों में स्ट्रगल बहुत ज्यादा है, बन गए तो बन गए, नहीं तो बहुत खत्म भी हो जाते। खैर, तो वो जो बताते थे, फिर उनकी कविता थी मुर्दे इतिहास नहीं लिखते, और अच्छा। तो इस तरीके से, तो वो फिर बाद में उनसे ही, क्योंकि उनकी लाइफ थी, तो वो स्ट्रगल करते हुए दो दोस्तों की कहानी है। फिर अंत में ये होता है कि जो दो दोस्त हैं, मतलब एक दोस्त दूसरे दोस्त को संभालता है, फिर दूसरा दोस्त जब परेशान होता है तो ये संभालता है, लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है कि वो कुछ ऐसा समझौता करने के लिए तैयार हो जाता है और रूम से चला जाता है। उस समय पेजर हुआ करती थी जब मैंने ये कहानी लिखी थी, तो पेजर पर ये कबीर जो है पहला वाला दोस्त, वो आदित्य को मैसेज करता है कि मुर्दे इतिहास नहीं लिखते, इतिहास वो लिखते हैं जो धारा के विरुद्ध चलकर अपना रास्ता खुद बनाते हैं। तो अब मैं ये शीर्षक कैसे है, देखिए कई लोग कहते हैं मुर्दे मतलब तुम्हारे शीर्षक मुझे समझ नहीं आए, जो समझ सकता है जैसे आपको अच्छा लगा। अब आप मुझे बताइए कि जो जीते जी मर जाएगा वो तो मुर्दा हो गया ना, और जीते जी जिसके अंदर जिजीविषा है, एक संघर्ष की कामना है, तो वो कभी मुर्दा नहीं हो सकता।
0: बिल्कुल,
1: इतिहास उनका ही लिखा जा सकता है,
0: और हार नहीं मानता
1: है ना, उसका इतिहास तो कभी नहीं लिखा जाएगा। तो ये बात है, और यही मैं अपने जिंदगी में भी कहती हूँ कि हार कभी मत मानो, है ना, जैसे एक वो है ना कि हार के आगे जीत है, तो यही वाली बात है कि अपने आप को हारने नहीं दो, और खास करके यहाँ आने के बाद इस डिवाइन में, कि मतलब जब हम अपने आप से संवाद करते हैं, परमात्मा से खुद को जोड़ते हैं और अपने असत्य को पहचानते हैं, तो हमको लगता है कि नहीं हार तो कहीं है ही नहीं। तो कुछ इसी तरीके से कि इतिहास आप लिख सकते हैं, आप अपने जीवन में अपने आप को एक हमेशा कर्मठ बना के रखिए।
0: जी बिल्कुल, ये जब कभी कभी बहुत बड़ी मुश्किलें आती हैं तो उसको जीवित रखना बहुत जरूरी होता है, जो हमारे अंदर की आग है, जो हमारे अंदर की भावनाएं हैं। मैं एक और प्रश्न आपसे जरूर पूछना चाहूंगी यहाँ पे, क्योंकि आप कई आपने उपन्यास भी लिखे, कई कहानी संग्रह हैं, तो कहानियां लिखने के लिए अगर मान लीजिए कोई इंटरेस्टेड है, कोई युवा है जो इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो अगर आप कुछ टिप्स दें, कुछ ऐसी बातें जो मदद करें, जैसा आपने कहा ना अनुभूति को अभिव्यक्ति मिलाने के लिए, आपकी ओर से कुछ ऐसे,
1: मतलब आपका प्रश्न है कि कौन सी बातें कहानी लिखने में मदद करें।
0: जी जी जी,
1: हमारा जो मैका है वो कटनी एमपी में है, और वहाँ एक फार्म हाउस है हमारा, तो मेरे पापा जो थे उन्होंने पूरी अपना सारा एकदम रात से लाइफ छोड़ के, उनको फार्मिंग बहुत पसंद आई, तो वो फार्म

0: मतलब 400 एकड़ जमीन थी, बंगला था, तो हम लोग वहाँ रहते थे। तो वहाँ जो गांव की लड़कियां आया करती थी उनसे हमारी दोस्ती हो जाती थी, और वो लड़कियों को देख करके ना मेरे जहन मतलब वो अंकित होती चली गई। उस समय तो मैं बहुत छोटी थी, लेकिन फिर धीरे धीरे क्योंकि मैंने छोटी उम्र में कहानी भी लिखनी शुरू कर दी थी, तो वो कहीं ना कहीं मतलब जैसे एक शिवरात्रि नाम की लड़की थी। हाँ, उसका नाम ही शिवरात्रि था, और आज भी मुझे वो वैसे की वैसे याद है। एकदम लंबी छरहरी सांवले रंग की, बड़ी बड़ी आंखें, तो वो कहीं ना कहीं मेरे जहन में अंकित हो गई, है ना। इसी तरह से हमारे यहाँ पर एक गाल बाबा थे, तो उनकी बेटी का नाम था अमसा था। अमसा, अब आप बोलेंगे अमसा कोई नाम होता है ना, है ना। अब वो उसका रीजन क्या था कि मेरी दीदी ने उनकी बेटी का नाम रखा था अंशा।
1: अच्छा।
0: अब अंशा तो वो नहीं बोल सकते थे तो अमसा बोलते थे। तो एक करेक्टर मेरी अमसा बनी, एक करेक्टर मेरी शिवरतिया बनी, और फिर उनकी कहानी दूसरों कहीं से आए। जैसे जैसे मैंने बताया आपको कि कटनी की हूँ मैं, तो कटनी में ना चूने के भट्टे बहुत होते हैं, तो चूने के भट्टों में जो लोग काम करते हैं तो क्या होता है कि वहाँ उनको टीबी बहुत हो जाती है, तो वो जो सारी जो चीजें थी वो। उसके बाद में रेलवे लाइन पर जैसे गरीब लोग हैं वो कोयले बिन रहे हैं, कोयले के जो वैन निकलती ना कोयले गिरते हैं, तो वो कोयले बिनते बिनते ट्रेन से कट जाते हैं, कई बार उनको नहीं पता चलता था। तो ये जो मेरा जो एकदम मासूम सा मन था ये बहुत मुझे परेशान करती थी ये चीजें, और वो फिर सब मेरी कहानी में ना मतलब एक चीज वहां में जैसे बताया ना एक घटना ये एक घटना वो, तो ये जैसे कि जो मतलब मेरी कहानी में अमसा जो है वो गाँव से शहर आती है, फिर वो इस तरह से उसकी और वो अमसा से मिलती है ये जो राइटर है, और वो चूने भट्टे के वहाँ जाती है, तो वो बोलती है कि दीदी हम ना कक्का भाई, क्योंकि मैं वहाँ की तो मुझे भाषा भी आती, दीदी हम कब ना चूने के भट्टे में काम करीबे। तो वो फिर वो बोलती, लेकिन जब दूसरी बार जाती तो देखती है कि वो अमसा खांस रही है बुरी तरीके से, तो वो बोलती कि तुमको क्या हो गया, तब वो कहती कि दीदी हम कहे थे ना कि हम अम्मा वाला काम कभी ना करेंगे, लेकिन हमारे घर में खाने को नहीं बचा, दद्दा भूखे मर रहे हैं, दीदी भूखी मर रही, तो क्या करें, काम तो करवे को पड़ा थे। तो वो सारी जो चीजें थी, तो वो मतलब वो मैंने वो भाषा वहाँ की, क्योंकि बचपन में उनके बीच में जाते थे। तो ये ना जो लेखक होता है ना वो बहुत ज्यादा ग्रहणशील होता है, और उसका ऑब्जर्वेशन बहुत शार्प होता है, और संवेदनाएं कहीं, और उस पर जो संवेदनाएं होती है ना, तो कहते ना जैसे कि हीरे पॉलिश कर दिया है, तराशती है संवेदनाएं। इस तरह से कहानियां हमारी बनती हैं, जैसे आपसे ही मैं बात कर रही हूँ, अब आपकी स्माइल पर ही मैं कुछ कविता लिख दूंगी। तो ये तो देखिए क्या होता है कि नजर की बात है,
1: नजर नजरिया जो आपने कहा,
0: बिल्कुल। हाँ,
1: जैसा आपने कहा था कि आपने बहुत कम उम्र में ही लिखना शुरू कर दिया था, तो क्या ऐसी कहानियां थी जिन्होंने आपको इंस्पायर किया, या फिर क्या कोई ऐसा क्षण था जिसने आपको इंस्पायर किया, या कहां से लिखने की शुरुआत, इतनी कम उम्र में कैसे हो?
0: क्या हुआ था ऋषि जी कि बचपन में मतलब मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था, अक्सर मैं साक्षात्कार में ये बात तो आती कि लोग पूछते हैं कि लिखना कैसे शुरू किया, क्या किसी ने, जैसे आपने पूछा क्या किसी ने इंस्पायर किया या कोई ऐसा क्षण आया, तो मेरे जीवन में एक बहुत बड़ी घटना घट गई थी। तो मतलब हम लोग पांच बहन थे, और मैंने अपना बहुत, दीदी लोगों ने मेरा नाम जल्दी लिखा दिया था, तो मैं मम्मी पापा फार्म हाउस में रहते थे, तो मैं दीदी लोग के साथ यहाँ रहती थी, और मैं बहुत छोटी सी थी, तो मेरी दीदी जो थी सबसे बड़ी वो खुद 18 साल की थी जब उनकी शादी हुई थी, और वो मेरे लिए माँ समान थी कि मम्मी फार्म हाउस पे रहते थे मम्मी पापा। तो उसके बाद मतलब उन्होंने ही मुझे डांस वगैरह, हम लोग का पिक्चर हॉल हुआ करता था तो डांस वगैरह करती थी, तो उनने कहा कि इसको डांस सिखाया जाएगा। तब तो लिखने जैसा कुछ सोचा भी नहीं था, मैंने नहीं सोचा ही नहीं था, मतलब 5-6 साल की बच्ची क्या सोचेगी ना उस वक्त। तो मैं क्या करती थी, पिक्चर हॉल से आती थी, फिर वो लैच लगा के फिर गा के अंदर, तो बोली करती क्या अंदर ये, तो दीदी लोग ने देखा तो इसको डांस सिखाया जाएगा, और वो ही गा के सिखाते थे मुझे, क्योंकि क्लासेस नहीं थी, कथक बेस है लेकिन मेरे डांस का। तो खैर फिर वो दीदी की शादी बहुत जल्दी हो गई, 19वें साल के पहले ही, मतलब कहते हैं डाउरी डेथ थी उनकी, तो वो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था, मतलब आज भी कई बार आंसू आ जाते हैं उनकी बात करते हुए मेरे आंखों में। तो उनसे जो छोटी दीदी थी उन्होंने कहा कि तुम्हारे मन में जो आता है ना याद करके लिखा करो, और डांस, शशि दीदी नाम था शशि, तो उनने कहा कि शशि को मतलब उनका मन था कि तुम डांस करो, तो मेरी जो प्रभा दीदी वगैरह थी उन्होंने मुझे लगा था डांस, तो मतलब मैंने कई सारे डांस में भी अवार्ड, सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार बहुत सारे जीते हुए हैं, ये सरस्वती माँ की कृपा है जो उन्होंने मुझे कला दे करके भेजा। और मैं कहती हूँ लिखना मेरे लिए सांस लेने जैसा, अब बोलती हूँ क्योंकि तब तो मालूम नहीं था मुझे। तो मैं जो भी मन में कुछ भी आता था पेंसिल से लिखती जाती थी उसको। फिर धीरे धीरे तीन एज की जब हुई तब तक मैं कहानियाँ लिखने लगी थी जी। तो उस टाइम्स ऑफ इंडिया का एक पब्लिकेशन था सारिका, धर्मयुग अगर आपने सुना होगा सारिका, ये दोनों टाइम्स ऑफ इंडिया पब्लिकेशन हुआ करते थे। तो सारिका में मेरी पहली कहानी छपी नवांकुर विशेषांक में। उसके बाद तमाम जगहों से पत्र आने लग गए और बात और मंगाई जाने लग गई कहानियां, और मतलब उस समय मुझे बहुत सेलिब्रिटी बन गई, इतने सारे लेटर्स के बीच में छोटी सी अलका बैठी हुई पत्र पढ़ रही है सारे। खैर फिर वो एक सिलसिला शुरू हो गया आकाशवाणी जबलपुर और फिर तमाम जगह। फिर बॉम्बे भी गई तो मेरे साथ में अच्छा ये हुआ क्योंकि मेरे पति वैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं लेकिन वो मेरे लेखन को बहुत पसंद करते रहे हमेशा से। तो उन्होंने कहा कि तुम लिखना बंद मत करो, और मुझे कुछ वहां पर जनसत्ता में सब रंग उनका आता था। तो शादी के बाद भी मेरा लेखन कभी ना रुका नहीं। तो यही वाली बात है कि आप दुख से या तो अपने आप को बना लीजिए या दुख में अपने आप को खत्म कर दीजिए। तो दुख ने मुझे बनाया है जी, इस तरह में लिखने लग गई, शब्दों में ढाल दिया अपने दुख को मैंने।
1: ये जो सेंटेंस है जी, दुख से या तो अपने आप को बना लीजिए या खत्म कर दीजिए, यही से वो जो आपका जो पहला टाइटल है शायद वो सिद्ध हो जाता है कि मुर्दे इतिहास नहीं लिखते। इतिहास वो लिखते हैं जैसे आप जैसे लोग जो जिन्होंने दुख से अपने आप को बना लिया। मुझे लगता है लाखों लोगों को दुख से निकालने के निमित्त बन गए
0: जी।
1: क्या इसके लिए फिर आपको ऐसा कुछ लगा कि हाँ मुझे और ट्रेनिंग करनी है या और कहानियों को समझना है? किसको मतलब आप पढ़ते किनको थे या कौन आपको बहुत पसंद, कौन किसका लेखन आपको बहुत पसंद था?
0: जैसे चित्रा मुद्गल जी का बहुत अच्छा लगता है मुझे। मधु काकड़िया इस समय जो है हमारे समय की, मतलब हम हमारे से बड़ी पीढ़ी की है लेकिन मधु काकड़िया जी बहुत अच्छा लिखती है। उसके अलावा जैसे कि हरिशंकर परसाई जी को तो मैं खैर एक तरह से उनके लेखन को जीती हूँ। ज्ञान रंजन जी भी मुझे बेटी जैसे ही मानते थे और मेरा एक सौभाग्य रहा है कि मुझे इन सब से मिलने का मौका मिला है। मुक्ति बोध को मैंने पढ़ा है, अज्ञेय को मैंने पढ़ा है। तो कई बार जैसे बाबा नागार्जुन की कुछ कविताएं बहुत अच्छी लगती हैं। इसी तरह से अमरकांत मुझे बहुत पसंद थे, उनकी जिंदगी और जो क्या बहुत सारी। तो मतलब मैं ये नहीं बोल सकती कि मुझे एक कोई साहित्यकार पसंद है। कभी किसी की कुछ चीज अच्छी लगती है, कभी किसी की कोई चीज बहुत अच्छी लगती है। तो और आपको ना वो रास्ता जैसे बशीर बद्र उनकी आप शायरी सुनेंगे कि आप सुने कि हम बचपन में थे ना तो वो रखते थे उजाले अपनी यादों के, हमारी साथ रहने दो न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। और बहुत सारे है कि मतलब उनकी मतलब बार बार हम उनके बहुत सारे शेर हमें याद आते हैं। तो जो भी अच्छा मिलता है, और कई बार ये भी होता है आरुषि जी कि बहुत नाम नहीं होता है किसी का लेकिन अचानक आप उठा के पढ़ते हैं तो अरे इतने ये लिख दिया, ये मैंने क्यों नहीं लिखा। तो ये होता है। और जैसे कि कई बार ये होता है कि जैसे ना जैसे अगर आप बोलेंगी तो मैं अपनी एक आध आपको रचना भी सुना दूंगी
1: जी। मैं एक्चुअली वो पूछने ही वाली थी कि कुछ पंक्तियां अगर आप सुनाएं अपने लेखन की हमें भी तो हमें बहुत अच्छा लगेगा।
0: तो पहले तो मैं बताती हूँ कि ना बता जैसे मतलब हमेशा मुझे मेरे हस्बैंड कहते हैं और मैं ना मैंने मुझे लगता है कि आपका भी मुझे लग रहा है आपके अंदर का भी बच्चा हमेशा जिंदा रखती है। तो अपने भीतर के बच्चे को हमेशा जिंदा रखना चाहिए। तो मेरे पति हमेशा कहते हैं मेरे मम्मी पापा ने तुमको बड़ा करके नहीं भेजा। तो मैं कहती थी कि कहते हैं वो कि हम बड़े नहीं हुए, कहते हैं वो कि हम बड़े नहीं हुए, बड़े होना मतलब झूठ बोलो शान से मक्कार हो जाओ। क्या करें इस परिभाषा पे हम खरे नहीं हुए तो कहते हैं वो कि हम बड़े नहीं हुए।
1: वाह वाह वाह।
0: तो क्या हुआ कि मेरी बेटी अब तो बड़ी हो गई है। तो जब वो 5 साल की थी ना तो एक बार मेरे साथ जा रही थी। अच्छा वो वैसे मम्मा बोलती है लेकिन जब वो बहुत उसमें प्यार में होती है तो माँ बोलती है मुझे। और मुझे बहुत मतलब तो मैं लगती हूँ कि ना और सचमुच मुझे लगता है कि जो रिश्ते आपको जो खुशी देते हैं ना वो कहीं नहीं मिलती है। और मैं आपको दो कविताएं इसलिए सुनाऊंगी कि आपने अगर परिवार चुना है तो पहले मैं वो सुनाती हूँ फिर मैं अपनी बेटी पे।
1: प्लीज प्लीज जरूर जरूर
0: जी। तो क्या सपने बन गए बोनसाई, कहते हैं कुछ लोग कि स्त्री जब बनती है माँ करती जाती है अपने सपनों को छोटा छोटा बहुत छोटा, मारती जाती है अपने सपनों को खुद बेमौत या हो जाते हैं उसके सपने बौने, बन जाते हैं क्या बोनसाई, बन जाते हैं बोनसाई। सोच का बवंडर उठा अभी तर उसके, क्या ये सच उसका भी है, क्या ये सच उसका भी है, हो जाने दिया है उसने अपने सपनों को बौना, बना दिया हरे भरे वृक्ष से बोनसाई। विचार मंथन चल पड़ा अंतस में, अगर ऐसा होता तो मिट चुका होता कब का वजूद उसका, उसने टटोला, खुद के वजूद को महसूस किया, अरे वो तो वहाँ है, मतलब उसका वजूद तो वहाँ है, बड़ा अजीब है व्यक्तित्व उसका। एक कोस्त्री विमर्श की बातें तमाम, पर झेलती है यातनाएं भी तो क्या छद्म है उसकी बौद्धिकता, लेखन में विरोध के स्वर है मात्र दिखावा, तर्कों की मथानी से फिर मंथन वो करती है, तब सांसारिक सच की सोच नवनीत से उतरती है, पत्नीत्व और मातृत्व का चुनाव उसका ही तो है, तो फिर शायद जायज है समझौते भी। यातना सहते हुए भी खुद को खुश रख पाती है, अपने वजूद से पहचानी जाती है, यानी नहीं होने दिया उसने अपने सपनों को बोना, जिजीविषा के पानी, महत्वाकांक्षा की खाद और आत्मसम्मान की धूप से बचाया है उसने अपने सपनों को बॉन्साई बनने से। तो अब मेरी बेटी मेरे साथ जा रही थी, एक बार 5 साल की थी तब, वो तो ऐसे आंख बंद करके एकदम बैठी थी, मैं उसको देख रही थी, अचानक उसने मुझे जो बोला तब ये कविता निकली, क्या बोला था इसमें आएगा। सुबह की सुहानी बयार सी है वो, अल सुबह की सी शीतल ओस सी है वो, उसे देखकर लगता है ऐसे भर ली हो भोर की भीनी खुशबू भीतर जैसे, उसका मीठा बोसा लगता है यूं सहला गया ठंडी हवा का झोंका जूं, चूमती जब मासूमियत से आंखों को मेरी, कितना नाजुक पिघलता सा है वो एहसास। उस रोज सुबह सुबह संग मेरे वो निकली, नन्ही परी ने आंखें बंद कर ली अपनी, खो गई एक प्यारी सी दुनिया में, एंजल सी चमकती चेहरे पे उसके, अपनी छोटी छोटी बाहों का घेरा मेरे गले में डाल, आंखों में सितारे भर कर कहा उसने, माँ माँ माँ मुझे सुबह बहुत अच्छी लगती है। अनहद नाच सब बज उठा अंतस में मेरे, मंदिर में बज गई हूँ घंटियां जैसे, कैसे महसूस कर पाती है मेरी नन्ही सी कली सुबह की पावन खूबसूरती, कितनी मधुर है ये अनुभूति, बड़े प्यार से फिर वो मुझसे सटी, सीप सी पलकें बंद कर अपनी, झर झर झर झर झर झरते झरने सी आवाज में कहा उसने, सुबह कितनी अच्छी लगती है ना माँ, है ना माँ सुबह कितनी अच्छी लगती है ना, खिल उठी भीतर मेरे खुशियों की बीथियां, कितनी प्यारी होती हैं बेटियां, आगोश में अपने भर कर पेशानी उसकी चूम कर कहा मैंने, बेटी मेरी मुझे तो तू खुद सुबह सी लगती है, तू खुद सुबह सी लगती है।
2: क्या बात है, मतलब सच में ये जो आपने पंक्तियां कही हैं, हर माँ सुनेगी तो अपनी बेटी को, अगर वो उनसे थोड़ा सा भी दूर है तो मुझे लगता है वो उनके करीबी पल वो उनकी आंखों के सामने वैसे तो रहते ही हैं, लेकिन वो आंखों में आंसू बन के बह जाएंगे, इतने खूबसूरत हैं ये पंक्तियां। आपी बेटी क्या कहती है जब वो आपकी कविता सुनती है?
0: मेरी बेटी अभी मतलब बेटा भी है मेरा, अभी जॉब कर रहा है, और बेटी अभी लॉ कर रही है और 4th ईयर में है, और अभी मैं आपको बताऊं कि पता नहीं मतलब कई बार हमको लगता है कि शायद पता नहीं वो उतना प्यार करती है, लेकिन अभी इधर में भोपाल में किसी कार्यक्रम से गई थी, यहाँ पर हूँ मैं 26 तारीख से, तो वो मुझे बहुत मिस कर रही है, तो रोज फोन करती है, तो मुझे लग रहा है कि काश मैं जल्दी चली जाती। खैर तो वो ना लॉ कर रही है। अच्छा एक बात अच्छी है कि वो इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखती है, मुझसे अच्छा। बेहतर लिखती है, और वो बहुत कम शब्दों में बहुत अच्छी बात कर लेती है, तो मैं कहती हूँ कि उसका नाम, वैसे हम लोग घर में मिष्टी बोलते हैं, वैसे उसका नाम शरण्या है।
2: अच्छा।
0: तो कई बार ना वो जब छोटी भी थी ना, तो जैसे मैं उसको लोरी सुनाया करती थी, तो वो मुझे अपनी गोद में सुला करके वैसे लोरी गाती थी, तो मैं कहती थी कि बेटी माँ बन जाती है, तो मतलब ये होता है। तो अभी भी ना कई बार मम्मा ऐसे नहीं करना, मम्मा वैसे करना है, तो मैं कई बार मुझे लगता है, और मैं भी उसको बोलने देती हूँ, क्योंकि मुझे भी लगता है कि हाँ वो मेरी माँ बन करके मुझे उस तरीके से वो कर रही है, तो बड़ी प्यारी सी नाजुक सी है और अच्छा लिखती है और लॉ कर रही है, और उसका शुरू से ना बहुत ये मन था कि मैं इसमें रहूं, मतलब जो जासूसी जो सीरियल होते थे, हाँ, इस तरह के जो होते थे वो देखा करती थी, तो उसको उसमें मतलब बहुत इंटरेस्ट आता था, तो उस तरीके से वो अब वो लॉ कर रही है।
2: क्या बात है। अच्छा इसीलिए वो उन्होंने वो प्रोफेशन बनाया उसको, और समाज की मदद के लिए जैसे वो एक उसको इंटरेस्ट को भी उन्होंने उसको इस्तेमाल किया। क्या बात है। तो वो क्या करते हैं, तो जब आपके घर वाले आपकी कविताएं सुनते हैं तो क्या आपको फीडबैक देते हैं, कैसा लिखा है ये कहते हैं, या क्या महसूस हुआ, कैसा मतलब पहले सबसे पहले जब आप लिखते हैं तो किसको सुनाते हैं आप?
0: आपको बताऊं, मैं सबसे पहले अपने पति को सुनाती हूँ।
2: अच्छा,
0: ठीक है
2: जी।
0: वो मेरे सबसे बड़े क्रिटिक हैं और वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, लेकिन मैंने देखा कि साहित्य की समझ उनके बहुत अच्छी है, और मैं ना बहुत जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी अभी जैसे बोल के बता रही हूँ आपको, मैं बहुत जल्दी जल्दी बोला
2: जी,
0: तो मुझे कहते हैं कि थोड़ा ना थम थम के
2: आराम
0: है ना, तो उन्होंने मुझे एक तो ये सिखाया, दूसरा वो कहते थे कि तुम्हारा जो फोर्टे है वो तुम्हारी भावनाएं संवेदनाएं हैं, तो तुम अपने किसी के बोलने से ना उसको बदलो नहीं। और वो कई बार मुझे कहते नहीं ये चीज ऐसे अच्छी नहीं लग रही है, तो मैं उनको बताती हूँ। अच्छा कई बार ये भी होता था कि मैं अपने कुछ दोस्तों को भी बता देती थी, तो पता चलता था थोड़े दिन में मेरी चीज उनके नाम से आने लग गई। ये बहुत होता है आरुषि जी। मेरी तो आपको बताऊँ ये कविता है जो बहुत ज्यादा फेमस हुई है, द्रौपदी तुम्हें उठाने होंगे शस्त्र, तुम्हें ही बनना होगा सशक्त, नहीं आएंगे अब कोई कृष्ण, उसको चुरा के लोगों ने कर लिया, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो अपना आएंगे गोविंद। ये मैंने लिखी थी कविता।
2: अच्छा उसमें एक दो शब्द बदल के किसी ने,
0: और ये मतलब एक मिनिस्टर है, नाम नहीं ले रही मैं यहाँ रेडियो पे, एक मिनिस्टर है उन्होंने, फिर एक और, तो तमाम उसको बहुत सारे राजनेताओं ने उसको कोट किया। तो मेरा बेटा मुझे बोलता है कि मम्मा आप लिखते हो, आप इतना अच्छा लिखते हो, आप उसके लिए, तो मेरे पास में मेल है वो, जब मैंने पहले लिखी थी, भेजी थी, पेपर में छपी भी थी। अच्छा मैं एक और काम किया करती थी उस कविता को, हम तो जाते थे, हम मार्शल आर्ट वालों को लेकर के जाते थे, तो मार्शल आर्ट वाले जो थे वो वहां पे मार्शल आर्ट सिखाते थे लड़कियों को, एक मेरे साथ वकील जाते थे मेरे दोस्त, और मैं एक कविता गाती थी बोलती थी, तो हम पूरी लड़कियों को, मैं कहती थी कि आप लड़कियों को इतना ट्रेन कर दो कि दो चार लोगों को से अपने आप को सेफ तो कर सके वो।
2: बिल्कुल।
0: तो ये मैं, मेरा ये पूरा का पूरा मोटो था। लेकिन खैर उसके बाद मेरे एक सीरियल को मेरा, मैंने लिखी थी कहानी तपस्या वाला था, वो क्या था, तपस्या थी उस सीरियल में, अब मैं सीरियल का नाम पता नहीं कैसे अचानक से अभी बात करते, तो उस पर सीरियल बन गया और वो मेरी कहानी की चोरी थी। तो खैर मुझे फिल्म राइटर एसोसिएशन में मुझे मेरे फेवर में डिसीजन भी आया, पर बहुत कुछ ऐसा हुआ, पर ठीक है क्या किया जा सकता है, तो बहुत कुछ होता है। लेकिन और भी जैसे कि मैं, अगर आप बोलेंगी तो आपको मैं एक दो चार शेर सुना दूं, अगर आप बोले तो।
2: जरूर जरूर, और शेर भी सुनना चाहेंगे, और साथ में जो आपने कहा ना कि लड़कियों को इतनी तैयार हो जाए, इतना मोटिवेट हो जाए कि वो खुद की रक्षा स्वयं कर सके। हाँ। तो अगर कोई ऐसी भी कविता हो तो भी हम जरूर सुनना चाहेंगे, अगर आप कोई
0: जैसे कि मैंने वो जो द्रौपदी वाली थी ना कि मतलब सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, कि मतलब द्रौपदी अब जगह जगह पुकार रही है, लेकिन मतलब उसको खुद को ही सशक्त बनना होगा, तो ये तो है। लेकिन अभी फिलहाल ये है कि जैसे दूसरों को भी, कि मतलब हम कहते हैं कि अपने दिल और जान में रखना, नाम मेरा भी ध्यान में रखना, मुफलिसों को ना दो चांद तारे भले पाके उनके ध्यान में रखना, कि भाई आपके मन में एक दया भाव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने किरदार, ये देखिए जैसे कि अपने किरदार को बहुत मजबूत इस बदलते जहान में रखना, ऐसे नहीं कि आप बह गए धारा के साथ में। तो मेरा शीर्षक भी मुर्दे इतिहास में लिखते कि आपका अगर किरदार मजबूत है तो फिर आपको कोई बदल नहीं सकता है, कि इस बदलते जहान में रखना, तेरे कपड़ों पे जो है गर्दे सफर कामयाबी की शान में रखना। कई लोग कहते होता है ना कि जब बड़े बन गए तो भूल जाते हैं, आप अपनी जमीन से हमेशा जुड़े रहे, तो ये मैं कहती हूँ कि तेरे कपड़े पे जो है गर्दे सफर कामयाबी की शान में रखना, हमेशा याद रखो कि हम कहाँ से उठे कहाँ पहुँचे हैं, और तुमको आकाश है छूना अगर, तुमको आकाश है छूना अगर, पंख अपनी उड़ान में रखना, अपने दिल और ध्यान में रखना। और ये जो आपने कहा कि मुझे कई लोग कहते हैं कि तुम इतना मीठा बोलती हो कि मतलब हम तो बड़े अट्रैक्ट हो जाते हैं, मैंने कहा नहीं वो ऊपर वाले ने दे के भेजा है, तो ये शायद इस तरह है कि सुन के हो जाए जो फिदा तुम पर, सुन के हो जाए जो फिदा तुम पर, लुत्फ ऐसा जुबान में रखना, अपने दिल और ध्यान में रखना, अपने दिल और ध्यान में रखना। और कभी कभी होता है ना कि हम बहुत दुखी हैं तो हम बोल नहीं पाते हैं, तो अब जैसे अब तो बाबा है वो कोना, हमको कभी लगेगा तो हम बाबा को स्मरण करेंगे, तो कि रो सको जहाँ पे छुप छुप कर, रो सको जहाँ पर छुप छुप कर, ऐसा गोशा मकान में रखना, ऐसा कोना मतलब गोशा, ऐसा गोशा मकान में रखना, और वो गोशा आध्यात्मिक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और ये के कम नहीं है, हालांकि मैंने अलका अपना इसमें तलफ़ुज़ जो होता है मक्ता जो कहते हैं, लेकिन मैं इसको भी बदल देती फिलहाल यहाँ की, कम नहीं है किसी से कोई, कम नहीं है किसी से कोई, दोस्तों ये गुमान में रखना, दोस्तों ये गुमान में रखना। तो आपने जैसे कहा तो मेरी कहानी थी बेटी
2: जी,
0: तो उसमें माँ अपनी बेटी के बारे में सोचती है और वो पहले सोचती नहीं शादी, तो दूसरे कहते हैं भाई बेटी बड़ी हो रही शादी करा, तो बेटी को फिर बताने लगती है देखो तुम जाओगी एक राजकुमार जैसा लड़का होगा, तुम्हारा ध्यान रखेगा, और लड़के वो बेटी सपने पाल लेती है, शादी होती है, शादी होती है जब, तो वो जब आती है घर तो वो खुश नहीं है, मैके जब आती तब माँ को समझ में आता है कि उसको जो सपने बेटी को दे दिए हैं वो उसको हाथ में हाथ लेकर घुमाने नहीं लेकर जाता है, बहुत सारी जो चीजें
2: राजकुमार आएगा,
0: राजकुमार आएगा तो वो तो नहीं मिला उसको कि भाई नमक कम है तो भी बोलेगा है वो है, तब उसको समझ में आता है कि मैंने इसे गलत सपने दे दिए हैं, फिर वो उसको दूसरी तरह से कि एक एक कविता है कि हो जाती वो पयस्विनी जब वो माँ खुद बनती है तो महिला, तो वो बेटी को फिर अलग तरीके से समझाती है आपकी, और वो प्रेग्नेंट है जब बेटी आती तभी भी खुश नहीं, तो फिर उसको अलग तरह से समझा के भेजती है और कि मतलब आपकी बार अगर दुखी हो जाएगी तो मैं इसे नहीं भेजूंगी, लेकिन उसको मालूम है कि मैंने इसे ऐसा समझा दिया है क्योंकि मैंने उसे गलत ट्रेन किया था, तो ये जो हम संस्कार देते हैं ना तो वो हमारे भीतर कहीं ना कहीं पनप जाते हैं, तो माँ जो बच्चे को सिखाती है वो बहुत सोच समझ के बताना चाहिए कि उसको आगे जाकर के भी एक घर संभालना है, तो वो उस तरह से ट्रेन करे कि वो समझ पे आए कि हाँ मेरे ऊपर जिम्मेदारियां आ रही, अब मैं वो बच्ची नहीं रह गई हूँ, बहुत बहुत बदलना पड़ता है। तो मुझे जो मेरी टाइप करते थे उनने कहा कि एक दिन मुझे कहा कि क्या लड़कियां सब सोचती कि शादी के बाद ऐसा होगा, मैंने कहा अमूमन तो सभी सोचती हैं,
2: अमूमन सभी सोचते
0: हैं, तो मैंने भी सोचा था, बोले अच्छा, तो मुझे एक दिन फोन किया, मैं आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ, मैंने कहा कि क्यों, बोले कि आपकी कहानी से मैं अपनी पत्नी की भावनाओं को समझने लग गया, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर एक दिन मैंने बोला कि मेरे कुछ कहानियां टाइप कर दीजिए, बोले आज आप मुझे माफ कर दीजिए मैं नहीं कर सकता, मैंने कहा क्यों, बोले मैं आज अपनी पत्नी को डेट पर लेकर जा रहा हूँ और ये आपकी कहानी का असर है,
2: और इससे पहले शायद वो
0: हाँ वो, तो वो
2: रियलाइजेशन मतलब उनको हुआ उससे
0: कहानी से। मतलब क्या होता है ना कई बार ना जो दूसरे घर से लड़की आती ना पति समझ ही नहीं पाता है कि ये कितनी अंदर अपनी भावनाएं लेकर आई है,
2: उनके सपने क्या है,
0: सपने लेकर आई है ना, और आप जब तक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ही नहीं आप कायम कर पाते, तो जब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है और हम एक दूसरे के साथ में साथ साथ कदम बढ़ा के चल रहे हैं ना, ये कोई नहीं सोचे कि मैं ये तो आई है मैं ही, क्योंकि एक शोविनिस्टिक मेंटालिटी
2: सोचते हैं इनको एडजस्ट करना है ये आई है यहाँ से, मगर वो सोच उनके मन में क्या चल रही है वो सोच समझ ही नहीं पा रही,
0: वही वाली बात। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि उसके बाद उनको लगा कि अच्छा ये भी सपने लेके
2: बदलाव कितना
0: उसको समझना चालू कर दिया, तो मुझे लगता है कि मेरा लिखना सार्थक हो गया। और इससे मुझे बहुत सारे इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं, जैसे कई लोगों ने मुझे कहा कि आपको देख के हमने डांस करना सीखा, आपको देख कर, मतलब कटनी में पहले मैं मारवाड़ी हूँ, हमारे दादाजी नगर सेठ हुआ करते थे, तो लड़कियों को डांस वगैरह, इवन मेरे बाबा जी ने वैसे बहुत हमको फ्रीडम दे रखे थे, हमको कभी पता आप आरुषि जी मैं बिल्कुल खुले दिल से बोलती हूँ कि मुझे कभी वो डिस्क्रिमिनेशन हमारे घर में नहीं हुआ,
2: लड़का और लड़की वाला,
0: हाँ लड़का अच्छा। लड़की वाला कभी नहीं हुआ, हम लोग पांच बहने थे पर कभी नहीं, ना बाबा जी ने दादाजी ने ना पापा ने मम्मी किसी ने नहीं। तो फिर लेकिन वो लोग आए तो बोले डांस, तो उनने बोला भाई नगर सेठ की बेटी ने लोकचंद फुलचंद की पोती डांस करेगी, तो बोले अगर आपकी बेटी डांस करेगी पोती तो बहुत सी बच्चियों, तो उन्होंने हाँ कह दिया,
2: अच्छा कि हाँ। बाकी लोगों को भी और इंस्पिरेशन मिली
0: हाँ। तो उन्होंने हाँ कहा और मैंने पहला डांस जो किया था वो था होठों पे ऐसी बात
2: हाँ,
0: और उसके बाद में कारी कारी कारी अंधी आ रही थी रात नवरंग की, तो उसमें भी मुझे दूसरी बार किसी ने डरा दिया, अरे तुमसे तो बहुत बड़ी डांसर आ रही तुम क्या जीतोगी छोड़ दो, मैं रोई तो मम्मी ने कहा अब तो तेरी असली परीक्षा है बेटा, अब तो तेरे को जीतना ही, दीदी लोगों ने भी, तो वो मैं फिर जीती, फिर मैं सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार बनी।
2: क्या बात,
0: तो ये मतलब हमेशा मुझे मतलब ये कि मुझे लोग फॉलो करते हैं, अच्छा अलका ने किया उनकी पोती ने किया, अब हमारी बेटियों को भी
2: हमारी बेटियों को भी करना चाहिए ना, एक सीख। क्या बात है, मुझे आपकी बातों से ना एक चीज और बहुत समझ में आई कि साहित्य कैसे जीवन को आसान बनाने में मदद करता है, कैसे एक दूसरे को समझने में मदद करता है। तो हम ऐसे बहुत लोग हैं जो पढ़ते नहीं है, मोबाइल में ही चले गए हैं जिंदगियां, तो अगर साहित्य के और नजदीक जाएंगे तो अपने आसपास वालों को भी और बेहतर समझ पाएंगे।
0: बिल्कुल सही बात है जी,
2: ये पढ़ना चाहिए और
0: बिल्कुल। देखिए क्या होता है ना, आपने आप भी बचपन से पुस्तकें सबसे अच्छी दोस्त होती हैं, और मैं दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर में गई थी तो आज तक वालों ने एक इंटरव्यू किया था, उन्होंने कहा कि क्या आपको लगता है कि आजकल पुस्तकों का अस्तित्व खत्म हो रहा है, मैंने अगर ऐसा होता तो आप पुस्तक मेले में मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं और तमाम स्टॉल्स हैं और लोग खरीद रहे हैं किताबें और स्पेशली जाते हैं और खास करके बच्चों के माता पिता जाते, मेरी बेटी भी बहुत पढ़ती थी कि वो अंग्रेजी में पढ़ती लेकिन बहुत किताबें पढ़ती है। तो कई बार क्या होता है कि जैसे जब हम मोबाइल पे आजकल जो हम रील बोलते हैं ना, रील लाइफ में के कारण हम रियल लाइफ से दूर होते जा रहे हैं, और व्हाट्सएप हम फेसबुक पे अच्छा अभी हम परिचित हो गए, अच्छा आप में से कनेक्टेड है, अरे अलका जी आपकी तबीयत, ओ प्लीज गेट वेल सून, अपना ध्यान रखिएगा, ऐसे लगेगा आरुषि से ज्यादा तो मेरा कोई अपना है ही नहीं। लेकिन अभी मेरे घर में अगर कोई है और मैं आपको तो पूछ रही हूँ, आप मुझे पूछ रहे, लेकिन आपके घर में तो मतलब लोग लीस्ट वरीड होते हैं या सोचते भी नहीं कि घर में भी हमको वही चीजें करनी है। तो लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो साहित्य हमें एक एक, एक भावना देता है। जैसे मेरी जिंदगी में बहुत सी चीजें हुई कि मैंने कहानियां पढ़ रही हूँ आलेख, जैसे मैंने परसाई जी को, उनको पढ़ करके मेरी चीजें बहुत भीतर बदला है। जो आप उसको उस तरह से जब पढ़ेंगे ना, आपको बहुत एक प्रेरणा मिलती है, कई बार
2: पर्सपेक्टिव भी मिलता है, एक नया पर्सपेक्टिव भी मिलता है,
0: पर्सपेक्टिव मिलता है, नया पर्सपेक्टिव मिलता है जिंदगी को समझने का। अच्छा कि हम तो अभी तक हम कूप मंडूक बने रहते हैं, पर जब आप पुस्तकों को पढ़ते हैं, क्योंकि देखिए बहुत से लेखक जैसे वो क्या होता है कि उन्होंने पूरी राजनीति पढ़ी होती है, तमाम माइथोलॉजी पढ़ी होती है, तमाम वेद पढ़े होते हैं, या नहीं भी तो और जिंदगी को पढ़ा होता है, और वो उसको उसका सार उसमें लिखते हैं। तो आपको तो सार पूरा मिल गया ना एक जगह, तो जब आपको सार मिल रहा है तो आपको साहित्य बहुत कुछ देता है। साहित्य का अर्थ होता है सहित, जिसमें हित हो, सबका हित,
2: सबका हित हो,
0: तो साहित्य तो हित ही करेगा, तो साहित्य पढ़ना ही चाहिए।
2: अलका जी मैं आपसे ये जरूर जानना चाहूंगी, जो युवा हमें सुन रहे हैं, अगर आप कुछ किताबें सजेस्ट करें कि उन्हें क्या पढ़ना चाहिए, कुछ कुछ किताबें।
0: देखिए आजकल एक तो सेल्फ हेल्प की बुक्स बहुत आ रही, रॉबिन समथिंग उनका ध्यान एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा, और रोंडा बर्न की भी जैसे द मैजिक, और आप लोगों का भी साहित्य शायद जैसे अभी जीवन पलटने की कला है, तो ये तो एक अलग चीज है। लेकिन उसके अलावा जैसे कि बहुत सी अच्छी कविताएं आती हैं, हाँ नेगेटिव बहुत ज्यादा मत पढ़िए, और उसके अलावा जैसे कि हमारे जो बहुत सारे पहले के साहित्यकार हैं, जैसे मैंने इंग्लिश में भी एमए किया है, तो आप वर्ड्सवर्थ को पढ़ते हैं या शैली को पढ़ते हैं, बहुत बहुत सारी चीजें हैं ऐसे, तो मुझे लगता है कि उनको पढ़ना चाहिए। और आजकल के भी जैसे अब देवदत्त पटनायक जो आपके यहाँ शायद आ भी चुके होंगे, वो तो उन्होंने माइथोलॉजी को ना बहुत ही खूबसूरती से डिपिक्ट किया है। उनके एक हनुमान की रामायण है, पता है आपको? अच्छा, उन्होंने लिखी, हाँ, कि हनुमान जी ने एक रामायण लिखी, तो वाल्मीकि जी को पता चला कि नारायण ने उनको बोला, नारद मुनि ने कहा कि आप जाइए एक बार हनुमान की रामायण देखिए। तो हनुमान जी की रामायण पता कहाँ लिखी थी? एक गार्डन में, एक बागीचे में, और केले के पत्तों में, इसमें उसमें उसमें, और वो वाल्मीकि जी पढ़ते जा रहे, रोते जा रहे, रोते जा रहे, तो हनुमान जी बोले क्यों रो रहे हैं आप ऐसे? तो बोले नहीं, आपने जो लिख दिया मेरी रामायण कौन पढ़ेगा? आपने, हनुमान जी ने क्या किया, उसको सारे को खा लिया पत्तों को। बोले क्या किया आपने, इतना सब लिखा? बोले मेरे राम मेरे अंदर हैं, अब आपको हमेशा सब याद रखेंगे। तो इस तरह की जो आपको एक जगाने वाली अवेयरनेस जहाँ है वो सारी चीजें। और आजकल तो देखिए ये डिजिटल जमाना है, आप
2: बिल्कुल
0: AI दे देता है, गूगल को पूछ
2: आप डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं
0: जी,
2: ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत सारे नॉवेल्स भी, उपन्यास भी।
0: हम बॉम्बे में रहते हैं, मैं सोचती हूँ मैं अपनी लाइब्रेरी बहुत बना लूँ बड़ी, तो कहाँ रखूंगी मैं सारी चीजें 3 BHK के फ्लैट में। अब आप ऑनलाइन करते जाए, किंडल पे पढ़ लीजिए, और उसमें देखिए कि सेल्फ हेल्प बुक्स, मुझे जैसे जिस समय मुझे जो पढ़ने का मन है कि आई एम फीलिंग लो, नहीं मुझे कुछ पढ़ना है, मुझे आध्यात्मिक कुछ पढ़ना है, तो सब कुछ तो आपके क्लिक में अवेलेबल है।
2: बिल्कुल,
0: क्योंकि मैं बोल दूंगी ये पढ़ो तो नहीं, क्या होता है जो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है,
2: उनको क्या इंटरेस्ट है,
0: उनको क्या पढ़ना है, उनका क्या इंटरेस्ट है, तो जिसमें खुद की रुचि हो बस। आप ये मत पढ़िए कि आप दूसरों का बुरा करने का सोचें, अपने आप को आप कैसे ग्रो कर सकते हैं, कैसे इवॉल्व हो सकते
2: ऐसा
0: हैं,
2: कुछ पढ़िए,
0: कैसे बेहतर इंसान बन सकते हैं, जो कल से उससे बेहतर बनना है हमें, और बेहतर करते करते दूसरों को भी साथ में लेके चलना है, ऐसा कुछ पढ़िए।
2: बहुत सुंदर बात है, और चाहे कहानियां पढ़ें चाहे कविताएं पढ़ें, लेकिन और मुझे लगता है और संवेदनशील भी बनाती है हमें ये।
0: बिल्कुल, मैं एक छोटी सी लघु कथा आपको बता देती
2: हूँ। बिल्कुल,
0: अभी हाल ही में जैसे क्या होता है, और ये सचमुच में जब होता है ना, क्योंकि कहानियां हमें जिंदगी से मिलती हैं आरुषि जी, तो आजकल कैंसर बहुत कॉमन हो गया है, तो एक हस्बैंड वाइफ है, और वो जो वाइफ है वो सोच रही कि आज वो अक्षत, और लड़की का नाम है रंगोली, अक्षत आज कहाँ रह गया, अभी तक आया क्यों नहीं, आज उसने मुझे वीट जूस भी बना के नहीं दिया है। वो अपने कमरे में जाती है और तमाम वो सारी देखती, जहाँ उन दोनों की फोटोज हैं, यहाँ गए थे वहाँ गए थे, अच्छा वो देखती है डेकोर पूरा उसके मन से, तो अक्षत ने कराया पूरा पर्ल कलर का। फिर वो देखती है कि कहीं पर्दे का हवा का झोंका आता है और उसके बाल उड़ते हैं, तो उसको याद आता है कि अक्षत कहता कि रंगोली तुम्हारे बाल कितने सुंदर है ना, एकदम मतलब मुलायम हो ये रेशमी और ब्राउन कलर के वैसे सब, तो वो अपने आंखों पे उसके बाल भी छा लेता। तो कहती अक्षत बाल तुम्हारे भी तो कितने सुंदर, तुम रोमन गॉड जैसे दिखते हो। और अचानक वो सोचते सोचते दर्पण के सामने चली जाती है और देखती कि उसके सिर पे बाल नहीं है क्योंकि केमोथेरेपी से बाल चले गए, तो 6 महीने पहले उसको कैंसर डिटेक्ट हुआ था। और इससे तो वो मतलब रोते रोते सो जाती, थोड़ी देर में उसको स्पर्श महसूस होता है, तो देखती अक्षत तुम कहाँ, अक्षत तुम्हारे बाल कहाँ आ गए, तो वो बोलता है नहीं वो चलो सॉरी चलो खाना भी लगा है और तुम्हारा वीडियोस भी बना हुआ है। तो तब वो देखती तो बोलता है कि बस वो मतलब उसको मतलब वो बहुत प्यार से सताता है, तो वो सोचती कि आज जो रंगोली है वो अक्षत के प्यार से सज गई है। मतलब ये कि पति जो है उसके लिए उसने अपने बाल भी, जब तक उसकी पत्नी के बाल नहीं आएंगे वो भी बाल ऐसे ही रखेगा। तो ये जो चीजें होती है ना कि मतलब एक पॉजिटिव संदेश मैं देना चाहती हूँ। आजकल मैं लघु कथाओं, मतलब मैं लघु कथा शोध केंद्र बॉम्बे की अध्यक्ष बनी हूँ हाल ही में, तो हम लघु कथाओं पे बहुत काम कर रहे हैं। और आजकल की लघु कथाएं जो एक संदेश देना चाह रही है वो बहुत पॉजिटिव संदेश देती हैं कि अब उसमें नेगेटिविटी नहीं हो, एक पॉजिटिव संदेश के साथ में अपनी लघु कथा को खत्म करिए। तो आजकल हम लोग वो कर रहे हैं।
2: कई बार हम सोशल मीडिया पे भी और अपने आसपास जिंदगी में बहुत चीजें देखते हैं लेकिन उन्हें भूल जाते हैं। कहते हैं ना आजकल की रात गई बात गई जैसे हो जाता है, एक न्यूज आई दूसरी न्यूज चली गई, लेकिन जब लघु कथा के रूप में हम उन्हें सुन रहे हैं तो मुझे लगता है वो छाप छूट जाती है, वो चीज फिर वो हमारे अंदर वो हमारा हिस्सा बन जाती है कहीं ना कहीं। बहुत प्रेरणादायक कहानियां हैं।
0: आपने जैसे बात की, आपको याद है ना बचपन में हम सब ने कहानी सुनी ना कि एक पिताजी थे, उन्होंने अपने बच्चों को बोला एक लकड़ी का गट्ठर दिया कि तोड़ो, है ना, तो वो कोई नहीं तोड़ पाए, जब अलग अलग करके तोड़ा तो तोड़ दिया, तो उन्होंने कहा यही चीज सिखा। तो कथा के माध्यम से वो बात हमेशा आपके जहन में, जैसे आपने कहा बिल्कुल वही बात है कि हमारे जहन में अंकित हो जाती है, हमारे अंदर अंकित हो जाती है, हमें याद आती है। मैं अपनी बेटी को ना बचपन में और बेटे को भी एक कहानी सुनाती थी, हम लोग मारवाड़ी हैं, हल्दी हल्दी मल्दी सटवा सूट। अच्छा। कि सटवा सूट जो है वो थोड़ी सी बिटर है, दो बहनें हैं तो हल्दी मल्दी सबका भला करती है। जब हल्दी मल्दी अपनी नानी के घर जाती सबको मिलती सबका भला करती जाती, तो जब वो लौटती तो उसको बहुत सारे गिफ्ट मिलते। सटवा सूट भी कहती कि मैं जाऊंगी और सबको, तो जो भी बोलता क्यों मैं, क्यों वो तो थी हल्दी मल्दी, मैं हूँ सटवा सूट, मैं नहीं करती तुम्हारा काम। अब वो आती तो उसको कोई कुछ नहीं देता। तो मेरी बेटी आज भी मम्मा मैं आपकी हल्दी मल्दी हूँ ना। तो ये हमें ना इस तरह के संस्कार कहानियों के माध्यम से हम अपने बच्चों को दे सकते हैं। और बिल्कुल आपने सही बात बोली कि आप भाषण देंगे ना कोई नहीं सुनेगा, उसको इंटरेस्टिंग वे में बता के कहिए तो आपको लोग जरूर सुनेंगे,
2: जरूर सुनेंगे। तो कहानियां और पढ़िए और सुनिए और सुनाइए, है ना। भारत की तो मतलब मुझे लगता है भारत में तो कहानियां बसती हैं हर कोने में,
0: बिल्कुल
2: हर भाषा में, हर लोकगीत लोक कथा में बहुत कुछ है सच में। तो आपने आज हमें वापस मुझे लगता है जोड़ दिया, जहाँ से हम थोड़ा दूर भी निकल आए थे, तो वापस उन कहानियों की ओर अब बढ़ जाएंगे। अलका जी, क्या कोई और आपकी ऐसी कविता या कोई एक ऐसा हमारे श्रोताओं के लिए अगर आप शेयर करें?
0: बिल्कुल सुना दूंगी आपको। वैसे लता दीदी पर भी एक, जब लता दीदी तो गजल तो मैं गा के तरन्नुम में तो अभी नहीं सुनाऊंगी
2: जी,
0: पर एक है ना ये, आजकल हम पर्यावरण के लिए बहुत परेशान मतलब है, देखिए तो मैं सुना देती हूँ कि क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं सुनाऊंगी कि जहाँ पर कहीं पर नेगेटिविटी हो।
2: okay.
0: एक ये बॉम्बे में आतंकी हमला हुआ था, है ना, तो उससे मैं, अच्छा मैं एक चीज और बताती हूँ कि मैं जब बहुत दुखी होती हूँ ना और गुस्से में होती हूँ तो मेरे भीतर से कविता निकलती है, सिलसिलेवार जिंदगी कहानी बनती है। और मैं व्यंग भी लिखती हूँ, मेरे जैसे आपने व्यंग संग्रहों के नाम भी लिए, तो विसंगतियां व्यंग बन जाती। तो जब ये आतंकी हमले हो रहे थे लगातार, हमारे भी बहुत परिचित लोग थे जो उसमें मारे गए थे, तो उसमें मैंने एक सिम्बॉलिक कविता लिखी थी कि मैं उसको कुछ तरन्नुम में भी गा के थोड़ा सा वैसे बता देती हूँ। एक चिड़िया दरख

बीच हरियाली छाई थी, खिले थे सुंदर फूल, तितलियां रंग बिरंगी उड़ रही थी उड़ रही थी। माँ तोती ने दरख्त पे बनाया एक घरौंदा, सुरक्षित रख कर बच्चे उसमें निकल गई लेने दाना। पर अचानक कहीं से आया एक कठफोड़वा, ये कठफोड़वा वो आतंकवादी है,

बच्चे चीखे डर डर के, तितली के पंख गिरे कट कट के, हरियाली बदली पतझड़ में, फैल गया आतंक, मिट्ठू न जाने कहाँ गुम हो गया। तितलियों ने उड़ना छोड़ा, हो गए फूलों के रंग सभी बदरंग,

0: सच में वो उस इंसिडेंट ने, उस घटना ने हम सबको हिला दिया था, अंदर से झंझोर दिया था.
1: मुंबई का जो आतंकी हमला
0: था वो भूल नहीं सकते. और ये जो आपने कविता सिंबलाइज करके उसको, जो वो हम भावनाओं को प्रकट किया, ये एक लेखक ही कर सकते हैं कि उस प्रकार से भी उस बात को कहा जाता है, हम सोच नहीं सकते. आपका बहुत बहुत धन्यवाद है अलका जी. मुझे लगता है आपकी इतनी कहानियां, इतनी सारी बातें हैं, अभी संभव नहीं है सब कुछ इन एक घंटे में समेट पाना, लेकिन फिर भी जो आपने जो आज सुनाया है वो हमारे सिर्फ आज तक नहीं, मुझे लगता है आगे तक वो प्रेरणा बन के हमारे साथ रहने वाला है.
1: अगर एक मिनट होगा तो खाली आदर्श, एक हमने फिल्म लिखी थी और आदर्श पे फिल्म के ऊपर हमने नॉवेल लिखी थी.
0: अच्छा.
1: तो उसमें मैंने क्यों इसलिए बोल रही हूँ कि यहाँ पर उसमें एक न्यूक्लियर फैमिली, जो एकल परिवार होते हैं ना, एकल परिवार का बच्चा कैसे अपने आप को, कई बार तो हम बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग होने लगती तो वो कुछ ऐसा होता है, तो ये जो है परिवारों को बचाना कैसे जरूरी. तो आदर्श फिल्म जो है उस तरह से वो मैंने लिखी थी और वो बहुत ही खूबसूरत फिल्म है. बल्कि मैं तो चाहूंगी मैं आपको लिंक भेज दूंगी अपनी,
0: जरूर जरूर,
1: तो आप वो देखिएगा. तो मुझे लगता है कि ना हम लेखकों का एक दायित्व ये भी है कि सिर्फ लिखने के लिए ना लिखें, है ना, एक कुछ ना कुछ बदलाव, और जो कृतित्व और व्यक्तित्व है ना लेखक का वो एक हो, ये मैं चाहती हूँ कि आप लिख कुछ रहे हैं, कुछ वो मत करिए, जो आप हैं वो लिखिए, और समाज में बदलाव की चेतना के लिए जरूर लिखें. आप समाज सुधारक नहीं है हम, पर कोशिश करें कि कुछ तो बदले, कुछ तो अच्छा लिखें हम. तो बहुत अच्छा लगा मुझे आज आपके रेडियो मधुबन में, और क्योंकि यहाँ बहुत सारी पॉजिटिव वाइब्स हम लेकर जा रहे हैं और कोशिश करेंगे हम कि प्रयास हमारा ये रहेगा कि हम आगे भी जुड़े रहें और अपने घरों में भी उसी शांति के प्रकाश को फैला सकें. आपकी मुस्कान बहुत प्यारी है, आपकी मुस्कान के लिए मैं आपको बाद में कविता लिख भेज दूंगी. बहुत बहुत आभार
0: आपका शुक्रिया जी. मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत कुछ सीखने को मिला, तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया, इतना समय आपने निकाला हमारे.
1: बहुत बहुत आभार, धन्यवाद
0: सो मच. तो दोस्तों फिलहाल तो वक्त हो गया इजाजत लेने का, लेकिन मैं यकीनन ये कह सकती हूँ कि आज कुछ आप अपने साथ जरूर लेकर जा रहे होंगे, कुछ ऐसा जो आपको जीवन के सफर में मददगार साबित होगा. फिलहाल वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का, मुलाकात होगी अगले एपिसोड में. रेडियो मधुबन सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए.

0: नमस्कार, मैं हूं अनूप जलोटा और आप मुझे इस वक्त सुन रहे हैं रेडियो मधुबन में। भक्ति भजन आप सुनते हैं, उसका आनंद लेते हैं। एक भजन जो मैं बहुत प्रेम से गाता हूं, उसकी एक लाइन आपको सुनाता हूं।
1: मैया मोरी मैं नहीं मां खायो,
0: ये भजन मुझे बहुत प्रिय है, आप भी सुनिए। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: From the world of light, it's time now to return to this physical world. But keep the light, the light shines from my eyes. From my mind.

bodies of matter, but I see the light from their eyes.

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: गाड़ी में सफर करते समय कोई भी अनजान व्यक्ति से किसी भी प्रकार के खाने पीने की चीजें स्वीकार न करें, इससे आपके जान व माल दोनों का नुकसान हो सकता है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हॉस्पिटल्स में एडमिट होने वाले ज्यादा केसेस रोड एक्सीडेंट्स यानी सड़क दुर्घटना की वजह से होते हैं। इसलिए अपनी रफ्तार पर नियंत्रण रखें, सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

नमस्कार, मैं हूं गौरव आसुदानी टेक ईगल से। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

ओम शांति। आज 15 सितंबर 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली के पहले गीत बजा है तकदीर जगाकर आई हूं। तो आज की बाबा की मुरली है तकदीर। तकदीर कैसे बनती है, तकदीर श्रेष्ठ बनाने का आधार क्या है, और वो ऊंच तकदीर हमें कहां से कहां ले जाती है, कैसे श्रेष्ठ भविष्य नई दुनिया के अंदर हमारी तकदीर होगी। तो बाबा कहते हैं श्रेष्ठ तकदीरवान आत्माओं की निशानियां क्या क्या है, वह भी बाबा ने बहुत सुंदर बताई है। तो तकदीर बनने का आधार है श्रीमत। जितना परमात्मा की श्रीमत को धारण करते जाएंगे उतना ही तकदीर श्रेष्ठ बनती जाएंगी, और श्रेष्ठ तकदीरवान बच्चे पढ़ाई का शौक रखेंगे, कभी अपने आप को व बाप को ठगेंगे नहीं, कायदे सिर श्रीमत पर चलेंगे और पास विथ ऑनर होकर स्कॉलरशिप लेने का पुरुषार्थ करेंगे, कभी किसी को दुख नहीं देंगे और कोई उल्टा कर्म नहीं करेंगे। तो सुनते हैं आज के बाबा की अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम अपनी तकदीर भविष्य नई दुनिया के लिए बना रहे हो। यह तुम्हारा राजयोग है ही नई दुनिया के लिए। आज की मुरली का प्रश्न है तकदीरवान बच्चों की मुख्य निशानियां क्या होगी। उत्तर है पहली, तकदीरवान बच्चे कायदे सर श्रीमत पर चलेंगे, कोई भी कायदे के विरुद्ध कार्य करके अपने को व बाप को ठगेंगे नहीं। दूसरी निशानी, उन्हें पढ़ाई का पूरा पूरा शौक होगा, समझाने का भी शौक होगा। तीसरी बात, पास विथ ऑनर बन स्कॉलरशिप लेने का पुरुषार्थ करेंगे। और चौथा, कभी किसी को दुख नहीं देंगे, कभी कोई उल्टा कर्म नहीं करेंगे। आज की मुरली से पहले गीत बजा है तकदीर जगाकर आई हूं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना, नयों ने भी सुना तो पुरानों ने भी सुना, कुमारियों ने भी सुना। ये पाठशाला है, पाठशाला में कोई ना कोई तकदीर बनाने जाते हैं। वहां तो अनेक प्रकार की तकदीर है, कोई सर्जन बनने की, कोई बैरिस्टर बनने की तकदीर बनाते। दुनिया की पाठशालाओं में तो बाबा कहे तकदीर ही बनती है, कोई सर्जन बनने की, कोई बैरिस्टर बनने की तकदीर बनाते। तकदीर को एम ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तकदीर बनाने बिगर पाठशाला में क्या पढ़ेंगे। अब यहां बच्चे जानते हैं कि हम भी तकदीर बनाकर आए हैं नई दुनिया के लिए अपना राज्य भाग्य लेने। यह है नई दुनिया के लिए राजयोग। तो तकदीर बनाने का पहला आधार है पढ़ाई। वह पुरानी दुनिया के लिए बैरिस्टर, इंजीनियर, सर्जन आदि बनते हैं, वह बनते बनते अभी पुरानी दुनिया का टाइम बहुत थोड़ा रहा है, वह तो खत्म हो जाएगा। वह तकदीर है इस मृत्यु लोक के लिए, इस जन्म के लिए। तुम्हारी पढ़ाई है नई दुनिया के लिए। तुम नई दुनिया के लिए तकदीर बनाकर आए हो। नई दुनिया में तुमको राज्य भाग्य मिलेगा। कौन पढ़ाते हैं? बेहद का बाप, जिससे ही वर्षा पाना है। जैसे डॉक्टर लोगों को डॉक्टरी का वर्षा मिलता है अपनी पढ़ाई का। अच्छा, जब बूढ़े होते हैं तब गुरु के पास जाते हैं, क्या चाहते हैं गुरु से? क्या चाहते हैं? कहते हमको शांतिधाम जाने की शिक्षा,
हमको सदगति दो, यहां से निकाल शांति धाम ले जाओ। बाप से भी वर्षा मिलता है इस जन्म के लिए, बाकी गुरु से तो कुछ नहीं मिलता। टीचर से कुछ ना कुछ वर्षा पाते हैं क्योंकि आजीविका तो चाहिए ना। बाप का वर्षा होते हुए भी पढ़ते हैं कि हम भी अपनी कमाई करें। गुरु से कमाई कुछ हुई नहीं। हाँ, कोई कोई गीता आदि अच्छी पढ़कर फिर गीता पर भाषण आदि करते हैं। यह सब है अल्पकाल सुख के लिए। अब तो इस मृत्यु लोक का अंत है। तुम जानते हो हम नई दुनिया की तकदीर बनाने आए हैं। ये पुरानी दुनिया खत्म हो जानी है। बाप की व अपनी मिलकायत भी सब भस्म हो जाएगी। हाथ फिर भी खाली जाएंगे। अभी तो कमाई चाहिए नई दुनिया के लिए। बाबा कहते अभी तो कमाई चाहिए नई दुनिया के लिए। पुरानी दुनिया के मनुष्य तो वह कर नहीं सकेंगे। नई दुनिया की कमाई कराने वाला है ही कौन? शिव बाबा। यहां तुम नई दुनिया के लिए तकदीर बनाने आए हो। वह बाप ही तुम्हारा बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है, और वह आते ही है संगम युग पर भविष्य के लिए कमाई सिखलाने। अब इस पुरानी दुनिया में तो थोड़े रोज है, ज्यादा समय है ही नहीं। यह दुनिया के मनुष्य नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो नई दुनिया के लिए यह हमारा बाप टीचर सतगुरु है। बाप आते ही है शांति धाम सुखधाम में ले जाने। कोई तकदीर नहीं बनाते हैं, गोया कुछ भी समझते नहीं। एक ही घर में स्त्री पढ़ती है, पुरुष नहीं पढ़ता। बच्चे पढ़ेंगे, माँ बाप नहीं पढ़ेंगे, ऐसे होता रहता है। शुरू में परिवार के परिवार आए, परंतु माया का तूफान लगने से आश्चर्यवत सुनंती कथंती बाप को छोड़ चले गए। गाया हुआ भी है आश्चर्यवत सुनंती कथंती बाप का बनंती पढ़ाई पढ़ावंती, फिर भी हाय कुदरत, ड्रामा की ही बात हुई ना। बाप खुद कहते अहो ड्रामा अहो माया। अच्छे अच्छे बच्चों को भी बाबा से छीन कर ले गए। किसको फारगती दे दे, किसको फारगती दे दी? बाप खुद कहते अहो माया, किसको फारगती दे दी? स्त्री पुरुष एक दो को डाइवोर्स देते हैं, बच्चे बाप को फारगती देते हैं। यहां तो वह नहीं है, यहां तो डाइवोर्स दे न सके। बाप तो आए हैं बच्चों को सच्ची कमाई कराने। बाप थोड़ी किसको खड्डे में डालेंगे। बाप तो है ही पति पावन रहम दिल। बाप आकर दुख से लिबरेट करते हैं और गाइड बन साथ ले जाने वाला है। ऐसे कोई लौकिक गुरु नहीं कहेंगे कि मैं तुमको साथ ले जाऊंगा। शास्त्रों में है भगवान वाच कि मैं तुम सबको ले जाऊंगा। मच्छर सदृश सब जाने हैं। तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो अभी हमको जाना है कहाँ? घर। अभी हमको जाना है घर। ये शरीर छोड़ना है। आप मुए मर गई दुनिया। अपने को सिर्फ आत्मा समझ बाप को याद करना है। ये तो पुराना चोला छीछी है, ये दुनिया भी पुरानी है। जैसे पुराने घर में बैठे होते हैं, नया घर सामने बनता रहता है। तो बाप भी समझेगा हमारे लिए, बच्चे भी समझते हमारे लिए बन रहा है। बाप भी समझता है, बच्चे भी समझते हमारे लिए नया घर बन रहा है। बुद्धि चली जाएगी नए घर तरफ, इसमें यह बनाओ यह करो, बुद्धि उसमें ही लगी रहेगी।
फिर पुराना तोड़ देते हैं। ममत्व सारे पुराने से मिटाए नए से जुड़ जाता है। यह है बेहद दुनिया की बात। पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाना है और नई दुनिया से लगाना है। जानते हैं ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है, नई दुनिया है स्वर्ग, उसमें हम राजाई पद पाते हैं। जितना योग में रहेंगे, ज्ञान की धारणा करेंगे, औरों को समझाएंगे, उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। बड़ा भारी इम्तिहान है। हम 21 जन्म के लिए वर्षा पा रहे हैं। शाहूकार बनना तो अच्छा है ना, बड़ी आयु मिले तो अच्छा है ना। सृष्टि चक्र को जितना याद करेंगे, जितने को आप समान बनाएंगे, उतना फायदा है। राजा बनना है तो प्रजा भी बनानी है। प्रदर्शनी में इतने ढेर आते हैं, वह सारी प्रजा बनती जाएगी, क्योंकि इस अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं होता। बुद्धि में आएगा, पवित्र बन पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। राम राज्य की स्थापना हो रही है, रावण राज्य का विनाश हो जाएगा। सतयुग में तो होंगे ही देवताएं। बाबा ने समझाया था, लक्ष्मी नारायण का चित्र जो बनाते हैं उसमें लिखना चाहिए कि पास्ट जन्म में ये तमो प्रधान दुनिया में थे, फिर इस पुरुषार्थ से तमो प्रधान दुनिया से सतो प्रधान विश्व के मालिक बनेंगे। मालिक राजा प्रजा सब होती है ना। प्रजा भी कहेगी भारत हमारा सबसे ऊंचा है। बरोबर भारत ही सबसे ऊंच था, अभी नहीं है, था जरूर, अभी तो बिल्कुल गरीब हो गया है। प्राचीन भारत सबसे शाहूकार था, प्राचीन भारत सबसे शाहूकार था। हम भारतवासी सबसे ऊंच देवता कुल के थे। दूसरे कोई को देवी देवता नहीं कहा जाता। अब तुम बच्चियां भी पढ़ती हो, फिर औरों को भी समझाना है ना। बाबा ने डायरेक्शन दिया ना, कैसे प्रदर्शनी आदि में तार दी जाए, सो लिख कर आओ। तुम्हारे पास चित्र भी है, तुम सिद्ध कर बतला सकते हो कि उन्होंने ये पद कैसे पाया। अब फिर से यह पद पा रहे हैं शिव बाबा से, उनका चित्र भी है। शिव है परम पिता परमात्मा। ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी चित्र हैं। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना कर रहे हैं। विष्णुपुरी सामने खड़ी है। विष्णु द्वारा नई दुनिया की पालना। विष्णु है राधे कृष्ण के दो रूप। अब गीता का भगवान कौन ठहरा? पहले तो ये लिखो कि गीता का भगवान निराकार शिव है, न कि श्री कृष्ण। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं? एक ही चित्र पर समझाने में कितना टाइम लगता है। जब बुद्धि में बात बैठे, पहले पहले ये समझा कर और फिर लिखाना चाहिए। क्या समझा है? बाप कहते ब्रह्मा द्वारा तुमको योग बल से 21 जन्म का अधिकार मिलता है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा वर्षा दे रहे हैं। पहले पहले इनकी आत्मा सुनती है, आत्मा ही धारण करती है। मूल बात है ही यह। चित्र तो शिव का दिखाते हैं, यह है परम पिता परमात्मा शिव, फिर प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर चाहिए। यहाँ प्रजापिता ब्रह्मा के ब्रह्मा कुमार कुमारियां ढेर के ढेर है। जब तक ब्रह्मा के बच्चे न बने, ब्राह्मण न बने, तो शिव बाबा से वर्षा कैसे लेंगे? तो ब्रह्मा का बच्चा तो बनना ही पड़ेगा। कुख की पैदाइश तो हो न सके। यह भी गाया जाता है मुख वंशावली। तुम कहेंगे हम प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली है। वह गुरुओं के चेले अथवा फॉलोअर्स होते हैं।
यहां तुम एक को ही बाप टीचर सतगुरु कहते हो, अलग अलग नहीं है। हम बाप टीचर सतगुरु केवल एक परमात्मा को ही कहते हैं। सो भी उनको कहते हो जो निराकार शिव बाबा ज्ञान का सागर नॉलेजफुल है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। वह टीचर भी है, निराकार आकर साकार द्वारा सुनाते हैं। आत्मा ही बोलती है ना, आत्मा कहती है मेरे शरीर को तंग मत करो। आत्मा दुखी होती है, इस समय है पतित आत्मा, पतितों को पावन बनाने वाला परम पिता परमात्मा है। आत्मा बुलाती है, हे पतित पावन, हे गॉड फादर। अब फादर तो एक बैठा है, फिर भी याद किसको करते हैं। आत्मा कहती है यह हमारी आत्मा का फादर है, वह है शरीर का फादर। समझाया जाता है अब आत्माओं का बाप जो निराकार है वह बड़ा, या शरीर का रचयिता साकार बाप है वह बड़ा। कौन बड़ा, निराकार बाप परमात्मा बड़ा या साकार बाप जो शरीर का रचयिता है वो बड़ा। साकार तो निराकार को याद करता है। अब सबको समझाने दी जाती है, जबकि विनाश सामने खड़ा है, पारलौकिक बाप आते ही है अंत में सभी को वापस ले जाने, बाकी जो कुछ भी है वह विनाश होने का है। इसको कहा ही जाता है मृत्यु लोक। जब कोई मरता है तो कहते फलाना परलोक पधारा, शांति धाम गया। मनुष्य को पता नहीं है कि परलोक सतयुग को कहा जाता है या शांति धाम को। परलोक किसको कहा जाता है, सतयुग को या शांति धाम को? सतयुग तो यहां ही होता है, परलोक शांति धाम को कहेंगे। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए, मंदिरों में जाकर समझाना चाहिए। यह शिव बाबा का यादगार है। जो शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, शिव है वास्तव में बिंदी, परंतु बिंदी की पूजा कैसे करें, फल फूल आदि कैसे चढ़ाया जाए, इसलिए बड़ा रूप बनाया है। इतना बड़ा रूप कोई होता नहीं, गाया भी जाता है भ्रुकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। बड़ी चीज हो तो साइंस वाले झट उनको पकड़ ले, इतनी सूक्ष्म है बाबा कहे कोई पकड़ भी नहीं सकता है। आत्मा अति सूक्ष्म है तो शिव बाबा भी अति सूक्ष्म है। बाबा समझाते हैं उनको परम पिता परमात्मा का पूरा परिचय मिला नहीं है। जब तक तकदीर खुले, तकदीर खुलने का समय आएगा तो बाप का परिचय भी पूरा मिलेगा। अभी तकदीर ही नहीं खुली है, जब तक बाप को न जाने या न समझे कि हमारी आत्मा बिंदी समान है। शिव बाबा भी बिंदी है, हम बिंदी को याद करते हैं। ऐसे समझ याद करे तब विकर्म विनाश हो। स्वयं को आत्म समझकर परमात्मा को याद करे, अर्थात बिंदी समझ बिंदी बाप को याद करे तब विकर्म विनाश हो। बाकी यह देखने में आता वह आता, इसे माया का विघ्न कहा जाता है। कई लोग क्या कहते, मेडिटेशन में बैठते तो हमें यह दिखाई देता है, वह देखने में आता है, तो बाबा कहते हैं ये सब माया के विघ्न है। माया ऐसे ऐसे भ्रमित करने वाली चीजें दिखाती है, सोचते हमें मेडिटेशन में दिखाई दिया। वास्तव में मेडिटेशन में विकर्म विनाश करना है, देखने की चीज नहीं होती है। अभी तो खुशी है कि हमको परमात्मा मिला है, परंतु ज्ञान भी चाहिए ना। किसको से कृष्ण का साक्षात्कार होता है तो खुश हो जाते हैं। बाबा कहते से कृष्ण का साक्षात्कार कर बहुत खुशी में डांस आदि करते हैं, परंतु उनसे कोई सदगति नहीं होती। ये साक्षात्कार तो अनायास ही हो जाता है।
अगर अच्छी रीति नहीं पढ़ेंगे, अगर अच्छी रीति नहीं पढ़ेंगे तो प्रजा में चले जाएंगे। थोड़ा भी सुनते हैं तो कृष्णपुरी में साधारण प्रजा आदि जाकर बनेंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा हमको ये नॉलेज सुना रहे हैं, वह है ही नॉलेजफुल। बाबा का फरमान है कि पवित्र जरूर बनना है, परंतु कोई पवित्र भी नहीं रह सकते। कभी कभी पतित भी यहां छिपकर आ जाते हैं तो वह अपना ही नुकसान करते हैं, अपने को ठगते हैं। बाप को ठगने की तो बात ही नहीं है। बाप से ठगी कर कोई पैसे लेना है क्या? हम बाबा कहते बाप से ठगी कर कोई पैसा लेना है क्या? शिव बाबा की श्रीमत पर कायदे सिर नहीं चलते तो क्या हाल होगा? बहुत सजाएं खानी पड़ेगी, दूसरा फिर पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। कोई भी कायदे के विरुद्ध काम नहीं करना चाहिए। बाप तो समझाएंगे ना, तुम्हारी चलन ठीक नहीं है। बाप तो कमाई करने का रास्ता बताते हैं, फिर कोई करे ना करे उनकी तकदीर। सजाएं तो खाकर वापस शांति धाम में जाना ही है। पद भ्रष्ट हो जाएगा तो कुछ भी मिलेगा नहीं। आते तो बहुत है, परंतु यहां बाप से वर्षा लेने की बात है। बच्चे कहते बाबा से तो हम स्वर्ग का सूर्यवंशी राजाई पद पाएंगे। कई निश्चयात्मक बुद्धि बच्चे होते तो कहते हैं बाबा से तो हम स्वर्ग का सूर्यवंशी राजाई पद पाएंगे। राजयोग है ना, स्टूडेंट स्कॉलरशिप भी लेते हैं ना, पास होने वालों को स्कॉलरशिप मिलती है ना। ये माला उन्हों की बनी हुई है जिन्होंने स्कॉलरशिप ली है। जितना जितना जैसा पास होगा ऐसी स्कॉलरशिप मिलेगी। वृद्धि होते होते हजारों बन जाते हैं। राजाई पद है स्कॉलरशिप, जो अच्छी तरह पढ़ाई पढ़ते हैं वह गुप्त नहीं रह सकते। बहुत नए नए पुराणों से आगे निकल पड़ेंगे, हीरे जैसा जीवन बनाएंगे, अपनी सच्ची कमाई कर 21 जन्मों के लिए वर्षा पाएंगे। कितनी खुशी होती है। बाबा कहे जब वर्षा पाते तो कितना खुशी होती है। जानते हैं ये वर्षा अब नहीं लिया तो फिर कभी नहीं ले सकेंगे। पढ़ाई का शौक होता है ना, कोई को तो जरा भी शौक नहीं है समझाने का। ड्रामा अनुसार तकदीर में नहीं है तो भगवान भी क्या करे, तकदीर में नहीं है तो भगवान भी क्या करे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, कोई भी कार्य श्रीमत के विरुद्ध नहीं करना है। पढ़ाई अच्छी रीति पढ़कर उच्च तकदीर बनानी है, किसी को भी दुख नहीं देना है। दूसरी पॉइंट, इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा देना है, बुद्धि योग नई दुनिया से लगाना है। खुशी में रहने के लिए ज्ञान को धारण कर दूसरों को धारण कराना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है सोचना बोलना और करना, तीनों को समान बनाने वाले सर्वोत्तम पुरुषार्थी भव। सोचना बोलना और करना तीनों को समान बनाने वाले सर्वोत्तम पुरुषार्थी भव। सभी शिक्षाओं का सार है कि कोई भी कर्म से देखने उठने बैठने चलने सोने से फरिश्तापन दिखाई दे, हर कर्म में अलौकिकता हो, कोई भी लौकिकता कर्म व संस्कार में न हो, सोचना करना बोलना सब समान हो,
ऐसे नहीं कि सोचते तो थे कि यह ना करे लेकिन कर लिया, ऐसे तो नहीं कि सोचते तो थे कि यह ना करे लेकिन कर लिया। जब तीनों ही एक समान और बाप समान हो, जब तीनों ही सोचना बोलना करना तीनों ही एक समान और बाप समान हो, तब कहेंगे श्रेष्ठ व सर्वोत्तम पुरुषार्थी, श्रेष्ठ व सर्वोत्तम पुरुषार्थी। आज का स्लोगन है जिम्मेवारी उठाना अर्थात एक्स्ट्रा दुआओं का अधिकारी बनना, जिम्मेवारी उठाना अर्थात एक्स्ट्रा दुआओं का अधिकारी बनना। आज का व्यक्ति इशारा है अब अपने दाता स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। उसके अंतर्गत बाबा कहते वर्तमान समय सर्व आत्माओं को शांति और शक्ति की ही आवश्यकता है। अपनी शक्तिशाली शांत मनसा द्वारा आत्माओं को मन के शांति का अनुभव कराओ। वाणी और मनसा दोनों सेवाएं साथ साथ करो। विश्व महाराजन को विश्व का दाता कहते हैं, तो जब आप अभी सबको सुख शांति और शक्ति का दान देंगे तभी तो सभी सुखदाता मानेंगे। तो मनसा वाचा कर्मणा क्या करना है, सभी को सुख शांति और शक्ति का दान देना है तभी सुखदाता मानेंगे। अच्छा, ओम शांति।